सुप्रभात। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माघ की 7वीं तिथि। तदनुसार

सार 24 मई सन 2026 प्रातःकाल में 5:56 हुए हैं। मीडियम वेव और एफएम के चैनल्स पर आकाशवाणी रामपुर से हमारी आज की प्रथम सभा के प्रसारण अब आरंभ हो रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग,

0: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े 5वें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। समय 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

अभिनंदन वंदना में। सांवरे तुम्हारे रंग में मेरी हर सुबह खिल जाए, तुम्हारा नाम लेते ही हर धड़कन संभल जाए। न चाहूं दुनिया की दौलत ना कोई आसमान, बस तुम्हारी ही भक्ति में मेरा हर दिन गुजर जाए।

जय माता की बोलो, जयकारा माँ का हो। हर मन में बस आज सहारा माँ का हो। जिस द्वार पे जय माता की गूंज हो उठे, वहाँ बरसता सदा आशीर्वाद माँ का हो।

आज रब से नबी की मुलाकात हुई, लगता है दुआओं में कोई बात हुई। फिजाओं में आज नूर ही नूर बिखरा है, शायद रहमतों की फिर बरसात हुई।

दास की विनती सुन लो मेरे दाता, तुम्हारे बिना सोना लगते ये सवेरे, चरणों में रख लेना बस इतनी सी अरदास, तुम्हारी रहमत से ही रोशन हो।

करो कृपा हे मात भवानी, सदा रहे हम पर मेहरबानी। प्रेम प्रार्थनाओं और आशीर्वाद के साथ आज की वंदना अब यहीं संपन्न हो रही है। आज वंदना में कलाकार थे मानिका वर्मा, नरेंद्र चंचल, इफ्तिखार अहमद, पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल। वंदना कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

0: वृद्धि करने वाली संपदा में चरित्र संपदा का नाम सबसे पहले आता है और संपत्तियां इसके आगे धूल के समान हैं। हमारे चिंतकों ने ठीक ही कहा है, धन तो आनी जानी है। यदि धन चला गया तो मनुष्य को विशेष क्षति नहीं हुई, स्वास्थ्य खराब हो गया तो पुनः मिल जाएगा, पर चरित्र चला गया तो आदमी को चरित्रहीन की पदवी मिल गई और समझ लीजिए कि उसका सर्वनाश ही हो गया, साथ ही साथ परिवार, समाज और पूरे देश का नाश हो गया। ऐसी दशा में हमें चाहिए कि किसी भी कीमत पर हम अपने चरित्र की रक्षा करें। जो चरित्रवान है वही श्रद्धा का पात्र है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, विनोबा भावे, विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, पंडित मदन मोहन मालवीय आदि सदाचारी महामानवों का धवल चरित्र इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। चरित्र जीवन की आधारशिला है। भौतिक एवं आध्यात्मिक सफलताओं का मूल भी यही है। प्रायः विश्वास भी लोग उन्हीं का करते हैं जिनके चरित्र पर किसी की उंगली नहीं उठी होती। चरित्रवान साधक ही साधना में सफल होते हैं। मर्यादाओं का पालन करने वाला निष्ठावान साधक का उत्साह और मनोबल देखते ही बनता है। विश्व रंगमंच पर अवतरित होने वाले महापुरुषों की सफलता एवं उसकी महानता का आधार उनका श्रेष्ठ आदर्श चरित्र ही रहा है। ऐसे महामानवों को हम भगवान, पैगंबर, देव की संज्ञा देते हैं। पुराण में कहा है, धर्मोपदेशक दयावान, छल कपट से शून्य, पाप मार्ग विरोधी ही भगवान के समान होते हैं। अन्यत्र भी कहा गया है, जो दूसरों के दुख में दुखी और दूसरों के सुख में सुखी समझता है वह चरित्रवान पुरुष नर के रूप में साक्षात नारायण है। हम यह न भूलें कि मनुष्य जन्मजात अनुकरणीय प्रिय प्राणी है। वह जैसा देखता सुनता है वैसा ही बनता है। एक समय था हमारे भारतवर्ष में ऐसे महापुरुषों का बाहुल्य था जो अपने चरित्र के धनी संतों के पवित्र आचरण के द्वारा सामान्य जनता के प्रेरणा स्रोत थे। उदात्त चरित्र के धनी संतों के पवित्र आचरण से प्रभावित होकर लोगों के मन में ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होती थी कि उनके हृदय और दिमाग में ये आवाज उठती थी, हम इन्हीं के समान बनेंगे। आत्मोत्कर्ष के मार्ग पर चरित्र निष्ठा का संबंध पाकर आगे बढ़ा जा सकता है। मार्ग में आने वाली बाधाओं को अपनी मेहनत और लगन से हटाया जा सकता है। इंद्रिय लिप्सा और वासनाएं सबसे अधिक इसमें बाधक होती हैं। अगर साधक इसके ऊपर अंकुश नहीं रख पाएगा तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। जैन धर्म में चरित्र निष्ठा को मानवीय उत्कर्ष का प्रमुख आधार माना जाता है। इसकी गणना त्रिरत्न में की गई है। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य का चरित्र उसके धर्म से माना जाता है। चरित्र ज्ञान से निर्मित होता है। ज्ञान की प्राप्ति शास्त्रों के पठन पाठन से सुलभ होती है। चरित्र निर्माण के लिए भगवान महावीर के अहिंसक, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह नामक 5 महाव्रतों के परिपालन को अनिवार्य बताया गया है। हृदय की पवित्रता का चरित्र निष्ठा से गहन संबंध है। अगर हृदय पवित्र है तो निश्चित ही चरित्र में 4 चांद लग जाएंगे। फिर तो ऐसे चरित्रवान को पाकर कोई भी परिवार, समाज और देश के लिए धन्य होगा। बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, जरथुष्ट आदि ऐसे महामानव थे जिन्होंने लोगों के भीतर झांक कर देखा और अधिक भला बनाया। जो बुरे थे उन्हें भला बनाया। महात्मा गांधी के प्रेरणा से लाखों लोग आजादी की लड़ाई में कूदे, फलस्वरूप भारत माता के पैरों में पड़ी बेड़ी कटी। ये सच है, जिसमें चारित्रिक उत्कृष्टता नहीं उसे दैवी शक्ति कदापि नहीं मिलेगी। आज लोग बाग यह कहकर आसानी से छुट्टी पा लेते हैं कि हवा उल्टी बह रही है, इस माहौल में चरित्रवान आदमी हो ही नहीं सकता, इसमें सच्चाई नहीं है। यदि मनु की संतान ठान ले तो उसके लिए कुछ असंभव नहीं है। स्वर्ग का फूल पाया जा सकता है, मछली की तरह उल्टी धार में तैरा जा सकता है। चरित्र एक संजीवनी है, अगर हम इसे अपना ले, अगर हम अनर्थ से बचना और बचाना चाहते हैं तो चरित्रवान बनना पड़ेगा।
1: चरित्र, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज।

0: पर। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6:35 हुए हैं, आइए सुनते हैं अब स्वास्थ्य संदेश। ये कार्यक्रम आज इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय है शल्य चिकित्सा। जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं डॉक्टर शुभिराज वर्मा।
1: कि शल्य चिकित्सा के आधुनिक तरीके कौन कौन से हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और इससे क्या सुविधा होती है, इस विषय पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर शुभिराज वर्मा जो कि सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, बीमारी कई प्रकार की होती है हमारे शरीर में, कुछ में ऑपरेशन यानी शल्य चिकित्सा की जरूरत पड़ती है और कुछ दवाइयों के माध्यम से ठीक हो जाती है। कौन कौन सी बीमारियां हैं ऐसी जिनमें सामान्य रूप से डॉक्टर एडवाइस करता है कि भाई ऑपरेशन होगा या शल्य चिकित्सा की जरूरत पड़ेगी?
2: देखिए, बहुत सी बीमारियां हैं, असीमित बीमारियां हैं, लेकिन हर बीमारी का एक स्टेज होती है
1: जी,
2: जिसके हिसाब से पहले तो ट्रीटमेंट दवाइयों के द्वारा यानी कि कंजर्वेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट द्वारा दिया जाता है। और बहुत सी बीमारियां ऐसे हैं जिसमें कि फर्स्ट स्टेज से ही ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अपेंडिसाइटिस बड़ी कॉमन बीमारी है जो पेट में दर्द होता है।
1: बिल्कुल।
2: और ये आमतौर पे जो सेकंड डिकेड होता है उम्र का, 10 से 20 साल की उम्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब उसका इलाज सिर्फ शल्य चिकित्सा ही है, ऑपरेशन के द्वारा अपेंडिक्स का निकाल देना ही उचित होता है। वो दवाइयों के माध्यम से वो परमानेंटली ठीक नहीं हो पाता है।
1: जी।
2: इसी प्रकार और बहुत सी बीमारियां हैं जैसे कि ड्रॉल ब्लैडर में स्टोन है, कॉलीलिथियासिस बोलते हैं उसको, या आंतों में ऑब्स्ट्रक्शन है, इंटरस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, या पेट में पस पड़ जाना है, पेरिटोनाइटिस बोलते हैं उसको।
1: हाँ।
2: या आंतें फट जाती हैं, परफोरेशन हो जाता है आंतों में, बहुत सी बीमारियों के अंतर्गत, तो उन केसेस में सिर्फ ऑपरेशन ही किया जाता है।
1: हड्डियों का टूटना है,
2: अब हड्डियों का फ्रैक्चर है, हड्डियों का फ्रैक्चर पहले तो ट्रीटमेंट बिना ऑपरेशन के हड्डियां सेट करके प्लास्टर देते थे, अब पद्धति ऐसी आ गई है कि उनको प्लेटिंग के द्वारा, नेलिंग के द्वारा, स्क्रू के द्वारा उनको फिक्सेशन किया जाता है, जिससे कि रिजल्ट हड्डियों का जुड़ना जो है बहुत जल्दी समय से वो अच्छी स्थिति में हो जाता है। ऐसे आप हार्ट में देख सकते हैं, हार्ट की बहुत सी बीमारियां हैं, दवाइयों के माध्यम से ठीक होती हैं, लेकिन अभी आप में जैसे सभी लोग जानते हैं कि हार्ट में जो आर्टरीज होती हैं, ब्लड फ्लो का माध्यम कम हो जाता है, तो उसमें एंजियोग्राफी के माध्यम से उसको एक जांच है, उसके माध्यम से वो पता लगाते हैं कितना परसेंटेज ब्लॉकेज है, तो फिर एंजियोप्लास्टी एक सर्जिकल प्रोसीजर है, उसके द्वारा ही वो ब्लॉकेज को दूर करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने बताया है कि कई ऐसी समस्याएं हैं जिनमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है और एडवाइस की जाती है कि ऑपरेशन ही होगा, और ऑपरेशन से पहले डॉक्टर पेशेंट से मतलब क्या क्या उम्मीद रखता है, कौन कौन से चेकअप होते हैं और उसके जो नॉर्म्स हैं मतलब कितने होने चाहिए तब ऑपरेशन होता है, इसके बारे में कुछ बताएं।
2: देखिए, ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहले पेशेंट की फिटनेस देखी जाती है। जैसे कि ज्यादातर ऑपरेशन बेहोशी में, अनस्थीसिया में किए जाते हैं
1: जी,
2: तो अनस्थीसिया के लिए पेशेंट का फिट होना बहुत जरूरी है, जैसे कि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल में होना जरूरी है, उसकी ब्लड शुगर, डायबिटीज का बीमारी तो नहीं है, या कोई हार्ट कंडीशन तो नहीं है, हार्ट एलिमेंट तो नहीं है, उनको पहले उचित दवाइयों के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अतिरिक्त, ये सब होने के बाद में और फिटनेस होती है, पेशेंट का कितना वेट है, ब्लड उसका हीमोग्लोबिन कितना है, उसका लिपिड्स कितने हैं, किडनी फंक्शन कितना परसेंटेज कर रही है, अगर ये सब चीज़ें उचित नॉर्मल मिलती हैं तभी ऑपरेशन के लिए फिटनेस मिलती है अनस्थीसिया के लिए। ये तो बात हुई अनस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से। और सर्जरी तो मान लीजिए होनी है तो फिर होनी है, करनी ही पड़ेगी, चाहे वो पेशेंट फिट हो या नहीं हो, विद कैलकुलेटेड रिस्क।
1: बिल्कुल।
2: तो कैलकुलेटर रिस्क साथ में और फिटनेस नहीं होती तब भी ऑपरेशन किए जाते हैं
1: जी।
2: और बहुत से ऑपरेशन सुन करके किए जाते हैं, लोकल एनेस्थीसिया में, उसमें ऐसी फिटनेस की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ डायबिटीज और हीमोग्लोबिन परसेंटेज को हम देख लेते हैं जैसे कि पोस्ट ऑपरेटिव फेज में पेशेंट के हीलिंग में, जख्म को भरने में ज्यादा समय ना लगे, क्योंकि जैसे आप सब जानते हैं कि डायबिटीज जरूर होती है पेशेंट को, तो हीलिंग प्रोसेस में बहुत ही
1: समय लगता है,
2: प्रॉब्लम आती है, इन्फेक्शन होने का डर होता है और हीलिंग प्रोसेस बड़ी स्लो होती है
1: जी। मिलती है इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी डॉक्टर शुभिराज वर्मा जी ने। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वाले अब समझ गए होंगे और किसी प्रकार की घबराहट की आवश्यकता नहीं है, कि मतलब ये जो आधुनिक तरीके हैं इनसे आपको सुविधा ही होगी और इसका लाभ यदि कभी जरूरत पड़ती है तो आप उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कार्यक्रम आने।

0: ধন্যবাদ।
1: शल्य चिकित्सा। इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शुभिराज वर्मा से जानकारी। आपसे बात कर रहे थे डॉक्टर विनय प्रकाश वर्मा। स्वास्थ्य संदेश, ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। समय 6:42 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त विवरण।

नए फिल्मी गीत पहुंचाएंगे आपको 102.9 मॉर्निंग हिट्स में। समय याद रखिएगा 8:45, 9:25 पर गौरव भारत देश के ये कार्यक्रम होगा। 9:30 पर आप सुन सकेंगे उर्दू कार्यक्रम। कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा ईद उल अजहा। शेर नशस्त होगी जनाब शमशुद्दीन, जनाब अरशद रसूल, जनाब फहीम साकिब और मोहतरमा बदर जहां की। उर्दू प्रोग्राम ये आप तक पहुंचाएंगी शमामा मसूद। पूर्वाहन 10 आप सुनेंगे आपकी प्रतिक्रियाओं पर आधारित कार्यक्रम आपका पत्र मिला। पूर्वाहन 11 आप सुनेंगे कार्यक्रम धारावाहिक। इन दिनों आप सुन रहे हैं धारावाहिक जिंदगी के आईने में। आज आप तक पहुंचेगी इस धारावाहिक की कड़ी संख्या 10। ग्यारह 11:30 पर श्रोताओं की शब्दावलियों पर आधारित कार्यक्रम होगा मन भावन। श्रोता साथी जुड़ना ना भूले इस कार्यक्रम के साथ। समय याद रखिएगा 11:30। दिन में 12:10 पर आप सुनेंगे गीत आपके नाम ये कार्यक्रम। बच्चों का कार्यक्रम कलियां आप तक पहुंचेगा दिन में 1:15 पर। सुनहरा दौर ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 2:30 पर। श्रोताओं ये थी एक जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रथम सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। 6:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं अब श्री रामचरितमानस गान में भाग संख्या 307।

कर्णफूल के कटकर गिरने से मंदोदरी सोच में पड़ गई थी। वो श्रीराम के व्यापक स्वरूप और पराक्रम की कल्पना भलीभांति कर सकती थी। शिव जिनके मान, ब्रह्मा बुद्धि, चंद्रमा मन और विष्णु चित्त हैं, उन्हीं जगदीश्वर ने मनुष्य रूप धारण किया है। वो पति को ये सब कुछ समझाने की भरसक चेष्टा करती है, किंतु रावण उसकी बात हंसकर ये कहते हुए टाल देता है, सच ही कहते हैं कि नारी के हृदय में छल, भय, चंचलता, झूठ, अविवेक, अपवित्रता तथा निर्दयता का निवास होता है। मंदोदरी द्वारा वर्णित भगवान के विश्वरूप के तत्व तो स्वयं उसका आधिपत्य स्वीकार करते हैं, अतः उनसे भय कैसा? हो न हो, अपने कथन से वो उसकी प्रभुता की ही महिमा बखान रही है। रानी की गूढ़ बातें रावण के लिए विनोद का हेतु बन गईं। आमोद प्रमोद के क्षण बीत जाते हैं, सवेरा होता है। जिस प्रकार बादलों द्वारा बरसाया गया जीवनदायी जल पाकर भी बेंत फल फूल नहीं सकता, उसी प्रकार मंदोदरी समझ लेती है कि उसका पति काल के वश में हो गया है, उसकी मति मारी गई है। ऐसे में तो ब्रह्मा जैसा गुरु भी उन्हें ज्ञान नहीं दे सकता। इधर श्रीराम की सभा में वृद्ध जांबवान ये परामर्श देते हैं कि अंगद को दूत के रूप में रावण की सभा में भेजा जाए।

भाग संख्या 307। अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान में। कलाकार थे रविंद्र साठे और कविता कृष्णमूर्ति। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी रामपुर है। 6:55 होने वाले हैं। अभी आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

अथवार्ताः नवदिल्ल्यां हैदराबाद हाउस स्थले अद्य विदेशमंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अमेरिकादेशीयेन विदेशसचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन समं द्विपाक्षिक संवादं करिष्यति। एतौ क्षेत्रीय वैश्विक शान्ति सुरक्षा संबद्धान् विषयान् समेत्य अनेकेषु भिन्न विषयेषु चर्चां करिष्यतः इति आशास्ते। अमेरिका विदेशमंत्री गतदिने प्रातः चतुर्दिवसीय यात्रा प्रसंगे भारतं सम्प्राप्तः। द्विपक्षीय संबंधान् सुदृढीकर्तुं अपि च वाणिज्य रक्षोर्जा सुरक्षा प्राविधिकी हिंद प्रशांत व्यूह रचनेत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारार्थं तस्य एषा भारत यात्रा नितरां महत्वाधायिनी वर्तते। गतवासरे सः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह भारतामेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति सन्धिं सुदृढयितुं चर्चाम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य विज्ञप्त्यनुसारि अमेरिका विदेश मन्त्रिणा रक्षा प्राविधिकी व्यापार निवेशोर्जा सुरक्षा संपर्क शिक्षा पारस्परिक जनसंबंधादिषु विविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य निरन्तर प्रगतेः विषये प्रधानमन्त्री संसूचितः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी शान्ति प्रयासेभ्यः भारतस्य सतत समर्थनं पुनरुदीरितवान् अपि च संभाषण कूटनीति माध्यमेन विवादानां शान्तिपूर्ण समाधानाय पुनरेकदा आह्वानं कृतवान्। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य भारतीय व्यापार नेतृणाम् एकेन प्रतिनिधिमण्डलेन सह कनाडा देशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। वाणिज्य मन्त्रालयेन सूचितं यत् श्रीगोयलः व्यापार निवेश भारत कनाडा व्यापकार्थिक सहभागिता वार्तालापं प्रवर्तयितुं ओटावा टोरंटो नगरयोः द्विपक्षीय समागमं करिष्यति। संसदीय कार्य सूचना प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगुनः अवदत् यत् प्रशासनं 47-2000 वर्षपर्यन्तं विकसितं भारतम् इति स्वप्नं साकारयितुं प्रतिबद्धमस्ति। चेन्नई स्थिते ICF इति संस्थाने आयोजितं आजीविका मेलनं संबोधयन् सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे देशः आधारभूत संरचना विकासे वृत्त्यवसराणां वृद्धौ व्यापार सुगमतायां च तीव्रगत्या प्रगतिं करोति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तु विभागेन अद्य पूर्वीयोत्तर प्रदेशाय, पूर्वीय मध्यप्रदेशाय, विदर्भाय च अतितापपरा रक्तवारणकी संचेतना प्रसारिता। भारतस्य उत्तर पश्चिमीय मध्य पूर्वीय दिग्विभागेषु कतिपय क्षेत्रेषु समाना एव स्थितिः आगामी 7 दिवसपर्यन्तं भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। अन्ते क्रीडावार्तासु, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ लखनऊ नगरे इकाना क्रिकेट क्रीडांगणे आयोजिते द्वन्द्वे श्रेयस अय्यरेण अर्जितानां 71 शतधावनांकानां बलेन पंजाब किंग्स दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं 7 क्रीडकैः पराजितम्। क्रीडान्ते अय्यरः स्पर्धापुरुषः घोषितः। अद्यतने द्वन्द्वद्वये प्रथमं मुम्बय्याम् अपराह्णे 3:30 मुम्बई इण्डियन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन स्पर्धिष्यते। ततः सायं कोलकातायां कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स दलयोः द्वन्द्वं भविष्यति। इति वार्ताः।

हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर प्रातःकाल के 7 बजे प्रस्तुत है लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं सरोज श्रीवास्तव।

आकाशवाणी रामपुर से आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकगीतों पर आधारित लोक रंग। आज कलाकार हैं सरोज श्रीवास्तव।

0: सरोज श्रीवास्तव के स्वर में आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकरंग। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर

0: रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: KIR at 90.
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज़ एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:18 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से होगा।

नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में लिया हिस्सा, कहा देश के युवाओं को रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाने के लिए भारत विश्व के कई देशों के साथ कर रहा साझेदारी। राजधानी

0: लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में की श्रम और सेवा योजन विभाग की समीक्षा बैठक। नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल खेले गए आईपीएल मुकाबले में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। राजधानी लखनऊ, वाराणसी और आगरा सहित देश के 47 अलग अलग स्थानों पर कल रोजगार मेले का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेले का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व के कई देशों के साथ साझेदारी भी कर रहा है, जिसका मकसद देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाना है। उन्होंने कहा कि देश अब पूरी दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न की जा रही है।
2: लखनऊ में 330 अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र हमने दिए और मैं कह सकता हूँ ये माने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12,000 से भी ज्यादा लोगों के लिए पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां करके इस तरह से महिला के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का काम होता है।
0: वाराणसी के बरेका परिसर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान 341 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही राष्ट्र सेवा का अवसर भी प्रदान करती है।
3: अपने काम को खुद एनालाइज करिए, खुद उसका विश्लेषण करिए। काम मैंने किया, मैं इसे 100% सैटिस्फाइड हूं, क्या और किसी तरीके से किया जा सकता है, और बेहतर ढंग से किया जा सकता है, और हर काम में इंप्रूवमेंट का हमेशा स्कोप होता है। और एक दिन में बहुत जल्दी नौकरी छला आ रही है, ऐसा भी मत सोचिए। एक स्मॉल स्टेप, यानी जो छोटे छोटे स्टेप लीजिए, आपने ये हमेशा जीवन में आप।
0: आगरा में रोजगार मेले का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किया। श्री बघेल ने रोजगार मेले के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
4: मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि देश को जो उन्होंने सरकारी नौकरियों के रोजगार के लिए वादा किया था वो पूरा हुआ है। इसके अलावा भी जैसा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, तमाम स्टार्टअप के माध्यम से, अन्य माध्यम से भी रोजगार दिए जा रहे हैं।
0: रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में श्रम एवं सेवा योजन विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने वर्तमान में 20 जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना की चर्चा करते हुए इसे नए प्रावधानों के साथ प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू करने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
5: मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति है। सरकार की प्राथमिकता है कि श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री ने सेवा मित्र व्यवस्था को रोजगार और जन सुविधा का अभिनव मॉडल बताते हुए कहा कि तकनीक आधारित ऐसी व्यवस्थाएं युवाओं और कुशल कामगारों के लिए नए अवसर तैयार करती हैं। मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के लिए सभी औद्योगिक शहरों में प्रस्तावित श्रमिक सुविधा केंद्रों यानी लेबर अड्डों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से

मेरा है, क्योंकि जिंदगी वही बदलते हैं जो हालात नहीं अपने हौसले बदलते हैं। चाय की खुशबू हो, सुबह की ठंडी हवा हो और साथ हो आपकी मुस्कान का, तो यकीन मानिए दिन खूबसूरत बन ही जाता है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे, जहां हर सुबह होती है नई उम्मीदों के नाम। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस एक छोटी सी कहानी के साथ। श्रोताओं, एक बूढ़ा आदमी रोज सुबह समुद्र के किनारे टहलने जाता था। एक दिन उसने देखा कि किनारों पर हजारों मछलियां पड़ी हुई थी जो लहरों के साथ बाहर आ गई थी और बहुत ज्यादा तड़प रही थी। वो बूढ़ा आदमी एक एक मछली उठाकर वापस समुद्र में डालने लगा। पास खड़े एक युवक ने उससे हंस कर कहा, इतनी सारी मछलियां हैं, आपके ऐसी कुछ मछलियों के बचाने से क्या ही फर्क पड़ेगा। बूढ़े आदमी ने एक और मछली उठाई और उसे पानी में छोड़ने चला गया और मुस्कुराकर बोला, इस एक मछली की जिंदगी में तो फर्क पड़ गया ना। युवक कुछ पल शांत रहा, क्योंकि शायद उसे समझ आ गया था कि दुनिया बदलने वाले लोग पहले एक छोटी शुरुआत ही करते हैं। तो हर सुबह ये मत सोचिए कि आप पूरी दुनिया बदल पाएंगे या नहीं, बस ये सोचिए कि आज का दिन और आज का काम आप अच्छा ज़रूर करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी कोशिशें ही एक दिन बड़ी पहचान बनती हैं और हमारे दिल को छू जाती हैं, बिल्कुल इस गीत की तरह।

श्रोताओं, जैसे कि हम जानते हैं कि आज तारीख है 24 मई और आज 24 मई के अवसर पर जानते हैं कॉमनवेल्थ डे यानी राष्ट्रमंडल दिवस का इतिहास क्या कहता है। ये दिन आज हमारे लिए कॉमनवेल्थ एक ऐसा संगठन है जिसमें दुनिया के कई देश शामिल हैं। इसकी शुरुआत ब्रिटिश साम्राज्य से जुड़े देशों के आपसी सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से हुई थी। धीरे धीरे ये संगठन एक ऐसे मंच के रूप में विकसित हुआ जहां सदस्य देश शांति, लोकतंत्र, शिक्षा, खेल और विकास जैसे विषयों पर मिलकर काम करने लगे। भारत ने वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी कॉमनवेल्थ की सदस्यता बनाए रखी और आज भारत इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कॉमनवेल्थ डे लोगों को यह संदेश देता है कि अलग अलग भाषा, संस्कृति और परंपरा वाले देश भी एकता और सहयोग के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये दिन युवाओं को वैश्विक भाईचारे, समानता और मानवता के मूल्य को जोड़ने का अवसर देता है। तो आइए हम सब इस अवसर पर ये संकल्प लें कि एकता, सहयोग और मानवता के मूल्य को अपनाकर समाज और देश की प्रगति में अपना योगदान देंगे। और साथ ही श्रोताओं, अब बात करते हैं आज 24 मई से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं की। आज 24 मई के दिन वर्ष 2002 में नेपाल में नेपाली कांग्रेस के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को नेपाली कांग्रेस पार्टी ने निलंबित किया था। वर्ष 2003 में इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने पश्चिमी एशिया शांति योजना को स्वीकार किया था। इसी के साथ 2005 में एनबी इकमेयर मंगोलिया के राष्ट्रपति चुने गए थे। और वर्ष 2008 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 6% बढ़ाने का फैसला किया था। श्रोताओं, ये थी 24 मई से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। और आइए अब चर्चा करते हैं उन लोगों की जिन्होंने आज 24 मई के दिन जन्म लिया। वर्ष 1969 में सुधीर कुमार वालिया का जन्म हुआ। आप भारतीय थल सेना के जाबाजों में से एक थे। राजेश रोशन 1955 में आज के दिन जन्मे। हम सभी उन्हें प्रसिद्ध संगीतकार के रूप में जानते हैं। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं और आपका जन्म आज ही के दिन वर्ष 1954 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक करतार सिंह सराभा का जन्म 1896 में आज के दिन हुआ था। और अब बात करते हैं उनकी, श्रोताओं, जो आज 24 मई के दिन हमें इस दुनिया से अलविदा कह गए। मजरू सुल्तानपुरी, हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार और शायर, आपका निधन आज के दिन वर्ष 2000 में हुआ था। गुरु हनुमान, भारत के महान कुश्ती प्रशिक्षक और पहलवान, वर्ष 1999 में आज के दिन चल बसे। प्रताप चंद्र मजूमदार, ब्रह्म समाज के प्रसिद्ध नेता थे और आपका निधन 1905 में आज के दिन हुआ था। श्रोताओं, ये थी आज 24 मई से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, आज के दिन जन्म लेने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति और साथ ही जो आज हमें इस दुनिया से अलविदा कह गए। लेकिन हर दिन हमें ये ज़रूर कहता है कि क्या, बिल्कुल इस गीत की तरह,

0: दी, नौकरी लग गई।
1: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
1: अच्छा,
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: मीडियम वेव और एफएम के चैनल्स पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी रामपुर। इस समय आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो साथी आकांक्षा के साथ कार्यक्रम सुबह सवेरे। और अब चर्चा एक विशेष बात पर। कौन सी? जी हाँ, आप और हम सभी जानते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्रोताओं, ये 90 वर्ष ये सिर्फ समय नहीं होता, ये इतिहास होता है। एक ऐसा इतिहास जो संघर्ष से शुरू होता है और सम्मान पर जाकर ठहर जाता है। आज हम सब उस गौरवशाली सफर का जश्न मना रहे हैं जिसने 90 वर्षों तक अपनी पहचान, अपने संस्कार और अपने विश्वास को जिंदा रखा है। कई लोग आए, कई दौर बदले, समय ने अपनी रफ्तार बदली, लेकिन जो नहीं बदला वो था आगे बढ़ने का जुनून। 90 वर्ष जो पहले शुरुआत हुई थी वो शायद एक छोटी रही होगी, लेकिन इरादे बहुत बड़े थे और उन्हीं इरादों ने आज इस सफर को एक मिसाल बना दिया है। इन 90 वर्षों में कितनी चुनौतियां आई होंगी, कितने कठिन रास्ते मिले होंगे, कितनी बार हिम्मत हारी होगी और शायद उन हारों को हमने जीत में बदला होगा। ये सफ़र हमें सिखाता है कि यदि नियत साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो समय भी सम्मान करने लगता है। अब ये पल सिर्फ जश्न मनाने के नहीं हैं, ये उन सभी लोगों को याद करने के पल हैं जिनकी मेहनत, त्याग और समर्पण ने इन 90 वर्षों को इतना खास बनाया है। उन हाथों को सलाम जिन्होंने इसकी नींव रखी, उन कदमों को सलाम जिन्होंने इस कारवां को आगे बढ़ाया, उन सपनों को सलाम जो आज की नई पीढ़ी को भी प्रेरणा दे रहे हैं। 90 वर्ष पूरे होना आसान नहीं होता, इसके पीछे लगते हैं विश्वास के कई दशक, मेहनत की अनगिनत कहानियां और लोगों का अटूट साथ। आज जब ये वर्ष पूरे हो रहे हैं तो दिल गर्व से भर जाता है, क्योंकि कुछ यात्राएं सिर्फ तय नहीं की जाती बल्कि इतिहास बन जाती हैं। आइए हम सब मिलकर इस गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा को नमन करें और यही कामना करें कि ये सफलता, सम्मान और ये प्रेरणा आने वाले वर्षों में भी यूं ही आगे बढ़ती रहे और 90 वर्षों की इस अद्भुत यात्रा को दिल से सलाम और अनंत सलाम हमारे उन साथियों को जिन्होंने इस सफ़र को बहुत अधिक सुंदर बनाया। आप सभी के होने से आज हम सब एक दूसरे को महसूस करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। और इसी क्रम में हमारे साथ आज इस विशेष श्रृंखला में जुड़े हैं हमारे श्रोता विनय गुप्ता माथुर रोड बहेड़ी से। आइए सुनते हैं विनय जी के विचार।
6: नमस्कार साथियों, मैं माथुर रोड बहेड़ी से विनय गुप्ता आपसे मुखातिब हूँ। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं लगभग 40 वर्षों से नियमित श्रोता हूँ आकाशवाणी का। शुरुआत हुई मेरी आकाशवाणी सुनने की अपने बाबा की वजह से। बाबा को शौक था आकाशवाणी सुनने का, मैं उनकी गोद में बैठकर आकाशवाणी सुनता था। तब से आकाशवाणी मेरी धड़कन बन गई है, पूरे देश की धड़कन के साथ साथ। कहीं भी कभी भी जन जन की वाणी आकाशवाणी। प्रसारण की व्यापकता पूरे देश और विदेशों तक, इसको हर किसी के मन की रानी बना देता है। हर विषय को छूना आकाशवाणी की विशेषता है, चाहे वो कृषि हो, शिक्षा हो, मनोरंजन हो, कोई भी क्षेत्र हो, आकाशवाणी हर किसी को अपना बनाता है। अब तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी मन की बात कहने के लिए सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी का ही प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। हर वर्ग के मन को छूना आकाशवाणी की विशेषता है। दुख हो सुख हो, हर समय हर जन का साथी आकाशवाणी। आप अपना कोई भी कार्य हो, बगैर व्यवधान डाले मनोरंजन, शिक्षा और इसके साथ साथ आप कोई भी कार्य कर सकते हैं आकाशवाणी सुनते हुए। आपका कोई व्यवधान हो ही नहीं सकता। जानकारी, मनोरंजन, हर विषय को छूना, चाहे स्वास्थ्य हो, खेल हो, सभी को साथ लेकर चलता है अपना आकाशवाणी। एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से आकाशवाणी को। ये यूं ही निरंतर अपने प्रगति पथ पर अग्रसर रहे, यही मेरी शुभकामनाएं रहेंगी। धन्यवाद बहुत बहुत।
5: माथुर रोड बहेड़ी से विनय जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।

जी हाँ, और नहीं भुलाया जा सकता उन यादों को, उन बातों को और उन लोगों को जो रेडियो से हमेशा जुड़े रहे हैं। और संगीत और गीत, यही एक दुनिया है जो हमें और आपको जोड़े रखती है। और इसी क्रम में आज हिंदी सिनेमा के मशहूर संगीतकार राजेश रोशन का जन्मदिन है। राजेश रोशन वो नाम है जिनकी धुन ने दशकों तक लोगों के दिलों को छुआ है। उनका जन्म 24 मई 1955 को आज के दिन हुआ था। वे महान संगीतकार राजेश रोशन के छोटे भाई हैं और 1974 में फिल्म कुंवारा बाप से अपने संगीत की सफर की शुरुआत उन्होंने की थी। राजेश रोशन ने बहुत जल्दी अपनी पहचान बना ली थी। फिल्म जूली के गीतों ने उन्हें रातों रात लोकप्रिय बना दिया था। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। उनकी धुनों में से अलग अलग मिठास और सादगी को देखने को मिला है। दिल क्या करे छू कर मेरे मन को, तुम ना जानो ना हम जाने, और कहो ना प्यार है जैसे गीत आज भी लोगों की जुबान पर हैं। उन्होंने किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे महान गायकों के साथ कई यादगार गीत गाए और साथ ही 90 दशक और उसके बाद उन्होंने करण अर्जुन, कोयला, कहो ना प्यार है और कोई मिल गया जैसी फिल्मों में शानदार संगीत देकर नई पीढ़ियों को भी अपना दीवाना बनाया है। आज

0: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
2: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
0: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा

0: रहे हैं ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR या न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
4: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमरीका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमरीका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
0: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद लवली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात

0: जरिए तनाजियात के पुरअमन हल की अपील को दोहराया। वजीर खारजा जनाब रूबियो ने मगरबी एशिया की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी उमूर पर अमरीकी मौकिफ साझा किए। पेश है एक रिपोर्ट।
1: क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को मुनक़िद होगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलियाई वजीर खारजा पेनी वोंग, जापान के वजीर खारजा तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। एक आज़ाद और खुले हिंद बहरुल काहिल खित्ते के लिए क्वाड के विजन को मद्देनजर रखते हुए वज़राए खारजा तरजीह शोबों में क्वाड के ताउन को आगे बढ़ाने के बारे में ख्यालात का तबादला करेंगे। क्वाड के जारी इकदाम पर पेशरफ का जायजा लेंगे और भारत बहरुल काहिल खित्ते में हालिया पेशरफ और बाहमी तौर पर मुतालिक दीगर बैन अलाक़वामी उमूर पर गौर करेंगे। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया और प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल कल से भारतीय कारोबारी रहनुमाओं के एक वफ्द के साथ कनाडा के 3 रोजा दौरे पर होंगे। वजारत तिजारत ने मुत्तला किया है कि तिजारत सरमायाकारी और भारत कनाडा जामे इक्तसादी शराकतदारी मुआहदे CEPA के मुजाकिरात को आगे बढ़ाने के लिए ओटावा और टोरेंटो में दो तरफा मसरूफियात में हिस्सा लेंगे, जो इस दौरे का मरकजी महवर होगा। इस साल मार्च में कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी के दौरे भारत के दौरान टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस पर दस्तखत किए गए थे। मुजाकिरात का पहला दौर मार्च में वर्चुअल तरीके से मुनक़िद किया गया था और दूसरा दौर 8 मई को खत्म हुआ था। इस दौरे के दौरान ओटावा में मुजाकिरात के अगले दौर का इनेकाद किया जाएगा। दोनों फरीक इस साल के आखिर तक एक तवाजुन और बाहमी तौर पर फायदेमंद CEPA को जल्द हतमी शक्ल देने की समत में काम कर रहे हैं, जिसका मुश्तरक मकसद 2030 तक दो तरफा तिजारत को 70 अरब कैनेडियाई डॉलर तक पहुंचाना है। मगरबी बंगाल में इस साल जुलाई से आयुष्मान भारत स्कीम का आगाज होगा। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कल कोलकाता में सेहत के मरकजी वजीर JP नड्डा के साथ वर्चुअल वसीले से एक मीटिंग के बाद ये ऐलान किया। रियासती सेहत स्कीम स्वास्थ्य साथी के तहत पहले से मौजूद मुस्तफिदीन को आयुष्मान भारत स्कीम में जोड़ा जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के सिलसिले में एक मफाहमत नामे पर जून में नई दिल्ली में दस्तखत होंगे। जनाब अधिकारी ने कहा कि मगरबी बंगाल में PM जन औषधि केंद्रों की तादाद 117 से बढ़ाकर 469 करने के सिलसिले में मरकज को एक तजवीज भेजी गई है। वजीर आला ने यह भी कहा कि अलीपुर द्वार, कालिम्पोंग और जुनूबी दिनाजपुर में नए मेडिकल कॉलेजेस और शिमाली बंगाल के लिए एक नए एम्स के सिलसिले में तजावीज भी मरकजी हुकूमत को भेजी जा चुकी हैं। महाराष्ट्र में TCS फैसिलिटी के खिलाफ मुबैना तौर पर जिंसी ज्यादती और मजहब तब्दील कराने की कोशिश करने के मामले में नासिक की एक अदालत में 1500 सफात पर मुश्तमिल एक फर्द जुर्म दायर की गई है। SIT के चीफ संदीप मिटके के मुताबिक ये फर्द जुर्म 4 मुलजिमान दैनिक दानिश शेख, निदा खान, मतीन पटेल और तौसीफ अत्तार के खिलाफ कल दायर की गई थी। उन्होंने कहा कि इस मामले से मुतालिक 7 से 8 अफराद के खिलाफ इजाफी फर्द जुर्म अगले 3 से 4 रोज के दौरान दायर की जाएगी। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर JP नड्डा ने कहा है कि हिफ्जान सेहत के बुनियादी ढांचे के साथ सेहत और तिब्बी पेशेवर अफराद की तरबियत यकसां तौर पर अहम है। उन्होंने ये बयानात कल नई दिल्ली में मेडिकल साइंसेज में इम्तहानात के कौमी बोर्ड की तकसीम असनाद की 23वीं तकरीब से खिताब करते हुए कही। जनाब नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि डॉक्टरों को हिफ्जान सेहत के निजाम के सॉफ्टवेयर के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम देनी चाहिए। वहीं बुनियादी ढांचे और दीगर सहूलियात को मुल्क के लिए हार्डवेयर के तौर पर काम करना चाहिए। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क के उभरते हुए तिब के मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन को एजाज देकर भारत अपने हिफ्जान सेहत के इको निजाम के मुस्तकबिल को एक शक्ल दे रहा है। मेडिकल साइंसेज में इम्तहानात के कौमी बोर्ड के बारे में बात करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि इस इंस्टीट्यूट ने एक मजबूत ब्रांड तामीर किया है, जो कि हिफ्जान सेहत में पेशेवराना सलाहियत, मफाहमत और साख को पेश किया है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि मरीज की देखभाल में और ज्यादा सहूलियात पैदा करने और उन्हें मुस्तहकम बनाने के लिए 11 नए कोर्सेज शुरू किए गए हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। हुकूमत वसीतर अवामी सलाहों मशवरे के लिए VBG रामजी एक्ट 2000

0: 2025 के तहत जाब्तों का मसौदा शाये कर दिया है। देही तरक्की की वजारत ने कहा है कि कोई भी फर्दो फरीक, तंजीम या कोई इदारा अगले माह की 21 तारीख तक सलाह मशवरे के लिए जाब्तों के मसौदे पर अपने एतराजात या तजावीज पेश कर सकता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: विकसित भारत जीराम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट एमजी नरेगा 2005 की जगह ले ली है। इस कानून का मकसद एक माली साल में कानूनी रोजगार की जमानत 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। वजारत के मुताबिक जाब्तों के मसौदे सेक्शन 33 और इस कानून की दीगर मौजूदा शिकों के मुताबिक वज़ किए गए हैं। वजारत ने कहा है कि उबूरी शिकों के जाब्ते कौमी सतह की कायम कमेटी के जाब्तों, मरकजी ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल के जाब्ते, इंतजामी इखराजात के जाब्ते व शिकायत के इजाले के से मुतालिक जाब्ते समय जाब्तों के मसौदे सलाह मशवरे के लिए अवामी सतह पर रखे गए हैं। नए कानून में बरवक्त शफाफ और जवाबदेह उजरत की अदायगियों पर काफ़ी जोर दिया गया है। इस कानून में बेरोजगार भत्ते की भी गुंजाइश फराहम की गई है, बशर्ते के मुकर्रर वक्त के अंदर काम नहीं फराहम किया जाता। बीबी जी राम जी एक्ट 2025 इस साल 1 जुलाई से निफाज के साथ तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शुरू करने के लिए इस माह की 11 तारीख को नोटिफाई किया गया था। नई दिल्ली से अक्षित वैद्यान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और खित्ते में दीगर हलीफ मुल्कों के साथ फोन पर गुफ्तगू के बाद आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने समेत ईरान के साथ समझौते पर बड़ी हद तक मुजाकिरात हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस पेशरफ्त का ऐलान करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि इस माहदे के हतमी पहलुओं और तफसीलात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है और जल्द ही उनका ऐलान कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इसराइल के साथ सऊदी अरब, मुत्तहिद अरब अमारात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, उर्दन और बहरीन के लीडरों के साथ बातचीत की थी। इससे पहले ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने सरकारी टेलीविजन पर बताया कि पिछले हफ्ते अमरीका और ईरान के मौकफ में कुछ तब्दीलियां आई हैं, लेकिन उन्होंने खबरदार किया कि इसका मतलब ये नहीं कि अहम उमूर पर समझौते हो जाएंगे। उन्होंने अमरीकियों पर मुतजाद बयानात देने का इल्जाम लगाया। ईरान 8 अप्रैल को जंगबंदी पर मुत्तफिक हुआ था और इसके बाद से वाशिंगटन और तेहरान एक तवील मुद्दती अमन मुआहदे पर बातचीत में मसरूफ हैं। वाशिंगटन में सदारती कॉम्प्लेक्स के नज़दीक गोलियों के चलने की आवाज़ सुनने के बाद व्हाइट हाउस के नज़दीक सिक्योरिटी के ताल्लुक से खौफ व हिरास पैदा हो गया। इससे कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की तरफ से फौरी तौर पर कार्रवाई की गई। अमरीका की खुफिया सर्विस ने पेश आए इस वाकये के नज़दीक एक मुश्तबा शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया और अफरा तफरी के दौरान एक राहगीर को भी गोली लगी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त व्हाइट हाउस में मौजूद थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने कहा कि वो इस वाकये की तफसीलात हासिल करने के बाद अवाम को जानकारी फराहम करेंगे। जमहूरिया कांगो में हुकाम ने बताया है कि मुल्क में इबोला वायरस के फैलने से मरने वालों की तादाद अब बढ़कर 204 हो गई है। मुल्क की वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 204 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि इबोला वायरस के कुल 867 केसेस सामने आए हैं। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के हिस्सों में सख्त गर्मी की लहर की पेशगोई की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की सूरत हाल रहने की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दिन के दौरान साहिली आंध्र प्रदेश, गंगाई मगरबी बंगाल और उड़ीसा में गर्म और मरतूब मौसम रहने का इम्कान है। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में रात में गर्मी की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आसाम, मेघालय, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। आज अंडमान और निकोबार, जजायर, बिहार, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप और शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में गरज चमक का इम्कान है। गुरिंदरवीर सिंह ने 10.09 सेकंड के एक नए कौमी रिकॉर्ड टाइमिंग के साथ 2026 के एथलेटिक्स फेडरेशन कप में मर्दों के 100 मीटर मुकाबले में सोने का तमगा जीता। उन्होंने अपने साबिका जाति बेहतरीन रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ा, जो 10.17 सेकंड का था और 10.16 सेकंड के कॉमनवेल्थ गेम्स में क्वालिफिकेशन निशाने को आसानी से उबूर कर लिया। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड की टाइमिंग के साथ चांदी का तमगा हासिल किया, जबकि प्रणय प्रमोद

0: ने 10.29 सेकंड में अपना मुकाबला जीतकर कांसे का तमगा हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर की 101 रन की शानदार कारकर्दगी के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। आज 2 मैच होने हैं, जिसमें पहला मैच दोपहर 3:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान होगा और दूसरा मैच शाम 7:30 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के भारत दौरे से मुतल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब की इस सिलसिले में शह सुर्खी है, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, भारत अमरीका आलमी अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक नुमाया सुर्खी है, वजीर आजम ने 51,000 नौजवानों को तकर्रुरनामे तकसीम किए, कहा विकसित भारत में नौजवानों का अहम रोल। अखबार ने मुल्क में जारी शदीद गर्मी से मुतालिक सुर्खी लगाई है, अगले चंद दिनों में दिल्ली NCR समेत मुल्क के बड़े हिस्सों में गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं। अखबार प्रताप ने भारतीय जनता पार्टी के कौमी तर्जुमान RP सिंह के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाया किया है कि संगीन माली और इंतजामी बहरान की तरफ बढ़ रहा है पंजाब।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ बाहमी मुज़ाकरात करेंगे। आयुष्मान भारत स्कीम जुलाई से मगरबी बंगाल में शुरू होने जा रही है, इसमें स्वास्थ्य साथी मुस्तफिदीन को शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र SIT ने नासिक PCS जिंसी ज्यादती और मजहब की तब्दील के केस में 4 मुलजिमान के खिलाफ फर्द जुर्म दायर की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने समेत ईरान के साथ समझौते पर बड़ी हद तक बातचीत हो गई है। भारत के महकमे मौसमियात ने आज दिल्ली समेत शिमाली वस्ती और मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में शदीद गर्मी रहने की पेशगोई की है। और एथलेटिक्स में रांची में गुरिंदरवीर सिंह ने फेडरेशन कप में एक नए कौमी रिकॉर्ड के साथ मर्दों के 100 मीटर मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। समय हुआ है सुबह के 8:45 का और ये समय होता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत का, जिसमें हम सुनवाते हैं आपके ईमेल पर अनुरोध किए हुए फरमाइशी फिल्मी नगमे। अगर आप भी सुनना चाहते हैं अपने पसंदीदा गीतों को तो हमें ईमेल लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। आप सभी श्रोताओं को वैशाली का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज सबसे पहले जो हमने मेल लिया है इसे भेजने वाले हमारे श्रोता हैं मेरठ के।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 8:45 हो चुके हैं। सुनवाते हैं आपको 102.9 मॉर्निंग हिट्स।

टाइगर जिंदा है, इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे आतिफ असलम की आवाज़ में। शब्द इरशाद कामिल ने लिखे और संगीत है विशाल शेखर का। 102.9 मॉर्निंग हिट्स में अब आपको सुनवा रहे हैं अगला गाना। फिल्म का नाम है सुल्तान, आवाज़ राहत फ़तेह अली ख़ान की, शब्द इरशाद कामिल के और संगीत है विशाल शेखर का।

आकाशवाणी एट 90। आकाशवाणी रामपुर से आप इस समय सुन रहे हैं 102.9 मॉर्निंग हिट्स। अब आपको सुनवाते हैं फटा पोस्टर निकला हीरो, इस फिल्म का गाना। आवाज है अरिजीत सिंह की और शब्द लिखे हैं इरशाद कामिल ने, संगीत प्रीतम का।

श्रोताओं, मॉर्निंग हिट्स में अब आपको सुनवा रहे हैं आतिफ असलम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में रवैया वस्तावैया, इस फिल्म का गाना।

0: करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है।
2: मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की

0: नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: मीडियम वेव और FM के चैनल्स पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी रामपुर। आपको सुनवा रहे हैं 102.9 मॉर्निंग हिट्स। कार्यक्रम का ये गीत होगा एक था टाइगर, इस फिल्म से आवाज़ है वाजिद खान और श्रेया घोषाल की। शब्द लिखे हैं कसूर मुनीर ने।

0: एक था टाइगर, फिल्म के इसी गाने के साथ 102.9 मॉर्निंग हिट्स अब यहीं समाप्त होता है।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। 9:15 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: केंद्र है। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे, प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव के आम जनजीवन पर प्रभाव और बचाव के लिए प्रशासनिक इंतजाम पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।
2: प्रदेश भीषण गर्मी और लू के चपेट में है। मई के महीने में प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जबकि बुंदेलखंड का बांदा लगातार देश के सबसे गर्म स्थानों में शामिल है। यहां अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार तक दर्ज किया गया। वहीं प्रयागराज, हमीरपुर, झांसी, आगरा और जालौन जैसे जिलों में भी तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। भीषण गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि साल दर साल जलवायु में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके कारण गर्म दिनों की संख्या बढ़ रही है। बांदा में ज्यादा तापमान उसकी भौगोलिक स्थितियों के कारण है।
3: तापमान बढ़ने की वजह से गर्म दिनों और गर्म रातों की संख्या बढ़ रही है, जबकि ठंडी का मौसम जो है वो श्रिंक हो रहा है। बांदा जो या प्रदेश का पूरा ही दक्षिणी इलाका जो है वो फेवरेबल रीजन होता है ज्यादा तापमान के लिए। उसके कई सारे भौगोलिक कारण भी हैं और कई वैज्ञानिक कारण भी हैं। बांदा जो है वो जलवायवी तौर पर भी सबसे गर्म रहने के लिए उसकी जलवायु ही फेवर करती है। लेकिन अगर इस साल की परिप्रेक्ष्य में बात करें कि जैसे मैंने बताया कि उत्तरी इलाके में ज्यादा तापमान होंगे, पूरे पूर्वांचल में ज्यादा तापमान होंगे, तो इसके लिए दो तीन फैक्टर होते हैं। जो ग्लोबल फोर्सिंग है या रिमोट फोर्सिंग हम बोलते हैं, वो इनसो होती है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन।
2: अत्यधिक तापमान के कारण हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं। बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और पहले से बीमार लोगों का खास ध्यान रखना होता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान और हीट वेव को देखते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने भी खास तैयारी की है। अस्पतालों में अलग से इंतजाम करने के साथ ही लोगों को गर्मी से बचाव के तरीकों की जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में गाजियाबाद में भी स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएचसी और सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त बेड का इंतजाम किया है। गाजियाबाद के सीएमओ अमित विक्रम ने बताया कि विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि गर्मी में अनावश्यक बाहर ना निकलें, बाहर निकलने से पहले पर्याप्त पानी का सेवन करें और सर ढककर ही बाहर निकलें।
4: हमारे यहाँ जनपद गाजियाबाद में तीन बड़े जनपदीय लेवल के चिकित्सालय हैं, तीनों में 10-10 बेड्स का हमने कोल्ड रूम थे, उसकी तैयारियां हो चुकी है। सभी जगह पे ORS और जिंक का टैबलेट्स और सॉल्यूशंस वगैरह सब है और पानी पीने का साफ पेयजल और कूलर्स वगैरह सब जगह इंस्टॉल्ड है।
2: बुंदेलखंड के जिलों में भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है, वहीं लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। चित्रकूट के जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि गर्मी और हीट वेव के खतरे को देखते हुए सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आवश्यक दवाओं, ORS और ठंडे पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। टीमें लगातार लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई हैं।
5: इस समय है कि काफी भीषण गर्मी पड़ रही है और इसके बढ़ने की ही संभावना है। मेरा सभी लोगों से सबसे पहले तो अनुरोध है कि जो विशेषकर समय जो होता है गर्मी का, वो अपना सुबह 9-10 बजे से लेकर जो शाम के 4-5 बजे तक रहता है, अगर कोई विशेष कार्य हो तो ही आप इस समय अपने घरों से बाहर या अपने जो कार्यस्थल है उससे बाहर निकलें, और जब भी खुले में निकलें या कहीं भी जाएं तो विशेषकर अपने साथ पानी की उचित व्यवस्था या इलेक्ट्रोलाइट की या नींबू पानी इत्यादि इस तरीके का अपना ध्यान जरूर रखें। अच्छे से अपने खान पान का ध्यान रखें।
2: भीषण गर्मी के कारण इस बार प्रदेश में बिजली की मांग ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। गर्मी में लोगों को परेशानी न हो इसे लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्नाव में विद्युत आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए विभाग ने सरैया, शुक्लागंज और गंगाघाट टाउन सब स्टेशनों पर लगे हुए बड़े ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए जंबो कूलर लगाए हैं। यहाँ SDO राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि लोड मैनेजमेंट और लो वोल्टेज की समस्या से निपटने के लिए पुराने ट्रांसफार्मरों को हटाकर उच्च क्षमता वाले पावर ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। शहरों में गर्मी ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ते तापमान ने लोगों की दिनचर्या और कामकाज को प्रभावित किया है। खेतों में काम करने वाले किसान हो, मजदूर वर्ग या पशु, गर्मी का असर सब पर दिख रहा है। दोपहर में अधिक तापमान के कारण किसान खेतों में सुबह और शाम ही काम के लिए जा पा रहे हैं। निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों और दिहाड़ी श्रमिकों को तेज धूप में काम करने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। श्रावस्ती की जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने जिले के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों से भी दोपहर के समय घरों में ही रहने की अपील की है और बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी बिजली के विशेष प्रबंध प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं।
6: हीट वेव के दृष्टिगत जनपद श्रावस्ती में सभी CHC जिला अस्पताल में कोल्ड रूम की व्यवस्था की गई और नगर क्षेत्रों में, गांव क्षेत्रों में जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है और नगर पालिका को बताया गया है कि जितने भी वाटर कूलर्स हैं वो ठीक चलते हैं और पोखरों के लिए, तालाब के लिए भी पंचायती राज से कोऑर्डिनेट करके उसमें।
2: गर्मी का असर केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है बल्कि पशु पक्षी भी इससे गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। तेज धूप और जल स्रोतों के सूखने से पशुओं को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, दूध देने वाले पशुओं के उत्पादन में भी कमी आ सकती है। इन स्थितियों को देखते हुए प्रदेश के चिड़ियाघरों, लॉयन सफारी में विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। इटावा सफारी पार्क में वन्य जीवों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। उप निदेशक विनय सिंह ने बताया कि सफारी क्षेत्र में फॉगर शॉवर से तापमान कम किया जा रहा है। भालू लेपर्ड हाउस में कूलर लगाए गए हैं तो हिरणों के तालाब ट्यूबवेल से भरे जा रहे हैं। गर्मी के कारण सफारी का समय भी बदलकर सुबह 6:30 बजे कर दिया गया है।
7: गर्मी और लू से बचाने के लिए जो हमारे हाउस हैं उनमें खस की चटाई लगाना, इसके साथ कूलर को लगाते हैं तो अंदर ताकि कमरे का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। बाहर जो क्राल एरिया है इसमें फॉगर लगे हुए हैं तो इनके चलाने से जो हवा में नमी है वो बनी रहती है और टेम्परेचर मेंटेन रहता है। साथ ही धूप से बचाने के लिए सफारी क्षेत्र में प्लस जहां पे भी संभव होता है वहां पे छप्पर लगाए जाते हैं फूस के ताकि उनको बचाया जा सके। डियर एंटीलोप सफारी में है उनको पर्याप्त तालाब जो भी बने हुए हैं सफारी क्षेत्र के अंदर उनमें पर्याप्त मात्रा में पानी रहे सुनिश्चित किया जाता है। तैयारियां की गई हैं और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि वन्य जीवों को गर्मी और लू से बचाया जाए।
2: गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच धर्मनगरी अयोध्या में राम भक्तों और भगवान दोनों की सेवा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने बताया कि दर्शन मार्ग पर कैनोपी और टेंट लगाए गए हैं। जहां जहां नए दर्शन स्थल बनाए गए हैं वहां विशेष मैटिंग और कारपेट बिछाए गए हैं ताकि भक्तों के पैर गर्म जमीन से न जलें। दर्शन के बाद बाहर निकलने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़े हॉल तैयार किए गए हैं जहां बैठने, चिकित्सा और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
8: श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ने जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार जहाँ से श्रद्धा

0: प्रभु दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं। उसके नजदीक एक ऐसा शेड निर्माण किया जिसको तीर्थ यात्री सेवा केंद्र नाम दिया है। वहाँ पर छाया है, लगभग 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, व्यवस्थाएं हैं नित्य उपयोग की वो उपलब्ध है। वहीं से व्हीलचेयर मिलती है, वहीं से उनके पास आदि की व्यवस्था होती है, जल पीने की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है। वहां से हमारे भक्तगण निकलते हैं तो कैनोपी प्रारंभ हो जाती है, किसी को भी धूप में चलने की आवश्यकता नहीं है, दो चार कदम की बात छोड़ दें तो।
1: बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भी गर्मी और हीट वेव की परिस्थितियों के बावजूद श्रद्धालुओं की अटूट आस्था निरंतर बनी हुई है। प्रतिदिन औसतन 1.5 लाख श्रद्धालु श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए आ रहे हैं। ऐसे में मंदिर न्यास द्वारा धाम परिसर में विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के SDM शंभु शरण ने बताया कि धाम परिसर के विभिन्न स्थलों पर शुद्ध RO वाटर कूलर स्थापित किए गए हैं। विभिन्न स्थानों पर ORS घोल और ग्लूकोज की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
2: जगह जगह पे वाटर कूलर लगाए गए हैं ताकि ठंडे पानी मिल सके। जहाँ पे वाटर कूलर नहीं है वहाँ पे बड़े बड़े मटकों में ठंडे जल रखवाया गया है। कई जगहों पे ORS घोल और ग्लूकोज की भी व्यवस्था है। उनके सर पे छाया रहे इसलिए धाम में हर जगह पे जर्मन हैंगर और टेंसाइल स्ट्रक्चर लगाया गया है।
1: साल दर साल बढ़ती गर्मी और लू मौसम में हो रहे बड़े बदलावों का न केवल बड़ा संकेत है बल्कि ये चेतावनी भी है कि हमें जल संरक्षण, हरित क्षेत्र बढ़ाने, वर्षा जल संचयन और पर्यावरण संरक्षण जैसे उपायों पर गंभीरता से काम करना होगा। जागरूकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ही बढ़ते तापमान और उसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है।
3: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव के आम जनजीवन पर प्रभाव और बचाव के लिए प्रशासनिक इंतजाम पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।
4: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से
5: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरव भारत देश के। कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए लाला हरदयाल की गौरव गाथा।
6: देश प्रेम अनुराग जगा तो आंग्ल छात्रवृत्ति लौटा दी, गदर पार्टी के नेता बन के दुनिया भर में आग लगा दी। जीवन ढाल निडर विद्रोही शस्त्र क्रांति को उकसाते हैं, अपने जीवन की ज्योति जला जीवन ज्योतित कर जाते हैं। विभिन्न देशों में प्रवास करते हुए राष्ट्रभक्ति में सक्रियता के साथ प्रेरणा देने वाले सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी थे लाला हरदयाल। वे त्याग, तपस्या और साधना का ज्वलंत उदाहरण थे। इनका जन्म 14 अक्टूबर 1884 में श्री गौरी दयाल माथुर, जो कि दिल्ली में जिलाधिकारी के पेशकार थे, के घर हुआ था। माता का नाम भोली रानी था। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इतिहास में एमए किया जिसमें अनुपम अंक प्राप्त किए, अंग्रेजी में 96 अंक प्राप्त किए। अंग्रेज शिक्षक उन्हें जीनियस इंटेलेक्चुअल जायंट कहते थे। उन्होंने 5 मिनट में एक समय में ही अरबी विद्वान की कविता पढ़ी, गणित का कठिन प्रश्न हल किया व लैटिन की कविता गाई, साथ ही शतरंज में खिलाड़ी को पराजित भी कर दिया। सभी चीजें कंठाग्र करी हुई सुना दी। ऐसे थे लाला हरदयाल, कुशाग्र एवं अद्वितीय मेधा वाले। प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा से संपर्क स्थापित कर इंडिया हाउस के कार्यक्रमों में भाग लेने लगे। 16 वर्ष की आयु में आपका विवाह सुंदर रानी संग हो गया। उन्होंने एक एक करके सभी वजीफे ठुकरा दिए। उनके मन में भाव उठा कि भारत के नौजवानों को आग का शोला बनाकर अंग्रेजी साम्राज्य का विनाश करवा दिया जाए। युवकों को क्रांतिकारी बनाने की इच्छा से वे भारत आए। लाहौर में एक आश्रम बनाकर देश सेवा के लिए पत्नी से संन्यास की अनुमति प्राप्त कर ली और युवकों को क्रांति पथ पर दौड़ाने लगे। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की, अनेक बार जेल भी गए। 27 अक्टूबर 1927 को राजनीतिज्ञों पर से

ब्रिटेन से प्रतिबंध उठा लिया। वे फिलाडेल्फिया अमेरिका में थे तो भारत में इनके स्वागत की तैयारियां थीं, पर 4 मार्च 1936 को अस्वस्थता के कारण आपका निधन हो गया। अमर रहेंगे लाला हरदयाल अपने त्यागपूर्ण जीवन और राष्ट्रभक्ति के लिए।

0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 9:30 होने को हैं। पेशे खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।
1: सामीन के बेहद पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम के साथ आपकी मेज़बान शमामा मसूद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारा सलाम अदब कबूल फरमाएं। क़ुरबानी हमें सब्र वफ़ा सिखाती है। क़ुरबानी हमें सब्र वफ़ा सिखाती है। ईद उल अज़हा दिलों में रोशनी लाती है। ईसार सब्र मोहब्बत का पैगाम लाई है। ईसार सब्र मोहब्बत का पैगाम लाई है। ईद उल अज़हा फिर खुशियों की शाम लाई है। हर दिल में होश इखलास हर लब पर दुआ रहे। ईद उल अज़हा में बस रब की रज़ा रहे। समीन आने वाली ईद उल अज़हा की ढेर सारी मुबारकबाद आप सभी समीन को। समीन ईद उल अज़हा मुसलमानों का एक बहुत खूबसूरत त्यौहार है जो हमें क़ुरबानी और इताअत इलाही का दर्स देता है। समीन ये दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेमिसाल क़ुरबानी की याद दिलाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर अपने बेटे को क़ुरबान करने का इरादा किया और इसी तरह अपनी कामिल फरमाबरदारी का अल्लाह ताला को सबूत पेश किया। समीन क़ुरबानी का अमल मकसद अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना और उसमें अहकाम पर पैरवी करना। ये दीन हमें सिखाता है कि अल्लाह की मोहब्बत में अपनी ख्वाहिशात और पसंदीदा चीज़ को क़ुरबान करना ही हकीकी कामयाबी है। सामीन उर्दू ईद उल अज़हा के मौके पर मुकम्मल क़ुरबानी करते हैं और अपना क़ुरबानी का हिस्सा रिश्तेदारों गरीबों मिसकीनों यतीमों यसीरों वगैरह में तकसीम करते हैं जिससे आपसी इत्तेफ़ाक़ और हमदर्दी में इजाफ़ा होता है। इताअत इलाही इंसानों को नेक रास्ते और अच्छे काम करने का दर्स देती है। सामीन जो शख्स अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करता है वो दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर लेता है। ईद उल अज़हा हमें सब्र ईसार और इताअत इलाही का पैगाम देती है। अब सामीन हम अपने दूसरे मौजू की जानिब आते हैं। हिंदू न मुसलमान की संतान है उर्दू। हिंदू न मुसलमान की संतान है उर्दू। इस देश के तहजीब की पहचान है उर्दू। फूलों की नज़ाकत है तो खुशबू की निफासत। फूलों की नज़ाकत है तो खुशबू की निफासत। महसूस ये होता है गुलिस्तान है उर्दू।

है। मतलब सानी मुलायजा फरमाए, यूसुफ के रूए पाक का जलवा कुछ और है, यूसुफ के

उल्फत का मुस्तफ़ा की तकाजा कुछ और है, उल्फत का मुस्तफ़ा की तकाजा कुछ और है। मक्ता मुलाहिज़ा फरमाएं।

0: वो मेहरबान हुआ कातिल खुदा खुदा करके। और शेर मुलाजा करें,
1: दिया था
0: उसे खबर है गुजरती है जिंदगी कैसे,

0: उसे खबर है
1: कैसे
0: गुजरती है जिंदगी कैसे, के जिसकी गुजरी है तिल तिल खुदा
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: खुदा
1: बहुत
0: करके,
1: खूब,
0: के
1: वाह वाह वाह,
0: जिसकी गुजरी है तिल तिल खुदा खुदा करके। और ये बात सच है कि हम टूट टू कर बिखर तो गए, और ये बात सच है कि हम टूट टू कर बिखर तो गए। ये बात सच है कि हम टूट
1: टूट
0: कर
1: कर बिखर गए,
0: बिखर तो गए, किसी को कर लिया हासिल खुदा
1: खुदा खुदा, वाह वाह वाह वाह वाह
0: खुदा
1: वाह वाह वाह वाह,
0: करके,
1: बहुत खूब,
0: किसी को कर लिया हासिल खुदा
1: खुदा खुदा, वाह वाह वाह वाह वाह
0: खुदा
1: वाह वाह, बहुत
0: करके।
1: खूब।
0: और

0: वाह वाह वाह,
1: यहाँ तो होते हैं दाखिल खुदा
0: वाह वाह
1: खुदा
0: वाह
1: करके,
0: वाह वाह।
1: और उसे

0: हुआ है मुझ में जो शामिल खुदा
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह
0: खुदा करके। और हजरात शेर देखें,

0: नसीब हो गया साहिल खुदा
1: वाह वाह वाह वाह वाह
0: खुदा
1: वाह वाह वाह
0: करके, नसीब हो गया साहिल खुदा
1: वाह वाह वाह वाह वाह
0: खुदा
1: वाह वाह वाह वाह
0: करके। और हजरत
1: क्या
0: मक्का भी
1: गाना है
0: देख
1: वाह
0: ले,
1: वाह वाह
0: ये बात कम नहीं साकिब,

0: ये बात कम नहीं साकिब के एक सितम गर से बचा लिया दिल बिस्मिल खुदा खुदा करके
1: वाह वाह वाह वाह
0: बचा लिया दिल बिस्मिल खुदा खुदा करके
1: वाह वाह वाह वाह। मोहतरम सामीन, अभी आप समात फरमा रहे थे ये शेरी नशिस्त। इस शेरी नशिस्त में जिन शोरा हजरात ने शिरकत फरमाई उसके उनके अस्माए गिरामी इस तरह हैं: जनाब शमसुद्दीन शम्स साहब, जनाब फ़हीम साकिब साहब, मोहतरमा बदर जहाँ साहिबा और जनाब अरशद रसूल साहब। तो सामीन, इसी खूबसूरत शेरी नशिस्त के बाद आज का हमारा उर्दू प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर होता है। अपनी मेज़बान शमामा मसूद को दीजिए इजाज़त।
2: अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम, हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं अब श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं पर आधारित कार्यक्रम आपका पत्र मिला।

0: श्रोताओं नमस्कार। सुनील की ओर से आपका पत्र मिला कार्यक्रम में आज आपके खतों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं अवधेश कुमार गौतम जी। अवधेश जी, आपको भी हमारा नमस्कार।
1: नमस्कार सुनील जी, और सभी श्रोता साथियों को अवधेश का नमस्कार, और साथ के साथ बहुत बहुत आभार कि आपकी तरफ से जो हमें चिट्ठियां प्राप्त हुई हैं, बहुत जल्द ही हम आपकी चिट्ठियों को पढ़ने का सिलसिला शुरू करेंगे। उन विचारों को, उन उस स्नेह को, उस सपोर्ट को इस मंच के माध्यम से आप सभी के साथ साझा करेंगे, और इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने पहले पत्र की ओर।
0: गर्मी अपनी चरम सीमा पर है
1: जी, बिल्कुल,
0: लेकिन
1: श्रोता साथियों के जो हमें पत्र प्राप्त हुए हैं, इसमें गर्मी का असर ना के बराबर महसूस
0: जी,
1: हो रहा है।
0: अच्छा होता है। शुरुआत करते हैं। अब पहला मेल हमें प्राप्त हुआ है सर, ये हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं और आकाशवाणी रामपुर से बहुत मोहब्बत भी रखते हैं, पूरे सप्ताह का प्रोग्राम सुनते हैं और पूरे फिर डेट वाइज अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते हैं। हमारे श्रोता समझ भी गए होंगे, गांधी समाधि रोड रामपुर के हमारे श्रोता हैं हाजी गफ्फार खान, साथ में हैं राजिया खान और सिमरन खान। आप लिखते हैं, 17 मई आपका पत्र मिला कि महफिल सजाई असीम सक्सेना जी और रेनू तिवारी जी ने बेहतरीन अंदाज में पत्र पढ़े और असीम सक्सेना जी ने पत्रों के लाजवाब अंदाज में जवाब दिए। अच्छा लगा, झलकी हंसी मजाक से भरपूर थी। जिंदगी के आईने में मन भावन, किताब के नाम, आसपास अर्शी मसूद का गीत गाता चल, ये सारे कार्यक्रम इनको पसंद आए हैं। इसके अलावा 18 मई का सेहतनामा सुबह सवेरे असीम सक्सेना जी का आपके अनुरोध पर, सुरेंद्र कौर का गीत आपके नाम, आंचल, ये भी प्रोग्राम इनको अच्छे लगे हैं। इसके अलावा इन्होंने सरस्वती सिंह का हेलो रामपुर भी इनको पसंद आया है। 19 मई का इन्होंने जिक्र किया है अंकुर राजपूत का आपके अनुरोध पर, एमन तंजील का शब्दावलियों पर आधारित कार्यक्रम मन भावन, परिवार जगत, रेनू तिवारी जी का गीत गाता चल, असीम सक्सेना जी का साहित्य पत्रिका, ये कार्यक्रम इनको पसंद आए। 20 मई का तरन्नुम जी का सुबह सवेरे इनको अच्छा लगा है। आपके अनुरोध पर कुमकुम प्रोग्राम, ये भी इनको अच्छे लगे हैं।

0: दिलो फरमाइश पसंद आया। छाँव बरगद में असीम सक्सेना जी की इरफान खान से बातचीत इनको पसंद आई है। अर्शी मसूद साहिबा का गीत गाता चल भी इनको अच्छा लगा है। ज़िंदगी के आईने में अब तक 9 कड़ियाँ सुन चुके हैं, एक से बढ़कर एक जितनी भी तारीफ़ की जाए कम ही कम है।
1: हमारे बहुत ही पुराने श्रोता और नियमित श्रोता हैं, गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खां और साथ में रज़िया खान सिमरन खान जी, आपकी तरफ से हमें ये पत्र प्राप्त हुआ है। हमेशा की तरह जो आपका स्टाइल है वो इस पत्र में साफ साफ दिखता है। नियमित रूप से आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं और सुनने के बाद आप लगभग हर प्रोग्राम की प्रतिक्रिया अपने पत्र में शामिल करते हैं। आपने कई प्रस्तुतकर्ताओं का जिक्र किया है जिनकी प्रस्तुतियाँ आपको काफ़ी पसंद आईं। विक्रांत चौधरी जी की प्रस्तुति आपको काफ़ी पसंद आई और साथ के साथ जो असीम सक्सेना जी की इरफान खान जी से जो बातचीत थी वो भी आपको बहुत पसंद आई है। आपके पत्र हमेशा हमें हौसला देते हैं और बेहतर कार्यक्रम प्रोड्यूस करने कि जो हमारी जो एफर्ट्स हैं, जो प्रयास हैं, वो और बुलंद हो जाते हैं और उसी का परिणाम होता है कि हम और बेहतर तरीके से आप तक कार्यक्रमों को पहुंचा पाते हैं और फिर आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं और उस पर आपकी प्रतिक्रिया हम तक प्राप्त होती है और ये इस प्रकार जो सिलसिला है ये हमेशा चलता रहता है और इसी के साथ जो हमारे श्रोतागण हैं वो सब हमसे कनेक्टेड रहते हैं। आपकी प्रतिक्रिया हम तक पहुँची, आपने कार्यक्रमों को बहुत दिल से सुना और हम तक अपनी प्रतिक्रिया पहुंचाई, हम तक आपके सुझाव पहुंचे, आपके पत्र में जो सपोर्ट है, जो स्नेह है वो हम तक पहुंचा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: ग्राम करेली पुरानी मस्जिद ज़िला बरेली के हमारे श्रोता हैं लाल मोहम्मद अंसारी, साथ में ही इनके लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी। आप लिखते हैं, आपका पत्र मिला, कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारी तरफ से प्यार भरा आदाब। हमें रामपुर केंद्र से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, सभी कार्यक्रम सुनते हैं। 17 तारीख को सुबह सवेरे कार्यक्रम में असीम साहब की संगीत संध्या के कुछ अंश सुनाए, बहुत अच्छे लगे। 15 तारीख को युवाणी कार्यक्रम में चिट्ठी आई है, कार्यक्रम पेश किया जाना था मगर उनकी जगह आपने कन्याश्री प्रसारित की। क्या तीसरे शुक्रवार को चिट्ठी आई है, अब प्रसारित नहीं होता? इसके अलावा इन्होंने लिखा है, 21 तारीख को युवाणी कार्यक्रम में फेसबुक लाइव में चाय विषय पर लोगों के विचार सराहनीय थे। 22 को कृषि जगत कार्यक्रम में हेलो कृषि मंच कार्यक्रम पसंद आया, इसमें किसान साथियों की कृषि शंका समाधान किया गया। इसके अलावा मन भावन, आपके अनुरोध पर गीत गाता चल, ये सारे कार्यक्रम भी इनको अच्छे लगे जो इन्होंने सुने थे। इन दिनों गीत आपके नाम की धुन और मन भावन कार्यक्रम की जो आप बजा रहे हैं वो बहुत अच्छी लग रही है।
1: ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, साथ में है लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी और अबरार हुसैन अंसारी जी। आपकी तरफ से ये पत्र हम तक पहुंचा है और आपने हमारे कार्यक्रमों को सुना है, कार्यक्रमों की सराहना भी हम तक पहुंचाई है। असीम साहब की प्रस्तुति, जो संगीत संध्या के जो कुछ अंश थे वो आपको बहुत पसंद आए। 15 तारीख के बारे में आपने जिक्र किया है कि युवाणी कार्यक्रम में चिट्ठी आई है सेगमेंट पेश किया जाना था लेकिन उसकी जगह अंत्याक्षरी प्रसारित की गई। आपका सवाल है कि क्या तीसरे शुक्रवार को चिट्ठी आई है प्रसारित नहीं होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उस दिन चिट्ठी आई है जो सेगमेंट है उसी का दिन होता है, लेकिन 15 तारीख को रामपुर आकाशवाणी द्वारा एक संगीत संध्या का आयोजन नियोजित था जो आपने लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सुना होगा और सभी जो प्रस्तुतकर्ता थे वो उसी में लगे हुए थे। प्रस्तुतकर्ता की उपलब्धता न होने की वजह से चिट्ठी आई है सेगमेंट प्रसारित नहीं किया जा सका और उसके स्थान पर अंताक्षरी प्रसारित की गई। आने वाले समय में आपको नियमित रूप से और अपने नियोजित जो उसका समय और दिन है उसके हिसाब से आपको चिट्ठी आई है सेगमेंट अवश्य सुनाई आपको सुनने को मिलेगा। उसमें जो भी हमारे श्रोता साथी हैं उनकी चिट्ठियां भी अटेंड की जाएंगी। कभी कभी ऐसा होता है, कोई स्पेशल ओकेजन होता है, कोई ख़ास अवसर होता है, उस वक्त कार्यक्रमों में चेंजेस किए जाते हैं और ये समय की डिमांड भी होती है। आपने और भी कार्यक्रमों को सुना, उस पर आपने अपनी प्रतिक्रिया हम तक भेजी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।
0: मोहल्ला हलवाई ऑन शेरकोट ज़िला बिजनौर के हमारे श्रोता हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, साथ में हैं इनके मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी खान, बिट्टू भैया, हिना कौसर और शबाना नास। आप लिखते हैं, आपको हमारा प्यार भरा सलाम, कैसे हैं आप असीम जी, और आपका पत्र मिला पेश करने वालों को भी हमारा

0: रसवला, हम सब आपके रेगुलर लिसनर्स हैं, सभी प्रोग्राम सुनते हैं और पसंद भी आते हैं। हमने 23 मई का गीत गाता चल जो अर्शी मसूद जी ने पेश किया बहुत पसंद आया। 22 मई का आपके अनुरोध पर जो अंकुर राजपूत जी ने पेश किया था बहुत अच्छा लगा। गीत आपके नाम नेहा जी का पसंद आया है, इनको गीत गाता चल जो सरस्वती सिंह जी ने पेश किया था बेहद पसंद आया। 21 मई का गीत गाता चल और गीतांजलि जो रिजवान सैफी जी ने पेश किया बहुत अच्छा लगा। 20 मई का आपके अनुरोध पर तरन्नुम जी का अच्छा लगा। 19 मई का गीत आपके नाम जयमन तंजील जी ने पेश किया था वो बहुत पसंद आया। गीत गाता चल रेणु तिवारी जी का अच्छा लगा है। 18 मई का आपके अनुरोध पर जो असीम सक्सेना जी ने पेश किया बेहद पसंद आया। एक गुजारिश है आपसे, ईमेल को पूरा पढ़ें, आप आधा अधूरा पढ़ते हैं। अब तो आपके पास टाइम भी काफ़ी है क्योंकि लिखने में मेहनत टाइम दोनों लगते हैं। धन्यवाद।
1: ये हमारे नियमित श्रोता हैं, युवा श्रोता हैं, मोहम्मद वकार फरीदी जी और साथ में है मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, हिना कौसर और शबाना नाज जी। आपकी तरफ से नियमित रूप से प्रतिक्रियाएं हमें मिलती हैं और इस बार भी आपका पत्र हमें प्राप्त हुआ है। सबसे पहले तो आपका जो प्रश्न है कि जो ईमेल है वो पूरा पढ़ा जाए, इस पर बात करते हैं। हाँ, निश्चित रूप से कार्यक्रम का जो समय है वो बढ़ा दिया गया है ताकि काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो हमारे श्रोता साथी हैं उनके पत्र हम अपने कार्यक्रम में शामिल कर सकें। अब बात रही ईमेल को पूरा पढ़ने की। ईमेल पूर्ण रूप से पढ़ा जाता है, हर बार कोशिश की जाती है और ऐसा नहीं है कि किसी का ईमेल अधूरा पढ़ा जाता हो। यदि किसी का ईमेल अधूरा पढ़ा जाता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि जो टेक्स्ट आप भेजते हैं कभी कभी वो इतने समझ में नहीं आते हैं, इस वजह से कभी कभी एक ब्लैक उन पर एक पट्टी भी आ रखी होती है, इस वजह से भी अगर ईमेल्स जो है पूरे नहीं पढ़े जा सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपने पूरा मेल भेजा है लेकिन हम तक जो पढ़ने की अवस्था में जो होता है, जितना होता है उस उतना ही पढ़ा जाता है, ऐसा बहुत कम होता है लेकिन किसी न किसी कारणवश होता है। और रही बात आपके ईमेल की, तो आपका ईमेल तो हर बार पूरा पढ़ा गया है और इस बार भी पढ़ा गया है। आपका आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि आपने रामपुर आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को सुना, विशेषकर जो फिल्मी संगीतों पर आधारित होते हैं और जो फरमाइशों पर आधारित होते हैं। आपकी फरमाइशें भी नियमित रूप से हम तक पहुंचती हैं और कार्यक्रमों में शामिल होती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आभार हमसे जुड़े रहने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए।
0: ये अगला ईमेल हमारे पास आया है इंदिरा कॉटेज तल्लीताल नैनीताल के हमारे श्रोता हैं मोहन सिंह रावत जी। आप लिखते हैं, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं को मेरा नमस्कार। 17 मई को प्रसारित आपका पत्र मिला में मेरे पत्र का एक हिस्सा पढ़ने से रह गया था। पत्र की शुरुआत वहीं से कर रहा हूं। 13 मई को असीम सक्सेना जी के संयोजन में प्रसारित दिल ढूंढता है हर बार की तरह दिल जीत लिया। वाह, क्या लाजवाब पेशकश थी। ये जानकर अफसोस हुआ कि इतने बेहतरीन कार्यक्रम में श्रोताओं की पर्याप्त संख्या में भागीदारी नहीं हो पा रही है। यासीन जी का ही कौशल है कि श्रोताओं की पर्याप्त भागीदारी के न होने के बावजूद भी एक घंटे के कार्यक्रम को इस शानदार तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि कार्यक्रम में कहीं कोई कमी ही नज़र नहीं आती। मेरा सुझाव है कि इस कार्यक्रम को भी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से प्रचारित किया करें, चाहे तो कमेंट्स के माध्यम से भी श्रोताओं के विचार, याद, अनुभव, ये सब भी आमंत्रित कर सकते हैं। अब इन्होंने आगे लिखा है कि 17 मई को सुबह सवेरे में असीम जी ने संवाद के महत्व पर विषय में अच्छी जानकारी दी। जनसंचार माध्यमों के प्रसार के साथ ही हमारे कम्युनिकेशन के तौर तरीकों में भी बड़ा बदलाव आया है। पत्र लेखन अब बीते ज़माने की बातें हो गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ने हमारे समय को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। अपने घर परिवार और सगे संबंधियों से बातचीत के लिए हमारे पास समय ही नहीं होता है। ऐसे में SMS के टूटे फूटे संक्षिप्त शब्दों और इमोजी ने भाषाई संवाद को नया रूप ले लिया है। ये भाषाई शॉर्टकट में हमारे परस्पर एक दूसरे रिश्तों, परंपरा और अपनी जड़ों को काट रहा है। इस बारे में शीघ्र सचेत होने की आवश्यकता है। हमारा भाषाई संवाद जितना अधिक मजबूत होगा हमारे रिश्ते भी उतने ही सघन होंगे। इसी दिन एमन तंजील जी द्वारा प्रस्तुत श्रोताओं की शब्दावली पर आधारित कार्यक्रम मनभावन सुना, अच्छा लगा। एमन जी की पेशकश बहुत बैलेंस होती है। वे श्रोताओं के एहसास से जुड़कर पूरे फील और इन्वॉल्वमेंट के साथ कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं, साथ ही शब्दावली पर आधारित श्रोताओं की पसंद के गीत को भी कार्यक्रम में पर्याप्त समय देती हैं। 23 मई को मनभावन में गीतमाला के अंतर्गत रेणु तिवारी जी ने दोस्ती शीर्षक से 80 के दशक बेहद कर्णप्रिय गीत सुनवाए। मनभावन के बाद कार्यक्रम के संयोजन में थोड़ी सी इनको कमी नजर आई। 12 बजे समाचार का इंतजार था लेकिन गीत बज रहा था। अब मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है। इस गीत के बाद मौसम शीर्षक से एक आधा गीत

0: और बजा फिर एक ज़रूरी सूचना के साथ रेनू जी ने स्थिति को संभाल लिया। जान पड़ता है कि रेनू जी के पसंदीदा गायक मोहम्मद अजीज़ हैं, इसलिए उन्होंने कल गीत आपके नाम कार्यक्रम में प्रसारित 5 गीतों में से 4 गीत मोहम्मद अजीज़ साहब के गाए हुए सुनवाए। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन कार्यक्रम मोनोटोनस हो जाता है। कार्यक्रम में जितनी अधिक विविधता होगी कार्यक्रम उतना ही अधिक सुंदर होगा। मैंने कुछ समय पहले भी आपका ध्यान इस ओर खींचा था। बहुत दिनों से PWD वाले इरफान खान साहब को सुनने की ख्वाहिश थी। कल छांव बरगद की कार्यक्रम में उन्हें सुनकर एक ख्वाहिश भी पूरी हो गई। इसमें सचमुच इरफान खान साहब का रेडियो के प्रति समर्पण बेमिसाल है। आज 90 साल बाद भी यदि आकाशवाणी की यात्रा अनवरत जारी है तो इसमें इरफान खान साहब जैसे श्रोताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। आकाशवाणी रामपुर की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। आपने बेहतरीन कार्यक्रमों के जरिए इरफान खान जैसे श्रोताओं को सदैव केंद्र से जोड़े और सहेज कर रखा है। आकाशवाणी रामपुर से सदा श्रोताओं को सम्मान मिला है। यही वजह है कि देश भर के श्रोताओं के दिल में आकाशवाणी रामपुर के लिए एक खास जगह है। इस बार के लिए इतना ही। शेष फिर
1: हमारे बहुत ही पुराने और नियमित श्रोता हैं मोहन सिंह रावत जी, आपकी तरफ से ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है। आपका जो कहना है कि जी पिछली बार जो एक हिस्सा पढ़ने से रह गया था किसी वजह से, वो आपने फिर से हमें इस पत्र के माध्यम से भेजा है। पहले तो आपको हम विशेष आभार व्यक्त करना चाहेंगे इस चीज़ के लिए, और दूसरा जो भी आपने अपने पत्र में लिखा है निसंदेह बहुत सटीक लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, और ये दर्शाता है कि आप कितने समर्पण भाव से हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं, और हमारे कार्यक्रमों की बेहतरी के लिए आपने ये पत्र हमें लिखा है। और ये पहला पत्र नहीं है, अक्सर आपके पत्र हमेशा कार्यक्रमों की बेहतरी के लिए मिलते हैं, और इस बार भी आपके पत्र हम तक पहुँचा है। सबसे पहले तो आपने जो अपने पत्र में जिक्र किया है कि दिल ढूंढता है कार्यक्रम के बारे में जो आपने लिखा है, कि निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है कि जो उसकी प्रस्तुति होती है वो असीम जी द्वारा की जाती है, और कम पत्रों के बावजूद भी वो 1 घंटे तक पूरा समा बांधे रखते हैं। और जो आपने इस कार्यक्रम के प्रति सुझाव दिया है कि फेसबुक के माध्यम से इसकी पब्लिसिटी और ज़्यादा किए जाएँ और कमेंट्स भी श्रोताओं के लिए जाएँ, इस विषय में ज़रूर गौर किया जाएगा, और जो श्रोताओं के जो इसमें पत्र हैं उनको उनको बढ़ाने की भी कोशिश की जाएगी। और एक गुजारिश भी आप सभी श्रोता से रहेगी कि कार्यक्रम जो दिल ढूंढता है वो आप ही के पत्रों पर आधारित होता है, आप ही के लिए होता है, इसलिए उसमें विशेष रूप से आप अपने पत्र हम तक पहुंचाएं। आगे आप लिखते हैं कि असीम जी ने जो सुबह सवेरे की उनकी प्रस्तुति थी वो आपको काफ़ी पसंद आई है, और रेणु तिवारी जी की प्रस्तुति के बारे में आपका जो सुझाव है बिल्कुल सही है, इस विषय पर भी ज़रूर बात की जाएगी। जो भी आपके विचार हैं पूर्णतः सही है और पूरी तरीके से इस पर कोशिश की जाएगी। आपका जो पत्र है हमारे लिए किसी मार्गदर्शन से कम नहीं है, और उसको बिल्कुल मार्गदर्शन के रूप में लिया जाएगा और कार्यक्रमों को और बेहतर बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। आपका पत्र हमें प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।
0: ग्राम महेशपुर खेम जिला मुरादाबाद के हमारे श्रोता हैं तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा। आप लिखते हैं कार्यक्रम आपका पत्र मिला पेश करने वालों को प्यार भरा आदाब। आकाशवाणी रामपुर केंद्र से सभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। 17 मई का आपका पत्र मिला सुना जिसमें श्रोताओं के खत ईमेल की अधिक संख्या में शामिल किए और उनके जवाब भी बहुत अच्छे अंदाज में दिए गए। प्रोग्राम सुनकर बहुत अच्छा लगा। 18 मई का इन्होंने जिक्र किया है, गीत आपके नाम प्रोग्राम सुना ये भी अच्छा लगा है। 19 मई का आपके अनुरोध पर सुना अच्छा लगा। 20 तारीख का सुबह सवेरे इनको पसंद आया है। 21 तारीख का मनभावन इनको अच्छा लगा है। सुरेंद्र कौर जी ने श्रोताओं की शब्दावली पढ़ने का अंदाज एवं गीतों का चयन बहुत ही अच्छा लगा, बेहतरीन प्रस्तुति के लिए उनको उन्होंने बधाई दी है। 22 मई का गीत गाता चल सुना ये अच्छा लगा। 23 मई का गीत आपके नाम और हेलो फरमाइश सुना बहुत ही अच्छा था। अन्य प्रोग्राम भी सुने जैसे श्री रामचरित मानस गान है, भक्ति संगीत का कार्यक्रम है, कृषि जगत है, उर्दू प्रोग्राम है, परिवार जगत, श्रोता मंच, हेलो रामपुर, ये सारे ही प्रोग्राम एक से बढ़कर एक चल रहे हैं। आजकल मनोज जी प्रोग्राम में बहुत कम आ रहे हैं। मनभावन प्रोग्राम में रविवार व बृहस्पतिवार को वरिष्ठ उद्घोषक जनेब असीम सक्सेना जी की प्रस्तुति को ये सुनना चाहते हैं। उनकी प्रस्तुति का हमें बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है। बाकी सारे ही प्रोग्राम एक से बढ़कर एक हैं, सभी की प्रस्तुतिकरण हमें बहुत ही पसंद आ रही है।
1: जिला मुरादाबाद से ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अदीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी, गुलशन साहिबा जी की तरफ से हमें यह पत्र प्राप्त हुआ है। अपने पत्र में आपने रामपुर कार्यक्रमों, रामपुर आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले जो कार्यक्रम थे उनको सुनकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करी है और आप लिखते हैं कि लगभग प्रोग्राम जो आप सुनते हैं वो आपको काफ़ी पसंद आते हैं। विभिन्न कार्यक्रमों का जिक्र भी आपने अपने अपने पत्र के अंतर्गत किया है और आपने जो इच्छा जताई है असीम जी के बारे में, उनके बारे में हम कहना चाहेंगे कि असीम जी की ड्यूटी संडे को भी होती है, सप्ताह के अलग अलग दिनों में उनकी ड्यूटी सभा संचालन में रहती है और वो उसी सभा के अंतर्गत जो कार्यक्रम होते हैं उनका प्रस्तुतिकरण भी वो करते ही हैं। तो आप अगर नियमित रूप से हमारे कार्यक्रमों को सुनेंगे, रामपुर आकाशवाणी को सुनेंगे, तो ज़रूर आप, जैसे कि आपने इच्छा जाहिर की है कि संडे वाले दिन मनभावन प्रोग्राम का जो प्रस्तुतिकरण है वो आप असीम जी द्वारा सुनना चाहते हैं, वो ज़रूर सुन पाएंगे क्योंकि इससे पहले भी संडे को उनकी ड्यूटी लगी है और मनभावन प्रोग्राम भी उन्होंने प्रेजेंट किया है। आपसे गुजारिश रहेगी कि आप नियमित रूप से रामपुर आकाशवाणी के प्रसारणों को सुनें तो आपकी ये इच्छा भी ज़रूर पूरी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।
0: आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र के हमारे श्रोता हैं अभिजीत गवाणकर राही, साथ में हैं श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रणीता सिद्धांत गवाणकर, अर्जुन गवाणकर और टुक टुक। इनके साथ और भी इन्होंने श्रोताओं के नाम अपने लिखे हैं। परिवार के हैं आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर के वैशाली शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर परे और प्रिंस एकांश गवाणकर। आप लिखते हैं कि महोदय हम आपके नियमित श्रोता हैं, आजकल हमारे खत में जो नाम हैं वो शामिल नहीं हो रहे बल्कि कोई श्रोता हमारे शहर में फर्जी नाम भेज रहा है, वे बराबर आपके केंद्र से प्रसारित हो रहे हैं जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है। कृपया हमारे खत में जो नाम हैं वही शामिल करें। दूसरी बार हमारा ईमेल आईडी हमारे नाम से है, फिर अलग अलग नाम कैसे पढ़ते हैं? एक ही श्रोता के कई नाम अलग अलग ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं क्या? आपको समझ में नहीं आता कि असली श्रोता कौन है? ज़्यादा क्या लिखूं, आप सब समझते हैं लेकिन ये सिलसिला ख़त्म करें बड़ी मेहरबानी होगी, अन्यथा हमको आपका प्रसारण सुनना बंद करना पड़ेगा।
1: हमारे श्रोता साथी हैं ये अभिजीत गवाणकर राही और साथ में श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रणीता सिद्धांत गवाणकर, अर्जुन गवाणकर और साथ में और साथी भी हैं। गवाणकर जी, आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि जो समस्या आपने अपने पत्र के माध्यम से हम तक पहुंचाई है इसका संज्ञान लिया जा चुका है और पूरी कोशिशें इस विषय में जारी हैं कि जो हमारे कोई जो व्यक्ति है ऐसा जो गलत तरीके से नामों को भेज रहा है ईमेल में आपके नाम से किसी और के नाम से भी, इसको उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको रोका जाए और जो हमारे ऑथेंटिक लिसनर्स हैं उन्हीं का ही नाम शामिल किया जाए। लेकिन कुछ चुनौतियां भी इस संबंध में हमारे सामने आ रही हैं जिनका हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनका समाधान निकाल पाएंगे और जो ये गलत नामों को भेजने का जो गलत श्रोता द्वारा जो काम किया जा रहा है, जो बाकी श्रोताओं को भी की छवि धूमिल कर रहा है, इसको हम ख़त्म कर पाएंगे, इसका कुछ समाधान निकाल पाएंगे। लेकिन कोशिशें जारी हो चुकी हैं, आपकी बात पर संज्ञान लिया जा चुका है और सभी को निर्देशित कर दिया गया है इस विषय में कि इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें और धीरे धीरे समय पर हम हो सकता है कि पूर्ण रूप से इस समस्या से निजात ले पाएं। लेकिन करंटली कुछ चुनौतियां हमारे सामने हैं क्योंकि ये डिजिटलीकरण का दौर है। ईमेल के माध्यम से बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जिनके नाम कुछ और हैं लेकिन जो उनका जो इनबॉक्स होता है, जो उनका मैसेज बॉक्स होता है, जो कंटेंट होता है उसके अंदर नाम कुछ और आते हैं। तो इस ऐसे में कुछ जो ऑथेंटिक लिसनर्स हैं वो भी कहीं उनका भी कहते नाम बंद ना हो जाए, इस वजह से पूरी सतर्कता के साथ कार्यक्रमों को प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। आप हमारी तरफ से निश्चिंत रहें और रामपुर आकाशवाणी से जुड़े रहें, रामपुर आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुनते रहें। आपको बहुत
0: दूसरी बात ये भी है अवधेश जी कि इसमें श्रोताओं की जिम्मेदारी ज़्यादा है
1: जी।
0: लाइव प्रोग्राम होता है, ईमेल पर आधारित होता है, इतना टाइम नहीं होता कि किस तरीके से कौन से, कभी कभी हमारे बहुत से श्रोता ऐसे भी होते हैं कि जो दूसरे फ़ोन नंबर से हमारे पास ईमेल भेजते हैं।
1: बिल्कुल, ईमेल से भेजते हैं तो वो भी हमारे लिसनर्स हैं
0: जी।
1: अब उनको हम कैसे डिक्लेयर करें, कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो गलत हैं या सही हैं?
0: सही।
1: तो कुछ हम इस विषय में सतर्क रह सकते हैं।
0: जिम्मेदारी श्रोताओं की ज्यादा बनती है,
1: लेकिन गुजारिश तो श्रोताओं से यही रहेगी कि जो व्यक्ति ये कार्य कर रहा है वो ऐसा ना करे, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लिया जाएगा। ये भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए फरमाइशें बंद कर दी जाएं, तो कुछ ना कुछ तो किया जरूर जाएगा।
0: पंजू सराय संभल के हमारे श्रोता हैं छोटे अंसारी, दिल से दुआ सलाम कर रहे हैं और सदा खुश रहो ये दुआ भी कर रहे हैं। बस इन्होंने एक चीज़ लिखी है कि जिस श्रोता का एक बार ईमेल शामिल हो जाए उसे आप दोबारा शामिल ना करें।
1: पंजू सराय संभल से छोटे अंसारी जी की तरफ से हमें ये पत्र प्राप्त हुआ है। सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार आपका इस पत्र को भेजने के लिए। हालांकि बहुत छोटा पत्र है लेकिन आपका संदेश बहुत बड़ा है। दोबारा शामिल करने की सिचुएशन भी बहुत ही कम होती है और ऐसा तो जानबूझकर नहीं किया जा सकता। कभी ऐसा हुआ होगा तो दोबारा जब मैसेज फ्लैश होते हैं, ईमेल्स फ्लैश होते हैं, कभी कभी श्रोताओं के नाम भी सिमिलर होते हैं, तो उस वजह से ऐसा हो गया होगा। लेकिन पूरी कोशिश की जाती है कि ईमेल को दोबारा ना पढ़ा जाए और ऐसा किया भी नहीं जाता है। आपने पत्र भेजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे से जो आपका सुझाव मिला इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। अगला पत्र हम
0: मोहल्ला बारादरी महमूद खां के हमारे श्रोता हैं भाई रफत साहब, साथ में हैं इनके सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, बहन फिरोज़ा मुस्कान और नगमा नाज मंसूरी। आपका पत्र मिला कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारी ओर से प्यार भरा आदाब। आकाशवाणी रामपुर के हम पुराने और नियमित श्रोता हैं, सभी कार्यक्रम ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इस सप्ताह 20 तारीख का कार्यक्रम सुना आकाशवाणी आवाज़ में, बेस्ट यादें ये रूपक सुना। संचालन किया था सुनील सक्सेना जी ने और प्रस्तुति थी अवधेश जी की। यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम था। आप दोनों को दिल से बहुत बहुत बधाई इतना अच्छा रूपक हम तक पहुँचाने के लिए। पिछले सप्ताह आपका पत्र मिला कार्यक्रम सुना, वो भी इनको अच्छा लगा। बस आपसे शिकायत है फ़ोन इन कार्यक्रम में जब हम कॉल करते हैं तो घंटी तो जाती रहती है लेकिन कॉल उठती नहीं है, फ़ोन नहीं उठता। ये समस्या कब तक चलेगी बताएं हमें और जल्द से जल्द अपना फ़ोन भी ठीक कराएं। फ़ोन इन कार्यक्रम में फ़ोन उठता नहीं है तो बहुत गुस्सा आता है। हाँ आज इतना ही, बाकी सब अगले हफ्ते।
1: आपका गुस्सा लाजमी है, जब फ़ोन आपका आप प्रयास करते हैं लगाने का और कॉल नहीं मिलती है तो जाहिर सी बात है कि आपने हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए कॉल लगाई होगी, श्रोताओं के साथ संवाद स्थापित करने के लिए कॉल लगाई होगी। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, और ये सब इसका जो प्रेरणा स्रोत होता है ये पूरे दिल से होता है, और जब कोई दिल से आप प्रेरित होकर कोई कार्य करते हैं और वो ना हो तो जाहिर सी बात है दिल को ठेस ज़रूर पहुंचती है। हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, बहुत कदर करते हैं, लेकिन ये तकनीकी मामला है और जो जिसके विषय में हमने अपने तकनीकी विभाग को कई बार सूचित भी किया है और इस विषय में काफ़ी प्रयास भी किए गए हैं कि इस समस्या से हम निजात कर पाएँ। लेकिन ये जो समस्या है ये ऑपरेटर बेस्ड है और ये पूरी तरीके से इस तरह है कि यहाँ पर कॉल चलती है लेकिन जब आप कॉल लगाते हैं तो वो कॉल वेटिंग ना दिखाकर आपको रिंगटोन सुनाई देता है और आपको ऐसा लगता है कि आपका कॉल जानबूझकर रिसीव नहीं किया जा रहा है। जबकि अगर आप कार्यक्रम को सुनते होंगे तब आप ज़रूर ये महसूस करते होंगे कि कॉल कभी कोई हमारा जो फ़ोन कॉल सिस्टम है वो कभी खाली नहीं रहता, वो हमेशा किसी न किसी कॉलर से कनेक्टेड रहता है। तो हमारे पास जैसे ही कोई कॉल आती है हम उसको रिसीव कर लेते हैं, उसके बाद जो भी कॉल्स तब का प्रयास किया जाता है किसी श्रोता द्वारा तो कॉल वेटिंग जानी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता। और ऐसा हमसे ऑपरेटर के द्वारा बताया गया कि ये अब इंटरनेट पर शिफ्ट हो गई हैं टेलीफोन लाइंस और ये उसमें ऐसा होता है कि कॉल वेटिंग कभी कभी नहीं भी सुनाई देती है और रिंगटोन जाती है। तो ये समस्या थोड़ी तकनीक है, हमारे एंड से पूरी तरीके से कोशिश की जाती है हमारे एंड से जो भी कॉल हम तक पहुंचती हैं वो रिसीव होती हैं और कार्यक्रम में ज़रूर शामिल होती हैं। आप प्रयास अपने जारी रखें और हमसे खफा ना हो। और आगे आपने अपने पत्र में और भी कुछ लिखा है जो एक जो आकाशवाणी आवाज़ों में बसी यादें रूपक के बारे में आपने लिखा है जो आपको काफ़ी पसंद आया है। आपसे आपका बहुत शुक्रिया और आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि आपने कार्यक्रमों को सुना, रूपक आपने पसंद किया। जो आकाशवाणी रामपुर पे जो पुराने हमारे उद्घोषक, प्रस्तुतकर्ता और जो प्रसारक रहे हैं उनकी आवाज़ों को आपसे रूबरू कराने का एक ये प्रयास था। वो जो आकाशवाणी का जो पहले दौर हुआ है 90 सालों का जो जो अचीवमेंट जो आकाशवाणी ने हासिल किया है उसकी यादों को आपसे साझा करने का एक प्रयास था, एक मौका बहुत अच्छा था।

0: सुनील जी ने इसका संकलन किया, वो जो वॉइसेस थी वो संकलित करके आप तक पहुंचाई। इस पर सुनील जी आपका कुछ चाहेंगे, कुछ शब्द आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें।
1: बिल्कुल, ये
0: सबसे
1: जो
0: पहले तो बधाई आपको कि आपका संकलन जो है हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद आया है।
1: बधाई आपके लिए है, क्योंकि ये प्रस्तुति करण जो था वो आपके दिशा निर्देश में हुआ था तैयार। एक प्रयास था कि जो तो हमारे केंद्र पर पुराने स्टेशन डायरेक्टर रहे, अनाउंसर्स रहे और प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव रहे, उनको हम संकलन करके अपने श्रोताओं तक उनकी आवाज़ में एक प्रोग्राम लेकर के आए। ये रूपक बनाया गया था, इनको पसंद आया, इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार। आगे भी इस तरीके के कार्यक्रम हम कोशिश करेंगे कि 90 वर्ष के उस उपलक्ष्य में
0: बिल्कुल
1: पहुँचाते
0: बिल्कुल,
1: रहें।
0: निश्चित रूप से। और आपने हमें पत्र भेजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आपके साथ आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप रामपुर आकाशवाणी के साथ जुड़े रहें और प्रयास अपने जारी रखें। टेलीफोन्स आपकी जो फ़ोन कॉल है वो ज़रूर हम तक कनेक्ट होगी और आप ज़रूर कार्यक्रम का भाग बनेंगे।
1: ईदगाह गेट मुरादाबाद के हमारे श्रोता हैं शफ़ी अहमद अंसारी और साथ में हैं रईस दुल्ला अंसारी। आप लिखते हैं, फूल है गुलाब का खुशबू तो लिया करो, ख़त है गरीब का जवाब तो दिया करो। आकाशवाणी रामपुर के निगाहों में कोई भी श्रोता गरीब, कोई भी श्रोता अमीर कुछ नहीं है,
0: तो
1: सब
0: सब
1: बराबर
0: बराबर
1: हैं।
0: हैं।
1: आगे लिखते हैं सर ये कि 16 मई का मनभावन इस दिन का गीत आपके नाम, जो सुरेंद्र कौर जी ने अपनी लाजवाब और मधुर अंदाज में पेश किया, दोनों ही शो हमें बहुत पसंद आए। अच्छा लगा, सुरेंद्र कौर जी को इन्होंने मुबारकबाद पेश की है। आगे लिखते हैं कि मैं श्रोता मंच प्रोग्राम में भाग लेने के लिए क्या करना होगा, रिकॉर्डिंग के लिए मुझे इनविटेशन मिलेगा या नहीं। इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है कि अगर हो तो कृपया इस पर कॉल करें।
0: इसका चयन पूर्णतया जो हमारे इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं उन पर निर्भर करता है और समय समय पर अपने श्रोताओं को हम इनवाइट करते हैं इस कार्यक्रम में। आपकी जो डिटेल्स हैं वो ज़रूर उन तक हम पहुंचाएंगे। आपने अपने पत्र में आकाशवाणी रामपुर के जो कार्यक्रम हैं उनकी सराहना की है, साथ के साथ में जिस उद्घोषक का नाम आपने उसमें शामिल किया है उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और आपसे आग्रह करेंगे कि आप रामपुर आकाशवाणी के साथ जुड़े रहें, कार्यक्रमों को सुनते रहें और अपनी प्रतिक्रियाएं इसी प्रकार हम तक पहुंचाते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।
1: ज़िला हिंगोली महाराष्ट्र के हमारे श्रोता हैं शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े। रामपुर आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक हैं। प्रेजेंटर में कुछ नाम छोड़ दिए तो उनकी मेहनत और लगन को आदि से सलाम करता हूँ। कुछ दिनों से कार्यक्रमों में जो बदलाव हुआ है, इसमें कुछ कार्यक्रम की पवित्रता खत्म होती जा रही है। 19 तारीख का गीत गाता चल कार्यक्रम सुना, जो एमन तंजील ने पेश कर रही थी, अगर 5-10 नाम छोड़ दिए तो पूरा कार्यक्रम फर्जी नाम के भेंट चढ़ गया और 20 को भी यही सुनने को मिला। आगे चलकर ऐसा ना हो, इस बात का
0: बात का
1: संज्ञान
0: संज्ञान
1: लिया
0: लिया
1: जाए,
0: जाए।
1: ऐसी हम कामना करते हैं।
0: बिल्कुल, इस पर प्रयास हमारे भी जारी हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे श्रोताओं की छवि को भी धूमिल करता है और साथ के साथ हमारे रामपुर आकाशवाणी केंद्र की छवि को भी। तो पूरी तरीके से इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस ओर ध्यान आकर्षण किया है और रामपुर आकाशवाणी कार्यक्रमों को सुना और अपनी प्रतिक्रिया हम तक भिजवाई है। निश्चित रूप से इस दिशा में कार्य किया जाएगा। जैसे कि इससे पहले अभी हमने आपके साथ जो बात साझा की कि कुछ चुनौतियां हैं इसके सामने, चुनौती सबसे बड़ी ये है कि कहीं हमारे ऑथेंटिक लिसनर्स हैं वो इसकी भेंट ना चढ़ जाएं। ये सबसे पहले हमारे उनके बचाव का, उनके हित का सबसे पहले हमारे जहन में बात रहेगी और पूरी सतर्कता के साथ कार्यक्रमों को प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस दिशा में ध्यान आकर्षण करने के लिए और आगे भी आपकी प्रतिक्रिया हमें इसी प्रकार मिलती रहेंगी। आकाशवाणी रामपुर के साथ आप जुड़े रहिए, कार्यक्रमों को सुनते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अनूपपुर मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता हैं जयमंत्री केवट। आप लिखते हैं, आकाशवाणी रामपुर परिवार को हमारी ओर से 90 वर्ष पूर्ण होने पर 15 मई के कार्यक्रम आकाशवाणी द्वारा सुरमई सफ़र की संगीत संध्या यूट्यूब के माध्यम से सुनकर देखकर बहुत खुशी हुई। हमारी ओर से बधाई व शुभकामनाएं। 20 मई को सुबह सवेरे सुन रहे थे, इसी दौरान आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर वरिष्ठ श्रोता फागुराम यादव जी के विचार भेंटवार्ता के माध्यम से सुना, बहुत अच्छा लगा। 21 तारीख को युववाणी फेसबुक कमेंट पर आधारित चाय दिवस पर देश के कोने कोने के श्रोताओं के विचार सुनकर बेहद खुशी हुई। 22 तारीख का इन्होंने जिक्र किया है विविधा में एक वार्ता समरीन फातिमा जी की सुनी। वास्तव में एक वार्ता सुनकर मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न हुए। इसी दिन आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर जावेद रहीम जी से बातचीत, उनके अनुभव सुनकर बहुत अच्छा लगा। 23 तारीख को जिंदगी के आईने में लेखक कवि श्री तीर्थ राज मिश्रा जी की बातचीत श्री असीम सक्सेना जी से सुनी। आपके एक एक बात व अनुभव को सुनकर ऐसा लगा वास्तव में दिन बहुत ही अच्छे थे। शब्दावली मन भावन में दोस्ती विषय के साथ रेणु तिवारी जी बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दावली व गीतों को समेट कर लाई थी। इसमें श्रोताओं के खत तो नहीं थे पर गजब की प्रस्तुति दी। सभी प्रस्तुतकर्ताओं को हमारी ओर से बधाई व शुभकामनाएं।
0: अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट जी की तरफ से हमें यह पत्र प्राप्त हुआ है। आप भी हमारे रामपुर आकाशवाणी की बहुत बहुत बहुत एक रेगुलर लिसनर हैं और नियमित रूप से आपकी चिट्ठियां भी हम तक प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार आज भी आपकी चिट्ठी हम तक पहुंची है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर जो 15 मई को एक संगीत संध्या का आयोजन किया गया था उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर की गई थी और उसके माध्यम से आपने वो कार्यक्रम का पूरा दृश्य देखा जिस पर आपने अपने पत्र में जाहिर किया है कि आपको बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा और आपने हम तक अपनी शुभकामनाएं भी प्रेषित की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयां और शुभकामनाएं आपको भी कि आप जैसे आप सभी लिसनर्स की वजह से आकाशवाणी ये मुकाम हासिल कर पाया है, अपने 90 वर्ष पूर्ण करने के शिखर पर है। आपने और भी प्रोग्राम सुने जिसमें हमारे श्रोता फागुराम यादव जी के विचार भी आपने सुने, वो भी आपको काफ़ी पसंद आए। 21 तारीख में जो युववाणी कार्यक्रम में फेसबुक लाइव के अंतर्गत जो चाय अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर जो विषय रखा गया था उसमें श्रोताओं के विचार आपने सुने, वो भी आपको काफ़ी पसंद आए। विविधा कार्यक्रम भी आपको काफ़ी पसंद आया है और भी जो कार्यक्रम आपने सुने 90 आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वो आपको काफ़ी पसंद आए हैं। जयमंत्री केवट जी, आप रामपुर आकाशवाणी से जुड़ी हुई हैं, काफ़ी दूर रहती हैं फिर भी रामपुर आकाशवाणी के साथ जुड़ी हुई हैं। आप एक समर्पण भाव से कार्यक्रमों को सुनती हैं और उस के क्रम में आपने ये प्रतिक्रिया भी हम तक पहुंचाई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार और बहुत अच्छा लगा आपकी चिट्ठी प्राप्त करके और पढ़कर।
1: कार्यक्रम में अगली चिट्ठी हमारे पास आई है फिजिकल फॉर्मेट के रूप में। हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं PWD कॉलोनी के इरफान खान साहब, साथ में हैं इनके परिवार के। इसमें इन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों का जिक्र किया है और विशेष तौर से इन्होंने जो हमारे यहाँ से रूपक प्रसारित हुआ था आकाशवाणी आवाज़ों में बसी यादें, इसकी प्रस्तुति हुई थी हमारे यहाँ से रात्रि 10 बजे 20 तारीख को। इन्होंने पूरा सब सिलसिलेवार लिख करके भेजा है कि इसमें हमने किन किन को संकलन के तौर पर शामिल किया था। मनदीप कौर जी हैं, बशीर आरिफ साहब है, रमा अरुण त्रिवेदी, सुरेश राजेश्वरी जी का जिक्र है इनसे, सुरेंद्र राजेश्वरी जी का, साथ में नोटियाल जी, रजनी श्यामल दत्ता और कृष्ण कुमार सिन्हा, रामस्वरूप गंगवार जी, जितने लोगों को हमने शामिल किया था उन सब के बारे में इन्होंने डिटेल से लिखा है और कार्यक्रम इनको पसंद आया, इन्होंने आपके लिए धन्यवाद भी दिया है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि इस सारे कार्यक्रम में जो हमारे पुराने मरहूम थे जैसे मोहम्मद अली मौत साहब हैं, विनोद आनंद दयाल जी हैं, चंद्रमोहन सक्सेना जी हैं, इन सब का भी जिक्र किया गया, इनको ये सुनकर के अच्छा लगा। इसके अलावा इन्होंने सुबह सवेरे कार्यक्रम है, लोकगीत है, वार्ताएं हैं, ये सारे कार्यक्रम भी इन्होंने सुने। पूरी डिटेल से इन्होंने पूरा खत लिख करके भेजा है, अगर उसको आपकी लॉग बुक से मिलाया जाए तो शायद हमारी कोई गलती नहीं होगी क्योंकि एक एक कार्यक्रम एक एक पेज जी बिल्कुल सटीक सब लिख करके।
0: सबसे पहले तो ये बड़ा सुनील जी बहुत आश्चर्य होता है इस चीज़ पर कि सुनकर एग्जैक्ट डिटेल्स है, कहते हैं आप अपने कहते हैं पेपर पर उसको उतार देते हैं और फिर उसको एक रंगीन हस्तलिखित पत्र के फॉर्म में हम तक पहुंचाते हैं। ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है हमारे बेहद समर्पित और पुराने जो हमारे लिसनर हैं इरफान खान साहब जी की तरफ से। जैसा कि उनका अंदाज हमेशा रहता है कि वो हर एक प्रोग्राम जो सुनते हैं उसकी डिटेल रंगीन स्याही से लिखकर, हाथ से लिखकर वो पत्र हम तक पहुंचाते हैं और इसी क्रम में ये पत्र भी हम तक प्राप्त हुआ है। जैसे कि छांव बरगद की में भी उनकी आमद रही, ये दर्शाता है कि वो हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे लिसनर्स मिले हैं, इतने समर्पित लिसनर्स मिले हैं, इतने पुराने लिसनर्स मिले हैं जो अब तक हमारे साथ आकाशवाणी की जो 90 वर्षों की जो यात्रा है हमारे साथ हैं। और इस ये जो 90 वर्षों का जो स्वर्णिम अवसर है, इस

0: के चश्मदीद गवाह हैं, जो संगीत संध्या आयोजित की गई थी उसमें भी, ये कहते हैं, आपकी आमद रही थी और लास्ट तक आप रुके रहे थे, सबसे लास्ट में आप गए हैं। ये जो आकाशवाणी के प्रति आपका लगाव है, जो आकाशवाणी के प्रति आपका जो प्रेम है, इसका हम अगर सिर्फ धन्यवाद कहें तो बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। ऐसे ही लिसनर्स, जैसे कि इससे पहले जो मोहन सिंह रावत जी की चिट्ठी में भी इनका नाम मेंशन था, उन्होंने भी, है कहते हैं, इनके जो समर्पण भाव को रिकग्नाइज किया है अपनी चिट्ठी में। तो निसंदेह आप हमारे लिए एक धरोहर से कम नहीं है, हमारे लिए आप एक, और हर श्रोता हमारे लिए किसी धरोहर से कम नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है हमारे अस्तित्व के लिए आप। तो बेहद उसी समर्पण भाव से आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं। इरफान खान साहब की चिट्ठी के माध्यम से सभी श्रोताओं को धन्यवाद प्रेषित करना चाहते हैं और आग्रह करते हैं कि आप रामपुर आकाशवाणी के साथ ऐसे ही कदम से कदम मिलाकर चलते रहें, जुड़ते रहें, और हम 100 साल भी का भी जश्न मनाएं एक साथ रहकर। इरफान खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद चिट्ठी भेजने के लिए।
1: ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता हैं रामशरण विश्वकर्मा और साहिल विश्वकर्मा। आप लिखते हैं, 23 तारीख को सुबह सवेरे कार्यक्रम, छांव बरगद की गीत आपके नाम, हेलो फरमाइश, कृषि जगत, सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। सुबह सवेरे कार्यक्रम में आप किसी रेडियो मित्र को जोड़ते हैं, रेडियो के प्रति उन श्रोताओं की दीवानगी आज भी कायम है, सुनकर बहुत अच्छा लगता है। कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले सभी अनाउंसर्स को इन्होंने हार्दिक बधाई दी है।
0: ये हमारे लिसनर्स हैं रामशरण विश्वकर्मा और साहिल विश्वकर्मा जी, आप भी हमारे नियमित श्रोता हैं, नियमित रूप से आपकी चिट्ठियाँ भी हम तक पहुँचती हैं, आप रामपुर आकाशवाणी कार्यक्रमों को सुनते हैं और आपको कार्यक्रम पसंद आते हैं, प्रतिक्रिया भी आप तक, हम तक आपकी पहुँचती हैं। इस पूरे प्रयास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, और इसी कामना के साथ कि आगे भी आपकी प्रतिक्रिया इसी प्रकार मिलती रहेंगी और आकाशवाणी के साथ आपका जुड़ाव हमेशा समय के साथ और गहरा होता जाएगा।
1: तहसील सार मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी के हमारे श्रोता हैं त्रिलोकीनाथ राठौर, अजय राठौर, विजय राठौर, विनय राठौर, विकास राठौर, आकाश राठौर, शिवांशी, प्रियंका, शिवांश राठौर और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप लिखते हैं, पिछले सप्ताह पत्र मिला, सुनने को नहीं मिला, हमने मेल भी भेजा था, पता नहीं शामिल हुआ या नहीं। इतनी मेहनत से पत्र लिखते हैं, फिर भी सुनने को ना मिले तो दिल दुखता है, अच्छा नहीं लगता। प्रोग्राम का वक्त अगर 12 बजे ही हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, बस इतनी जल्दी ना सुन पाते हैं। हमने कहा था, अगर सभी श्रोताओं की मर्जी हो तो पत्र मिला प्रोग्राम को पुराना ही वक्त पे कर दीजिए। 18 तारीख का हेलो रामपुर सरस्वती सिंह ने पेश किया, अच्छा लगा। 19 को मन भावन हेमंत तंजील ने पेश किया, अच्छा लगा। 19 का गीत आपके नाम तंजील जी ने पेश किया, वो भी अच्छा लगा। 20 तारीख का गीत आपके नाम नेहा जी ने पेश किया था, इनको अच्छा लगा। 20 तारीख को ही रूपक, ये प्रोग्राम सुना, सुनील जी के वाचन में बहुत सारी पुरानी आवाज़ें सुनने को मिली, बहुत अच्छा लगा। 21 को जिंदगी के आईने में ये प्रोग्राम सुना, सीम जी के एक साहब के बात सुनी, बहुत अच्छा था, ये प्रोग्राम भी अच्छा लगा इन्होंने।
0: ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है तहसील स्वार मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी से त्रिलोकीनाथ राठौर और साथ में उनके साथी। कार्यक्रम आपने सुना, आपने अपने चिट्ठी में लिखा है कि पिछले सप्ताह आपको आपने पत्र मिला, कार्यक्रम जो है वो नहीं सुना, और आपने चिट्ठी भी भेजी थी। चिट्ठी बेहद यकीनन बेहद मेहनत से आप चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन जब शामिल नहीं होती है तो जाहिर सी बात है कि उसको उसका दुख तो ज़रूर होता है, लेकिन आपकी चिट्ठी आप तक आज भी पहुंची है और आज आपकी चिट्ठी शामिल हुई है। आपने रामपुर आकाशवाणी कार्यक्रमों को सुना और सराहा और साथ के साथ आपने चिट्ठियाँ भी हम तक भेजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, और यही गुजारिश रहेगी आपसे कि आप रामपुर आकाशवाणी के साथ जुड़े रहें, कार्यक्रमों को सुनते रहें और अब तक अपनी प्रतिक्रियाएँ भेजते रहें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।
1: ये हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं एकता क्लब सिंधौली तहसील मीरगंज जिला बरेली के इमरान शेख, जीशान वारसी, अयूब खान साहब और मोहम्मद सुहेल काशीपुर के हैं। दूसरे जीशान वारसी और इमरान शेख साहब का करूला मुरादाबाद से, अयूब खान साहब का, इनके दो मेल हमारे पास आए हैं। एक में इन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम आपका पत्र मिला, प्रस्तुत करने वाले सभी सदस्यों को दिल से सलाम, हम नियमित रूप से आकाशवाणी रामपुर के तमाम कार्यक्रम सुनते हैं, सच कहें तो हर एक कार्यक्रम की अपनी अलग ही एक खनक और पहचान है। आकाशवाणी रामपुर की संगीत संध्या सुरमई सफर के 90 वर्ष पूर्ण होने पर जो विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया वो वाकई यादगार रहा। इस खूबसूरत कार्यक्रम का हिस्सा बनना हमारे लिए भी गर्व की बात थी, हमारे बड़े भाई जीशान वारसी और अयूब खान साहब भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इन्होंने कुछ नाम

0: यहीं इस अवसर पर श्रीमती मनदीप कौर जी, राजीव जी, विक्रांत सर, रसीम जी से मुलाकात हुई और लोगों के नाम भी हैं सर। ये आपके केंद्र के सभी कार्यक्रम, चाहे सुबह सवेरे हो, युवाणी, किसान, ये सारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं इन्हें। और आगे इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम के लिए पूरी टीम को हार्दिक बधाई दी है इन्होंने। अखबारों में प्रकाशित आपकी तस्वीरें भी इस गौरवमय क्षण को व्यक्त करती हैं। दूसरे मेल में भी इन्होंने सर इसी प्रोग्रामों का जिक्र किया है, आगाज़ हुआ था इन्होंने। फिर लिखते हैं, आकाशवाणी रामपुर के सभी कार्यक्रम ज्ञानवर्धक, रोचक, मनोरंजन से भरपूर हैं। सभी अनाउंसर्स की मेहनत और उनका प्रस्तुतिकरण बेहद पसंद आ रहा है, लेकिन मेरी भी एक छोटी सी शिकायत है कि आकाशवाणी के रेडियो अनाउंसरों से एक ही जगह से अलग अलग नाम भेजकर कार्यक्रम की गुणवत्ता को ख़राब करने का काम कर रहे हैं। ये इन्होंने श्रोताओं से करी
1: जी,
0: एक बार में 10 से 20 मैसेज भेजकर कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। ऐसे लोगों को कार्यक्रम में शामिल ना किया जाए, एक नियम बना दिया जाए, जिसका एक से अधिक मैसेज होगा उसके कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाएगा।
1: बिल्कुल, जो भी सुझाव आपके इस विषय में मिले हैं उन पर जरूर गौर किया जाएगा। और रही बात हमारे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में जो संगीत संध्या का आयोजन किया गया था उस पर, तो उसका उसकी सफलता का पूरा श्रेय हम अपने श्रोताओं को देते हैं, क्योंकि उनकी उनके सहयोग के बिना, उनके प्रतिभा के बिना वो कार्यक्रम सफल होना संभव नहीं था। आप सबने उसमें प्रतिभाग करके, उसमें शामिल होकर उसका गौरव बढ़ाया, उसका मान बढ़ाया, उसकी शोभा बढ़ाई। आप इसीलिए इस पूरे कार्यक्रम की सफलता के लिए आप सभी लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। और इसी के साथ जो हमें पत्र प्राप्त हुए थे वो सब पढ़े जा चुके हैं। सभी लिसनर्स का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद के साथ साथ मैं अवधेश गौतम आपसे चाहूँगा अनुमति।

आपका पत्र मिला। अभी श्रोता सुन रहे थे अपना ये साप्ताहिक कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं झलकी दामाद यूनियन।

0: हमारी मांगे
1: पूरी करो,
0: हमारी मांगे
1: पूरी करो,
0: हमारी मांगे
1: पूरी करो।
0: दामाद एकता, दामाद एकता, दामाद एकता।
2: अरे भाई ये क्या माजरा है, ये इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं और ये कैसी नारेबाजी है?
3: अरे भाई तुम्हें पता नहीं, भाई बड़े अजीब आदमी हो। अरे शादी हो गई या अभी कुंवारे ही हो?
2: हाँ भैया शादी तो हो गई है।
3: वैसे कितने दिन हो गए हैं?
2: अजी धीरे धीरे 2 वर्ष बीत गए हैं।
3: जब तुम्हारे ससुर या साले लोग तुम्हें विदा करते हैं तो टीके में कितनी नकदी देते हैं?
2: अजी भाई साहब क्या पूछते हो, जब भी ससुराल वाले मुझे विदा करते हैं तो कभी 5 रुपए का तिलक कर देते हैं, कभी 10 रुपए का, और अधिक से अधिक बरसे तो 11 रुपए। अब पिछली बार की ही बात सुनो भैया, होली से पहले मेरी घरवाली मैके चली गई, मैंने कुछ नहीं कहा। जब मैं होली के बाद उसे बुलाने गया तो मेरी सालियों ने, सलेजों ने और यहाँ तक कि पड़ोसरों ने मुझे इस तरह घेर लिया जैसे पुलिस किसी मुजरिम को कब्जे में करने के बाद नजर बंद कर देती है। हाय अब क्या बताऊं भाई साहब, वो पूरी 13 थीं और सभी के हाथ में रंगों से भरी हुई एक एक बाल्टी थी। मैंने बहुत मना किया, बहुत मना किया, लेकिन किसी को भी मुझ पर दया नहीं आई। 13 की 13 बाल्टियां मेरे सर पर एक के बाद एक करके उलट दी गईं।
3: अच्छा ये तो बहुत बुरी बात है, सरासर बेइज्जती है दामादों की। वैसे आगे क्या हुआ, जरा सुनाओ तो सही।
2: हाजी ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ। मैं उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े, पैर पकड़े और कहा, देवियों मेरा 2000 रुपए का सूट है, सस्ते जमाने में ये मेरे पापा जी ने अपने लिए बनवाया था। जब मैं बड़ा हुआ तो उन्होंने ये सूट मुझे दे दिया, एक यही मेरे पापा जी की आखिरी निशानी है, मेहरबानी करके इसे खराब न करो।
3: अच्छा फिर क्या हुआ?
2: हाजी होना ही क्या था, उन्होंने मेरी एक न सुनी, दबी बिल्ली की तरह मैं चूहों से कान कटाता रहा।

0: बहुत पछताया अपनी मजबूरी पर।
1: मुझे तो आपकी हालत पर तरस आ रहा है। ऐसी भी क्या ससुराल जो दामाद की इतनी बेइज्जती करे।
0: हाँ भाई, अच्छा क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है?
1: हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। आज के समाज में ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने ससुराल वालों से तंग ना हुआ हो।
0: आप ठीक कहते हैं भैया, बड़ी ही दयनीय स्थिति है आज के दामादों की।
1: फिर आपने उन रंग बिरंगे कपड़ों का क्या किया?
0: अजी करना ही क्या था, मैं अपनी बेबसी पर आंसू बहाता रहा। मैंने ससुराल वालों से कहा भी कि कम से कम ड्रैगलीन के पैसे तो दे दो, परंतु उन्होंने विदा करते वक्त मुझे 20 रुपए का एक फटा हुआ नोट भिड़ा दिया और बोले, लेना हो तो लो वरना ये भी हम रख लेंगे। अरे भाई, तब मेरे सामने मजबूरी थी और मैंने वही 20 का फटा हुआ नोट अपनी जेब में रख लिया।
1: हाँ।
0: और बाजार में 2 रुपए का बट्टा देकर मैंने वो नोट चलाया। मैं करता भी तो क्या करता।
2: ठीक ही किया तुमने। अब अगर तुम अपने ससुराल वालों को सही रास्ते पर लाना चाहते हो ना, तो हमारी दामाद यूनियन के सदस्य बन जाओ। अब देखो ना, क्षेत्र के सारे दामाद हमारी यूनियन के सदस्य हैं।
0: अच्छा भाई साहब, क्या आप भी इसके सदस्य हैं?
2: हाँ, अरे भाई मैं तो दामाद यूनियन का अध्यक्ष हूँ।
0: अच्छा,
2: अब देखो ना, महंगाई हर दिन बढ़ती जा रही है। जो चीज पहले 5 रुपए की थी वो आज 10 रुपए की है। ऐसी विषम परिस्थितियों में जबकि महंगाई आसमान छू रही है, अगर ससुराल वाले 10-20 रुपए से ही विदा कर देते हैं तो कौन सा हम पर बहुत बड़ा उपकार करते हैं।
0: हाँ।
2: अरे क्या होता है 10-20 रुपए में भाई, अगर सिगरेट की सस्ती से सस्ती एक डिब्बी भी खरीद लो तो 20 रुपए का नोट खर्च हो गया। हमारी सरकार तक ने तो सभी के वेतन में वृद्धि कर दी है और साथ ही महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया है।
0: हाँ।
2: और समझते हो ये कैसे संभव हुआ? जब सभी कर्मचारियों ने अपना एक गुट बनाया और हड़ताल कर दी।
0: बिल्कुल सही,
2: सरकार को कर्मचारी एकता के सामने झुकना पड़ा और उसने सभी की वेतन वृद्धि कर दी। आए दिन हमारे देश में किसी न किसी मुद्दे पर हड़ताल होती ही रहती है, मगर ये सब हमारी एकता पर निर्भर है। आज यदि हम लोग भी एकजुट होकर अपने रास्ते पर अडिग रहें, तो ये निश्चित है कि ससुराल पक्ष को भी हमारी मांगे स्वीकार करनी पड़ेंगी।
0: बिल्कुल सही है,
2: हमारा विदाई भत्ता उनको बढ़ाना ही पड़ेगा और साथ में अन्य मांगे भी उनको स्वीकार करनी ही पड़ेंगी। भाइयों, फिर कोई भी दामाद बिल्ली की तरह चूरों से कान नहीं कटवाएगा। और सुनिए, हमारी 8 मांगे हैं।
0: वो क्या है?
2: नंबर 1, दामाद जितनी बार भी ससुराल जाएगा, ससुराल पक्ष को चाहिए कि वे दोनों ओर का यात्रा भत्ता यानी TA दामाद को भुगतान करे। नंबर 2, होली के अवसर पर ससुराल पक्ष का कोई भी व्यक्ति अगर दामाद के ऊपर रंग डालता है तो ससुराल पक्ष को उन रंगे हुए कपड़ों की कीमत सिलाई सहित देनी पड़ेगी।
0: बिल्कुल सही।
2: नंबर 3, ससुराल में दामाद को यदि अच्छा भोजन नहीं मिलता है तो ससुराल पक्ष कम से कम 100 रुपए प्रति खुराक के हिसाब से दामाद को भुगतान करेगा, ताकि दामाद किसी होटल में अपनी इच्छा अनुसार खाना खा सके। नंबर 4, ससुराल पक्ष को चाहिए कि वो दामाद के लिए चाय और नाश्ते का प्रबंध समय समय पर करे, और ऐसा ना करने पर दामाद अपने किसी भी निकटतम न्यायालय में ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा।
3: वाह क्या बात,
0: बिल्कुल बिल्कुल सही है,
3: सही कह रहे हैं अध्यक्ष जी।
2: अगला है कि विदा के समय दामाद को कम से कम 101 रुपए विदाई शुल्क ससुराल पक्ष देगा। विदाई शुल्क की अधिकतम सीमा ससुराल पक्ष की आर्थिक स्थिति पर निर्भर होगी।
3: बिल्कुल ठीक,
0: बिल्कुल ठीक।
2: नंबर 6, ससुराल पक्ष को प्रति मास जितनी भी आमदनी होगी उसका 25% वो दामादों को देगा। ससुराल पक्ष इस रकम की अदायगी चेक, बैंक ड्राफ्ट अथवा मनी ऑर्डर या फिर दामाद को अपने घर बुलाकर नकद करेगा। इस रकम की अदायगी समय से ना करने पर ससुराल पक्ष 5% मासिक की ब्याज दर से उस रकम का भुगतान अपनी सुविधा अनुसार करेगा।
3: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।
2: नंबर 7, ससुराल पक्ष को यदि कोई हानि हो जाती है तो ऐसी स्थिति में दामाद उस हानि का भागीदार नहीं होगा, क्योंकि दामाद का संबंध सिर्फ फायदे से होगा, नुकसान से नहीं।
4: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही,
3: बिल्कुल सही है। देख लीजिए,
2: आखिरी है, ससुराल पक्ष द्वारा उपहार स्वरूप दी गई किसी भी वस्तु में यदि कोई खराबी किसी समय आती है तो उसकी मरम्मत का कुल खर्च ससुराल पक्ष देगा।
4: बिल्कुल सही है अध्यक्ष जी, बिल्कुल सही है,
3: ये भी ठीक है। ये भी
4: यूनियन
3: जिंदाबाद,
2: सुन लीजिए,
3: जिंदाबाद।
2: आप लोग सुन लीजिए, ससुराल पक्ष को चाहिए कि वो हमारी इन सभी मांगों को स्वीकार करे, अन्यथा हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।
4: दामाद एकता,
3: जिंदाबाद।
4: दामाद एकता,
3: जिंदाबाद।
4: हमारी मांगे
3: पूरी करो,
4: हमारी मांगे
3: पूरी करो।
2: दोस्तों, हमारी सभी 8 मांगे जायज हैं। हमारी मांगों के विरोध में ससुराल पक्ष ने न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी है। कल हम सभी को न्यायालय में उपस्थित होना है और माननीय न्यायाधीश के सम्मुख हमें अपनी सारी मजबूरियां पेश करनी हैं, ताकि वे गौर से सुने और हमारी मांगों को स्वीकार करने के लिए ससुराल पक्ष को बाध्य करें।
4: दामाद एकता,
3: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
5: ऑर्डर, ऑर्डर, दामाद यूनियन के अध्यक्ष को पेश किया जाए।
6: दामाद यूनियन के अध्यक्ष हाजिर हूँ।
2: मिलॉर्ड, मेरा नाम कमलकांत है, मैं ही दामाद यूनियन का अध्यक्ष हूँ। हम सभी दामाद लोगों ने ससुराल पक्ष से तंग आकर हड़ताल की है। हमारी 8 मांगे हैं, ससुराल पक्ष को सभी स्वीकार करनी चाहिए क्योंकि सभी उचित हैं।
5: अच्छा, आपकी 8 मांगे हैं, क्या आप इन्हें जायज समझते हैं?
2: जी मिलॉर्ड, हमारी सभी मांगे जायज हैं।
5: ससुराल पक्ष यूनियन के अध्यक्ष को पेश किया जाए।
6: ससुराल पक्ष यूनियन के अध्यक्ष हाजिर हूँ।
7: मिलॉर्ड, मेरा नाम सुंदर लाल है, मैं ही ससुराल पक्ष यूनियन का अध्यक्ष हूँ।
5: दामाद यूनियन की मांगे क्या उचित है?
7: मिलॉर्ड, इनकी कोई भी मांग उचित नहीं है। मेरी 4 बेटियां हैं, फलस्वरूप दामाद भी 4 हैं। हम इनकी मांगे कैसे स्वीकार कर सकते हैं मिलॉर्ड?
0: न्यायाधीश महोदय भी आखिर दामाद होंगे, हमारी मांगों को जरूर सुनेंगे।
7: न्यायाधीश जी भी तो सुसर होंगे, वो हमारी मजबूरियां जरूर समझेंगे।
5: ऑर्डर, ऑर्डर, दोनों पक्षों के बयान सुनने के पश्चात अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि दामाद यूनियन की मांगे जायज नहीं है। फिर भी दामाद यूनियन यदि अपनी मांगों को उचित समझती है तो उसके साथ ससुराल पक्ष यूनियन की कुछ शर्तें होंगी जो दामाद यूनियन को अवश्य मान्य होंगी। शर्तें इस प्रकार है। मांग नंबर 1 के संबंध में अदालत का आदेश है कि प्रत्येक दामाद अपनी ससुराल को पैदल यात्रा करके ही जाएगा, न कोई किराया खर्च होगा और न ही ससुराल पक्ष को टीए भुगतान के लिए परेशान होना पड़ेगा। मांग नंबर 2 के संबंध में अदालत का आदेश है कि कोई भी दामाद होली के अवसर पर यदि ससुराल जाता है तो वो केवल अंडरवियर बनियान पहनकर जाएगा, कोई अन्य वस्त्र नहीं। ऐसी स्थिति में कपड़ों पर रंग डाले जाने पर ससुराल पक्ष इन कपड़ों की कीमत का भुगतान सरलता से कर सकेगा। मांग नंबर 3 के संबंध में अदालत का आदेश है कि प्रत्येक दामाद ससुराल जाते वक्त अपने साथ टिफिन में खाना लेकर जाएगा ताकि ससुराल पक्ष द्वारा ऐच्छिक भोजन न दिए जाने पर वो उसको खा सके। मांग नंबर 4 के संबंध में अदालत का आदेश है कि दामाद को ससुराल द्वारा 1 दिन में 5 लीटर ठंडा पानी ही दिया जाएगा, चाहे वो उसको एक बार में पिए या कई बार में। मौसम गर्मी का हो, सर्दी का हो अथवा बरसात का, पानी ठंडा ही मिलेगा। मांग नंबर 5 के संबंध में अदालत आदेश देती है कि दामाद ससुराल पक्ष को उपहार स्वरूप जो भी मीठा अथवा फल ले जाएगा उसकी वास्तविक कीमत में केवल 1 रुपया बढ़ाकर ही विदाई के समय दामाद को दिया जाएगा। मांग नंबर 6 के संबंध में अदालत का आदेश है कि ससुराल पक्ष की आमदनी से दामाद का कोई भी सीधा संबंध नहीं है, इसलिए ससुराल पक्ष अपनी आमदनी में से 1 फूटी कौड़ी भी दामाद को नहीं देगा। मांग नंबर 7 के संबंध में अदालत का आदेश है कि दामाद का सीधा संबंध जब ससुराल पक्ष की आमदनी से ही नहीं है तो उसकी हानि से भी उसका कोई सीधा संबंध नहीं होगा। मांग नंबर 8, ससुराल पक्ष द्वारा दामाद को उपहार स्वरूप ऐसी कोई भी वस्तु नहीं दी जाएगी जो भविष्य में कभी खराब हो, इसलिए ना कोई वस्तु खराब होगी और ना ही ससुराल पक्ष द्वारा दामाद को कोई मरम्मत खर्च दिया जाएगा।
0: अरे ये तो
5: दामाद यूनियन की मांगों के संबंध में अदालत के आदेशों का पालन कड़ाई के साथ किया जाएगा। सरकार के अनेक दहेज विरोधी प्रयासों के बावजूद दामाद यूनियन ने जो दहेज संबंधी मांगे रखी हैं, उनका अर्थ है संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करना। इसलिए दामाद यूनियन संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करने तथा सरकार द्वारा चलाए जा रहे दहेज विरोधी कार्यक्रमों की अवहेलना करने की दोषी पाई जाती है, जो दंडनीय अपराध है। इसलिए अदालत दामाद यूनियन को आदेश देती है कि वो 500 रुपए प्रति सदस्य जुर्माना शासन को भुगतान करे और दामाद यूनियन के सभी सदस्य अदालत के सम्मुख शपथ ले कि वो दहेज के लिए ससुराल पक्ष को कभी भी परेशान नहीं करेंगे।
7: बिल्कुल सही, बिल्कुल।

0: लेकर हमने वास्तव में नैतिक कृत्य किया है। हम सभी विश्वास दिलाते हैं कि कभी भी दहेज नहीं मांगेंगे।
1: जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए।

0: अभी आप सुन रहे थे झलकी दामाद यूनियन। ये झलकी आपकी सेवा में आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित की गई। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज एवं एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 11 बजे हैं, आइए अब आपको सुनवाते हैं धरोहर के अंतर्गत धारावाहिक जिंदगी के आईने में। आज इस धारावाहिक की हम आपको सुनवा रहे हैं 10वीं कड़ी।
1: जिंदगी के आईने में सभी श्रोताओं को असीम सक्सेना का नमस्कार। जिंदगी सांसों की सरगम पर एहसासों की रवानी, कुछ पाने कुछ खोने की कहानी। समय इंसान को बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ हाथों से फिसल भी जाता है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब हम कुछ पल ठहरते हैं, जिंदगी के आईने में बीते हुए लम्हों को निहारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में लबों पर कभी मुस्कुराहट थिरकती है तो कभी आंखों की कोर से आंसू भी जमते हैं।
2: ये आईने से अकेले

0: जिंदगी के आईने में श्रोताओं आज की कड़ी में आपकी मुलाकात कराते हैं जाने माने संगीत विशेषज्ञ और वरिष्ठ कलाकार मास्टर इम्तियाज अली के साथ। चर्चा का केंद्र बिंदु है रामपुर की संगीत परंपराएं। आपसे बातचीत कर रहे हैं नफीस सिद्दीकी साहब।
1: आपका ताल्लुक तो तानसेन और मिश्री सिंह के खानदान से रहा
2: जी। तो सिलसिला ऐसा है कि नवाब हामिद अली खान साहब मेरे चचा मोहम्मद वीर खान को अपना न सिर्फ मौसीकी का उस्ताद करार देते थे बल्कि उसके अलावा वो उनको कहते थे मेरे बाप हैं, और वो सियासी और रूहानी मसाइल पर उनसे हिदायत या मशवरा करते रहते थे।
1: मुझे याद होता है कि तारीख में ये लिखा हुआ है
2: जी
1: कि एक तनख्वाह तो उनको मौसीकार की हैसियत से मिला करती थी
2: जी,
1: दूसरे मुसाहिब खास की हैसियत से मिला करती थी
2: जी।
1: तो वो मुसाहिब खास के जुमरे में आते हैं।
2: जी जी। तो अब उसमें वो ये कि चूंकि हम मेरे दादा एक पूरे हिंदुस्तान में अगर 1857 से पहले ही मोहम्मद शाह के ऐसे

0: जेब में बादशाह हुए तो उन्होंने अपने तीनों भाइयों को जिस तरह से किया तो उसमें बड़ी मायूसी है। तो पूरे दिल्ली जो कि दिल था हिंदुस्तान का, वो उसमें एक तरह की मायूसी, इंतशार और फरार पैदा हो गया। उसका शिकार बच कैसे सकते थे माहिरीन फन, हर फन के बाद। तो नतीजे में ये हुआ कि उन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश आज का और मशरक़ यूपी और ख़ास तौर से अवध के नवाब शाहजहाँ के अहद में जो लाल खां गुरसमद मौसीकी के इतने बड़े उस्ताद थे कि शाहजहाँ ने उनको गुरसमद का खिताब दिया। उनके जो तीन बेटे थे खुशहाल खां, बिसराम खां, मनरंग, तीन बेटे और फिर उनके औलादें, ये सिलसिला फिर यूं चला और वो बिखरे। तो उसमें जो दिल्ली में थे तो वो खुशहाल खां को ज़रूरी औरंगज़ेब ने खसूसी अहमियत दी। और अब जब अपने किशनगढ़ की एक बच्ची को लेके पाला था और उसकी अपने बेटे से जब शादी करी तो उन्होंने खसूसी महफिल बर्बाद करी जिसमें खसूसियत से खुशहाल खां को बुलाया। तो उसके बाद से वो क्योंकि खुद भी मौसीकी के बाकायदा औरंगज़ेब जो थे तालीम याफ्ता थे, ज़ौक भी रखते थे, लेकिन ये सर अहमद सरहिंदी के असर में से मुतासिर होकर वो इससे दूर हो गए थे। तो उसकी वजह से अब तो वहाँ उनके खुशहाल खां के दो बेटे थे, निर्मोल खां उस निर्मोल शाह और प्रमोल खां उस प्रमोल शाह, और खुशहाल खां के बाकी जो भाई थे बिसराम खां, मनरंग और भूपत, ये तीन भाई थे इनकी औलादें। तो इनका कंट्रीब्यूशन ये है कि इनके यहाँ की रवायत ये चली आ रही थी वहाँ से। तो चूँकि मिस्री सिंह जो रहीम खान खाना के सुपुर्द कर दिए गए थे, क्योंकि इन्होंने सम्मोहन सिंह उनके और दादा और मिस्री सिंह के बाप ध्यानचंद सिंह दोनों का कत्ल हुआ था और गढ़ी जला दी गई थी किशनगढ़। तो किशनगढ़ तो वहाँ इनको उन्होंने चाहा अकबर ने कि किसी तरह से ये बहसियत म्यूजिशियन के तानसेन ने बताया कि अगर कोई बीन जो कि सबसे ज़्यादा कदीम और सबसे ज़्यादा मुकम्मल हिंदुस्तानी संगीत में साज है उसके माहिर तरह ये रिप्रेजेंटेटिव हैं। और तो वो इस हैसियत से मिस्री सिंह ने बिल्कुल आने से कतन इनकार कर दिया और अपनी गर्दन पेश कर दी कि मैं ये पसंद करूँगा जो मेरे बाप दादा ने इख्तियार किया रास्ता, वही रास्ता मैं भी इख्तियार करूँ। तो मजबूर होकर इस इस्तेकामत को देखते हुए अकबर ने उनका नाम मिसेज नौबत खां बड़ी बात वाला वो एक नाम दे दिया। तो अकबर के दरबार में था कि हर शख्स जो उनके दरबार में था वो अपनी अपनी सलाहियतों के बाद से अकबर उसको दूसरा नाम दे दिया करता था। वही यहाँ पर भी हुआ और खान अब्दुलरहीम खान खाना के सुपुर्द कर दिया। उनसे मुतासर होगा जिस तरह से तानसेन और तानसेन की औलादों ने अपना मजहब तब्दील किया, उसी तरह से मिस्री सिंह मुसलमान हो गए और उन्होंने उनका नाम तजवीज़ किया गया अली खां। तो अब लेकिन दरबारी एतबार से उनका नाम वही नौबत खां रहा। तो उनको तुजक जहांगीरी में जहांगीर ने ये लिखा है अली खां करोड़ी सिंह और नौबत खां को ओहदा करोड़ी का दिया। तो वो फिर नाम उनका हो तो उनकी लिखा है उसने वो अकबर उनकी करोड़ी की हैसियत से कारकर्दगी से इस कदर खुश हुए कि उनको मनसबदार बना दिया और उनको कारखाने का मुनसरिब भी करार, अफसर भी आला भी करार दे दिया। और नौबत खां की पहली शादी जो हुई वो अहमद खां मुग़ल एक फौजी अहदेदार थे उनकी बेटी से, उससे एक बेटा हसन पैदा हुआ। लेकिन उसके बाद और दूसरी औलाद के पर पहली बीवी का इंतकाल हो गया तो उसके बाद वाद खान ने तानसेन की बेटी सरस्वती जो तीसरी बेटी का उससे निकाह कर लिया।
1: तो मोहम्मद शाह के अहद में आपके खानदान के कौन कौन से नामवर मौसीकार रहे? देखिए जैसे नेमत खान थे।
0: देखिए मैं एक बात अर्ज करूँ, ऐसा है कि ये सब जितने भी लोग थे ये एक तरह के क्रिएटिव भी थे क्योंकि इनकी बैकग्राउंड जो है वो खालिस इल्मी भी थी और फनी भी थी। इल्मी और फनी होने में ये होता है कि आदमी फन जानता है लेकिन उसके बुनियादी

0: इल्म नहीं जानता है। और ये जो ख़ानदान सिलसिला आपस में हुआ तो ये लोग दोनों ऐसे ख़ानदान थे कि जो उसका इल्म भी रखते थे, तो इसमें और उसका सिरा जो का जाके होता था वो हरिदास स्वामी के तानसेन के भी वो गुरु थे सुर भेद और राग भेद में, और सम्मोहन सिंह के भी उस्ताद थे। और ये सिलसिला जो था तो दोनों जो थे एक ब्राह्मण और ये हरिदास, तो ये हरिदास जो थे ये वैष्णव थे, और उसके बाद वो जो ऐसा तो उसी तरह से ये दोनों ख़ानदान भी वैष्णव परंपरा के अमीन रहे, और लेकिन अपने फनी इल्म की वजह से इन्होंने लाल खां के तीसरे बेटे खुशहाल खां विश्राम खां मनरंग, तो मनरंग के बेटे ने तबला कि हर शख्स को ध्रुपद की गाय के लिए या बीन के लिए मुबारक को या उसकी तालीम के मुताबिक तालीम पाने के लिए और रियाज के लिए वो आसानी से पखावज और पखावजी का सहारा नहीं मिलता था, तो उन्होंने उसको आम पसंद करने के लिए, क्योंकि ये जो थे तानसेन ने जो बानियों का सिलसिला किया है, जिन बानियों की जड़ें जो हैं वो जड़ें
1: तानसेन
0: जी जी
1: क्योंकि गौड़ ब्राह्मण थे
0: जी जी,
1: और इनका गायकी जो थी वो गौड़हार बानी थी
0: जी जी,
1: ऐसा ही है। तो और मिश्री सिंह की खंडहार
0: खंडहार
1: बीन की बानी जो थी वो खंडहार रही
0: जी,
1: और ध्रुपद की जो बानी रही वो गौड़हार रही
0: जी। तो ये गौड़हारी और खंडारा, तो ये बीन को ये खंडारा सिलसिला जो है, तो ये बड़े चाहते हैं कि ये जो थे इसका एक सुर और एक लय, तो वो जहाँ सुर के बुलंद मर्तबा था तानसेन को, तो इनको लय का बहुत बड़ा मुकाम हासिल था मिश्री सिंह को, तो ये सुर और लय का जो हुआ तो उसको बरकरार रखते हुए और उसको बरकरार रख के उसको आगे बढ़ाने के लिए सरदार उन्होंने ईजाद किया जो लाल खां गुर समद के पोते।
1: आमतौर पर यह कहा जाता है कि हजरत अमीर खुसरो ने सितार ईजाद किया, जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है उन्होंने सह तारा यानी तीन तार वाला ईजाद
0: किया। देखिए वो भी कदीम जमाने से चला, तो वो मैं अर्ज़ कर दूँ कि बैरागी जो साधु होते थे वो एक तीन तारों का, और वो भी एक छोटे से तनपुरा नुमा कोई भी चीज़ होती थी उसमें एक गाड़ के और उसके ऊपर इस्तेवार करते थे तीन तारों को, और उसको जगह जगह जाके बजाते। वो सितार जो ईजाद किया वो खुशहाल खां के दो बेटे थे निर्मोल खां और प्रमोल खां, तो वो दोनों चूंकि ये हादसात हुए शाही ख़ानदान में जो हादसात हुए, तो उसके बाद में ये लोग सब सूफी हो गए सिद्ध से, तो वो तो निर्मोल शाह के बेटे तो नेमत खां शाहसदरंग थे, और प्रमोल खां जो प्रमोल शाह हुए उनके बेटे जो थे नेमत खां शाहसदरंग के भतीजे भी थे और पोते भी थे, तो भाई उनके जो चचा थे वो प्रमोल खां थे, प्रमोल खां के बेटे छोटे नौबाद खां कहलाते थे, तो छोटे नौबाद खां के बेटे फिरोज खां दरंग थे। ये है फिरोज खां दरंग, और इसका हवाला जब नादर शाह ने दिल्ली पर हमला किया तो वो हैदराबाद से कमरुद्दीन खां उनकी मोहम्मद शाह की मदद के लिए आए, तो अपने साथ वो ईरानी जवान को साथ लेकर आए, उनका नाम उनका तस्करा है जो दिल्ली में जितना बरस भी रहे, तो उन्होंने उसकी तस्वीर अपने खींची है, इसका अंग्रेजी और उर्दू में तर्जुमा भी हो चुका, तो वो उनका नाम दरगाह को लिखा। नेमत खां शाहसदरंग के लिए तो उन्होंने ये लिखा है कि नेमत खां शाहसदरंग हिंदुस्तान के लिए एक वरदान है, और उनके यहाँ हर महीने चांद की 27 तारीख को एक वो किसी के घर नहीं जाते हैं, किसी को सलाम नहीं कर सकते करते हैं, और सिर्फ बादशाह को जाकर सलाम करते हैं और चले आते हैं, और उनके यहाँ महीने की 27 तारीख को दिल्ली के जितने मौजूदीन हैं जितने बड़े लोग हैं और मौसीकी के कोई परखिया जानने वाले तानसेन और अच्छे मेयार के लोग हैं, वो सुबह से उनके यहाँ जमा होना शुरू हो जाते हैं, तो रात भर वो महफिल रहती है, तो आखिरी शब में वो राग विभास बजाते हैं जिससे एक

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 11:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है श्रोताओं से प्राप्त शब्दावली पर आधारित हमारा कार्यक्रम मन भावन।

आसमान का सितारा बनकर आए हैं, महकते फूलों का नज़ारा बनकर आए हैं। आपके स्वागत में सजी है ये महफिल, आप हमारे दिल का सहारा बनकर आए हैं। सभी सुनने वालों को सुनील सक्सेना का नमस्कार।

कार्यक्रम आपका है और इसमें आपकी भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है। हमारे वो सभी सामईन जो अपने दिल की बात, जो अपने ख्यालात, जो अपने जज्बात हम तक, हमारी तमाम सुनने वालों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो हमें ईमेल के ज़रिए अपनी शब्दावली हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल का एड्रेस आपको पता ही है, लेकिन कार्यक्रम की एक रिवायत है, हम आपको बता देते हैं। पत्र मिला airrampur@gmail.com। इस पर आप हमें अपनी शब्दावली भेज सकते हैं। कार्यक्रम की पहली शब्दावली हमारे पास आई है गांधी समाधि रोड रामपुर के हमारे श्रोता हैं हाजी गफ्फार खां, साथ में हैं राजिया खान, सिमरन खान। आप लिखते हैं, खुद के आंसू छिपाकर मुस्कुराते रहो, रोने वालों को बस हंसाते रहो, कुछ बन पाओ तो बनो दरख्त की तरह, धूप सहकर धूप से सबको बचाते रहो। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ये आंसू मेरे दिल की ज़ुबान है, मैं हंस दूँ तो हंसते आंसू, मैं रो दूँ तो ये रो दें आंसू। बिल्कुल ठीक बात है गफ्फार खान साहब, राजिया खान और सिमरन खान साहब जी। दुनिया में सबसे अच्छा काम यही होता है कि अगर रोते हुए लोगों को हंसा दिया जाए। कहते हैं ना कि घर से थोड़ा सा मंदिर और मस्जिद दूर है, चलो कुछ यूं करा जाए, किसी रोते हुए को हंसा दिया जाए। शब्दावली भेजने के लिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ये अगली शब्दावली हमारे पास आई है हमारे बहुत पुराने श्रोता है वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली के जीशान वारसी और इनके साथ में ही इमरान शेख। आप लिखते हैं, गर्मी का बढ़ता प्रकोप और जल का संकट, भीषण गर्मी में खुद को सुरक्षित रखना और जल की एक एक बूंद बचाना आज हम सभी की जिम्मेदारी है। पेड़ लगाएं, बेवजह पानी बहाने से बचें और ज़रूरत के अनुसार ही जल का उपयोग करें। पानी है तो जीवन है, इसलिए आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संभाल कर रखना बेहद ज़रूरी है। आइए मिलकर संकल्प लें, जल बचाएं, जीवन बचाएं और इस भीषण गर्मी में इंसानियत के साथ प्रकृति का भी ख्याल रखें। जिशान वारसी साहब और इमरान शेख साहब, आपकी जो लाइनें हैं वो नहायत ही काबिल तारीफ़ हैं। बिल्कुल सही है, इस भीषण गर्मी में खुद को भी सुरक्षित रखना है और जल की एक एक बूंद को भी बचाना है। जो अभी हमें महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि हम जल की कमी से एक भीषण संकट से जूझें। अगर हम आज ही जल को बचाएंगे तो निश्चित तौर से कल हमारा बहुत अच्छा होगा। कार्यक्रम की अगली शब्दावली हमारे पास आई है, ये हमारे श्रोता हैं कुंज निवास राधा कुंज इज्जत नगर बरेली के वीके जौहरी, विनोद, अर्पित जौहरी, शीला ठाकुर और शाइना बी। आप लिखते हैं, रख रख के कलम मैंने उठाया है रात भर, लिख लिख के तेरा नाम मिटाया है रात भर, रहा तकते तकते आँखें भी होने लगी हैं नम, झूठे तेरे वादे ने सताया है रात भर, अब और इंतज़ार ना दे कभी तो दीदार दे, झलक ना दिखानी हो तो ना दिखा, कम से कम एक मिस कॉल ही मार दे। मैंने सबकी निगाहों से बचकर खत लिखे थे तुझको, रातों में उठकर वो जवाब मिले तेरे खत, तेरी तस्वीर वो सूखे फूल आज भी उदास कर जाती हैं, जब निशानियां तेरी मेरे अंदर राग के ढेर पर अभी तक मेरे ज़माने लिखे हुए हैं, सारे फसाने लिखे हुए हैं, सारी निशानियां, सब शरारतें, सब हकायतें, जो कभी हुनर में एक ख्याल थी ख्वाब हो गई है। बहुत दिनों बाद तेरे खत के उदास लफ्ज़ों ने तेरी चाहतों के जायके की तमाम खुशबू मेरे रंगों में उड़ेल दी है, तेरी बातें, तेरी मुलाकात की सनक से दहकती रातें, तेरे महीन लफ्ज़ों की अफशोर बहुत दिनों बाद फिर से मुझको रुला गई। देख लेता हूँ तेरी तस्वीर जब भी परेशान होता हूँ, मानो महज तस्वीर से तू मेरा दर्द खींच लेती है, इश्क की नमी, तन्हाई और गहराई से लबरेज़ ये आँखें, जी चाहता है कि एक लिफाफे में तेरा पता लिख कर रवाना कर दूँ, फिर तुम जो पढ़ो तो कहो एहतियातों का आलम तौबा, गुर्बत भी भेजे तो सादे मुझको, मोहब्बत की निशानी है इसे मिटा ना देना, वो खत मेरी चाहत के तुम जला ना देना, जाना है चली जाओ मुझे छोड़कर, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा तुम्हें कोई चाहे तो बता देना।

कार्यक्रम में अगली शब्दावली हमारे पास आई है राजद्वारा कोठी अफसर आला रामपुर की। हमारी श्रोता हैं रूमा खान, मतिहा, राजिया गफ्फार, गुलफशवा, जीनत अमान, शबनम अब्बासी और शमा परवीन। आप लिखती हैं भीगी आंखों से मुस्कुराने में मज़ा और है, हंसते हंसते पलकों को भिगोने में मज़ा और है। बात कह कर के तो कोई भी समझ जाता है, खामोशी अगर कोई समझे तो मज़ा और है। बिल्कुल सही बात है रूमा खान जी, मदीहा जी और परिवार के आपके जितने भी लोग हैं। आज के ज़माने में ऐसे बहुत कम मिलते हैं जो आपकी खामोशी को समझ सकें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आप बात कहते हैं उसको तो समझ जाएंगे, लेकिन ऐसे बहुत कम मिलेंगे जो हमारी खामोशी को समझ सकें। रिंगनी छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आप लिखते हैं गमों से घबराकर जीवन के सफ़र की रफ्तार को धीमी करना कहाँ तक न्यायोचित है। हमेशा से रात्रि के सघन काली छाया के पश्चात प्रातः की सुनहरी सुबह आती है, फिर क्यों हम दुख रूपी अंधकार से घबराएं। निश्चित है खुशियों की बौछार भी जीवन में ज़रूर आएगी। दिनेश जी बिल्कुल सही बात है कि अगर जीवन है जहाँ सुख हैं तो वहाँ दुख भी लिखे हुए हैं और दुखों से हमें घबराना नहीं चाहिए, लेकिन भाई कुछ दुख ऐसे होते हैं कि जिनको सहना बहुत मुश्किल होता है। कार्यक्रम की अगली शब्दावली हमारे पास आई है बहेड़ी के हमारे श्रोता हैं अंजुम भाई। बहुत अच्छा लिखते हैं, आज इस प्रोग्राम में इनकी आमद खत के माध्यम से हुई है। आप लिखते हैं रुखसत की घड़ी हमको ये मालूम नहीं था ताउम्र कोई दिल में मेहमान रहेगा, उस शख्स से अब मेरा ताल्लुक है बस इतना, जहाँ तक है मेरी सांस मेरी जान रहेगा। मोहब्बत कभी भी इंसान को उस मकाम पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ वह अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही चेहरे में देखना चाहता है। जैसे जुलेखा ने यूसुफ को देखा तो यूं लगा जैसे उनकी अधूरी मुकम्मल इसी चेहरे में छुपी हो। बस आज़े मोहब्बत से मिलकर भी मुकम्मल नहीं होती, बल्कि दूर रहकर भी दिल में ज़िंदा रहती है, क्योंकि सच्ची मोहब्बतें वक्त या फासले से नहीं मरती, वह तो दिल की गहराइयों में सांस लेती रहती हैं। साहिबो क्या इससे ज़्यादा कुछ तकलीफ़ दे होगा कि वो जिसकी आदत हो जाए, वो जिसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नामुमकिन हो, वो जो आपका गुरूर हो, वो जो आपकी जिद हो, जिस ज़माने ने इसे ज़्यादा चाहा हो उसे अपनी आँखों के सामने जाता हुआ देखा जाए, वो भी तब जबकि तुम जानते हो कि उसके बगैर तुम ज़िंदगी तो गुजार सकते हो पर जी नहीं सकते, क्योंकि कुछ ख्वाब थे इन आँखों में जो आंसू बनकर रह गए। वो मिला भी तो बस ऐसे मिला कि बस लम्हों का था, और बिछड़ा तो बस यूं जैसे सदियों का फासला हो। हर दर्द हंसते हुए सह तो लिया जाता है, मगर किसी की यूं खामोशी इंसान को तोड़ कर रख देती है। बस ना कोई शिकवा ना कोई शिकायत, बस बाकी रहता है तो बस खामोशी जो अंदर अंदर रोती है। काश कोई एक बार मुड़ कर देख लेता, हम तो आज भी उसी मोड़ पर खड़े हैं जहाँ किसी ने हमें छोड़ा था। बुझने लगी है ज़िंदगी कुछ देर तक चले, थमने का ये पाँव कुछ दूर तक तो चल चल देखें। अंजुम भाई ज़िंदगी में कुछ दुख ऐसे होते हैं कि जिनको झेल पाना बहुत मुश्किल होता है, और उस वक्त जुबा पर जो आपने ख्यालात लिख करके भेजे हैं बस यही आते हैं कि तलब तुझसे मिलने की उठती है बार बार, तड़पती हैं नज़रें और रहता है दिल बेकरार, निगाहें उठती हैं जब तेरे दरीचे के जानिब, तरस उठती हैं आँखें करने को तेरा दीदार।

कार्यक्रम की अगली शब्दावली हमारे पास आई है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र के हमारे श्रोता हैं संतोष खड़ से और विनोद खड़ से। आप लिखते हैं, उम्मीद वो चिराग है जो आंधियों में भी जलता है, हर हार के बाद भी जो दिल में पलता है। जिंदगी जब सवाल बन जाए तो उम्मीद ही है जो जवाब बनकर निकलता है। टूटे हुए ख्वाबों के शीशे में भी उम्मीद ही रंग भरना जानती है, और जब सब थम सा जाए तो उम्मीद ही है जो फिर से चलना सिखाती है। संतोष खड़से जी और विनोद खड़से जी, जिंदगी उम्मीद पर ही टिकी हुई है। हर आदमी को थोड़ी बहुत अपने पास में विकास करता रहना चाहिए। ये अगली शब्दावली हमारे पास आई है ग्राम महेशपुर खेम जिला मुरादाबाद के हमारे श्रोता हैं तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा। आप लिखते हैं, दोस्तों मौसम, हर मौसम का अपना एक अलग अलग अंदाज होता है। जैसे कि अब गर्मी का ये वर्ष सबसे गर्म होता है, जिसमें सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और तेज़ गर्म हवाएं चलती हैं। इस मौसम में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तरबूज, नींबू पानी, खीरा, खरबूज, इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से हम सब लोग गर्मी से बच सकते हैं। तो इस चलती धूप में सूती कपड़े का इस्तेमाल करें, हल्के रंग के कपड़े पहनें और अपनी छत के ऊपर एक बर्तन में पानी और दाना ज़रूर रखें, जिससे बेजुबान पंछी दाना पानी खा सकें। क्योंकि दोस्तों ये ज़िंदगी बड़ी अनमोल है, हम सबको चाहिए कि अपना तो ख्याल रखें ही, साथ में पशु पक्षी इनका भी ख्याल रखें। सूरज की तपिश ने सबको हिला दिया, कलर और पंथी के पेड़ बढ़ा दिया गया। गर्मी इतनी है कि बर्फ़ भी घबरा जाए और बाहर निकलो तो इंसान पिघल जाए। सूरज से अब दोस्ती नहीं होती, दोपहर में बाहर जाने की हिम्मत नहीं होती, सड़कें भी धूप में जलती नज़र आती हैं, लोगों की हालत देखकर गर्मी मुस्कुराती है। मौसम कितने सुहाने हो गए, मिलने मिलाने के किस्से जैसे मानो कि अब पुराने हो गए। अब तो चले आओ एक पल के लिए, तुम्हें देखे हुए ज़माने हो गए। गर्मी के इस मौसम में बिल्कुल ठीक बात है, इंसान को अपना भी ध्यान रखना चाहिए और ख़ास तौर से पशु पक्षियों का भी ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए हमें अपनी छत के ऊपर या आसपास कहीं भी जहाँ जगह मिले ठंडे स्थान पर दाने पानी का इंतज़ाम अवश्य करना चाहिए। कार्यक्रम की अगली शब्दावली हमारे पास आई है इंदिरा कॉटेज तल्लीताल नैनीताल के हमारे श्रोता हैं मोहन सिंह रावत जी, बहुत अच्छा लिखते हैं। आज इस कार्यक्रम में आपकी फिर से एक बार आमद हुई है। आप लिखते हैं, ज़िंदगी से हमारी बहुत सी ख्वाहिशें जुड़ी होती हैं, हर ख्वाहिश पूरी हो ये मुमकिन नहीं, फिर भी एक अनजानी दौड़ में हम हमेशा दौड़ते रहते हैं कुछ ना पाने की लालसा में। एक इच्छा की पूर्ति के बाद दूसरी महत्वाकांक्षा जन्म लेती है और ये दौड़ हमेशा जारी रहती है। कई

बार मंजिल तक पहुंचने की होड़ में हम दूसरों को पीछे धकेलने से नहीं चूकते। जीवन भर की इस भागदौड़ के बावजूद क्या हम लक्ष्य भेद पाते हैं जिसकी हमें तलाश रहती है? भीड़ में वो कतर निगाहों व जुड़े हाथ जो चंद सिक्कों के लिए किसी के भी आगे फैल जाते हैं, कूड़े के ढेर में दो जून की रोटी के जुगाड़ में पिस्ता बचपन व प्रताड़ना जैसे झूठन जहाँ जिंदगी के असल मायने हों, क्या हमारा ध्यान नहीं खींचते? जिंदगी वो शय है जिसके हर एक के लिए अलग अलग मायने हैं। जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, हंसते खिलखिलाते हैं, जो जीवन गुजार देते हैं, शायद असल जिंदगी वही जीते हैं। अन्यथा जिंदगी को हम जितना जानने समझने की कोशिश करते हैं उसमें उतना ही उलझते जाते हैं। यहाँ कौन, कब, कहाँ कोई नहीं जानता।

बिल्कुल सही बात है साहब, ज़िंदगी एक पहेली है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। कुछ इसी तरीके के ख्यालात और जज्बात हमारे पास आए हैं। मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर के हमारे श्रोता हैं भाई रफ़त साहब, साथ में हैं सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, फिरोज़ा मुस्कान और नगमा नाज मंसूरी। आप लिखते हैं, सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। सुख में तो हर एक इंसान को खुश रहता है, उसे सारी दुनिया रंगीन नज़र आती है, पराए भी अपने लगते हैं, लेकिन जब इंसान की ज़िंदगी में दुखों के काले बादल छाते हैं तो वही दुनिया जोशे रंगीन नज़र आती है। जोशे रंगीन नज़र आती थी, वही दुनिया बेनूर बेगानी सी नज़र आने लगती है, और दुख में भी न जाने क्या क्या ख्याल दिल में आते हैं। बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में दुख हैं तो केवल सुख आएगा ही नहीं। दोस्तों, आज अगर दुख है तो कल सुख ज़रूर मिलेगा। हम तो बस यही कहेंगे, दुख तो अपने गले लगा करके जियो, मुस्कुराना अच्छा इंसान और सच्चा इंसान वही होता है। ये अगली शब्दावली हमारे पास आई है, तहसील स्वार मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी के हमारे श्रोता हैं त्रिलोकीनाथ राठौर, अजय राठौर, विजय राठौर, साथ में हैं विनय, विकास, आकाश, शिवांशी राठौर, प्रियंका राठौर, शिवांशी राठौर और शिवाय राठौर। आप लिखते हैं, वो बचपन भी कितना सुहाना था, जिसको रोज़ एक नया फसाना था, कभी पापा के कंधों का, कभी माँ के आंचल का सहारा था, कभी बेफिक्र मिट्टी के खेल का तो कभी दोस्तों के साथ मस्ताना था, कभी नंगे पांव वे दौड़ का तो कभी पतंग ना पकड़ पाने का पछतावा था, कभी बिन आंसू रोने का तो कभी बात मनवाने का बहाना था। सच कहूँ तो वो दिन भी हसीन थे, ना कुछ छिपाना, जो दिल में आए बस वही बताना था। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी।

आपने बचपन की जो यादें इतनी अच्छी तरीके से हमारे साथ साझा करी। ये अगली शब्दावली हमारे पास आई है, निकट विद्युत सब स्टेशन नैनीताल रोड बरेली की हमारी श्रोता हैं अर्चना जौहरी। आप लिखती हैं, सुकून भरा कोना ही जिंदगी में, तो बस जिंदगी में क्या और क्या चाहिए। मोहब्बत भरे दो चार अल्फाज और चाहने वालों को यदि साथ मिल जाए तो राह में फूले फूल बिछ जाते हैं। लेकिन दुनिया में सबकी दुआएं पूरी नहीं होती, सबकी हरदास सुनी भी तो नहीं जाती। किसी किसी को खुशनसीब को मिलता है अपने हम सफ़र का प्यार, रिश्तों में दुख और प्यार में दर्द मिलता ही मिलता है। जब अपना प्यार ही आपको दर्द दे जाता है तो उस दर्द को झेलना बहुत ही मुश्किल होता है। अपनों के दर्द दिल में कांटों की तरह चुभता रहता है ज़िंदगी भर। खुश नसीब होते हैं वो जिन्हें मिलता है प्यार के बदले प्यार। हमने मांगी थी खुशी, मिली तन्हाई और तकरार।

कार्यक्रम की अगली शब्दावली हमारे पास आई है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद के हमारे श्रोता हैं लाल मोहम्मद अंसारी साहब। आज आपने मौसम के अनुरूप हम तक अपनी बातें लिख करके पहुँचाई हैं। आप लिखते हैं, मौसम कोई भी हो, हर मौसम का एक अलग ही जलवा होता है। गर्मी के मौसम में बहुत से ठंडे पदार्थ, खरबूज, तरबूज, ककड़ी जैसे चीज़ों का स्वाद तो मिलता ही है। गर्मी के मौसम में आम का पन्ना, सत्तू का शरबत, बेल का शरबत का स्वाद ही निराला होता है। बर्फ बारूदे का अलग ही जलवा होता है। वहीं गर्मी में गन्ने का जूस स्वाद किसी से कम नहीं होता। बसंत ऋतु के बाद हल्का हल्की गर्मी का एहसास होने लगता है। ये मौसम भी चला जाएगा और वो मौसम भी चला जाएगा। हर मौसम अपने होने का एक अलग ही एहसास करा जाता है। हमें चाहिए कि गर्मी के मौसम में बाहर कम से कम निकलें, ज़रूरत के अनुसार ही अपने काम निकलें। तो पूरी तैयारी के साथ पानी की बोतल जिसमें पानी भरा हो, सर पर गमछा हो, कैप ज़रूर लगाएं। जितनी गर्मी से बचेंगे उतना ही हम अपने आप को सुरक्षित और महसूस रख पाएंगे। अगली शब्दावली हमारे पास आई है, ये हमारे श्रोता हैं ईदगाह गेट मुरादाबाद के शफी अहमद इद्र अंसारी और रईस दूला अंसारी। आप लिखते हैं, यही है सच्ची दोस्ती की ताकत। नसीब मेहरबान होते हैं, नफरत भी मिल जाती है। यार सच्चा हो तो ज़िंदगी सवर भी जाती है। दुनिया लाख दीवारें खड़ी कर दे, दोस्ती के बीच दोस्त वफादार हो तो रुकावट गिर जाती है। वक्त बदलता है, हालात भी बदल जाते हैं, मगर अच्छा दोस्त हो तो ज़माना बदल जाते हैं। इसलिए एक अच्छा दोस्त ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है।

मुंबई की हमारी श्रोता हैं अनु बाड़जात्या, शमशुर खान और अनुराज बेनारा हमारे प्रोग्राम को सुन रही हैं। आज लिखा है कि आपने आज हमारी शब्दावली को शामिल नहीं किया। अनु जी, हम आपको सच में बता रहे हैं, आपकी शब्दावली हमें मिली ही नहीं है। केवल आपकी यही चीज़ हमारे पास आई है जो आपका नाम लिखा हुआ है और आपने जो लाइन लिख करके भेजी है, केवल यही चीज़ है।

0: शब्दावलियों के माध्यम से शिरकत की। और उन सभी सामईन का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस प्रोग्राम को सुना और सुनने के बाद मन ही मन में कुछ ना कुछ अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दी। अब मुझे यानी कि सुनील सक्सेना को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 12 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: मैं कनकलता। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों और दुनिया के कई हिस्सों पर दोनों देशों के हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा जटिल समय में भी बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चर्चा खुले मन से की जाएगी और सार्थक रहेगी। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 8वें चरण में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 31,065 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मोल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्ज़ोंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्ज़ोंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिचके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके इलाज के लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसीजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में

0: मम्मी मम्मी कहाँ हो? जरा एक गिलास पानी तो पिला दो, आज तो थक गया स्कूल से आते आते।
1: अभी लाई।
2: अरे ये क्या शोर तो इतना मचा रहे थे और ये आधा गिलास पानी भी नहीं पिया, क्या करूं इस बचे हुए पानी का?
0: तो क्या हुआ मम्मी? जितना पीना था पी लिया, बाकी फेंक दो। कौन से पैसे लगे हैं? पानी है, कोई सोना थोड़ी है।
2: पानी का मोल समझ मेरे बच्चे, अगर हम इसी तरह पानी बर्बाद करते रहे तो आने वाले समय में तरस जाएंगे एक बूंद पानी के लिए, और तब समझ आएगी पानी की कीमत।
3: जी हाँ, जल बचाएं और बचाएं अपने कल को। बूंद बूंद से भरती गागर, पानी का प्रयोग जरा संभल कर। पानी अर्थात जीवन, और संरक्षण अर्थात भविष्य।

0: अरे अरे सुनो, देखो देखो एक्सीडेंट हो गया।
1: अरे अरे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट।
2: अरे भाई कोई 100 नंबर डायल करो, 100 नंबर, 100 नंबर डायल करो भाई साहब, जल्दी जल्दी।
3: 100 पे नहीं, 108 लगाओ, 108
4: नहीं, 112 लगाओ।
5: अरे भाई इसकी जान चली जाएगी, आप लोग एक ही नंबर बताओ, बार बार कंफ्यूज मत करो।
4: अरे भाई एक ही नंबर पर सारे काम, 112 लगाए, तत्काल पुलिस बुलाए, फायर एम्बुलेंस की सर्विस तुरंत पाए।
6: हेलो 112,
7: नमस्कार 112 यूपी,
6: गांधी समाधि रामपुर पर एक्सीडेंट हो गया है,
7: कृपया अपना शुभ नाम बताइए।
6: सुनील।
7: एम्बुलेंस के साथ साथ आपको पुलिस और फायर की भी जरूरत है?
6: नहीं सर, सिर्फ एम्बुलेंस की।
7: आपको सहायता शीघ्र भेजी जा रही है, डायल 112 में कॉल करने के लिए धन्यवाद।
8: तो सुना आपने, अब 112 पर मिलेगी आपको जीवन रक्षा संबंधी हर आपातकालीन सेवा। SMS करें या कॉल, ईमेल भेजें या 112 इंडिया मोबाइल ऐप पर मिलेगी आपको तुरंत सहायता। अब सिर्फ एक ही नंबर याद रखें, 112, और समझदारी से काम लें।

मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्स एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 12:10 हुई है। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत आपके नाम।

सभी सुनने वालों को सुनील सक्सेना का नमस्कार। आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है, खैर मकदम है। हम अपने श्रोताओं से एक गुजारिश करते हैं कि जो भी फरमाइश आप हम तक अपने नाम के साथ लिख करके भेजेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसकी फरमाइश आपकी ज़रूर पूरी करें। लेकिन हमारी भी आपसे एक इल्तिजा है कि आप फर्जी नामों के साथ अपनी वल्दियत चेंज करके, अपनी जगह चेंज करके कभी भी ऐसा काम मत करिएगा। अगर यकीन मानिए हमने उस चीज़ को पकड़ लिया तो मैं हो सकता है कि पहला वाला नाम भी आपका ना पढ़ूँ। क्योंकि आज आपका पत्र मिला कार्यक्रम में आपने सुना होगा कि बहुत से श्रोताओं की ये कंप्लेंट बराबर हमको मिल रही है कि कुछ श्रोता अपना नाम बदलकर, अपनी वल्दियत बदलकर और अपना जगह बदल करके हमारे पास नाम भेज रहे हैं। कोशिश कीजिए प्रोग्राम की रौनकता बढ़ाए रखिए और अपना एक नाम के साथ अपने अगर फरमाइश भेजेंगे तो इस प्रोग्राम की खूबसूरती भी बड़ी रहेगी। हमारे वो सभी सामईन जो हमें आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर वो भी अपनी फरमाइश हमें इस प्रोग्राम में भेजना चाहते हैं तो हमारा पता है पत्र गीत आपके नाम, गीत आपके नाम AIR रामपुर @gmail.com। इस मेल पर हमें आप अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। अब बगैर देर करे हुए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। एक आपसे इल्तिजा और है, हमारे पास मेल बहुत पहले के आए हुए हैं लेकिन हम शुरुआत जो हमें 12 बजे से मेल प्राप्त हुए हैं उस कार्यक्रम से करेंगे, उन नामों से करेंगे। ये हमारे पास आया है कैथल हरियाणा के हमारे श्रोता हैं जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा। अगला मेल हमारे पास

मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र के हमारे श्रोता हैं अभिजीत गंवाड़कर राही, श्रीमती सरिता गंवाड़कर राही और प्रिंस एकांश गंवाड़कर राही। बदलापुर मुंबई से प्रणीता गंवाड़कर, सिद्धांत गंवाड़कर और अर्जुन गंवाड़कर। बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सबाशेर। नमस्कार के साथ हमारे पास अपनी फरमाइश लिख करके भेजी है कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। ये स्टेशन रोड जमशेदपुर के हमारे श्रोता हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया और इनके परिवार के सभी सदस्य। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, पद्मा टाकीज, नेपा नगर, मध्य प्रदेश के। करणवीर हाउस भुचो कैंसिया से भटिंडा पंजाब से हमारे पास फरमाइश आई है परम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वीरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन, अभिजीत और इनके बहुत सारे साथी। प्यार भरा आदाब हमें भेज रहे हैं सदाबहार नगमा सुनवाने के लिए सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोड़ाना। नलेश्वर नगर नरवील महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्वरा नवानकर और विशाल नवानकर। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अवरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई अंसारी, आशिक हुसैन अंसारी और अल्ताफ हुसैन। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा ज़िला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। सनावत से अशोक वर्मा, राजकुमार और इनके बहुत सारे साथी। गांव फरांसी हिसार से राजकुमार डुडी, प्रमोद कुमार डुडी और पुष्पेंद्र कुमार डुडी। तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना और इनके परिवार के सभी सदस्य।

करणवीर हाउस भटिंडा पंजाब से करणवीर, तपिंदर, निपिंदर और इनके बहुत सारे साथी मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, फिरोज़ा रोशनी, शाइना काजल, असद भाई, फिरोज़ा मुस्कान और नगमा नाज मंसूरी। आप सभी ने सुनना चाहा है अलका याग्निक, कुमार सानू और अजय देवगन को। फिल्म का नाम है दिलवाले। जिन्हें मैंने खो दिया उन्हें अब पाया तो नहीं जा सकता, जो सदमा लगा है मुझे वो बताया भी नहीं जा सकता। सब कुछ था रौनक के इश्क में, खामोशियां तेरी रुला रही हैं, आलम मस्ती में याद तेरी बहुत सता रही है।

कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। जिलामरादाबाद चौराहा गोविंदपुर खुर्द से राजा हुसैन, शाहिद हुसैन, आदिल हुसैन, मोहम्मद राजिया नूरीज और इनके बहुत सारे साथी। ये हमारे पास फरमाइश आई है इंदिरा कॉटेज तल्लीताल नैनीताल के हमारे श्रोता हैं मोहन सिंह रावत, ममता रावत और वान्या। ग्राम महेशपुर खेम जिला मुरादाबाद से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु, तासु, अर्णवानंद, सत्यमानंद, बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से।

वारली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान और अजीम खान। हम अपने श्रोताओं से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें अगर आप एक बार मेल भेज चुके हैं तो कृपया दोबारा मत भेजिए। राजद्वारा रोड मीठा कुंवर रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी, अर्पित, अभेरिया, आरुष, साथ में ही इनके परिवार के सभी सदस्य। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शाविस्ता मोहम्मद, नसीब पलक, लुबना और यश मंसूरी। गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक, अली मुजफ्फर अली और इनके परिवार के सभी सदस्य। भटिंडा खेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और इनके बहुत सारे साथी। गुन्नौर से आदिल कुमार तस्दीक, अली मुजफ्फर, असीम दुआओं और शुभकामनाओं के साथ। विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बाल कृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा और राहुल शर्मा। करेली बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी और माहे नूर अंसारी। सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, ऋषिकेश दले, यहीं से ही जीविका दले, सानिका दले। पुनावाड़े पुणा से अजय सोनवने, कनिष्मा सोनवने, आविका सोनवने, विशाखा सोनवने और इनके बहुत सारे साथी। गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, राजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, रूमा खान, मदिया खान, सुभान खान और फिरोज खान। वार्ड नंबर 1 पुफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता जी। आप सभी ने सुनना चाहा है कुमार सानू को, फिल्म का नाम है दीवाना। शबे तन्हाई में याद तेरी बहुत तड़पा रही है, इस कदर खाए हैं धोखे प्यार के हंसी सफ़र में, मेरी तन्हाइयां ही मुझे सबक सिखा रही हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर। मोहल्ला हलवाईवान शेरकोट ज़िला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया साजदारानी और हिना कौसर, ग्राम्बा पोस्ट हरहरपुर मटकली ज़िला बरेली से शाहरुन नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और साथ में ही इनके डीजे प्रधान। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशू रिधान और इनके समस्त खुराना परिवार के सभी सदस्य, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, सनावत ग्राम खंगवाड़ा दंगड़ू से धर्मेंद्र सेन, श्रीराम सेन, कलावाई सेन, सावित्री सेन, निशा सेन, आयुष, दीपांशु सेन और आरुषि लक्षिता सेन, नेहरू चौक पेठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव, जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष, चंदन, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिसाइल मुजावर और जैनब मुजावर, शोभापुर बाईपास मेरठपुर से दिग्दर्शन, कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई, दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्ने साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ शाह, श्रोता रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और साथ में इनके परिवार की सदस्य लट्टू, ये वारली मुंबई के हमारे श्रोता हैं नवाब और इनके बहुत सारे साथी।

पंजाब खेड़ा फाजिलका पुलिस परिवार से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाड़ू रेड़ा, शालनी खेड़ा, देवांशी खेड़ा, वाणी खेड़ा और वी खेड़ा, साथ में ही इनके जीवन सिख बुक और समस्त खेड़ा परिवार। कुम्हार खेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नासिर इब्राहिम और इनके परिवार के सभी सदस्य। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश और इनके परिवार के सभी सदस्य। सनावत ग्राम खंगवाड़ा से धर्मेंद्र और इनके परिवार के सभी सदस्य। करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान और नावेद खान। सिंधौली मीरगंज बरेली के हमारे श्रोता हैं जीशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख। ग्रामवा पोस्ट लदावली जिला मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना। ईदगाह गेट मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी, रईस दुला अंसारी और इनके बहुत सारे साथी। महसूल नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। कुवात विहार से शेख जफर हसन और नरगिस जफर। आप सभी ने सुनना चाहा है एसबी बाला सुब्रमण्यम और साथियों को। फिल्म का नाम है साजन। आंख से टपका आंसू अफसाना है इश्क का, दिल की हर आह प्यार के किस्से सुना रही है। बात मुद्दत के यारजू कि जिएं तो कैसे जिएं बिना आपके, ये बात दिल को बहुत तड़पा रही है।

कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम, मुंबई से अनुबाल चाट्या, शमशुल खान, अनुराज बिनारा और इनके बहुत सारे साथी। ये अगली फरमाइश हमारे पास आई है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बलोच छत्तीसगढ़ से, देव शंकर तमोरिया, अजय देव तमोरिया, तुषार देव तमोरिया, डॉली बेबी पूजा तमोरिया, राधिका और प्रभा देवी तमोरिया, साथ में ही इनके मास्टर अल कबीर। ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से अमरजीत, शिवम, सुखलाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यश। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, आराध्या खड़से, वैष्णवी खड़से और इनके बहुत सारे साथी।

0: ग्राम नागर कोहरा, ज़िला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बीबी आराध्या साहू और इनके परिवार के सभी सदस्य। गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख, बेबी मुस्कान और इनके बहुत सारे साथी। कुलम रोड हरगोविंद नगर नवाजनशहर से सुरेंद्र संधु, अनीता संधु, रोहित संधु, रितेश संधु, शिखा संधु, प्रीतम संधु और मैक्स। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। मोहल्ला मज़ार चांद शामिया रामपुर से मोहम्मद रमज़ान साहब, अदनान अली मंसूरी, अरमान अली मंसूरी, रैना चांदनी और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये हमारे पास आया है मुकेश पत्ता, नीलम पत्ता, निहारिका, हार्दिक और वंश पत्ता पंजाब से। नमस्कार के साथ अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाई है बेरड़ी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची और तनु करमरकर। सनावत से राधेश्याम, दिलीप, भरत सेन, शिवाय सेन, संतोष भाई, ज्योति भाई और समस्त सेन परिवार। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है कुमार सानू को। आप सभी की फरमाइश आप सभी के रेडियो सेट पर।
1: आप क्यों मिलना चाहते हो मुझसे? बोलो, चुप क्यों हो? बोलो।
2: मैंने तुम्हारे बगैर इतनी खामोशी।

कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर। ये हमारे पास केवल शहर का नाम नहीं आया है, उनका नाम फ्लैश हो रहा है कंप्यूटर पर, सुरेंद्र। ग्राम जखड़गांव अहमदनगर से मोहम्मद नासिर हुसैन पटेल, अमीना पटेल और इनके बहुत सारे साथी। रामेश्वर कठेरिया, उमाकांत कठेरिया, कमलेश कठेरिया, साथ में इनकी पुत्रवधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया, समस्त कठेरिया परिवार, ग्राम व पोस्ट मुंगिसापुर कानपुर देहात से। दुर्गा चौक जूनापानी सनावत से कालू सिंह, पड़ोले सीताराम, हीरालाल, साहिल, सुमन, विशाल, हरिओम, भावना और इनके परिवार के सभी सदस्य।

टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह, इंद्रजीत और इनके परिवार के सभी सदस्य। प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पोहर से सुरेश, अनीता, आरती और इनके परिवार के सभी सदस्य। हनुमानगढ़ राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जीशान खान और इनके बहुत सारे साथी।

बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी, वीना, चैतन्य, मेघा, चंडीगढ़ से राहुल और इनके बहुत सारे साथी। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे। अंबेडकर चौक वाकोड़ी से उत्तम जमदाड़े, स्वराज जमदाड़े और इनके परिवार के सभी सदस्य। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। अगली फरमाइश हमारे पास आई है गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज़, बेगम इमरान अनाज, नवाज़ शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, राधा नामदेव और इनके परिवार के सभी सदस्य। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंढाली होरा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर, अजय देव, तुषार, डॉली, बेबी, पूजा, राधिका और इनके परिवार के सभी सदस्य।

ये सोनबिल गुडेल आसाम के हमारे श्रोता हैं हितेंद्र दास और इनके बहुत सारे साथी। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन, शिव मंदिर से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। आप सभी ने सुनना चाहा है कुमार सानू और साधना सरगम को, फिल्म का नाम है जिगर। आप सभी की फरमाइश आप सभी के रेडियो सेट पर।

इसी गीत के साथ ही आज का गीत आपके नाम कार्यक्रम समाप्त करने की सुनील सक्सेना को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत आपके नाम। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एक बजने वाला है, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: एम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 दौर में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। श्री सिंह 32 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियांग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शांगसी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत में चीन के राजदूत शू फिहोंग ने शांगसी प्रांत में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना, सहयोग और सहानुभूति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में अब तक 82 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज रेलवे लाइन पर हुए एक धमाके में 30 लोग मारे गए और कई घायल हुए। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हिमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले साल होना है। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है।

0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
1: अच्छा,
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में सुनिए हमारे केंद्र से इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम और शाम दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में।

0: आज रात 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। रात 9:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रामपुर द्वारा प्रसारित द पॉडकास्ट शो। इसमें आज उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका और आयाम, इस विषय पर डॉक्टर विनोद कुमार जैन से की गई भेंटवार्ता हम आपको सुनवाएंगे। आपसे भेंट करेंगे विक्रांत चौधरी। समय याद रखिएगा, आज रात 9:30 पर। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 1:15 पर बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम होगा कन्या। इसमें आज चर्चा के अलावा नन्हे बोल होंगे, बच्चों के मनोरंजन के लिए बाल गीत सुनवाया जाएगा और बच्चों को बाल कविताएं भी सुनवाई जाएंगी। दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरा दौर। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे 50 के दशक के कुछ यादगार फिल्मी गीत। शाम दूसरी सभा हमारी आरंभ होगी 5:00। सभा के आरंभ में आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत का कंपेयर्ड कार्यक्रम आज शाम। 5:15 पर युवा दोस्तों का दैनिक कार्यक्रम होगा युववाणी। 6:10 पर हम आपको सुनवाएंगे चित्रपट संगीत। संध्या 6:20 पर किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम होगा कृषि जगत। इसमें आज धान की प्रजातियां, इस विषय पर चर्चा प्रसारित की जाएगी। साथ ही सब्जियों में कीट प्रबंधन, इस विषय पर डॉक्टर दीपक कुमार से की गई भेंटवार्ता हम आपको सुनवाएंगे। आपसे भेंट करेंगे विक्रांत चौधरी। किसान साथियों के मनोरंजन के लिए लोकगीत भी सुनवाया जाएगा और क्षेत्र संकलित कार्यक्रम भी आप तक पहुंचेगा। साथ ही मौसम की जानकारी भी दी जाएगी। शाम 7:00 आप सुनेंगे क्षेत्रीय गतिविधियों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आसपास। शाम 7:31 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे अनूप जलोटा। अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 1:10 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
1: लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सख्त गर्मी और बढ़ती हुई बिजली की मांग के दरमियान रियासत में बिला तातुल और मेयारी बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। वजीर आला ने कहा कि हर सतह पर मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए ताकि आम लोगों, किसानों, ताजिरों और सनअतों को बिजली के बहरान का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि महकमा तवानाई को गर्मी के इस मुश्किल दौर में पूरी हसासियत और तंदही से काम करना चाहिए। आज वजीर तवानाई अरविंद कुमार शर्मा और रियासती वजीर अखिलेश सिंह राजपूत की मौजूदगी में वजीर आला महकमा तवानाई, पावर कारपोरेशन और

0: मस्ती का तराना बच्चों के है साथ, खुशियों का खजाना बच्चों के है पास।
1: तो फिर क्यों ना हो बच्चों की महफिल का आगाज। आइए नन्हे सपनों में रंग भरते हैं कलियां कार्यक्रम के साथ।
0: नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपकी प्रीति दीदी आपके लिए उपस्थित है कलियां कार्यक्रम लेकर।
1: और साथ में बच्चों मैं आपकी प्रियंका दीदी भी आपके लिए आ गई हूँ हर रविवार की को मस्ती और जानकारी का पिटारा लेकर।
0: तो बने रहिए कल्याण कार्यक्रम के साथ इस सफर में हमारे साथ।
1: प्रीति आज बच्चों को क्या क्या नॉलेज देंगे जरा खुलकर तो बताइए।
0: बिल्कुल, आपने काफी सटीक शब्द इस्तेमाल किए हैं प्रियंका, नॉलेज बाइट्स, क्योंकि ज्ञान का संसार तो बहुत ही बड़ा है, बिल्कुल हमारी आकाश गंगा जैसा, जिसको जितना भी जाने उतना कम है। इसलिए हमने इसे बाइट्स के रूप में बच्चों के सामने रखने की कोशिश करी है, ताकि बच्चों को आसान तरीके से काफी कुछ पता चल सके।
1: तो आइए बच्चों शुरू करते हैं चर्चाओं का पिटारा और समझते हैं मई माह के खास इवेंट्स को।
0: बिल्कुल, आइए बच्चों को लेकर चलते हैं ज्ञान की इस आकाश गंगा में। तो बच्चों, मई का महीना भी बहुत कुछ जानकारियों का खजाना लेकर आता है। जिसमें से इस सप्ताह की बात करें तो इस सप्ताह की 22 तारीख को हम सभी ने मनाया राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस।
1: जी हाँ बच्चों, राष्ट्रीय जैव विविधता को आसान शब्दों में बताएं अगर हम प्रीति, तो कैसा रहेगा?
0: आइडिया बुरा नहीं है प्रियंका आपका, क्योंकि अगर नॉलेज बाइट्स थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव हो, लूसिड हो, तो समझना और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है।
1: तो बच्चों हमारी धरती तरह तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से सजी हुई है, ये तो आप जानते ही हैं, और जीव जंतुओं के साथ साथ सूक्ष्म जीव भी इस विविधता का हिस्सा हैं।
0: जैसे कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में कितनी स्पीशीज हैं, जिनको जानना और समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब हमें भोजन, स्वच्छ हवा, जल और जीवन रक्षक दवाएं प्रदान करते हैं, और यही जैव विविधता है जिसे हम बायोडायवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं।
1: और बच्चों जैव विविधता के कारण ही हमारी धरती पर जीवन संभव हो पाता है।
0: प्रकृति में हर छोटा बड़ा जीव एक दूसरे पर निर्भर है, यदि हम इसका संरक्षण नहीं करते हैं तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ सकता है।
1: जी हाँ प्रीति, बिल्कुल सही कहा आपने, लगातार वनों की कटाई और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन जैसी गतिविधियों ने हमारी प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है, जिससे हमारे ग्रह की जैव विविधता को डिस्टर्ब हुआ है।
0: बच्चों बायोडायवर्सिटी हर जगह मौजूद है, जैसे कि जमीन पर, महासागरों में, मीठे पानी के सोर्सेज में, और यहाँ तक कि रेगिस्तान और पोलर रीजन्स में भी। बच्चों हम कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं। यदि किसी एक के जीव को भी संरक्षण नहीं होता है तो दूसरी प्रजातियां भी खतरे में आ जाती हैं।
1: तो बच्चों आप भी अपनी धरती माता को बचा सकते हैं अगर आप समझ लें कि बायोडायवर्सिटी क्या होती है। इस धरती पर एक और चीज बिना किसी कारण के नहीं बनी है, और हमें इसका सम्मान करना चाहिए और साथ ही साथ इसका संरक्षण करना चाहिए।
0: हमारी पृथ्वी के पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना ही बच्चों हमारा परम कर्तव्य है, इसे हमें हमेशा से गंभीरता से लेना चाहिए।
1: बच्चों इस बायोडायवर्सिटी को समझकर ही हम इसके प्रति संवेदनशील हो पाएंगे। बच्चों आप जब भी बाहर घूमने जाएं या अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखें तो समझ सकते हैं कि कुछ भी फालतू का नहीं है, जो भी हमें प्रकृति से मिला है इसको सपोर्ट करें और सुरक्षित करें।
0: बहुत खूब बात कही है आपने प्रियंका जी, और बच्चों से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पानी के महत्व को समझें, नदियों तालाबों को समझें, जानें ये सब कैसे हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है, और जब तक बच्चों हम समझेंगे नहीं उनकी महत्ता को, उसके बिना हम ना उसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे और उसको लगातार गंदा करते रहेंगे।
1: तो बच्चों प्रकृति ने हमेशा से ही हमको बहुत कुछ दिया है, मगर हम मनुष्य ने इसको दूषित किया, इसका दोहन किया है, और अभी भी ये सिलसिला चल ही रहा है।
0: हमें नेचर से बहुत कुछ मिला है और साथ ही साथ इसने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है, जैसे कि हमेशा से देने रहने के लिए तैयार रहें।
1: प्रीति आपकी बात से मुझे याद आया कि देने की बात पर, कि 22 मई को हमारे लिए कुछ और तरीके से भी खास रहा। 22 मई को हमने आधुनिक समाज के जनक कहे जाने वाले महान समाज सेवक की जयंती मनाई, जिन्होंने हमेशा से ही समाज को कुछ ना कुछ दिया है।
0: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजा राम मोहन राय जी की, जिनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में 22 मई 1772 को बंगाल में हुआ था।
1: बच्चों आपको पता होना चाहिए कि राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आपको आधुनिक समाज के जनक के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि

0: इन्होंने समाज में फैली कुरीतियां जैसे कि सती प्रथा का अंत किया था। बच्चों, इन्होंने समाज में फैले अंधविश्वास के प्रति मोर्चा लिया, जैसे कि ये महिलाओं के हक के लिए हमेशा लड़े।
1: राजा राम मोहन राय जी को संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, हिंदी समेत कई भाषाओं का भी गहरा ज्ञान था।
0: जी हाँ बच्चों, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कई बड़े बदलाव किए, क्योंकि ये मानते थे कि अज्ञानता ही अंधविश्वास का घर होता है।
1: राजा राम मोहन राय ने हमेशा से समाज को कुछ दिया ही है, कभी एक समाज सुधारक बनकर तो कभी कुछ बनकर। हमें भी हमेशा से उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है।
0: बच्चों, उनके जीवन यात्रा जानकर ये तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि अगर आप भी समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले शिक्षा ग्रहण कीजिए। जितनी ज़्यादा आप शिक्षा ग्रहण करेंगे उतना ही आप जान पाएंगे कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और बच्चों, अब बात करते हैं हमारी अगली चर्चा की, जो कि है गंगा दशहरा।
1: बच्चों, सबसे पहले जानते हैं कि गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है।
0: बच्चों, बहुत समय पहले राजा भागीरथ ने कठोर तप किया था ताकि माँ गंगा धरती पर आकर उनके पूर्वजों को मुक्ति दिला सके। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई। बच्चों, इसी खुशी में हम हर साल गंगा दशहरा मनाते हैं।
1: बच्चों, ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है, इसलिए इसे दशहरा कहा जाता है। बच्चों, इस दिन लोग सुबह सुबह जल्दी उठकर गंगा नदी में स्नान करते हैं और माँ गंगा की पूजा करते हैं। कुछ लोग तो दान पुण्य भी करते हैं, जैसे कि जरूरतमंदों को खाना, कपड़े या पानी देना।
0: तो बच्चों, जाना ना आपने कि यह त्यौहार केवल भक्ति का ही नहीं, जबकि भक्ति के साथ साथ अच्छे काम करने की भी सीख देता है। बच्चों, इस साल कल 25 मई को हम सभी गंगा दशहरा मनाने वाले हैं।
1: बच्चों, अब पिटारे में से निकालते हैं हमारी आज की अगली चर्चा, जो है एक महान स्वतंत्रता सेनानी, दूरदर्शी नेता और बच्चों के प्रिय चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि।
0: जी हाँ बच्चों, 27 मई को हम सभी हमारे प्रिय चाचा नेहरू जी की पुण्यतिथि मनाने वाले हैं। बच्चों, 27 मई का यह दिन केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। एक ऐसे नेता की याद दिलाता है जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी और बच्चों के सुनहरे भविष्य का सपना देखा।
1: बच्चों, पंडित नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील थे। नेहरू जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में और आगे की पढ़ाई इंग्लैंड में की थी, लेकिन उनका मन हमेशा अपने देश और आज़ादी के लिए समर्पित रहा।
0: बच्चों, उनकी मेहनत और त्याग का ही परिणाम था कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और नेहरू जी ने देश के पहले प्रधानमंत्री बने। बच्चों, उनका विश्वास था कि आज के बच्चे ही कल का भविष्य हैं। इसी वजह से बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे और उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे।
1: स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश को आधुनिक बनाने का कार्य शुरू किया। नेहरू जी ने बड़े बड़े बांध, कारखाने और वैज्ञानिक संस्थान बनवाए, जिन्हें उन्होंने आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में कहा। उन्होंने शिक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया और IIT एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना में भारी योगदान दिया।
0: बच्चों, नेहरू जी का सपना था कि भारत विज्ञान, तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में विश्व में सबसे आगे रहे और आज हमें भी उनकी सोच और मेहनत को सच करके दिखाने में अपना योगदान देना होगा।
1: बच्चों, आइए अब पिटारे से अब हमारी अगली चर्चा को निकालते हैं।
0: हाँ हाँ प्रीति, देखिए हमारी अगली चर्चा कौन सी है।
1: प्रियंका, ये चर्चा निकली है एक पवित्र पर्व ईद उल अधा की, जो कि हम 28 मई को मनाने वाले हैं।
0: जी हाँ बच्चों, यह त्यौहार है प्यार, त्याग और इंसानियत का। ईद उल अज़हा, जिसे हम बकरा ईद के रूप में भी जानते हैं, यह दिन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति क्या होती है और दूसरों के प्रति त्याग कैसे किया जाता है।
1: बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा क्यों मनाई जाती है? यह त्यौहार जुड़ा है एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी से।
0: बच्चों, ये कहानी है महान पैगंबर इब्राहिम की, जिन्होंने अल्लाह के आदेश का पालन करते हुए अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करने का फैसला किया।
1: लेकिन बच्चों, जैसे ही वे अपनी कुर्बानी देने वाले थे, अल्लाह ने उनकी परीक्षा को स्वीकार किया और उनकी जगह एक जानवर की कुर्बानी का आदेश दिया।
0: बच्चों, इसी घटना की याद में हर साल मुसलमान ईद उल अज़हा मनाते हैं और कुर्बानी देते हैं, जो कि हमें सिखाता है त्याग, विश्वास और दूसरों की मदद करना।
1: बच्चों, ईद उल अज़हा सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं है, बल्कि अपने अंदर की बुराइयां, झूठ, नफरत, लालच की भी कुर्बानी है। बच्चों, ईद उल अज़हा को बकरा ईद, कुर्बानी की ईद और ईद उल कुर्बा भी कहा जाता है।
0: बच्चों, ईद उल अज़हा

0: में त्याग और वफादारी का संदेश तो देता ही है, साथ ही इंसानियत का पैगाम देता है और बराबरी का सबक भी देता है। जिस प्रकार इस दिन अमीर गरीब सब एक साथ ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं, जिससे पता चलता है कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता।
1: बच्चों, ईद उल अज़हा पर सभी सुबह सुबह उठकर नए कपड़े पहनकर नमाज पढ़ते हैं। घरों में इस दिन बिरयानी, कबाब और सिवैयाँ बनती हैं। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, गले मिलते हैं और ईद मुबारक भी कहते हैं।
0: बच्चों, आप सभी को भी इस खास त्यौहार को मिलजुल कर भाईचारे के साथ मनाना चाहिए और आप सभी को भी हमारी ओर से ईद
1: ईद मुबारक।
0: मुबारक।
1: प्रियंका, तो ये था हमारा आज की चर्चाओं का पिटारा, जिसने हमें बच्चों को ढेर सारी ज्ञानवर्धक जानकारियां तो दी। बच्चों, अब समय हो चला है कार्यक्रम में कुछ और मनोरंजन का।
0: जी हाँ प्रीति, क्योंकि चर्चाओं के बाद मुझे लगता है बच्चों का मनोरंजन कराना भी बहुत जरूरी है। तो बच्चों आइए, बिना देर किए सुनते हैं ये प्यारा प्यारा सा गीत।

बच्चों, अभी हमने सुना ये प्यारा प्यारा सा गीत, और अब समय हो चला है मनोरंजन के सिलसिले को यूं ही बढ़ाए रखने का। और अब बच्चों सुनते हैं प्यारी प्यारी सी बाल कविताएं, जो कि हमारे

0: बीच लेकर के आए हैं श्री कृष्ण कुमार जी।
1: गुरुओं को प्रणाम करो, वृद्धों का भी सम्मान करो, खाली मत बैठो काम करो, जग में तुम अपना नाम करो, दुखियों की पीड़ा हरा करो और देश धर्म पर मरा करो, पूजा प्राणी मात्र की सेवा प्रतिपल बढ़कर किया करो, जीवित माता पिता की सेवा बच्चों मन से किया करो, छोड़ सभी दुष्कर्मों को तुम सत्कर्मों

होतन के कफन के लिए। प्रथम प्रधानमंत्री भारत के, प्रथम प्रधानमंत्री भारत के अभिनंदनीय जवाहरलाल, प्रिय था लाल गुलाब जिन्हें और भारत के थे प्यारे बाल, और भारत के प्यारे बाल। तो उत्तर प्रदेश जनपद प्रयाग आनंद भवन में जन्मे 14 नवंबर सन 1800

सीधी सरल स्वभाव की, नाम था कमला नेहरू। नेहरू जी की इकली बेटी इंदिरा जी कहलाई थी, बनी प्रधानमंत्री भारत की, विश्व पटल पर छाई थी। अच्छे लेखक, अच्छे वक्ता, प्रिय नेता, अच्छे अधिवक्ता, भारत के विकास को नेहरू रहे खोजते प्रतिपल रास्ता। जन्म दिवस 14 नवंबर, बाल दिवस पर बारे थे, भारत के बच्चों के नेहरू चाचा प्यारे प्यारे थे। खेलें कूदें पर पढ़ें लिखें, फिर अपना

सूर कबीरा तुलसी मीरा समु अनमोल सितारे, अच्छे बच्चे सबको भाते जग के आँख के तारे, अच्छी बच्ची रानी दुर्गा उदा लक्ष्मी बाई थी, निज गौरव स्वराष्ट्र धर्म हित अपनी जान गवाई थी, कितने अच्छे बच्चे थे प्रताप शिवा पन्ना धाई, मातृभूमि की रक्षा के हित निज प्राणों की

गांधी पटेल ऊधम सुभाष आजाद थे, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह बिस्मिल से फौलाद थे, अश्फाक उल्ला और

0: बच्चे ही तो सचमुच नए नए नित सृजन करते, अध्ययन कर नव टेक्नोलॉजी चांद ग्रहों का भेदन करते। अच्छे बच्चे दिनचर्या से नित प्रति पढ़ते लिखते हैं, महापुरुष बनकर जीवन में कार्य देश हित करते हैं। मेरी चाट बड़ी ही आला, खाओ छाया रश्मि माला, सारा माल बहुत है सस्ता, गुजिया बरे पकौड़ी खस्ता, गरम गरम आलू की टिक्की, मंजू सीमा खाओ बिक्की, मटर समोसे मिर्च पतौड़े, खाना सब कुछ थोड़े थोड़े, ताजा पानी साथ मिलेगा, उसका पैसा नहीं लगेगा। अब 10 रुपये की टिक्की केवल 5 रुपये घर माल मिलेगा, तो खाने चाट पकौड़े मेरे आती मथुरा जी की बाला, बड़े बड़े तोंदों के लाला, मोहन मेठू सेठ निराला, बच्चों मत काटो तुम रौला, खाओ बड़े भटूरे छोला। हरिद्वार के गंगा जल से मैंने सुंदर अर्क बनाया, हरिद्वार के गंगा जल से मैंने सुंदर अर्क बनाया, फूले फूले गोल बतासे, रोहित मोहित खाओ माया। जो भी खाए करे बड़ाई, मेरी केवल यही कमाई, खट्टी मीठी चाट चटपटी चीजें खाने को बहुतेरी। बाबूजी बैठो कुर्सी पर, खाओ पानी भरे बतासा, जैसी चाहो चाट खिलाऊं, फिर आओगे ऐसी आशा। कि अम्मा ने बनाई मेरी पूनों वाली रात में, खोया भरी मेवा परी गूथ गूथ गुजिया, अब पिट्ठी लड्डू कचरी मटरी दाल वाले पापड़ बने, दही भरे नमकीन आलू चिप्स भुजिया, टिक्की में खटाई परी मटर गोल गप्पा भरी, ले चट कारे खाओ छिरका बारी अमिया।
1: बाल कविताओं के जरिए हमने बच्चों की जो बाल कल्पनाएं होती हैं और जो बचपन होता है उसको बहुत ही उम्दा तरीके से जो उन्होंने प्रस्तुत किया है प्रियंका, ऐसा लग रहा है कि जैसे बचपन एक बहुत ही अमूल्य चीज़ है ना
2: जी।
1: और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और सुनवाते हैं बच्चों को प्यारे प्यारे नन्हे बोल। नन्हे बोल कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे साथ फिर से कुछ बच्चे जुड़े हैं, तो आइए गर्मी का मजा लेते हुए बच्चों से सुनते हैं उनकी मीठी मीठी बातें। तो आइए जानते हैं कि आजकल वो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आइए इनका नाम जानते हैं। क्या नाम है आपका?
3: माही।
1: माही, तो माही ये बताइए कि आजकल आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है?
3: अच्छी।
1: आपके स्कूल बंद हो गए?
3: हाँ।
1: हो गए तो अच्छा, ये बताइए कि गर्मी लग रही है?
3: बहुत
1: बहुत लग रही है। अच्छा ये बताइए कि लास्ट ईयर जो गर्मी थी वो ज़्यादा थी या फिर इस साल की गर्मी?
3: इस साल की ज़्यादा थी।
1: इस साल की ज़्यादा गर्मी लग रही है। अच्छा ये बताइए कि जो गर्मी हर साल बढ़ रही है इसके पीछे का रीज़न क्या है?
3: इंसान पेड़ काटते जा रहे हैं और दुनिया ख़त्म होती जा रही है।
1: क्या बात है भाई, इतनी छोटी बच्चे ने बहुत ही अच्छी बात बताई है और वो सबको पता है, लेकिन इतने छोटे छोटे बच्चे जब इतनी महत्वपूर्ण बात करते हैं तो उनके मुँह से बहुत अच्छा लगता है और जैसे मानो एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे एक मैसेज भी मिल जाता है। तो अच्छा ये बताइए कि आप पेड़ लगाती हैं?
3: हाँ।
1: तो अभी तक आपने कितने पेड़ लगाए हैं?
3: अरे मैंने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं।
1: जैसे किस किस के पेड़ लगाए आपने?
3: मैंने सेब के लगाए हैं, अमरूद के लगाए हैं, लीची के लगाए हैं, आड़ू के लगाए हैं।
1: अच्छा तो आप बताइए कि इसमें से कितने पेड़ आपके चल गए?
3: बहुत,
1: मतलब क्योंकि भाई गर्मी इतनी पड़ रही है जिसकी वजह से पेड़ों को बचाना बहुत मुश्किल है आजकल। तो जो लोग पेड़ के शौकीन हैं, जो लोग गार्डनिंग करते हैं, उनको तो सुबह और शाम दोनों टाइम पानी डालना पड़ता है। तो आप अपने पेड़ों में कितनी बार पानी डालती हैं?
3: मैं सुबह और शाम को, दोपहर को, रात को।
1: अच्छा तो इसका मतलब आता चल रहा है कि भाई माही को पेड़ों से उतना ही लगाव है जितना कि माही को अपने टॉयज से, है ना? अच्छा माही, ये बताइए, अगर हम खिलौनों की बात करें तो आप अपने बर्थडे पे कौन सा खिलौना लेना चाहेंगे अपने पेरेंट्स से?
3: डोरीमोन वाला।
1: डोरीमोन? डोरीमोन ही क्यों?
3: डोरीमोन ही लेना चाहूँगी।
1: आपका सबसे फेवरेट खिलौना कौन सा है?
3: मुझे डोरीमोन।
1: आपके पास जो भी है उनमें से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है?
3: मुझे तो एक लीजा का है।
1: अच्छा भाई, क्या बात है। अच्छा, इसी के साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप इस बार गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ घूमने जाएंगे?
3: बर्फ़ में।
1: बर्फ़ में, पहाड़ों पर? तो ये बताइए कि पहाड़ों में ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो आपको खाई से डर नहीं लगता या फिर आप इंजॉय करती हो पहाड़ों पर?
3: मैं इंजॉय करती हूँ।
1: तो आपको वॉमिट वगैरह नहीं होती है?
3: नहीं।
1: जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब वो पहाड़ों पे जाते हैं तो जैसे जैसे वो ऊंचाई पे जाते हैं तो उन्हें वॉमिटिंग सी फील होती है, नौजिया फील होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वॉमिटिंग बिल्कुल भी नहीं होती और वो बड़ा इंजॉय करते हैं। चलिए, ये तो हुई आपसे बातें, और इसी के साथ ही हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज हमारे कलिया प्रोग्राम के बच्चों को सुनाने के लिए आपके पास क्या खास है?
3: कविता।
1: सुनाइए बेटा।
3: जब बोलो तब हंस कर बोलो, बातों में मिस्री से बोलो, जब बोलो तब सच सच बोलो, कभी ना बातें रच रच बोलो।
1: क्या बात है भाई, जब बोलो तो हंस के बोलो। तो ये बताइए, आप हमेशा हंसती रहती हैं?
3: हाँ।
1: कभी गुस्सा नहीं आता है?
3: नहीं।
1: और दूसरों को हंसाती हैं?
3: हाँ।
1: दूसरों को हंसाने के लिए ये बताओ करना क्या पड़ता है आपके हिसाब से?
3: मेरे हिसाब से हंसाना पड़ता है उनको।
1: नहीं, हंसाना तो पड़ता है, लेकिन हंसाने के लिए कौन कौन सी ट्रिक्स अपनाती हैं? जैसे कुछ लोग होते हैं वो जोकर जैसे एक्टिंग करते हैं, कुछ लोग जोक सुनाते हैं, कुछ लोग अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं। आप किस तरीके से हंसाती हो?
3: मैं तो मज़े मज़े में उनको हंसा देती हूँ।
1: अच्छा, तो आप उनको पेट में गुदगुदी कर देती होंगी, है ना? भाई ये तो मुझे भी, क्योंकि गुदगुदी मुझे भी बहुत ज़्यादा फील होती है, और गुदगुदी एक ऐसी चीज़ है कि जो ना भी हंसता हो ना वो भी हंसने लगता है ना।
3: हाँ।
1: अच्छा बताइए, कुछ और है सुनाने के लिए आपके पास?
3: हाँ।
1: सुनाइए बेटा।
3: उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाए हूँ मुँह धोलो, बीती रात कमल दल फूलो, उनके ऊपर भूरे झूलो। अरे एक और है, वर्षा रानी बड़ी सुहानी, हर हर सिंगलाती है, नदियाँ नाले कुएं पोखर सबको भर कर जाती है।
1: जहाँ तक मेरा ख्याल है ये सारी कविताएं आपने अपनी हिंदी की बुक से लर्न करी है ना?
3: हाँ।
1: क्या बात है भाई। अच्छा, कविताओं की एक बात बहुत अच्छी होती है कि कविताएं जो होती है ना हमको काफ़ी चीज़ों से जोड़ देती हैं जो हमारे आसपास भी नहीं होती हैं, मगर फिर भी हम कविताओं के माध्यम से जुड़ जाते हैं, ऐसा है ना?
3: मैंने पानी की कविता इसलिए सुनाई क्योंकि पानी गर्मी बहुत हो रही है, इसलिए पानी की कविता सुनाई मैंने।
1: दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आपने कविता सुनाई है, और पानी एक ऐसी चीज़ है कि गर्मियों में हम पानी को बस सोच भी लेना तो ऐसा लगता है कि जैसे ठंडक है ना। पानी कितना अनमोल है, आप ये बताइए पानी कैसे बचाती हैं?
3: मैं तो पानी पी ही जाती हूँ।
1: नहीं, जैसे आप कभी देखती होंगी कि घर में आपके किचन में टैप खुली छोड़ दी, पानी बह रहा है, टैंक ओवरफ्लो हो गया फिर भी पानी बह रहा है, तो इस तरीके से आप पानी कैसे बचाती हैं? आप अपने घर में पानी कैसे बचाती हैं जिस तरीके से पानी की जो बचत भी हो और उसका वेस्टेज भी ना हो?
3: ब्रश में पानी कम यूज़ करती हूँ, और जब मैं पानी पीती हूँ तब मैं कम यूज़ करती हूँ, जब मैं नहाती हूँ तब भी कम यूज़ करती हूँ।
1: आपका कहने का मतलब है कि जितना मुझे ज़रूरत है मैं उतना ही पानी इस्तेमाल करती हूँ ना। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भर भर के पानी इस्तेमाल करते हैं, जूठा करते हैं, मगर उसे पूरा पीते नहीं हैं, और आप उतना ही लेती हैं जितना आपको उसकी ज़रूरत है, ऐसा है?
3: ऐसे लोग होते हैं जिनके यहाँ पानी नहीं होता है।
1: बहुत अच्छी बात बताई आपने कि हमारी इंडिया में ही बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे गर्मियों में पानी के लिए उतनी ही मशक्क़त करनी पड़ती है।
3: नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और उसी बात का ध्यान रखते हुए हमें भी पानी को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो किसी न किसी दिन एक ऐसी ही समस्या से हम भी जूझ सकते हैं।
3: वैसे भी दुनिया से कम होता जा रहा है पानी।
1: क्या बात है भाई, इसका मतलब आप न्यूज़ देखती हैं और जिसकी वजह से आपको काफ़ी खबर है दुनियादारी की, दुनिया से पानी कम होता जा रहा है। अच्छा ये बताइए कि और क्या क्या करती हैं आप?
3: मैं तो पानी बचाकर नहाती भी हूँ, थोड़ा पानी लेती हूँ, और जब भी मैं कोई पानी से कोई चीज़ भी करती हूँ बस मैं थोड़ा पानी करती हूँ ताकि बुरे समय पर मुझे पानी मिल जाए।
1: बहुत अच्छी अप्रोच है आपकी पानी को लेके, और मुझे लगता है हमारी नेचर के जितने भी रिसोर्सेज हैं अगर हम उन्हें बहुत माइंडफुल यूज़ करें तो हम प्रकृति भी बचा सकते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को ये चीज़ें पास ऑन कर सकते हैं, ऐसा है ना?
3: हाँ।
1: चलिए भाई, आपसे बात करके मज़ा आ गया, और यूँ ही आप हमसे जुड़ती रहती हैं, हर बार कुछ नया लेके हमारे समक्ष आती हैं। इस बार भी आपकी कविताएँ बहुत मनमोहक थीं, बहुत अच्छी थीं, ऐसा लगता था कि जैसे हमें आपकी दुनिया से जोड़ा आपकी कविताओं ने। माही, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से आप हमसे जुड़ती रहिए, हमेशा कुछ नया लेके। धन्यवाद।
3: थैंक यू। मेरा नाम है कनक, मैं आज कविता सुनाने जा रही हूँ। आज मंगलवार है, चूहे को बुखार। चूहा गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने लगाई सुई। चूहा बोला उई उई।
2: मेरा नाम गौरी है, मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ती हूँ और मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ। हाथी राजा बहुत बड़े सुनी लाकर खा चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर।
4: मेरा नाम अरुण है, मैं फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ता हूँ। आज मैं कविता सुनाऊंगा। तितली उड़ी उड़ न सकी, बस में चढ़ी सीट ना मिली, सीट ना मिली तो रोने लगी। रवन ने बोला आ जा मेरे पास, रवन ने बोला आ जा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश, हट बदमाश मेरे घर है पास। हे प्रभु संसार पालक, उद्धार जग कीजिए, हमारे सारे दुर्गुण को दूर करके ज्ञान हमको दीजिए।
5: मेरा नाम माये, मैं सेकेंड क्लास में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको कविता सुनाने जा रही हूँ। चिड़िया करती चो चो चो चो, और हम लोग जब दाना डालते तो उड़ जाती वो, पानी डालते उड़ जाती वो। जब वो आती हम पकड़ने जाते तब वो भाग जाती है, तभी हम लोग डर कर भागे। एक
6: आलू का चालू।

0: Beni ben de diğer gün hadi.
1: हाँ जी, क्या नाम है आपका? कौन बात कर रहे हैं?
2: अंश।
1: अंश
2: यस।
1: कौन से क्लास में पढ़ते हैं अंश आप?
2: फोर्थ।
1: ओके, अच्छा अंश, ये बताइए अभी आपके समर वेकेशन स्टार्ट हो गए?
2: यस मैम।
1: अच्छा, कैसे जा रहे हैं फिर आपके समर वेकेशन?
2: गुड।
1: अच्छे जा रहे हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं समर वेकेशन में आप?
2: हॉलीडे होमवर्क।
1: हॉलीडे होमवर्क कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कितना होमवर्क मिला? काफी ज्यादा?
2: नो मैम।
1: अच्छा ओके, और कहीं घूमने वगैरह का प्लान है? कहीं जाएंगे समर वेकेशन में?
2: कल मैं अपनी नानी घर जा रहा हूँ।
1: अरे वाह, क्या बात है, नानी के घर जा रहे हैं आप कल? अच्छी बात है। ओके, कहाँ रहती है आपकी नानी?
2: बरेली।
1: अच्छा, बरेली रहती है। चलिए अंश, तो अच्छी बात है, आप नानी के यहाँ घूमने जाएंगे। तो विद फैमिली जाएंगे, परिवार के साथ?
2: यस मैम।
1: चलिए अच्छी बात है। और साथ ही साथ अंश थोड़ा सा ध्यान भी रखिए, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है ना आजकल।
2: यस मैम।
1: तो अच्छा अंश, गर्मी से बचने के लिए आप क्या करते हो जब आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है आजकल, तो क्या करते हो?
2: मैं हम बहुत ढेरों पानी पीते हैं।
1: हाँ, बहुत सारा पानी पीते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, अपने बॉडी को आप हाइड्रेट रखते हैं। उसके साथ साथ और क्या करते हैं? बाहर धूप में खेलने तो नहीं जाते हैं?
2: नो मैम।
1: अच्छा, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है।
2: बैठा रहता हूँ।
1: कहाँ बैठे रहते?
2: कूलर में।
1: कूलर में बैठे रहते हैं? हाँ, गर्मी बहुत हो रही है ना, टाइम तो ऐसा लगता है कि घर के अंदर ही रहो। तो जब आपको खेलने वगैरह का मन होता है समर वेकेशन में, क्योंकि स्कूल भी आपके बंद हैं, तब आप कैसे खेलते हो फिर?
2: मैं लूडो खेलता हूँ।
1: अच्छा, आप इंडोर गेम्स खेलते हो, चलिए तो और भी अच्छी बात है। जब आपको खेलने का मन करता है तो आप लूडो खेल सकते हो, कैरम खेल सकते हो, चेस खेल सकते हो, या घर में और भी काफी सारे ऐसे गेम है जो हम खेल सकते हैं ना।
2: यस मैम।
1: ओके, तो किसके साथ खेलते हैं आपके फैमिली में, कौन कौन है? अंश
2: मम्मी पापा, एक दीदी और मैं।
1: अच्छा, आपकी सिस्टर है और आप है, तो अपनी सिस्टर के संग खेलते होगे, है ना?
2: यस मैम।
1: ओके, चलिए अच्छी बात है। अच्छा, कौन सी क्लास में आपकी सिस्टर?
2: सेवेंथ।
1: अच्छा, सेवेंथ में है, तो चलो अच्छी बात है, आपकी एक दीदी है फिर आप हैं, तो आप मिल जुलकर खेल लेते होगे, है ना?
2: यस मैम।
1: अच्छा अंश, आजकल जो आप देख रहे होगे, आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है, तो खूब सारे फ्रूट्स भी आ रहे हैं ना मार्केट में?
2: यस मैम।
1: तो आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है?
2: मैंगो।
1: मैंगो, ओके। और आम तो वैसे भी राजा होता है ना फलों का, तो अच्छा लगता है आपको बहुत?
2: यस मैम।
1: इसी के साथ साथ आजकल मार्केट में लीची वगैरह भी आ रही है, वाटरमेलन भी आ रहे हैं, आप ये सारी चीजें भी खा सकते हो, है ना, उनका जूस पी सकते हो, इससे भी आपको गर्मी में राहत मिल सकती है ना।
2: यस मैम।
1: तो कुल मिलाकर जो अभी गर्मी पड़ रही है ना, उससे हमें बचना जरूरी है ना।
2: यस मैम।
1: जी हाँ, और गेम का जब आपका मन हो तो आप इंडोर गेम खेल लीजिए, या फिर आप शाम को खेल सकते हो, है ना, जब थोड़ी सी धूप चले जाती है तब आप बाहर खेल सकते हो। जी हाँ, तो अंश आपके संग बात करके तो काफी मजा आ रहा है, पर साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि आज आपकी क्या प्रिपरेशन है, क्या सुनाने वाले हैं आप प्रोग्राम में?
2: मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ चतुर्चित्र का।
1: क्या बात है, कहानी सुनाएंगे आप, चलिए हम सब तैयार हैं आपकी कहानी सुनने के लिए, सुनाइए।
2: चित्रकार सुनसान जगह पे बना रहा था चित्र, इतने में ही वहां आ गए यमराज का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पार के पत्तों का रह न गए कुछ जोश। फिर उसे कुछ हिम्मत आई, देख फिर चुपचाप बोला, सुंदर चित्र बना दू, बैठ जाइए। उकड़ मुकड़ कर बैठ गया वे सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, अब मुंह आप उधर तो कीजिए जंगल के सरदार। बैठ गया वे पीठ पराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। बहुत देर तक आंख मुंदाकर पीठ पराकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। झील किनारे नाव लगा था, एक लगा था बात। चित्रकार ने नाव पकड़ ली जी भर के लिए सांस, जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया कुछ दूर। इधक थी तस धोखा खाकर चुकल झूठ में चूर, शेर बहुत खिसिया कर बोला, नाव जरा ले रोक, कलम कागज को ले जा कायर डर पोक। चित्रकार ने तुरंत ही रखी अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल का अभ्यास।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी कहानी थी। तो अच्छा अंश, इसका शीर्षक क्या था, क्या शिक्षा मिली हमें इस कहानी से?
2: हमें समझदारी से इस किसी भी मुसीबत में बचना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए।
1: जी हाँ, कि कभी भी अगर हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो हमें सोच समझ कर सूझबूझ के साथ काम लेना चाहिए, तो हम उस मुसीबत से निकल जाते हैं, है ना हंस?
2: यस मैम।
1: तो आपकी स्टोरी तो भाई बहुत अच्छी थी, काफी मजा आया, और मुझे लगता है जो बच्चे सुन रहे हैं ना उनको भी काफी अच्छी लगेगी अंश की स्टोरी। तो अंश, हमसे बात करने के लिए थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: वेलकम मैम।
1: ओके, गुड आफ्टरनून। कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं आप?
2: मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ।
1: जी, और आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम निधि है
1: निधि। अच्छा निधि, कैसे हो आप?
2: मैम। मैं अच्छी हूँ, आप बताइए।
1: मैं भी बहुत अच्छी हूँ निधि। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जैसे गर्मी बहुत पड़ रही है ना निधि आजकल, तो तेज धूप रहती है।
2: यस मैम।
1: और आपकी भी समर वेकेशन चल रहे हैं?
2: यस मैम।
1: अच्छा, तो आप अपने समर वेकेशन को कैसे एंजॉय कर रहे हो निधि?
2: मैम हम अपनी हॉबी कर रहे हैं, और मेरी हॉबी आर्ट है, और जब बाहर धूप होती है तो मैं अपनी क्राफ्ट और आर्ट करती रहती हूँ घर में बैठ के, और भाई के साथ गेम्स खेलती हूँ, इंडोर गेम्स।
1: अरे वाह निधि, ये तो बहुत अच्छी बात है। और सारे बच्चों को ही जो अपनी हॉबीज है ना वो समर वेकेशन में पूरी कर लेनी चाहिए, है ना?
2: यस
1: मुझे
2: मैम।
1: तो यही लगता है, क्योंकि देखिए पढ़ाई के समय हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें पढ़ाई करनी होती है, ट्यूशन जाना होता है, स्कूल जाना होता है, बस समर वेकेशन एक ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे आप अपनी हॉबी पूरी कर सकते हो, है ना?
2: यस
1: तो
2: मैम।
1: आपकी हॉबी जैसे कि आपने बताया ड्राइंग करना है ना,
2: यस मैम।
1: क्राफ्ट एंड ड्राइंग। ओके, तो बहुत अच्छी बात है निधि, आप ये कर रही हैं तो आपको अच्छा लगता होगा ये सारी चीजें करके ना।
2: यस मैम।
1: ओके, और इसी के साथ आप इंडोर गेम्स भी खेलती हैं, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि धूप में हम नहीं जा सकते तो आप घर पर ही खेलती हैं अपने भाई के साथ।
2: यस मैम।
1: जी, और निधि ये बताइए, तो आजकल अपने स्कूल को मिस कर रही हैं या आपको अच्छा लग रहा
2: मैम अच्छा भी लग रहा है और मिस भी कर रहे हैं।
1: है? मिस भी कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल में आपने टीचर्स, आपके दोस्त, उनसे नहीं मिल पा रहे होंगे आप, है ना?
2: यस
1: जी, इसी के साथ साथ आपको हॉलीडे होमवर्क भी तो मिला होगा ना निधि,
2: मैम।
1: तो उसे भी करती हैं आप साथ साथ में?
2: यस मैम।
1: चलिए अच्छी बात है निधि। अच्छा निधि, आज ये बताइए आपकी क्या तैयारी है, आप क्या सुनाने वाली हैं हमें?
2: मैम हम दो स्टोरी बताएंगे आज,
1: दो स्टोरी। ओके ठीक
2: एक इंग्लिश में है और एक हिंदी।
1: है, ठीक है, ओके सुनाइए।
2: पहले हिंदी की स्टार्ट करते हैं।
1: जी
2: मैं आज एक स्टोरी बताने जा रही हूँ चालाक लोमड़ी पर।
1: जी सुनाइए।
2: एक भूखी लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। उसने एक पेड़ पर कौआ देखा। कौए के मुंह में रोटी का टुकड़ा था। लोमड़ी का मन उसे खाने का हुआ। लोमड़ी ने कहा कौए से, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है, कृपया मेरे लिए एक गाना गाओ। कौआ बोला, अपनी तारीफ सुनकर कौआ बोला, उसने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी रोटी लेकर भाग गई, कौआ देखते ही रह गया। और मैम इसकी मोरल है सीख, झूठी तारीफ करने वालों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। कभी कभी बिना सोचे समझे किसी भी बातों में नहीं आना चाहिए।
1: जी हाँ निधि, आपने बिल्कुल सही बताया, और आपकी स्टोरी भी काफी अच्छी थी, इसलिए कहते हैं ना कि हमें सोच समझ कर काम लेना चाहिए, बेवकूफ नहीं बनना चाहिए, है ना?
2: यस
1: कई लोग हमें बेवकूफ बना देते हैं।
2: मैम।
1: काफी ये स्टोरी काफी अच्छी थी, और इसके बाद आपने बताया आप इंग्लिश में भी एक सुनाएंगी, है ना? जी सुनाइए।
2: मेरा टॉपिक है द क्वीन ऑफ फ्लेयर्स। लिली वॉज द क्वीन ऑफ फ्लेयर्स। ही लिव्ड इन अ ब्यूटिफुल फॉरेस्ट। ही हैड शाइनी विंग्स एंड अ मैजिक वॉन्ड। शी वॉज वेरी काइंड। वन डे देर वॉज अ नो वॉटर इन अ नियरबाई विलेज। द पीपल वेयर वेरी सैड। लिली वॉन्ट टू हेल्प दैम। शी फ्लू टू द विलेज। शी वेव्स हर मैजिक वॉन्ड। सडनली रेन स्टार्टेड टू फेल। द विलेजर्स बिकम वेरी हैप्पी। दे थैंक्स द गॉड फेरी क्वीन। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज काइंडनेस इज अ ग्रेट मैजिक, हेल्पिंग अदर्स इन नीड ब्रिंग ट्रू हैप्पीनेस टू एवरीवन।
1: क्या बात है निधि, आपने बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायक थी आपकी दोनों स्टोरी। एक में आपने बताया कि हमें सोच समझ कर काम लेने चाहिए, सेंस, दूसरी बताया आपने कि दया और हमें सहानुभूति और हेल्प करनी चाहिए लोगों की, है ना?
2: यस मैम।
1: दीदी आपकी दोनों ही स्टोरी काफी अच्छी थी, मजा आया सुन करके। और आपने आज हमसे बात करी, हमारे संग अपनी स्टोरी शेयर करी, बच्चों ने आपकी स्टोरी सुनी, तो सबको बहुत पसंद आई है। थैंक यू निधि, थैंक यू सो मच
2: वेलकम मैम
1: जी, और आगे भी हम आपसे इसी तरह जुड़ेंगे, ठीक है?
2: वेलकम
1: ओके, बाय बाय।

0: बच्चों आप अभी हमारा विशेष क्रम नन्हे बोल कार्यक्रम सुन रहे थे, जिसके अंतर्गत प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी प्रस्तुतियां रही। और प्रीति देखिए अब कार्यक्रम का समय समापन की ओर हो चला है, तो जाने से पहले हम अपने बच्चों से जरूर जानना चाहेंगे कि आपको बच्चों हमारा आज का कलियां कार्यक्रम कैसा लगा, हमें लिख भेजिएगा। तो सबसे पहले बच्चों आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कलियां कार्यक्रम द्वारा के निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन 2449-01।
1: इसी के साथ बच्चों आप हमें ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, अपने पत्र भेज सकते हैं। हमारा पता है patramila@rampur.gmail.com।
0: तो बच्चों अगले रविवार फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अपनी दीदी प्रियंका
1: और दीदी प्रीति
0: को दीजिए अनुमति और चलते हुए प्रेम से बोलिए जय हिंद।

0: महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
1: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
0: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं, और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहाँ के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
2: These would be the principles with which we would approach that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमरीका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बाद में दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमरीकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करसियोंग इकाई ने आज आकाशवाणी H90 मैराथन का आयोजन किया। करसियोंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करसियोंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। CBSE के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत

0: में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शांसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच तीन बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्ज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के युकी भामरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्स एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 2:30 हुए हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरा दौर। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं 50 के दशक के कुछ यादगार फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत किशोर कुमार, मन्ना डे और साथियों की आवाज में। फिल्म का नाम है चलती का नाम गाड़ी।
3: बाजू

0: जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

0: be.
1: कार्यक्रम का अगला गीत गीता दत्त मन्ना डे और साथियों की आवाज में, फिल्म का नाम है देवदास।

सुनहरा दौर फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से सुन रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं 50 के दशक के कुछ यादगार फिल्मी गीत। कार्यक्रम का अगला गीत शमशाद बेगम की आवाज़ में, फिल्म का नाम है बैजू बाबरा।

आइए अब आपको सुनवाते हैं गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक गीत। फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेस 55।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरा दौर। आज के इस कार्यक्रम में आपने सुने 50 के दशक के कुछ यादगार फिल्मों के यादगार गीत।

मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्स एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। शाम 5 बजे इन्हीं मीटरों पर हमारी दूसरी सभा के कार्यक्रम आरंभ होंगे, लेकिन अब से शाम 5 बजे तक FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम उपलब्ध रहेंगे। मीडियम वेव से ये सभा हमें समाप्त करने की अनुमति दीजिए।

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं। हम हाजिर हैं लेकर आपका पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। तमाम व्यस्तता के बीच कहीं दोपहर में ठंडे शरबत की ताजगी है और खस की खुशबू और ऐसी ही ताजी हवा के झोंके सा आपके चुने हुए गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत आ चुका है आपके रेडियो सेट पर। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आज मनचाहे गीत कार्यक्रम में किन किन श्रोताओं के मनचाहे गीत शामिल हो रहे हैं। मनचाहे गीत प्रोग्राम में अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

आन मिलो सजना, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को सुनना चाहा जिला यमुनानगर हरियाणा से जयपाल धीमान, यशपाल धीमान, विनोद और राजीव धीमान। इसी गीत के लिए फरमाइश की रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। और इस गीत को सुनना चाहते थे जिला अहमदनगर बालम टाकली से नंद कुमार अदवंत, उर्मिला अदवंत, नीलेश अदवंत, मयूरी अदवंत, कल्पेश अदवंत और संगीता अदवंत।

एक बार मुस्कुरा दो इस फिल्म में आशा भोसले मुकेश की आवाजें आपने सुनी। एसएच बिहारी के बोलों को सुर में ढाला ओपी नैयर ने। इस गीत को सुनना चाहा दारागंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश से गंगाराम पांडे, तीर्थराज पांडे, दिलीप शर्मा, ध्रुवराज पांडे और इनके बहुत से साथी। इसी गीत को सुनना चाहा सिकंदर अली खान, बदुद्दीन शमसुद्दीन की बाड़ी के पास से, और ये पत्र आया बीकानेर राजस्थान से। एक और श्रोता ने इस गीत की फरमाइश की जिला अमरावती से, प्रवीण नगर से। ये हैं चंदू हातोले, सीमा हातोले, गंज ढुंडवारा उत्तर प्रदेश से, बीपी गौतम, सरिता, अनन्या, कुश, रिंकू टिंकू, रीना, ऐश्वर्या, श्रेय, आप सभी की फरमाइश थी।

खय्याम की बनाई तर्ज पर इस गीत को गाया लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यशदास ने। त्रिशूल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, शाहिर लुधियानवी का लिखा। रामलीला मैदान सचिंदी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मीनू त्रिपाठी और शिवांश अनूप सिंह और अभिजीत सिंह की ये फरमाइश थी। हेतु रांची से प्रवीण कुमार और इसी गीत को सुनना चाहा गुराई बुरीवली वेस्ट मुंबई से अंशिका ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम मनचाहे गीत।

चोर मचाए शोर इस फिल्म का दो गाना था, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर का गाया गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के। गणेश कुमार की फरमाइश है ये पुणे से, और भरत यादव, काजल शर्मा, विकास सक्सेना इनकी फरमाइश है बदायूं उत्तर प्रदेश से। और ये हमारे श्रोता हैं तहसील तेलहारा अकोले महाराष्ट्र से, विनोद कुमार आड़िया, भारती, पारस पायल, श्वेता और उर्वीबेन आड़िया।

ये गीत आप सुन रहे थे द ट्रेन फिल्म से, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी, और इस गीत की फरमाइश की हंडीखेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, कलाना राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज अंसारी, और इसी गीत की फरमाइश की लीलाबेन, स्मिताबेन, भारती, निधि, सेजल, मनाली ने। ये हमारे श्रोता थे तेलहारा महाराष्ट्र से। और अब आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग। आज के प्रोग्राम में सुनिए उषा सक्सेना का लिखा नाटक चंदन वृक्ष।

0: बाहर जल्दी कीजिए, हमें भी बाहर जाना है।
1: मोगी भी कॉल लगने वाली है।
2: हाय फ्रेंड्स।
1: हाय,
2: क्या चल रहा है?
1: फिलहाल तो चाय और समोसे चल रहे हैं। अब आप आ गए हैं तो
2: चलो सुमित, उधर बैठते हैं खिड़की के पास।
3: वहाँ क्यों?
2: अरे भाई, आज शनिवार की शाम है, कोई डिनर के लिए जाएगा, कोई लोकल गार्जियन के यहाँ, कोई पिक्चर जाएगा और कोई शॉपिंग के लिए। तरह तरह की ड्रेसेस और साज सज्जा देखने को मिलेगी। आया जी।
4: हाँ बिटिया,
2: हमारी चाय यही दे देंगे ना?
4: लाई है बिटिया।
2: चल बैठ सुमित।
3: अरे यार, तुम्हारी बकबक से तो मेरा सिर दर्द करने लगता है।
2: तो ले चाय पी, एकदम गरम है।
5: अरे सुमी, जरा रेशमा का जूड़ा तो देख।
3: कहाँ कहाँ? ओहो, जूड़ा? अरे ये तो एकदम अजंता की मूर्तियों जैसा केश विन्यास है।
2: वो देख तू।
3: कहाँ?
2: तू को तूने शायद शैम्पू किया है। वाह, कितने खूबसूरत बाल है।
3: एकदम वर्षा की घनघोर घटाओं की तरह।
2: सुमन सुमी, वो देख वो देख, सुमन देखो।
3: कहाँ?
2: अरे कितनी अच्छी लग रही है
6: सच में।
2: सफेद शरारा सूट और हवा में लहराती सफेद चुन्नी, क्या बात है।
3: अरे यार, ऐसे लग रहा है जैसे कोई हंसनी तैरती हुई चली जा रही है।
2: मैं तंग आ गई मैं तुम्हारी कविता से। न कोई थ्रिल है, न कोई एक्साइटमेंट
3: है। क्यों नहीं? अरे तुम तो हो थ्रिल एक्साइटमेंट का जीता जागता रूप। गोरी गोरी दुबली पतली एक प्यारी सी बालिका, जैसे
2: कटनार की कली, यही कहेगी ना? ले समोसा खा।
3: गर्म गर्म खिला रहे हो।
2: हाँ तो फ्रेंड, मिस सुमी आपको अपनी एक नई कविता सुनाने जा रही है। ये कविता इन्होंने अपने प्रिय दोस्त चंदन के लिए लिखी है।
1: चंदन?
2: वैसे ये भी चंदन जैसी है। पर जरा साफ से बच कर है ना माय डियर फ्रेंड।
3: रीमा तू नहीं सुनेगी।
2: तो सुनिए आप सब इनकी नई रचना। तो शुरू हो जाइए मिस सुमी।
3: अरे यार, समोसा खाने दो।
2: कोई नखरा वखरा नहीं चलेगा, कम ऑन।
3: ओ रीमा, अच्छा अच्छा तो सुन बस। खुशबू बिखेरता महकाता पवित्र करता नंदन, कितना प्यारा कितना सुंदर है ये वृक्ष चंदन। ये चाहता है इसे आंखों में आंज लूं, शब्दों में बांध लूं, मन में समेट लूं, कल्पना से संवार दूं, कर लूं वंदन हे वृक्ष चंदन।
2: लो मेरी तो गाड़ी आ गई भाई, मैं तो चली। चलेगी सुमी?
3: आज नहीं, भैया आते होंगे, उनका इंतजार करूंगी।
2: ओके बाय बाय फ्रेंड्स।
1: बाय।

0: अरे नमस्ते भाई साहब।
1: अरे तू रीमा, लगता है संगत का असर आ गया है। हाय हेलो नहीं नमस्ते। आज वो तुम्हारी कबूतरी नहीं आई।
0: कबूतरी? What do you mean? You mean सुमी? देखिए भाई साहब, आप मेरी दोस्त का अपमान कर रहे हैं। अरे थोड़ी भावुक है बस, बच्चों जैसी मासूम है, हंसती है तो सुरीले तार झंकृत होते हैं, बोलती है तो जैसे कोयल कुहकुटती है, और चलती है तो
1: लगता है कोई हाथी झूम झूम कर चल रहा है।
0: अच्छा भैया, फिर आपने उसकी बेइज्जती की?
1: अरे भाई गजगामनी कहा, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट।
0: अच्छा भाई, तो आप उसकी इतनी बातें क्यों करते हैं, कहीं कोई चक्कर उक्कर तो नहीं है?
1: चक्कर और उससे? अरे बाबा डर लगता है। आती है तो कहती है, डॉक्टर साहब एक नया गीत लिखा है सुनिए। क्या करूं तुम्हारी दोस्त है, झेलना पड़ता है उसे। लिखती है, कितना मोहक कितना सुंदर है इन फूलों का जीवन, हंसना खिलना और शर्माना, महकाना धरती का कड़कण।
0: अच्छा और क्या कहती है?
1: कहती है, खिलती कलियां झूमती लताएं, तपस्वी से चंदन वृक्ष, सब मुझे बहुत अपने लगते हैं, जिस दिन बाग में न जाऊं वे उदास हो जाते हैं।
0: और आप कहिए तो प्रपोज कर दूं?
1: नहीं रीमा, बहुत भोली है वो, अधखिली अनछुई ओस में नहाई पावन कली की तरह, जिसकी पलकों में न जाने कितने सपने हैं। मैं इंतजार करूंगा।
0: समझ गई भाई साहब, मौका देखकर मैं जरूर बात करूंगी। अभी तो वो भी मगन होगी अपने भैया के साथ।
2: स्वामी बिटिया जी, वो भैया जी आए हैं।
3: अरे भैया आप, घर में सब लोग ठीक तो हैं? और डैडी की तबीयत?
4: बहुत अच्छी है, घर में सब लोग अच्छी तरह से। वो तुझे मेरा तार नहीं मिला था क्या?
3: तार? वो तो नहीं मिला। खैर अब तो आप खुद ही आ गए हैं, बता दीजिए क्या लिखा था तार में।
4: यही कि रात की ट्रेन से हम लोगों का रिजर्वेशन है।
3: रिजर्वेशन?
4: हाँ, हमें आज ही बांदा जाना।
3: लेकिन क्यों, अभी तो मेरी छुट्टियों में एक महीना बाकी है, और फिर मुझे परमिशन भी नहीं मिलेगी।
4: मैं तुम्हारे वार्डन से बात कर चुका हूँ, तुम जाकर अपनी पैकिंग कर लो, ठीक 8 बजे मैं टैक्सी लेकर आऊंगा।
3: लेकिन भैया अचानक ये सब क्या हो रहा है, मैं इतने दिन क्लासेस कैसे मिस करूंगी? साफ बताओ ना भैया क्या बात है।
4: तो सच कह दूं? तो सुन, पापा ने तेरे ब्याह की तारीख पक्की कर दी।
3: ब्याह?
4: इसी माह की 25 तारीख को तेरी शादी, और इसीलिए मैं तुझे लेने आया।
3: ये तुम क्या कह रहे हो भैया? देखो भैया, मुझे ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता।
4: ये मजाक नहीं सुनी, सच है, घर में मेहमान भी आने शुरू हो गए।
3: वाह भैया, मुझसे पूछा भी नहीं और सब कुछ तय कर लिया।
4: देख सुमी, परेशान मत हो, तू तो जानती है पापा रिटायर होने से पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेना चाहते हैं। अरे आगरे का रईस घराना है, लड़का मैकेनिकल इंजीनियर है, 2 बार बाहर भी हुआ है।
3: ओ भैया,
4: सब ठीक ही है। और देख रही तुझसे पूछने की बात, तो अपने खानदान में ऐसी परंपरा नहीं है, बड़े बूढ़े जो भी ठीक समझते हैं वही करते हैं।
3: हाँ तभी तो आप भुगत रहे हैं, रईस घराने की लाडली बेटी से पापा ने आपका ब्याह कर दिया और आपकी जिंदगी।
4: सुमी बस प्लीज, दुख तिरक मत छेड़, सब अपना मुकद्दर है, पर तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उनके घर वालों से मिल चुका हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, और लड़के की बहन मंजू वो तो बहुत ही प्यारी। अच्छा सुन, मैं चलता हूँ, तू तैयार है ना? हाँ
3: सामान बांट लो, सब लाट साहब हैं, मुझसे बिना पूछे ही सब कुछ तय हो गया। कहते थे एमए कराएंगे, और अब भी अभी नहीं कर पाऊंगी, लड़का इंजीनियर है। अरे तो कोई और लड़की नहीं मिली, मेरा ही करियर खराब करना था। चल बेटा चढ़ जा सूली पर, एक खत तो लिख दूं रीमा को। प्यारी रीमा, तेरे चंदन वृक्ष को सर्प घेरने वाले हैं, मतलब मेरा ब्याह हो रहा है इसी 25 को, पहले से आ जाना नहीं तो जिंदगी भर नहीं बोलूंगी और नहीं ब्याह करूंगी। सुनी
2: विजया जी, चलिए भैया जी आ गए हैं।

0: अरे सुमित सुमित देख तेरे बारात आ गई।
1: सुमित
0: मैं भी तेरा दूल्हा देखा हूँ।
1: नहीं रीमा मुझे छोड़कर मत जा।
0: क्यों?
1: मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
0: अरे घबराहट कैसा? सभी का ब्याह होता है। अरे शीशे में एक बार अपनी छवि तो देख ले, बिल्कुल अप्सरा लग रही है।
1: रीमा छोड़ मुझे। रीमा शीशे में भी मुझे वही चंदन वृक्ष और उससे लिपटे हुए सांप दिखाई दे रहे हैं। मेरा क्या होगा रीमा?
0: सब बढ़िया होगा। अरे कुछ दिनों के लिए बस अपनी कविताएं भूल जा। अब तू एक नई जिंदगी में कदम रखने जा रही है ना।
1: ठीक है।

0: मैं भी चलूं?
1: अरे बेटा इतनी जल्दी क्यों? शोमी के आने तक रुक जाती बेटी।
0: नहीं अंकल, रुक तो जरूर जाती, पर आज का रिजर्वेशन है और भैया स्टेशन आएंगे।
1: अच्छा बेटी ये बताओ,
0: हाँ अंकल,
1: कि शोमी का दूल्हा तुम्हें कैसा लगा?
0: अंकल ये सब ब्याह से पहले पूछा जाता है, जो बिंद गया वही मोती।
1: हाँ।
0: सुमी खुश रहे, बस यही कामना है मेरी। अच्छा चलती हूँ, सुमी की यात्रा शुभ हो और वो अपनी एक नई जिंदगी में खो जाए।
1: हाँ।

0: भाभी घूंघट हटा दीजिए और पीछे टिक कर बैठिए। अरे अभी तो कई दिनों तक झुक कर बैठना होगा, है ना भैया? वैसे भाभी है बहुत खूबसूरत। भैया पापा की पसंद की दाद देनी पड़ेगी।
1: खूबसूरत है ये लड़की, वाह क्या कहना है, पारुल दीदी के पैरों की धूल भी नहीं है ये। इसे कह दो मंजू इसे आईएस बनना है, आईएस समझी?
0: जरूर बनेगी भैया, भला तुम्हारा कहना कौन टाल सकता है, है ना भाभी?
2: अरे सुनो सुनो ना मिले ना मिले ना, अरे तार आताई आती दीजिए ना, जोड़ी की आती तार है, जोड़ी है, देखो जरा सा।
0: आइए भाभी अब उधर बैठते हैं, आइए भैया
2: तुम भी चलो।
1: नहीं मैं आंगन में जा रहा हूँ भाभी, ताई जी और बुआ जी के पास।
3: मुबारक हो लल्ला जी।
4: अरे भैया दुल्हन है कि एकदम चांद का टुकड़ा,
2: किस्मत वाले हैं हमारे भी भैया।
4: अच्छी हो जी,
0: चाय पी लीजिए भैया, थक गई मैं।
2: आप लोग अरे
0: आप लोग भी चाय पीजिए।
1: क्या कहा, मैं थक गया हूँ, इतनी जरूरी मीटिंग बुला रखी है मैंने, ऑफिस का सारा काम पड़ा है, कितनी सारी फाइलें निपटानी है और तुम कहती हो मैं थक गया हूँ। ये चाय ले जाओ और उस लड़की को पिला दो जो मेरे कमरे में बैठी है।
0: वो भाभी है भैया, अभी परसों ही तो तुम्हारे साथ उनका ब्याह हुआ है, हम लोग ही तो उन्हें विदा करा कर लाए हैं, कितनी प्यारी है भाभी।
1: भाभी अच्छा मजाक है, किसी को भी सजा कर बैठा दिया और वो तुम्हारी भाभी हो गई। ये भी भाभी है, ये भी भाभी है कितनी सारी भाभियां हैं चारों तरफ, भाभी भाभी भाभी, वाह। लो लो चाय पियो, लो लो भाभी तुम भी पीनो, तुम भी पीनो, तुम भी पीनो।
4: अरे इसकी शादी क्यों कर दी गई, हे भगवान अब बहू का क्या होगा, डॉक्टर ने कहा बीमारी के चांद सी बहू आते ही ग्रहण लग गया, हाय क्या होगा।
5: अरे बंदी भी तो पागल के साथ।
1: क्या कहा, अरे मैं पागल हूँ? तुम पागल हो, तुम पागल हो, तुम भी पागल हो, तुम भी सब पागल हो, पागल हो, ये पागलों की बारात है, पागलों की। मैं पागल, मेरा मनुआ पागल, पागल मेरी प्रीत रे। अरे ये मुझे क्या पहना दिया, हार अंगूठी ये लो ये लो ये लो, लूटो लूटो, पागल का ब्याह हुआ है, झूमो नाचो गाओ।
0: भैया भैया ये क्या कर रहे हो भैया, भाभी बुआ पकड़िए ने, मैं बाबूजी को बुलाती हूँ।
1: छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मुझे छोड़ दो छोड़ दो, देखो देखो मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, तुम सब पागल हो, तुम सब पागल हो। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं
6: हूँ, क्या
1: मैं पागल नहीं।
0: बाबूजी बाबूजी बाबूजी बाबूजी,
6: क्या है मंजू बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो?
0: भैया को दौरा पड़ा है बाबूजी, अनशन बोल रही हैं।
6: क्या कह रही,
0: कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, कपड़े फाड़ रही हैं, चाची बुआ साबुनी पकड़े हुए हैं।
6: घबरा मत बेटी, मैं अभी गाड़ी निकलवाता हूँ, उसे डॉक्टर क्या तुरंत ले जाना होगा, ऐसा कर तू जल्दी डॉक्टर वर्मा को फोन कर दे।
0: अच्छा
6: भाभी, राहुल विकी तुम लोग इसे लेकर पीछे बैठो, मंजू तुम बेटे बहू को संभालना।
0: अच्छा बाबूजी,
6: घबरा गई होगी, हम लोग इसे लेकर अस्पताल तुरंत जा रहे हैं।
0: ठीक है बाबूजी, भाभी ताई जी संभालिए भैया को। भाभी भाभी ये क्या आप रो रही हैं, भैया ठीक हो जाएंगी, घबराने की कोई बात नहीं है भाभी, ये लीजिए पानी पी लीजिए।
7: नई जिंदगी की शुरुआत वो भी इस ढंग से, मंजू जी, क्या हो गया आपके भैया को? क्या इसकी वजह मैं हूं या फिर ऐसे दौरे इन्हें पहले भी पड़े?

0: सके। सच बताइएगा मंजू जी, आपको मेरी कसम।
1: सच ही बोलती हूँ भाभी, मेरे भैया जन्म से ऐसे नहीं हैं।
0: तो फिर?
1: बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे, हर इम्तिहान में टॉप करते थे। इतनी छोटी उम्र में अच्छी नौकरी भी मिल गई, बाहर भी घूम आई हैं। लेकिन अचानक ही हमारी परिवार में एक ट्रेजेडी हो गई।
0: ट्रेजेडी?
1: हाँ भाभी, मेरे सबसे बड़े भैया का स्कूटर दुर्घटना में देहांत हो गया। भैया उन्हें बहुत प्यार करती थी और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। 10 दिनों तक ना सोए और ना ही किसी से बात की। उसके बाद ही पहला अटैक पड़ा। इलाज किया गया, ठीक हो गए, मेहनत की और नौकरी भी मिल गई।
0: वहां ठीक रहते हैं?
1: हाँ भाभी, ऑफिस में बड़ी तारीफ करते हैं लोग उनकी, काम भी बहुत करते हैं।
0: और डॉक्टर्स क्या कहते हैं?
1: उम्मीद दिलाते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। वैसे ठीक रहते हैं, तभी तो उनका ब्याह किया गया है। भाभी आप क्यों चिंता करती हैं? अरे अचानक ही दौरा पड़ गया होगा, 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा अब आप आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ।
0: नहीं मंजू जी, अभी भूख नहीं।
1: तो लेट कर सोने की कोशिश कीजिए, मैं अभी आती हूँ। शायद बाबूजी आ गए हैं।
0: कितनी सुंदर जगह ब्याह किया है अपनी लाडली बेटी का। रईस घराना, शानदार हवेली, 4-5 गाड़ियां, ढेरों नौकर चाकर और एक प्यारा सा पागल पति। अरे टेटी, इससे अच्छा होता अगर आप मेरा गला घोट देती। जीते जी मुझे मारने की क्या जरूरत थी टेटी? रीमा, रीमा तो सच कहती थी, इस चंदन वृक्ष से संघर्षों के सर्प लिपट गए हैं। बड़ा डर लग रहा है मुझे।
1: भाभी सो गई मेरी भाभी, कैसा निश्चल भोला चेहरा है, कुछ घंटों में ही कुंभला गया है। किस सम्मोहन में बांध दिया है मुझे इस मासूम ने। मुझे ही कुछ करना होगा, लगता है बाबूजी आ गए हैं। भगवान, भैया ठीक हो गए हूं। बाबूजी क्या हाल है भैया का?
2: क्या बताऊं बेटे, बहुत ही वायलेंट हो गया था।
1: है?
2: हाँ, अगर सावधानी न बरती जाती तो शायद शायद वो नर्स का गला ही खोल देता।
1: बाबूजी?
2: हाँ, उसे इंजेक्शन देने जा रही थी और वो इंजेक्शन बड़ा ही कष्टदायक था बेटा। हे भगवान, ये किस पाप की सजा दे रहा है मुझे?
1: पाप क्या होगा बाबूजी?
2: क्या कह सकता हूँ मैं, फिलहाल तो इंजेक्शन देकर सुला दिया गया है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा। राजेश बेटा।
3: जी बाबूजी।
2: कल सुबह सब जगह फोन करके डिनर कैंसिल करने की सूचना दे देना।
1: लेकिन बाबूजी, भाभी के मायके वाले ट्रेन से आ रहे हैं, चल ही दिए होंगे। बाबूजी, भैया की शादी करके आपने ठीक नहीं किया। उन्होंने तो ये भी कहा था कि शादी से ठीक भी हो सकती है और बीमारी बढ़ भी सकती है, इसमें रिस्क है। हम सब ने आपसे मना भी किया था बाबूजी।
4: अरे बेटे की मोहब्बत को तुम लोग क्या समझोगे?
1: ठीक कह रहे हैं आप, उसके लिए एक क्या कई सुमी की जिंदगी दांव पर लगाई जा सकती है।
4: मंजू, मंजू,
1: अगर आपकी बेटी के साथ भी यही होता तो?
4: चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप में आता है पढ़ देती है।
1: सच कह रही हूँ, इसलिए आप सहन नहीं।

0: कर सकती। कितनी मासूम लड़की है, उम्र में भी मुझसे छोटी। उसकी सिसकियां, उसका रोना, उसका दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसके लिए भी तो कुछ सोचिए बाबूजी।
1: अब तो बस एक ही उपाय है बेटी, शाम को उसके मायके वाले आ रहे हैं, सोचता हूं उसे उनके साथ भेज दूंगा, शायद उसका वहां मन बहल जाए। जब रितेश ठीक हो जाएगा तो उसे बुलवा लूंगा।
0: ठीक है, मैं भाभी को मायके जाने के लिए राजी कर लूंगी। अब आप भी आराम कीजिए।
1: ठीक।
2: अरे आ गए आप लोग, सुमी भी आई है। डिनर कैसा रहा? सुमी तू कुछ बोलती क्यों नहीं? रितेश कहाँ है?
3: मम्मी प्लीज, ये सब बातें एक ही साथ पूछ लेंगे। सुमी बहुत थक गई है, उसे आराम करने दीजिए।
2: अरे क्या हुआ सुमी? अरे तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? देखूं तो? हाँ, अरे तुझे तो बड़ा तेज बुखार है, जल्दी से डॉक्टर को बुला ला। सुमी चल तू अंदर लेट जा बेटा। अरे जाना जल्दी से डॉक्टर को ले आ।
3: अरे हाँ बुलाता हूँ, आप उसके पास बैठिए।
4: चंदन
2: बेटा
4: छोड़ो मुझे, छोड़ दो।
2: सो जा बेटा। क्या हो गया मेरी सुनी बेटी?
3: हाय डॉक्टर साहब, देखिए कितनी तेज बुखार है।
2: हाँ देखिए डॉक्टर साहब कितना तेज बुखार है।
5: इत्मीनान रखिए, मैं देख लेता हूँ। अरे भाई इसको तो बुखार है, ऐसा करता हूँ मैं इसे एक इंजेक्शन फिलहाल लगा देता हूँ, और ये दवाएं आप बाजार से मंगवा लीजिएगा, चार चार घंटे पर देते रहिएगा, सुबह तक बुखार उतर जाएगा।
2: ठीक है ठीक है,
5: और घबराने की कोई बात नहीं है।
2: ठीक है जा बेटा दवाएं ले आ।
3: थैंक यू डॉक्टर साहब, आइए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। सुमी सो गई है मम्मी, आप उस कमरे में चलिए, डैडी यहाँ बैठ जाएंगे।
2: ठीक है,
3: आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, आइए।
2: हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है?
3: मम्मी हमें धोखा दिया गया है।
2: धोखा? कैसा धोखा?
3: हाँ मम्मी धोखा, वो बात यह है कि रितेश को पागलपन के दौरे पड़ते
2: हैं।
3: कई महीनों तक वो मेंटल हॉस्पिटल में भी रहा, वो तो कल शाम को ही फिर से उसे दौरा पड़ा, अब हॉस्पिटल में।
2: अच्छा,
3: उसके ड्राइवर ने हमें सब कुछ बता दिया मम्मी, नहीं तो हम तो धोखे में रहते।
2: ये नहीं हो सकता। ये भगवान ये सब क्या हो गया? अब क्या होगा राकेश, मेरी मासूम बच्ची सुमी, ये क्या?
3: देखिए मम्मी इस तरह घबराने से कुछ काम नहीं चलेगा। मैंने और डैडी ने तय कर लिया।
2: क्या?
3: सुमी अब वहां नहीं जाएगी। रितेश वायलेंट हो जाता है मम्मा, तो जान पर भी हमला करता है। अब हम सुमी को नहीं खोना चाहते। अमित एक बार सुमी ठीक हो जाए तो उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए भेज देंगे, रीमा उसकी केयर करेगी, और रही ससुराल वालों की बात तो उनसे हम निपट लेंगे।
2: अच्छा
3: अब ठीक है मम्मा, आप सुमी के पास जाइए।
2: ठीक है।
0: वर्ष बीत गए अपने आप से लड़ते हुए। वाह सुमी चौधरी वाह, बाहर मुखौटा पहन रखा है एक गंभीर प्राध्यापिका का, लेकिन अंदर छटपटाती है भोली भाली सुमी। क्या अपराध था मेरा, क्या अपराध था? भाग्य ने दुख भोगने के लिए मुझे ही क्यों चुना? अगर रीमा और डॉक्टर राजन न होते तो क्या होता मेरा? मैं तो टूट चुकी थी, और मैंने उसे बदले में क्या दिया?
4: रीमा को दुख और डॉक्टर साहब को तड़प, आखिर आखिर वो क्यों तप रहे हैं टूटे हुए इंसान के लिए। मुझे हर वक्त समझाती रहती है, पर मैं क्या करूं, क्या करूं मैं?
6: अंदर आ सकता हूं?
4: ओ, आप आइए आइए, बैठिए ना। रीमा का कोई खत आया? कैसी है वो? और जीजा जी और बच्चे तो ठीक है ना?
6: सब ठीक है। तुम कैसी हो सुमी?
4: अच्छी हूँ। सुना है आप बाहर जाने वाले हैं।
6: यहाँ रहकर भी क्या करूंगा सुमी? एक बात कहूँ सुमी, जिंदगी अनिच्छा से जी जाए तो बोझ बन जाती है, हर लम्हा बोझिल हो जाता है। अभी वक्त है सुमी, ये घेरा जो तुमने अपने चारों ओर बना रखा है उसे तोड़ दो, तोड़ दो सुमी। आज आखिरी बार कह रहा हूं।
4: कैसे तोड़ दो? ये दुनिया, ये समाज मुझे जीने देगा?
6: समाज, समाज, फिर वही समाज। क्या दिया है समाज ने तुम्हें? घुटन, तनाव और दुख, तिल तिल कर जलने के लिए छोड़ दिया है तुम्हें, और लोग भी जल रहे हैं, लेकिन तुम्हें इससे क्या? हार गए हैं हम भी, क्या मिलेगा शिलाओं से टकराने से? चलता हूं, गुड बाय सुमी।
4: राजन!
6: सुमी
4: रुक जाओ प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं बहुत थक गई हूं।
6: सुमी,
4: और अजन हो?
6: ओ सुमी, मैं जीत गया, सुमी मैं जीत गया, शायद चंदन रस से सांप हट गए हैं।
4: और बिखर गई है मादक गंध।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक चंदन वृक्ष। इसकी लेखिका थीं उषा सक्सेना, निर्देशिका रमा अरुण त्रिवेदी। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती विचारा।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज आप सुनेंगे इस बातचीत का पांचवां भाग। बीते चार हफ्तों में रमेश तलवार ने एक से बढ़कर एक घटनाएं सुनवाई हैं। जाहिर है कई श्रोता भूल गए होंगे या कई नए श्रोता शामिल हुए होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि पहले एपिसोड में रमेश तलवार ने कौन सी रोचक घटना सुनाई थी। तो चलिए बीते चारों एपिसोड्स में से कुछ दिलचस्प वाक्य दोहराते हैं और उसके बाद सुनते हैं आगे की बातचीत। ये है रीकैप एपिसोड 1।
1: जब पार्टीशन हुआ तो हम आए श्रीनगर में। उसके बाद जो है कुछ दिन सेट होने के बाद कुछ रिश्तेदार बम्बई आ गए थे ऑलरेडी, तो उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को फोन किया कि आपके लिए भी एक ट्रक खरीद लिया है यहाँ कोलीवाड़ा में जहाँ थे
2: जी।
1: तो वहाँ पे ये मिलिट्री के क्वार्टर्स थे कुछ
2: साइन में
1: साइन कोलीवाड़ा। तो हमारा जो कमरा था उसका नाम था T-157
2: जी।
1: तो टी मतलब होता है टट्टी,
2: अरे
1: ओरिजिनल टट्टी थी वो।
2: ओ गॉड।
1: तो उसको लेवल करके सीमेंट करके घर बनाया गया और कुलदीप जी शुरू से ही म्यूजिक के माहिर थे, गाते बहुत अच्छा थे, हमेशा कुछ ना कुछ ट्रॉफी जीत के आ जाते थे। कोलीवाड़ा में भी कोई प्रोग्राम होता था, दिवाली आई होली आई कुछ आया, ये गाते थे और खूब रंग जमाते थे। मैं जब नाटक वाटक करने लग गया छोटे छोटे रोल मिलने, तो मैं अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा करता था
2: जी
1: कि फलाना नाटक, किसी नाटक का नाम लिखता था, डायरेक्टेड बाय रमेश तलवार, म्यूजिक बाय कुलदीप सिंह, ऐसा लिखता था।
2: जब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है
1: ना वो कुछ करते नहीं थे वो, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता था। उन्होंने भी कई बार नाम पढ़ा और वो कहते हैं कि ऐसा था उनके दिल में ये आ गया कि यार ये मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनाना चाहता है। और इसी दौर में एक फिल्म की है, पता चला कि एक फिल्म बन रही है डेविड कॉपरफील्ड के ऊपर, वो है उसका नाम है सौतेला। तो मुझे उसके रोल के लिए ले जाया गया, कुछ छोटा मोटा टेस्ट लिया और मैं सेलेक्ट हो गया और मद्रास AVM में जो है उसकी शूटिंग थी।
0: एपिसोड 2 में रमेश तलवार ने ये दिलचस्प घटना बताई थी।
1: तो मैंने पढ़ा कुछ दिनों के बाद कि इत्तेफाक एक फिल्म बनेगी, एक महीने में कंप्लीट हो जाएगी और राजेश खन्ना उसका हीरो होगा। राजेश खन्ना तो मेरा स्टेज का दोस्त
2: बिल्कुल।
1: तो मैं मनमोहन जी से फिर कहा, मनमोहन कृषि साहब से, कि वहाँ चलते हैं, ये पिक्चर है और मुझे असिस्टेंट रख लेंगे। एक महीने में सारी एक पिक्चर सामने से गुजरेगी आंख से, तो मैं काफी
2: चमागे
1: चमा। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। गए तो बीआर चोपड़ा सर ने कहा हाँ भाई आ जाओ रमेश बैठो। मनमोहन जी यश को बुलाओ भाई, यश जी आए भाई, उन्होंने कहा इसको असिस्टेंट रख लो यश अपनी पिक्चर में। भाई साहब मेरे पास ऑलरेडी 4 असिस्टेंट हैं, अगली बार बुलाइए जब अगली पिक्चर शुरू करेंगे। तो फिर बीआर चोपड़ा ने कहा 5वां असिस्टेंट बना लीजिए, बैठा रहेगा कोने में, देखेगा सब
2: जी।
1: तो यश जी मान गए बड़े भाई की बात, मैं ड्रामे का डायरेक्टर हूँ,
2: Yes.
1: मैं सिनेमा, मैंने हर फिल्म अच्छी फिल्म देखी हुई है 5 आने में। फ्रंट रो में बैठ के आकाश कुरला पे जाके, कोलीवाड़ा से आकाश कुरला 1 आने का टिकट, वहां जाता 5 आने की पिक्चर, 1 आने का खाना और 1 आना वापस आना, ठन्नी में पिक्चर
2: काम बन जाता था।
1: काम बन जाता था।
2: कौन कौन सी फिल्में देखी होगी?
1: सब, कोई भी आप अच्छी पिक्चर का नाम लो मैंने देखी है। बिमल राय की सारी फिल्में, सत्यजीत रे की सारी फिल्में, गुरुदत्त की सारी फिल्में,

0: देखिए कमर्शियल सब्जेक्ट है, आप सुन लीजिए
1: हाँ
0: फिर बोलिए। और हम आपको कास्टिंग भी बताते हैं। आपका दोस्त ऋषि कपूर इसमें होगा, मैं ऋषि कपूर के साथ उन दिनों बहुत फिल्में कर रहा था।
1: हाँ बिल्कुल
0: ऋषि कपूर इसमें होगा और साथ में होंगे राजेश खन्ना,
1: वो भी आपके दोस्त।
0: अब उसी टाइम पे एक्चुअली डिम्पल की शादी राजेश खन्ना के साथ हो गई थी।
1: जी जी।
0: और कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो हीरोइन थी बॉबी में।
1: हाँ।
0: तो पिक्चर को बिल्डअप मिलता है ये उनके जहन में था। और रमेश तलवार के दोनों हीरो दोस्त हैं। तो साहब वो फिल्म मैंने कहानी सुनी, मेरा बसेरा करने के बाद और दूसरा आदमी करने के बाद दिमाग जो है खराब हो चुका था। खराब मतलब सीरियस हो गया था। ये पिक्चर बिल्कुल कमर्शियल पिक्चर थी। मैंने कहा यार वही स्मगलिंग, वही पुलिस और सिपाही। और तो देखिए मुझे मेरे लायक नहीं है, कोई और करे तो बेटर है आपके लिए।
2: तीसरे एपिसोड में रमेश तलवार ने सुनाई थी ये घटना।
0: करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
1: बाप रे।
0: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में। और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में। और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था, साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
1: हाँ हाँ।
0: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
1: और सलमान खान ड्रॉप हो गए।
0: जब वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
1: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत
0: याद करते देखते हैं। नहीं करते भी हैं, देखते भी हैं, याद भी करते हैं, सब है, गाने भी इतना है, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही हैं ये सबसे हटके होगी।
1: बिल्कुल। और थी भी वो
0: उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
1: बड़ी स्टार कास्ट,
0: बड़ी स्टार कास्ट। अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार से बनाई।

0: प्रवेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत के चौथे एपिसोड में ये हिस्सा बड़ा ही दिलचस्प था।
1: तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है, उसने आइडिया सुनाया। उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था। तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ, लेकिन इसमें चेंजेस वेंजेस होंगे। न्यू कमर राइटर,
0: जी जी जी,
1: उन्हीं का नाम है, राइटर है, राइटर स्टोरी राइटर उनका नाम ही है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है। तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है, सागर सरदी साहब से कहें करने के लिए। बोला बहुत अच्छा, अगर सागर सरदी कर ले तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे 3-4 साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले। और इलिस्ट्रेटेड वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में, उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया, ऐसी कोई औरत। और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का,
0: हाँ।
1: तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया।

0: तो चलिए अब सुनते हैं आगे की बातचीत, जिसमें हमने रमेश जी से रंगमंच की उनकी गतिविधियों के बारे में पूछा है। अच्छा, अभी आखिर में कुछ ऐसे नाटकों की बातें करना चाहता हूँ जो आपने सेलिब्रिटीज के साथ किए हैं, जैसे शबाना आजमी के साथ नाटक किया है, जया भादुड़ी के साथ, जया बच्चन के साथ नाटक है, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ है, जीनत अमान के साथ है।
1: जी, सबसे पहले मैंने पूजा भट्ट के साथ किया नाटक।
0: खूबसूरत
1: खूबसूरत। पूजा भट्ट के साथ क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई प्ले कर रही है वो, और कोई और डायरेक्टर कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था, कोई कर रहे थे। तो वो डायरेक्टर गुरु टाइप के थे, तो उन्होंने डांटा वांटा ये किया, तो ये कुछ आपस में अनबन हो गई उनकी। तो मेरे ख्याल में बोनी कपूर ने कहा रमेश जी को पूछ लो, तो मेरे पास कोई आया जो भी ऐसा है करोगे, बाहर अमेरिका में टूर है ऐसा। तो मैंने कहा कौन सा प्ले है, उन्होंने प्ले बताया, प्ले स्क्रिप्ट बताई और मैंने वो सुनी और मुझे लगा कि प्ले बहुत अच्छा है, अच्छा है प्ले, तो बहुत अच्छा था। और उसमें कोई और आर्टिस्ट कर रहा था रोल पहले, जो मुझे लगा मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, पूजा भट्ट के संग बाप का रोल कोई और कर रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस एक्टर।
0: जी जी,
1: मैंने कहा ये जो इधर टेंट्रम दिखा रहे हैं हमको, जो कुछ बातें वो करते थे ऐसी, ये नहीं हो रही होगा, ये नहीं होगा, मैंने नाटक में नहीं होता।
0: जी जी जी,
1: मैं आपके सिनेमा में बात सुन सकता हूँ।
0: जी,
1: नाटक में आप अमेरिका में बैठे हैं तो मैं क्या करूँगा। तो वो मैंने कहा भरत कपूर को ले लेते, मेरे नाटकों में सब में काम करता है वो, और तुम्हारा फादर बिल्कुल लगेगा और मेरे कंट्रोल में। तो उस आर्टिस्ट को मैंने कह दिया भाई तुम्हारे ऐसी प्रॉब्लम है, शूटिंग डेट्स होती हैं, फलां होता है, ये होता है, वो होता है, नाटक में ऐसा नहीं होता, तो तुम अगर ना करना चाहो तो। उन्होंने कहा हाँ मैं नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम जितना है मैं वही दूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ। वो तो भरत कपूर को मैंने सुनाया सब्जेक्ट, उसने कहा मैं कर लेता हूँ। फिर पूजा भट्ट के साथ हम वहाँ गए, वहाँ उसके 5-6 शो हुए अमेरिका में, यहाँ आके 4-5, फिर 5-6 शो यहाँ पे किए, मतलब मेरे ख्याल में मुश्किल से 10-12 शो किए थे हमने उसके।

0: शबन आजमी वाला प्ले
1: नहीं, इसके बाद हमने पहले ये, इनके बाद जिया जी के पास गए हम।
0: जी जी,
1: मेरे पास मेरा दोस्त संजय गोराडिया आया।
0: जी,
1: संजय गोराडिया गुजराती का बहुत फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर है और एक्टर भी है, और वो मेरे साथ शुरू में मेरी फिल्मों में प्रोडक्शन भी करता रहा। सागर साहब के साथ बाजार में प्रोडक्शन असिस्टेंट था सागर साहब का, और फिर वो मैंने एक बनाई थी NFDC के लिए पिक्चर तेरा नाम मेरा नाम, न्यू कॉमर्स को लेके, उसमें भी प्रोडक्शन कर रहा था और एक आध रोल भी किया था। तो आया, उसने कहा मैं तुम जैसे पूजा भट्ट के साथ प्ले करके आए हो वैसा अगर मेरे लिए प्ले करो तो मुझे अमेरिका का टूर मिल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो कौन सा प्ले करना चाहते हो? उसने प्ले का नाम बताया, ये वाला, ये स्क्रिप्ट। मैंने कहा ये स्क्रिप्ट किसको शूट करती है, किसको करती है? जिया जी को करती है। और कौन है
0: जी
1: जो इसमें ठीक रहेगा? पहले जिया जी के पास पूछते हैं, अगर वो करने के लिए हाँ कर दें। और जिया जी के साथ मैं सीरियल कर चुका था उन दिनों, उनकी कंपनी का ABCL के लिए मैंने आरजू एक सीरियल किया था, 50 एपिसोड किए थे उसके। तो बड़े अच्छा रिलेशनशिप थी, बहुत इज्जत करती थी, मैं भी बहुत इज्जत उनकी करता था। मैंने उनको बताया कि ऐसा मैं कर रहे, अगर आप फ्री हैं और आप करना चाहती हैं अमित जी से भी बात कर लीजिए, महीने का टूर होगा कहीं अमेरिका का अलग अलग सिटीज में। बोले सब्जेक्ट सुनाओ, मैंने सब्जेक्ट सुना, सब्जेक्ट उनको बहुत पसंद आ गया और उन्होंने कुछ कहा, ऑलमोस्ट हाँ है, फिर भी मैं एक बार अमित जी से बात कर। फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि हम रिहर्सल कितने दिन करेंगे? मैंने कहा ऐसे 6 हफ्ते होती है या 45 दिन होती है। बोले उसके बाद आप मेरी फैमिली को दिखाएंगे अपने, ओपिनियन लीजिए आप। मैंने कहा बिल्कुल, अमित जी को बुलाऊंगा, बच्चों को बुलाऊंगा, सब जो भी की देखना चाहें और भी ऑडियंस में जिसको आप बुलाना चाहती हैं, मैं भी अपने लोगों को भी बुलाऊंगा, हम देख लेंगे। कमिट करने से पहले मैंने कहा डेटे कमिट नहीं हो तब तक मैं बेचूंगा नहीं, फिर वेट थोड़ा सा करना पड़ेगा डेटों का, टूर का। बोले ठीक है। रेसलिंग हुई, हमने शो रखा भाईदास में, प्राइवेट शो, जिसमें अमित जी भी आए और भी बच्चे भी आए, सब सब ने, हमारे भी दोस्त फैमिलीज आई, सब ने देखा, लोगों को प्ले बहुत पसंद आया। जब प्ले होने लगा था तो मेरे ख्याल में था कि इनके सामने हस्बैंड जो है अनुपम खेर टाइप का कोई आदमी हो, या अनुपम हो या कोई और इस तरह का आदमी होना चाहिए। उन्होंने कहा रमेश जी आप ही करिए।
2: अरे वाह।
1: उन्होंने मुझे थिएटर करते हुए देखा होता, मेरे प्लेस देखे हुए जब दिन में मैं एक्टर था, मुझे आप ही करिए कोई बात नहीं। तो मुझे थोड़ा सा वो झटका लगा कि जिया जी के सामने मैं नहीं करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे आप, करिए आपने जैसा सुनाया ना वैसा ही करिए। तो जब पढ़ा था मैंने उनके सामने प्ले, तो मेरे रेसलिंग करनी शुरू हो गया और फिर हमने अमेरिका टूर किया और बहुत अच्छा हुआ। और इधर जो ट्रायल हुआ उसमें भी लोगों ने मुझे अप्रूव किया।
2: वाह वाह वाह।
1: उन्होंने कहा रोल मेन जय जी का, लेकिन आपका रोल भी बहुत अच्छा है, आप एकदम रिलीफ है प्ले में, आप जब जब आप आते हैं आपके एंट्री का इंतजार होता है, क्योंकि वो जजी थ्रू आउट प्ले में और मेरा कभी कभी बीच में आता समय 3-4, तो सब ने अप्रिशिएट किया और मैंने वो रोल कर डाला।

और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब हुआ, अब जिया जी को भी पसंद आ गया थिएटर करना, वो प्ले सुपर डुपर हिट हुआ और इन लोगों को फीस जो उन्होंने मांगी वो मिली थी। उसके बाद दूसरा प्ले आया, वो मैंने इनको डॉक्टर मुक्ता प्ले सुनाया, उसमें भी वो मेन रोल था लेकिन सीरियस प्ले था। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप ये रोल करिए जो हस्बैंड का रोल है। अगेन मेरा रोल बीच में ही है लेकिन लाफ्टर वाफ्टर आते हैं मेरे आने पर, ऑल्दो मैं कॉमेडियन नहीं हूँ लेकिन वो रोल ऐसा होता है कि मुझे लाफ्टर तो मिलते हैं। वो रोल भी, वो प्ले, फिर हम दोनों प्ले साथ लेके फिर अमेरिका टूर पे गए। अमेरिका से फिर गल्फ कंट्रीज भी गए, पहले लंदन गए, लंदन से गल्फ कंट्रीज भी गए। इस तरह हमारा 40 दिन का टूर हुआ, बहुत अच्छा रहा और सबको फीस अच्छी मिली क्योंकि बाहर प्ले में आपको मुँह मांगा दाम मिल, जब आप स्टार प्ले करते हैं तो जो प्राइस स्टार बोलेगा उस हिसाब से पैसे मिल जाते हैं, फिर डायरेक्टर को भी उस तरह मिल जाते हैं। इस तरह से हमको जब ये प्ले चल रहे थे तो एक दिन शत्रु जी से मुलाकात हुई, तो उन दिनों कुछ दिल्ली जाते थे और ये सब, तो उन्होंने कहा यार मैं तेरा प्ले देखा बहुत अच्छा था। मैंने कहा आप करेंगे प्ले? नहीं करूँगा, जरूर करूँगा। कब करना चाहोगे? कौन सी गया स्क्रिप्ट सुनाओ। और उनको स्क्रिप्ट सुनाई और वो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड प्ले था जो उन्होंने सुना और वो प्ले अच्छा है, आज तक चल रहा है वो भी। और उसमें राकेश बेदी और ये और लड़की एक है और संजय गोरडिया एज प्रोड्यूसर, वो एंट्री भी मारता है कुछ शुरू में। तो चार ही कैरेक्टर है, मैं उसमें रोल नहीं करता हूँ। वो प्ले भी हिट हुआ, आज तक चल रहा है। उसके बाद जीनत जी किसी शो पे आई थी, अमित जी के ना इनके शत्रु जी के, उन्होंने दो तीन बार अटेंड किया था प्ले। उन्होंने कहा आपका मेरे लिए स्क्रिप्ट है? मैंने कहा हाँ है। मैंने कहा वो देखिए बात यह है कि संजय गोरडिया से आप कमर्शियल बातें कर लीजिए, मैं आपको स्क्रिप्ट पर में बाद में सुनाऊंगा, क्योंकि होता है ना कि बात कर लें फिर स्क्रिप्ट भी आप तक पहुंच गई, फिर उसके बाद मैं किसी और को सुनाऊंगा, आपको लगेगा आपका सब्जेक्ट किसी और को सुना दिया। उन्होंने कहा हाँ मैं कर लेती हूँ। उन्होंने बात जो भी मिशन प्रोड्यूसर हो गया, उन्होंने हाँ कर दी। अब जब आया तो उन्होंने कहा आप रोल करेंगे, मैंने जया जी के साथ आपको रोल करते दोनों प्लेस में देखा है। मैंने कहा जी वहाँ जया जी की हाइट कम है, आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है। बोले आप चेंज के जूते पहन लो। मैंने वैसे जूते बनाए, उनके ऑपोजिट रोल किया, वो हो गया। इतने में एक प्ले था शीशों का मसीहा, फैज अहमद फैज की पोइट्री के ऊपर उनकी कहानी, लाइफ कहानी थी, तो उसको जोड़ा हुआ था और वो हमने प्ले खेला। शबाना जी ने हाँ कर दिया। मैंने पूछा जावेद साहब करेंगे? बोले तुम पूछो भाई, मैं नहीं बोलूँगी। मैंने उनको सुनाया, उन्होंने कहा मैं करूँगा, पढ़ना है खाली ना, याद तो नहीं करने डाले, मैं पढ़ूँगा और पोएट लगूँगा मैं। तो उन्होंने भी ओके कर दिया। तो वो लेके हमने 5-6 शो इधर ही किए, लेकिन जो फिर वो उनके राइटर्स उस प्ले के, वो चाहते थे कि वो रोल करें खुद। तो मैंने कहा भाई अब ये तो प्ले चल गया है, अब तो वो करते हैं, मैं उनको थोड़ा बोलूँगा तो आप छोड़ दीजिए प्ले, शबाना जी को ये थोड़ा करूँगा कि अब आपके साथ ये करेंगे। तो उन्होंने फिर मैं आपको स्क्रिप्ट नहीं दे सकता, समथिंग राइटर ने, ठीक है। शौकत भाभी ने अपनी आप बीती लिखी, तो टाटा एक्सपेरिमेंटल थिएटर में उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ा उसका स्टेज पे, पढ़ा तालियाँ बज रही हैं, ये और बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप वो किताब पढ़िएगा। तो जैसे ही खत्म हुआ चैप्टर, मैंने कहा शबाना इस पे हम प्ले करेंगे, क्या बात करते हो? मैंने कहा आप उसमें रोल करेंगे यही वाला जो शौकत भाभी ने किया है, और अगर जावेद साहब करना चाहें कैफी साहब का रोल तो जावेद साहब को दे दे, आप दोनों का पेयर भी हो जाएगा सेम, आप लोगों ने दोनों साथ में किया हुआ है, तो कैसे तुमको लगता है कि ये सब्जेक्ट हो जाएगा अच्छा बनेगा? मैंने कहा उसमें बीज सारे हैं, मैंने आपका तुम्हारी अमृता भी देखा है, उसमें भी आप बैठ के दोनों पढ़ते थे फारूक और आप, शीशों का मसीहा भी किया है हमने और ये भी है, बहुत अच्छा बनेगा। तो फिर एक काम करिए जावेद साहब से कहिए लिखें। मैंने कहा जावेद साहब को आप कहिए। बोले मैं नहीं कहूँगी, मुझसे ना करेंगे तो फिर मैं क्या करूँगी, आप अपने ढंग से आपने काम किया हुआ है ना उनके साथ, तो आप उनकी स्क्रिप्टों फिल्में बना चुके हो, कहिए। तो फिर मैंने जावेद साहब से कहा कि आप ये स्क्रिप्ट लिखिए।
तो जावेद साहब ने स्क्रिप्ट लिखी और रोल किया और प्ले तब से लेकर आज तक चलता है। अभी जावेद साहब ने खुद बिजी हो गए तो उन्होंने कहा रमेश जी अभी आप ना मुझे रोल के लिए मत बोलिए, क्या होता है मुझे आप लोगों के साथ डेटें मैच करनी पड़ती है शवाना की और वो, तो आप किसी और भी तो आप कमलजीत सिंह करते हैं रोल, वो सेम रोल, और अभी हम टूर करते रहते हैं, अभी भी ऑफर आई हुई है, जाएंगे बाहर।

0: रमेश जी, बहुत बरस तक फिल्में डायरेक्शन किया आपने, टेलीविजन पर काम किया, और उसके बाद फिर एक बहुत लंबा अरसा है जहां आप वापस थिएटर की तरफ लौट आए, और मैं आपके प्लेस देखता रहा हूं। आप थिएटर को जीते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, वो एक जुनून है आपका। अपने सबसे लंबे समय से चले आ रहे प्लेस और इन दिनों जो कुछ नाटक आप कर रहे हैं उनके बारे में बताइए।
1: देखिए साहब, पहली बात तो यह है कि मैंने फिल्में करना बंद नहीं किया। मैंने लास्ट फिल्म बनाई है शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए, जिसमें रेखा जी और शत्रुघ्न सिन्हा है, उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उनकी मिसेज और एक उनकी पार्टनर है कोई, दोनों ने मिलके, और फिल्म बहुत अच्छी बनी हुई है। अब वो कैसे रिलीज करेंगे वो अब देखते हैं, OTT पे करते हैं या क्या करना चाहते हैं। और उनके साथ नाटक भी मेरा चल रहा है, उसके भी शोज करते रहते हैं। तो इप्टा में जो नाटक मेरे हैं जो बहुत देर से चल रहे हैं, एक तो शतरंज के मोहरे
0: सबसे पुराना है।
1: मतलब ये था कि मैं जब पहली बार शतरंज के मोहरे करने लगा था, उसमें मैं बच्चा था और चेहरे से लगता था कि 14-15 साल का है, और मुझे लव सीन करना होता था। 20 साल का रोल है श्याम का, उसमें कैरेक्टर का नाम श्याम है, तो मैं मुंह चुगाता था रोल करने के लिए कि मैं बड़ा लगूं, और मेरे सामने जो एक्ट्रेस होती थी वो अपना सुलवार या हिंदी में या कहीं और दूसरी जगह कोई नॉन एक्ट्रेस ऐसा रोल करती थी, तो मैं बड़ा लगना चाहिए। और उस वक्त जब मैंने पंजाबी में पहले प्ले किया, उस वक्त मनमोहन कृष्ण जी एक मेन काका जी का बुजुर्ग का रोल कर रहे थे, चाचा का, और हंगल साहब करते थे रोल आचार्य का उसमें, और मैं शाम जो लड़का है उसका करता था, और बाकी रात में नितिन सेठी उस वक्त के हीरो थे, वो करते थे डॉक्टर सतीश का रोल, अचला सचदेव उनकी मतलब मेरी बड़ी बहन का रोल करती थी। ये यहाँ से शुरू किया था। अब जो साहब मैंने वो प्ले का, हमको शो मिल गया हैदराबाद में,

0: ऐसा हुआ कि एक प्ले कर रहे थे आदर का ख्वाब, जिसमें बलराज सहनी साहब थे और गीता सिद्धार्थ, तो पिग्मेलियन पे था प्ले। तो उन्होंने कहा हमको दो प्ले चाहिए, तो हमारे पास दूसरा प्ले कुछ था नहीं, तो हमने कहा ये जो पंजाबी में प्ले किया है इसको सब हिंदी में बोलना शुरू करो, तो देखते हैं कि कितना तक क्या चाहिए। वो बोलने लग गए, सब लोग हिंदी में सेम लाइन है, पंजाबी और हिंदी नज़दीक नज़दीक की है, सिंपल वैसे ही वर्ड रखे, क्लिश हिंदी नहीं होगी, सिंपल हिंदी होगी, वो बन गया। जब एंड तक पहुंच गए फिर मैंने उसको फाइनल थोड़ा सा छोटा मोटा जो करेक्शन करनी थी कर ली, वो करके हम लोग जाके हैदराबाद में हमने शो खेला और तब से लेकर अब आज तक ये नाटक हिंदी में चल रहा है। अब मैं वो रोल मेरे मैंने बंद किया तो रमन कुमार करता था वो रोल, मैं कोई और रोल करने लग गया, रमन कुमार के बाद राकेश बेदी वो रोल करने लग गया, फिर राकेश बेदी बड़ा हो गया, वो 20 साल का नहीं लगता, बड़ा लगने लग गया, तो अब कोई और बच्चा नया लड़का करता है, और मैं अब वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता हूँ कभी कभी, और मैं जब राकेश बेदी अवेलेबल होता है तो वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता है, अगर वो नहीं अवेलेबल तो मैं करता हूँ।
1: वाह वाह,
0: तो वो प्ले आज तक चलता आ रहा है। दूसरा प्ले जो मैंने आपको पहले कहा कि ये प्ले जो आखिरी क्षमा जो कैफी साहब का लिखा हुआ है और जिसमें बलराज सहनी काम करते रहे, उसके बाद उस गालिब का रोल भरत कपूर करते रहे, अभी वो कंवलजीत भरत कपूर का रोल करते हैं गालिब का रोल, और अभी हमने 56 साल की ट्रॉफियां बांटी हैं उसकी।
1: जी जी जी, काबुली वाला भी चल रहा है।
0: काबुली वाला अलग है, काबुली वाला का ऐसा था कि यही जब मैं शबाना के संग प्ले कर रहा था तो रिंकी भट्टाचार्य जी विमला जी की बेटी वो आई, परीक्षित सहनी के संग आई थी, तो उन्होंने कहा कि रमेश तुम काबली वाला क्यों नहीं स्टेज पे खेलते। मैंने कहा काबली वाला एज इट इज तो नहीं खेला जा सकता, नाटक का वर्षन बनाना पड़ेगा, वो करके मैं फिल्म के ऊपर से ले लेता हूँ, आपके ओरिजिनल डायलॉग ओरिजिनल चीज़ें लेके एक स्क्रिप्ट बना के आपको सुना दूंगा। और परीक्षित सहनी से कहा तुम रोल कर लो काबली वाला का, क्योंकि बलराज सहनी ने रोल किया था। उन्होंने नहीं यार मैं अभी अब हिम्मत नहीं है स्टेज पे काम करनी, वो टाइम अलग था, अब नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने आसिफ शेख से कहा कि भाई ये है, तो आसिफ शेख करता है वो रोल काबली वाला का, और वो नहीं होता तो विकास रावत कभी प्रभार करता।
1: मैंने देखा है क्यूट प्ले है वो।
0: हाँ बहुत अच्छा है, तो लेकिन वो तो ओरिजिनल फिल्म से लिया हुआ है।

0: स्क्रिप्ट जो बनाई है फिल्म से लेके बनाई है और उसका हमने एक वर्चन स्टेज पे क्या हो सकता है उस तरह करके जमा लिया अपना, और चलता है। लेकिन बहुत लंबा नहीं है, 40 मिनट का ही है प्ले। तो उसके साथ मैंने एक बार जाहिदा हेना करके एक पाकिस्तान की राइटर है, उन्होंने काबली वाला लौट आया इन्हीं करेक्टर को लेके लिखा था, और वो उन्होंने एक आर्टिकल सा लिखा, प्ले नहीं लिखा बता। तो मैं एज इट इज जब मेरा 40 मिनट का जिसको 2 घंटे पूरा चाहिए, तो मैंने तन्वी आदमी के संग सेकंड पोर्शन पढ़ने का रख लिया। अभी आपने देखा काबली वाला जो एक्टरों के साथ अच्छे, ये सोलो पढ़ती है काबली वाला लौट आया, तो जिसको 2 घंटे का होता है तो तन्वी आदमी करती थी। तन्वी आदमी अवेलेबल नहीं हुई तो राजेश्वरी सचदेव ने एक आध बात कर लिया, फिर लुबना सदीकी ने एक आध बात कर लिया। पढ़ना है भाई, तुम रीडिंग एक दो बार मेरे साथ कर लो और स्टेज पे पढ़ो। वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और ये उसके सारे बीज जो है काबली वाला के लेके उन्होंने लिखा कि काबली वाला जब उसकी बेटी पैदा, वो बच्ची जो बड़ी हो गई है, वो छोटी बच्ची बड़ी हो गया और वो डॉक्टर बन गई है और अफगानिस्तान में मरीज है आजकल और उनका इलाज करने वहां गई है। ऐसा लिखा, बहुत अच्छा लिखा। तो वो पोर्शन हमने काबली वाला हमारा चलता रहता है।
1: रमेश जी, बहुत ही विस्तार से अब बातें हुई हैं और बहुत दिलचस्प कहानियां आपने सुनाई अपनी जिंदगी की, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए।
0: आपका शुक्रिया भाई, ये अंदर की सारी बातें आपने निकलवा दी मेरे, ये मैं खुद भूल चुका था, अभी कई बातें याद कर रहा हूँ, कुछ नाम याद नहीं आते हैं। अरे भाई उसका क्या, तो भी ये आपका ही वो था कि आपने आराम से सुना और इतनी देर तक सुना मुझे।
1: बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया जनाब।

फिल्मों के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने पांचवा भाग सुना। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: दुबे बता रही है हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमीडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए। इमीडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपनी बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसका आपको IV लगाना पड़े या ORS।

0: भी टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े। डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,
2: कहीं

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर अभी तक आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई केंद्र के प्रसारण। संध्या के 5 बज चुके हैं। मीडियम वेव और एफएम के मीटर्स पर हमारी दूसरी सभा अब एक साथ आरंभ हो रही है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कंपेयर्ड कार्यक्रम आज शाम।

लेकिन एक ऐसी स्थिति जिसके सहारे पूरा ब्रह्मांड संचालित है, जिसमें छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीव भी बिना किसी दुविधा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमें भी सीखना चाहिए इस प्रकृति से कि बिना किसी के नुकसान पहुंचाए और इतने सारे संतुलन के बीच ये प्रकृति सभी को आश्रय देती है, जिसमें हम भी अपनी लाइफ को भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। साथियों, सब कुछ कितनी शालीनता के साथ संचालित हो रहा है, इस बात पर क्या हमने कभी गौर किया है? तो चलिए आज इस बात पर थोड़ा ध्यान देते हैं कि सृष्टि की इस बनावट में वाकई अद्भुत खूबियां हैं। जब इन खूबियों को देखने हम निकलते हैं, तो वाकई हमें एहसास होता है कि प्रकृति ने कितना सोच समझकर इस संसार को रचा है। तो प्रकृति की ये सुंदरता भी किसी अमानत से कम नहीं है हमारे लिए। इसको सहेजते हैं, संभालते हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी इसकी खूबियों को निहारने का अवसर मिल पाए।

साथियों, सभी परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना ही प्रसन्नता की असली चाबी है। इन्हीं बातों के साथ आज के आज शाम कार्यक्रम से दीपिका को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:15 हुए हैं। युवा साथी सुन अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका अपने फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में, और लेकर हाजिर हूँ मैं आपका रेडियो साथी असरार,
1: और साथ हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त मेघा ठाकुर।
0: तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सुन रहे होंगे अपना फेवरेट प्रोग्राम युववाणी। तो दोस्तों, इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम आज के सवाल के साथ। और आज का हमारा सवाल है, 2026 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस पुस्तक को प्रदान किया गया? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए।
1: 2026 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस पुस्तक को प्रदान किया गया है? और इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको जाना होगा आकाशवाणी रामपुर के फेसबुक पेज पर, और आज के अपलोड किए गए कमेंट बॉक्स में लिख भेजने होंगे अपने अपने सही जवाब। और सही जवाब देने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों के नाम हम बताएंगे कार्यक्रम के अंत में। और असरार, आज का दिन उन रिश्तों के नाम हैं जो कभी खुलकर अपने जज्बात नहीं बताते, लेकिन हर मोड़ पर चुपचाप साथ निभाते हैं।
0: जी हाँ, यानी तुम बात कर रही हो नेशनल ब्रदर्स डे के बारे में।
1: बिल्कुल असरार, भाई सिर्फ एक शब्द नहीं, ये बचपन की आधी यादें आधी शरारतें हैं, वो लड़ाइयाँ भी जो सिर्फ 5 मिनट बाद हंसी में बदल जाती थी।
0: सही कहा मेघा, घर में चाहे कितनी भी नोक झोंक हो जाए, लेकिन जब जिंदगी में कोई मुश्किल आती है तो सबसे पहले जो साथ खड़ा नजर आता है वो भाई होता है।
1: हाँ, और बचपन की वो छोटी छोटी बातें आज भी याद करके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। कभी रिमोट के लिए लड़ना, कभी आखिरी समोसे के लिए बहस करना, कभी साथ में खेलना और फिर मम्मी की डांट पड़ने पर एक दूसरे को बचाना।
0: हाँ मेघा, और मजेदार बात यह है कि दिन भर लड़ने के बाद भी अगर भाई थोड़ी देर के लिए कहीं चला जाए तो घर अधूरा अधूरा लगने लगता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि भाई सिर्फ भाई नहीं होता, वो दोस्त भी होता है, बॉडीगार्ड भी, और कई बार कहीं हमारी सारी बातों को बिना कहे ही समझने वाला इंसान भी।
0: और एक बात मैंने हमेशा नोटिस की है, भाई चाहे कितना भी मजाक उड़ाए, लेकिन अगर हम परेशान हो तो सबसे ज्यादा चिंता भी उसी को होती है। बस फर्क इतना है कि वो अपना प्यार थोड़ा अलग तरीके से दिखाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, कई बार उनका एक छोटा सा सवाल, घर पहुंच गए या खाना खाया, यही बता देता है कि उन्हें हमारी कितनी फिक्र है।
0: बिल्कुल, जैसे कि मेघा, आज के इस खास दिन पर अगर आपका भाई आपके पास है तो उन्हें एक प्यारी सी हग जरूर करें, और अगर दूर हैं तो एक कॉल या मैसेज करके बस इतना कह दें, थैंक यू भाई हमेशा साथ रहने के लिए।
1: क्योंकि जिंदगी की भाग दौड़ में हम अक्सर ये कहना भूल जाते हैं कि हमारा भाई हमारे

0: लिए कितना खास है?
1: और सच कहें तो भाई वो रिश्ता है जो हर उम्र में हमारे साथ बदलता ज़रूर है, लेकिन कभी कम नहीं होता। बचपन की शरारतों से लेकर जिम्मेदारियों तक हर मोड़ पर भाई का साथ बहुत मायने रखता है।
0: जी हाँ दोस्तों, इसी सोच के साथ अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि हम ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। और दोस्तों आपको याद दिला दें, आज है दिन रविवार और आज के दिन हम लेकर आते हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट सिने एक्सप्रेस, जिसमें हम एक ऐसी फिल्म की हस्ती की बात करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे उन नई रिलीज को जो आने वाली हैं सिनेमा घरों में। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ।

0: वेलकम बिग साथियों, एक बार फिर जुड़ गए हैं आप अपने फेवरेट प्रोग्राम युववाणी से। चलिए अब बढ़ते हैं आज के हमारे पहले सेगमेंट कुछ खास ही आज की ओर।
1: कुछ ख्वाबों की बात, कुछ अपनों का साथ, नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
2: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
1: वाकई कुछ खास है आज,
2: कुछ खास है आज।
3: दोस्तों, कुछ खास है आज में हम बात करेंगे राष्ट्रमंडल दिवस की, जिसे कॉमनवेल्थ डे भी कहा जाता है। ये कई देशों के बीच एकता, सहयोग और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। भारत में ये दिन विशेष रूप से मनाया जाता है।
4: 24 मई को मनाया जाने वाला ये दिन हमें ये संदेश देता है कि अलग अलग भाषा, संस्कृति और परंपराओं के बावजूद सभी देश मिलकर शांति और विकास के लिए काम कर सकते हैं। कॉमनवेल्थ उन देशों का समूह है जो कभी ब्रिटिश शासन से जुड़े थे और भारत इसका महत्वपूर्ण सदस्य है।
3: दोस्तों, भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है की भावना को बढ़ावा देता आया है। कॉमनवेल्थ का उद्देश्य शिक्षा, खेल, विज्ञान, संस्कृति और व्यापार के क्षेत्रों में देशों के सहयोग बढ़ा रहा है।
4: भारत इस संगठन के माध्यम से युवाओं, खिलाड़ियों और छात्रों को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करता है। कॉमनवेल्थ गेम्स भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिनमें भारतीय खिलाड़ियों ने कई बार शानदार प्रदर्शन करके देश का नाम रोशन किया है।
3: आप जानते ही हैं, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू जैसे खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से भारत को गौरवान्वित किया है।
4: ये दिन हमें एकता, सम्मान और सहयोग की सीख देता है। कॉमनवेल्थ डे केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि ये दुनिया को जोड़ने और मिलकर आगे बढ़ने का संदेश है।
3: दोस्तों, युवाओं के लिए ये दिन प्रेरणा का प्रतीक है कि वे मेहनत, अनुशासन और अच्छे विचारों के साथ देश और समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
4: तो दोस्तों, कुछ खास है आज को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं इंटरनेशनल मारखोर दिवस के बारे में। ये दिवस हर साल 24 मई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को मारखोर नाम के दुर्लभ जंगली जानवर के बारे में जागरूक करना और उसके संरक्षण का संदेश देना है।
3: मारखोर एक खूबसूरत जंगली बकरी की प्रजाति है जो मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। इसके लंबे और घुमावदार सींग इसकी सबसे बड़ी पहचान है।
4: मारखोर भारत के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के इलाकों में भी पाया जाता है। ये जानवर ऊंचे पहाड़ों, चट्टानी क्षेत्रों और जंगलों में रहना पसंद करता है।
3: मारखोर को बहुत फुर्तीला और ताकतवर माना जाता है क्योंकि ये कठिन पहाड़ी रास्तों पर आसानी से चढ़ सकता है।
4: समय के साथ शिकार, जंगलों की कटाई और प्राकृतिक आवास के नष्ट होने के कारण मारखोर की संख्या तेजी से कम होने लगी है। इसी वजह से इसे बचाने के लिए कई देशों ने संरक्षण अभियान शुरू किए।
3: इंटरनेशनल मारखोर दिवस हमें ये याद दिलाता है कि वन्य जीव केवल प्रकृति की सुंदरता ही नहीं बढ़ाते बल्कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
4: अगर वन्य जीव सुरक्षित रहेंगे तभी जंगल और प्रकृति भी सुरक्षित रहेंगे। भारत सरकार और कई वन्य जीव संरक्षण संस्थाएं भी दुर्लभ जानवरों और पक्षियों को बचाने के लिए लगातार काम कर रही हैं।
3: स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को वन्य जीवों के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है। ये दिन खासकर युवाओं को प्रेरित करना कि वे प्रकृति और जानवरों की

0: रक्षा के लिए आगे आए।
1: हमें ये समझना चाहिए कि पृथ्वी केवल इंसानों की नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं की भी है, इसलिए हमें पेड़ पौधों और वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए और प्रकृति को सुरक्षित रखने में अपना योगदान देना चाहिए।
2: दोस्तों कुछ खास है आज में, आज बस इतना ही।
3: कुछ ख्वाबों की बात,
4: कुछ अपनों का साथ,
3: नर्म धागे से बंधे कुछ पन्ने
4: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
3: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
4: वाकई कुछ खास है आज,
3: कुछ खास है आज।
1: तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के हमारे स्पेशल सेगमेंट सिने एक्सप्रेस के एपिसोड नंबर 28 की ओर। बट इससे पहले हम जानते हैं पिछले हफ्ते एपिसोड नंबर 27 में पूछे गए सवालों के सही जवाब।
2: दोस्तों हमारा पहला गीत था, पहला प्रश्न था, ये गीत जिस फिल्म से लिया गया है वो फिल्म कब रिलीज हुई थी। हमारा गीत था ना कजरे की धार ना मोतियों के हार, जिसका सही उत्तर है सन 1994।
1: और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न था जिसमें आपने गीत सुना था, ये गीत जिस फिल्म से लिया गया है उस फिल्म के निर्देशक कौन है, और गीत था ओ राही तू रोशनी का सिपाही, जिसका सही जवाब है केतन मेहता।
2: दोस्तों हमारा अगला गीत था, ये गीत किस गायक कलाकार द्वारा गाया गया है, गीत था आवारापन बंजारापन, जिसका सही आंसर है के।
1: और दोस्तों हमारा अगला सवाल था, ये गीत किस अभिनेता और अभिनेत्री पर फिल्माया गया है, और गीत था बादलों में छुप रही है चांद क्यों, जिसका सही जवाब है राहुल रॉय और पूजा भट्ट।
2: और साथियों अब बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड नंबर 28 के पहले गीत की ओर, और आपको सुनवा रहे हैं ये गीत, जिस गीत में आपको बताना है ये गीत जिस फिल्म से लिया गया है इसके गायक कलाकार कौन है।

0: तो दोस्तों, ये जो गीत आपने सुना, आपको इसमें बताना है इस गीत के गायक कलाकार कौन हैं। और दोस्तों, अब बढ़ते हैं सिने एक्सप्रेस से सब सेगमेंट सितारों की बात की ओर।
1: भारतीय सिनेमा के एक बेहद लोकप्रिय और प्रतिभाशाली अभिनेता परेश रावल, जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है।
2: उनका जन्म 30 मई 1955 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की और बाद में बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई।
1: शुरुआत में परेश रावल ने कई फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई, लेकिन बाद में उनकी कॉमेडी ने उन्हें हर घर में मशहूर कर दिया।
2: फिल्म हेरा फेरी में निभाया गया बाबूराव गणपत राव आपटे का किरदार आज भी लोगों का सबसे पसंदीदा कॉमिक किरदार माना जाता है। इसके अलावा उन्होंने वेलकम, अंदाज अपना अपना, ओ माय गॉड, गरम मसाला और कई शानदार फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया है।
1: उनकी खासियत ये है कि वे हर तरह के किरदार को बहुत सहज और स्वाभाविक तरीके से निभाते हैं। अपने शानदार अभिनय के लिए परेश रावल को कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें फिल्म सर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। इसके अलावा कई बार फिल्म फेयर अवार्ड और अन्य सम्मान भी प्राप्त हुए हैं।
2: भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें साल 2014 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। अभिनय के अलावा परेश रावल राजनीति में भी सक्रिय रहे।
1: वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और अहमदाबाद पूर्व क्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं। उन्होंने सामाजिक मुद्दों और देश के विकास से जुड़े विषयों पर भी अपनी राय खुलकर रखी है।
2: परेश रावल केवल एक अभिनेता नहीं, बल्कि मेहनत, अनुशासन और बहुमुखी प्रतिभा की एक शानदार मिसाल है।
3: अभी दोस्तों, आपने सुना हमारा आज का सब सेगमेंट सितारों की बात। चलिए अब आपको सुनवाते हैं एपिसोड नंबर 28 का ये अगला गीत। और इस गीत में आपको बताना है ये गीत जिस फिल्म से लिया गया है उस फिल्म के निर्देशक कौन हैं।

तो दोस्तों, ये सुना था आपने सिने एक्सप्रेस एपिसोड नंबर 28 का दूसरा सॉन्ग, जिसमें आपको बताना है ये गीत जिस फिल्म से लिया गया है उस फिल्म के निर्देशक कौन है। और दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे सिने एक्सप्रेस के सब सेगमेंट फिल्मी हस्ती की ओर।

0: तो दोस्तों एक कहानी जो आपको हंसने पर मजबूर कर दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म हेरा फेरी की। हेरा फेरी की कहानी मुंबई के एक छोटे से घर से शुरू होती है, जहाँ रहते हैं बाबूराव गणपतराव आपटे, जिन्हें लोग प्यार से बाबू भैया कहते हैं। ये किरदार परेश रावल ने निभाया है।
1: बाबूराव एक छोटे गैरेज के मालिक होते हैं और उनकी आर्थिक हालात बिल्कुल अच्छे नहीं होते।
0: उनके घर में दो किरायेदार रहते हैं, राजू और श्याम। राजू बहुत तेज दिमाग वाला लेकिन थोड़ा चालाक लड़का होता है, जिसे जल्दी अमीर बनना है।
1: और वहीं श्याम एक सीधा साधा और मेहनती इंसान होता है, जो नौकरी की तलाश में संघर्ष कर रहा होता है।
0: शुरुआत में राजू और श्याम की बिल्कुल नहीं बनती, दोनों छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं। बाबूराव बीच में आकर हमेशा कहते हैं, अरे ये बाबू भाई का स्टाइल है।
1: उनका भोला स्वभाव और मजेदार बोलने वाला तरीका दर्शकों को खूब हंसाता है।
2: मैं सबके घर में तीन तीन नल लगा देने वाला, जिसको गर्म पानी से नहाने उसके लिए गर्म पानी का नल, जिसको ठंडे पानी से नहाने उसके लिए ठंडे पानी का नल,
3: और तीसरा नल
2: नहीं, तीसरे नल में पानी नहीं आएगा बाबा, जिसको नहीं नहाने का वो तीसरे नल के नीचे बैठेगा।
1: तीनों की जिंदगी पैसों की तंगी में गुजर रही होती है, घर का किराया देना मुश्किल, खाने की चिंता अलग।
0: अभी एक दिन अचानक बाबू राव के फोन पर एक गलत कॉल आता है। फोन करने वाला किसी लड़की के अपहरण की बात कर रहा होता है और फिरौती में करोड़ों रुपए मांगता है।
1: राजू ये बात सुन लेता है और उसके दिमाग में खतरनाक लेकिन मजेदार प्लान आता है। राजू कहता है,
0: अगर हम उस लड़की को बचा लें तो पैसे हमारे होंगे।
1: श्याम पहले मना करता है लेकिन मजबूरी में वह भी साथ आ जाता है।
0: इसके बाद शुरू होती है असली हेरा फेरी। तीनों पैसे कमाने के चक्कर में ऐसी उलझनों में फंस जाते हैं कि हर सीन हंसी से भर जाता है।
1: कभी गलत लोगों का पीछा, कभी भाग दौड़, तो कभी मजेदार झगड़े। पूरी फिल्म दर्शकों को लगातार हंसाती रहती है।
0: फिल्म का सबसे मजेदार हिस्सा बाबूराव के डायलॉग होते हैं।
4: अरे कायरे मंडली, ये तुम लोग अपना मुंह क्यों नहीं दिखा दे रहे बाबा? खुद का पैसा मांगने में इतना शर्माना कैसा? बोलो बोलो बोलो, तुम्हारा हिसाब कितना है बोलो मेरे को।
5: मेरा होता है 7,200।
6: मेरा 8,300।
5: मेरा वैसे तो 9,100 है, लेकिन ब्याज मिला के 10,000 होता है। खैर ब्याज की परवाह नहीं है।
4: क्यों रे, ब्याज क्यों नहीं लेने का? हिसाब से बनता हूँ, एक एक पैसा ले लेने का। तू 10,500 लेना, तू 9,000 लेना और तू 8,000 लेना, ठीक है? और देख, ये सबका सब पैसा कल लेके जाना, मेरे को सर पे उधारी नहीं चाहिए। और पीटर, ये मेरे को।
1: और इन संवादों ने लोगों के दिलों में खास जगह बना ली। बाबूराव का गोल चश्मा, उनका मराठी अंदाज और मासूम हरकतें फिल्म की सबसे बड़ी पहचान बन गई।
0: लेकिन फिल्म सिर्फ कॉमेडी तक सीमित नहीं, इसमें दोस्ती, संघर्ष और उम्मीद का संदेश भी छिपा है। आखिर में तीनों दोस्त मिलकर मुश्किलों का सामना करते हैं
1: और जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि हेरा फेरी आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार और पसंदीदा कॉमेडी फिल्मों में गिनी जाती है।
0: तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सब सेगमेंट फिल्मी पिटारा।
7: और दोस्तों, अब आपको सुनवाएंगे एपिसोड नंबर 28 का ये तीसरा गीत। लेकिन दोस्तों, शुरुआत में हमने बात करी थी नेशनल ब्रदर्स डे पर, और आज का ये दिन उन सभी भाइयों के नाम जो हर परिस्थिति में अपने परिवार की ताकत बनकर खड़े रहते हैं, जो कम बोलते हैं लेकिन दिल से बहुत प्यार करते हैं। और इसी पर हम आपको ये गीत सुनवाने जा रहे हैं, और इसमें आपको बताना है ये गीत किस फिल्म से लिया गया है।

0: नहीं
1: कप्तान, क्या तुझे यकीन नहीं है?
0: हाँ पार्टनर, यकीन है, पूरा यकीन है। अगर मैं कूदा मत तो मैं मर जाऊंगा।
2: साले डर गया, ट्यूब लाई
1: गया। साले इतने हंसाए, तू क्यों चिढ़ गया?
2: अब मैं पागल नहीं हूँ तेरी तरह। मर जाएगा किसी दिन, लाश भी नहीं मिलेगी।
1: क्यों?
2: तो क्या हुआ? अबे आत्मा भटकती रहेगी तेरी, शांति नहीं मिलेगी।
1: अगर ये लाश नहीं मिली ना तो जला देना मेरी चीजें, मेरे कपड़े, मेरे जूते और उसकी राख नदी में बिखेर देना। मिल जाएगी मेरी आत्मा को शांति। अब

0: सब ठीक चल रहा था।
1: तो दोस्तों, ये सुना था आपने हमारा तीसरा गीत एपिसोड नंबर 28 का, जिसमें आपको बताना है ये गीत किस फिल्म से लिया गया है।
2: और दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट सब सेगमेंट बॉक्स ऑफिस बस की ओर, जिसमें हम जानेंगे सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली नई रिलीज के बारे में। तो दोस्तों, हमारी पहली मूवी है कृष्णा और चिट्ठी, जिसमें मुख्य किरदार में नजर आएंगे दर्शिल सफारी, अरुण गोविल एंड फैज खान, जो कि एक ड्रामा बेस्ड मूवी है जो रिलीज हो रही है 29 मई 2026 को, जिसका निर्देशन किया है विनय भारद्वाज और सुमित्रा सिंह ने।
1: दोस्तों, हमारी अगली मजेदार मूवी आ रही है रिटर्न ऑफ द जंगल, जिसमें मुख्य किरदार में नजर आएंगे आरव भाटिया, मनीष सौरव चक्रवर्ती और उनके साथी, जो कि एक एनिमेशन बेस्ड फैमिली एंड किड्स मूवी है। ये मूवी रिलीज हो रही है 29 मई 2026 को, जिसका निर्देशक किया है वैभव कुमारेश ने।
2: और दोस्तों, हमारी अगली फिल्म है भारत भाग्य विधाता, जिसमें मुख्य किरदार में नजर आएंगी कंगना रनौत, ग्रीजा ओक, सुमिता तांबे और भी उनके साथी। ये मूवी रिलीज हो रही है 12 जून 2026 को, जिसका निर्देशन किया है मनोज तपाड़िया ने। और ये एक थ्रिल ड्रामा मूवी है, और अपने वीकेंड पर इस मूवी को जरूर देखने जाइएगा।
1: और दोस्तों, हमारी आज की आखिरी मूवी है गवर्नर द साइलेंट सेवियर, जिसमें मुख्य किरदार के रूप में नजर आ रहे हैं मनोज बाजपेयी और उनके साथी।

0: आधा शर्मा, आर्यन, पुष्कर और अन्य कलाकार। ये मूवी 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसका निर्देशक किया है चिन्मय मांडलेकर ने। ये एक थ्रिल और बायोग्राफी बेस्ड मूवी है।
1: तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे, लेकिन आपका एपिसोड नंबर 28 का यह आखिरी गीत सुनवा रहे हैं और इस गीत में आपको बताना है ये गीत किस अभिनेता पर फिल्माया गया है।

0: तो साथियों, अभी आपने सुना हमारे स्पेशल सेगमेंट सिने एक्सप्रेस 28 का लास्ट सॉन्ग, जिसमें आपको बताना था ये गीत किस अभिनेता पर फिल्माया गया। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट सिने एक्सप्रेस एपिसोड नंबर 28। इस सभी सवालों के जवाब देने के लिए आपको भेजना होगा हमारे इस ईमेल एड्रेस पर एक ईमेल। हमारा ईमेल एड्रेस है patramila@rampur.gmail.com। तो साथियों, अब समय हो चुका है प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव का, यानी स्टार्टिंग में पूछे गए सवाल के जवाब को जानने का। और दोस्तों, आज का हमारा सवाल था 2026 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस पुस्तक को प्रदान किया गया है, और इसका सही जवाब है ताइवान ट्रेवलॉग। और सही जवाब देने वाले श्रोता साथी हैं आप सभी जगदीश धाकड़, सुनील पाठक, धमरेन छिपा, रवि कुमार राहुल, पुंजाजी नावकर, बी कमाल, मोहम्मद रफीक पंवार, नजमुल हुदा, शाहरूनूर अंसारी, जॉन डी कैस्ट्रो, अजीत कसाना, सुदर्शन शाह, नानक खन्ना, उत्तम सिंह जहांगेल, रियासत हुसैन सिद्दीकी, राजू मिगलानी, राम कुमार रेवर, बी एल धाकड़, देवशंकर तमोरिया, हीरामणि वर्मा, किशन सपकाल, हाजी गफ्फार खान, फगुराम यादव, अरविंद कुमार, भाई रफत साहब, एमडी यासीन अंजान, आकाश रस्तोगी, सुरेश खुराना, रवि रस्तोगी, राजवीर सिंह यादव, भाई रफत साहब, राधेश्याम पांडे पांडे, उत्तम कुमार भगत, नवी हसान अब्बासी, शाहजी भोटके, गजानन येले, विट्ठल सुरेशे, सुरेश जयसवाल, दीपेश वर्मा, सिद्धार्थ गोंडाने, मसरूर हसन, उदयभान पाल, निसार सलमानी, विमल सक्सेना भारती, विजय सुरलाकर, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, इशाक अहमद, सुरेश गनेजा, संजय ढींगिया, विनोद मुन्नत, मुकेश कश्यप, भगवत चौबे, धीरज भाई राबड़ी, एम हफीज, नितेश कुमार, मोहम्मद हफीज उर रहमान, चौधरी राजवीर सिंह, गंगा सिंह रावत, के आर चौहान, प्रवीण चौहान।
1: और साथियों, आपको इस सवाल का सही जवाब देने के लिए ढेर सारी बधाइयां। और दोस्तों, आज का हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा बताना ना भूलें हमारे इस पते पर। हमारा पता है
0: कार्यक्रम चिट्ठी आई है युवाणी अनुभाग द्वारा के निदेशक आकाशवाणी रामपुर। और दोस्तों, हमारी पिन संख्या है 244901।
1: और हमारा ईमेल एड्रेस है patramila@rampur.gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876।
0: तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल इतनी गर्मी हो रही है और हीट वेव बहुत चल रही हैं, यानी अगर आप कभी दोपहर में निकलें तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई इंसान कोई चीज़ हमारे मुंह पर कुछ आग के गोले फेंक रही है। तो इससे बचने के लिए हमें यह करना होगा कि ज़्यादातर हम लोग घर में ही रहें, यानी सुबह 12 बजे से लेकर 4 बजे तक हमें बाहर नहीं निकलना है। निकलने से पहले अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है तो निकलने से पहले बहुत सारा पानी पीना है आपको, और जो अंगोछा यानी कोई कपड़ा उसको गीला करके अपने फेस पर लगा लेना है। और आजकल आम का मौसम चल रहा है तो आम पन्ना ज़रूर बनाएं और उसको पिए, जिससे आपको लू नहीं लगेगी, वरना ये गर्मी बहुत ख़तरनाक है, जिससे अभी हम देखने को मिल रहा है कि बहुत लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है, बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं और कुछ लोग इस दुनिया को छोड़ कर भी जा रहे हैं। तो सरकार का भी यही कहना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें और 12 से लेकर 4 बजे तक घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलें। खूब पानी पिएं, जितना पानी पिया जाए। हमारा फोकस रहना चाहिए कि हम लिक्विड ज़्यादा लें और जो सॉलिड चीज़ें उसको कम करें, ताकि हमारी बॉडी ईजली उसको डाइजेस्ट कर सके और हमें भी कोई भी बीमारी ना हो सके।
1: और दोस्तों, उसी के साथ आप गर्मी में अपना बचाव करें, पानी का नियमित मात्रा में खूब पिएं, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, साथ ही साथ घर में बैठकर एंजॉय करें और हमारे आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रमों को सुनते रहें।
0: जैसे कि आप जानते हैं, हमारे कुछ कार्यक्रम जो कि श्रोता साथी के ऊपर होते हैं, जो कि हमारा चिट्ठी आइए जो हर तीसरे शुक्रवार को होता है, जिसके ज़रिए आप अपने कमेंट हम तक साझा कर सकते हैं। और हमारा दूसरा श्रोता साथी के बेस पर होता है प्रोग्राम हेलो फ्रेंड्स, जिसके जरिए आप हमें अपने गाने की फरमाइश भेज सकते हैं और सुन सकते हैं अपने मन पसंदा गाने को।
1: और इसी के साथ हम फिर मिलेंगे और हमारा कल स्पेशल सेगमेंट रहेगा करियर डायरी के साथ, एक नए विषय, एक नई जानकारी, नई सोच और गीतों के रंगों के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त मेघा ठाकुर
0: और असरार मियां को
1: दीजिए इजाजत प्रोग्राम संपन्न करने की, और स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे असरार और मेघा ठाकुर। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक मतों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फलता में मतदान में धांधली होने के बाद इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। यहां इस महीने की 21 तारीख को मतदान कराया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 35 वर्षीय त्विशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। त्विशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के साथ 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की चेतावनी दी है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। और खेलों में मुंबई में IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने तीसरे ओवर में 2 विकेट पर 18 रन बना लिए हैं। वहीं कोलकाता में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 6:05 हो चुके हैं। अब सुनिए कुछ महत्वपूर्ण सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सन 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित कर रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार शौर्य, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है। नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल award.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई सन 2026 है। सूचना समाप्त हुई।

बंदूक से निकली गोली का कोई नाम, कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता। जब ये गोली लगती है किसी इंसान को तो घायल होती है मानवता। छूट जाता है एक बचपन, वीरान हो जाता है किसी का जीवन, टूट जाती है किसी के बुढ़ापे की लाठी, बुझता है एक दीपक उम्मीद का। अपने इस देश में बारूद का ढेर नहीं, फूलों का चमन महकाएं, जीवन के हर रंग से इंद्रधनुष बनाएं।

0: फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाएं, हुब्बे वतन के पौधे इसमें नए लगाएं।
1: मिल मिल के हम तराने हुब्बे वतन के गाएं, बुलबुल हैं जिस चमन के गीत उस चमन के गाएं।
0: हम सब भी मिलकर गीत गाएं
1: अमन के भाईचारे के।

0: हमारा प्रथम कर्तव्य इस राष्ट्र के प्रति है।
1: जिस देश में हमने जन्म लिया,
0: जिस भूमि पर हमने चलना सीखा,
1: जिसका अन्न हमारे शरीर में लहू बनकर दौड़ रहा है,
0: उस धरती का ऋण है हम पर।
1: हमारा कर्तव्य है हम

0: मेहनत की इस चिंगारी से दिल मोम हुआ है पत्थर का, अजमेर की जामा मस्जिद में खुद अक्स है जैनी मंदिर का।
1: जी हाँ, कसरत में वहदत की शानदार मिसाल।
0: मुख्तलिफ रंगो नस्ल और अलग अलग खुशबुओं के खूबसूरत फूलों का हसीन गुलदस्ता
1: हमारा प्यारा वतन हिंदुस्तान,
0: दुनिया का एक वाहिद मुल्क,
1: गंगा जमनी तहजीब की एक अनूठी मिसाल।
0: आइए रखें इस इत्तेहाद को कायम,
1: अपने मुल्क को बनाएं अमनो सुकून का गहवारा।
0: हम एक थे,
1: हम एक हैं,
0: हम एक रहेंगे,
1: कायम करेंगे अमन,
0: देंगे सबक दुनिया को प्यार का।
2: भारत हमको जान से प्यारा है।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 6:10 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म ब्रह्मास्त्र से, और इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह ने।

लक्की अली के स्वर में अभी आपने सुना ये गीत फिल्म कहो ना प्यार है से। इसी गीत के साथ आज का गीत गाता चल कार्यक्रम चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। संध्या के 6:20 हुए हैं। किसान भाई सुने अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: आबो आबो हेमपाल भैया, राम राम।
1: राम राम भैया, और साथ ही साथ हम दोनों की, हमारे जो किसान साथी हैं उन सबको भी हम
0: राम,
1: दोनों की
0: राम राम, राम। और भैया कैसे हैं आप, घर पर सब कुशल मंगल तो हैं?
1: भैया हम तो ठीक ठाक हैं, और आशा करता हूं कि हमारे जो साथी हैं वो भी ठीक ठाक होंगे। लेकिन भैया जे गुम गुम गुप गुप गम सिंह भैया है ना, जे बहुत नाराज ही रहे हैं, कह रहे हैं जे ठीक ठाक कह रहे हैं और इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी खेती बाड़ी को काम कर रहे हैं और तो इतनी गर्मी लगती है, और जे ठीक ठाक कह रहे हैं बहुत बिकट गर्मी पड़ रही है। तो भैया देखो गर्मी तो पड़ी रही है, ऐसे में अपने लिए और अपने फसलन के लिए सबको बचा कर रखना जरूरी है।
0: हाँ जाके ले भैया, नाराज होने वाली कोई बात ना है। आप जो है सुबह को जल्दी उठ के खेती बाड़ी को काम कर लें, और इसी तरह का भैया संध्या में काम कर लें।
1: सही बात है।
0: और अगर दोपहरिया में काम करेंगे तो जाहिर सी बात भैया तबीयत तो खराब होगी।
1: बिल्कुल, दोपहरिया में देखो आराम करें, और सुबह को जब आप जाएं तो 10 बजे से पहले पहले अपने काम निपटा लें, और 3 बजे के बाद ही काम खेतन पर करें, और दोपहर के समय में जहां तो हो सके घर से बाहर ना निकलें। और भाई देखो अगर खेती बाड़ी की बात करें तो अब हमारे भैया ने खेत की जो धान की पौध की तैयारी है बाकी कर दी है।
0: हाँ भैया, बाकी तो हमारे किसान साथी ने जा समय मौको पूरा होते खाली खेते जुताई करके डाल दी।
1: बिल्कुल।
0: और भैया जो है बहुत से जो किसान साथी जिन्हें अपनी मिट्टी की जांच करानी है, लमसम उम्मीद है मिट्टी की जांच उन्होंने करा ली।
1: हाँ लगभग पूरे हो काम, क्योंकि अब मिट्टी की जांच कराए के बाद में हरी खाद को ढेंचा वगैरह लोभी वगैरह बो दी है किसान ने, और तो जांच तो लगभग सभी ने कराई ली होगी।
0: हाँ, और भैया आप जैसे धान की पौध डालने को समय चली रहा है, तो जाने सबसे ज्यादा अपनी धान की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए सबसे जो मुख्य बिंदु होते हैं वो होता है प्रजाति।
1: बिल्कुल भैया, देखो जो तो धान की बात है, कोई सी भी फसल हो हर चीज में प्रजाति को जो बीज को बहुत ही जरूरी है कि किस तरह से हम बीज को चयन कर रहे हैं।
0: हाँ, पहली बात प्रजाति और दूसरी बात समय।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: एक प्रजाति को चयन अच्छा हो और समय से काम करें,
1: काम करें। अगर समय रहते अगर काम ना करो, समय निकल गो तो पिछाई ही जाए फसल, जब पिछाई ही जाए तो कोई भी काम पिछाओ से ही वो तो खराबी होने वाले।
0: हाँ, तो भैया अगर हम धान की प्रजातियों की बात करें तो कौन कौन सी ऐसी प्रजाति हैं जो हमारे किसान साथियों को अच्छी पैदावार दे सकते हैं?
1: देखो भैया अपने क्षेत्र में तो इस समय जो पीआर 121 है, पीआर 126 है, पीआर 130 है, 131 है, 132 है, ये प्रजाति अच्छी चल रही है।
0: हाँ भैया, और जाके अलावा पीवी 1509 है, पीवी 1692 है, एचआर 47 है, और भैया पूसा बांसपति।
1: बिल्कुल भैया, बासमती तो एक ऐसी प्रजाति है जाके आगाइयो लगा दो और पिछाइयो लगा दो।
0: हाँ भैया, और बहुत से किसान जाति जो इन सब धान की फसल बहुत है ना, वो अपने खान टाइम पूसा जो है
1: जरूर करता है। जरूर करता। हाँ, कहता है कि चलो ज्यादा ना तो आए गए अकेले तो ही जाए।
0: हाँ, जैसे भैया पहले अपने बहुत टाइम पहले तिलक हुए करते, अब तिलक ना मिलते, बाकी खुशबू इतनी अच्छी लगे
1: भैया, हम ना खाओ तिलक को,
0: तो एक घर में अगर बन रही है खिचड़ी तो पूरे गांव में जो है बाकी खुशबू जो है।
1: हाँ,
0: और खाने बहुत स्वादिष्ट,
1: गली में कोई निकल के जा रहे हो तो हम छोटे छोटे तो पता चली खिचड़ी बन रही, गली में कोई निकल के जा रहे हो तो कहते अरे इनकी यहाँ जो फल धान को चावल बन रहा।
0: हाँ, तो भैया प्रजाति की बात है, समय की बात है, और किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए अपनी फसल से अच्छी पैदावार।
1: देखो भैया जाके अलावा एक बात को और बहुत जरूरी ध्यान रखने हैं, वो जो रखने हैं कि बीज को उपचार जरूर कर ले, क्योंकि अगर बीज से कोई बीमारी अगर खेत में आ गई तो बाको सही करना बहुत ही मुश्किल ही जाता है। इसी तरह से अगर भूमि यानी मिट्टी अगर उपचारित कर ली जाए तो भी हमारी फसल सुरक्षित रही।
0: हाँ, तो भैया जाके लिए हमारे किसान साथी बीज उपचार के लिए कार्बन डेजिंग को इस्तेमाल कर सके।
1: बिल्कुल,
0: और जैसे आपने भूमि उपचार की बात कही तो वो भैया ट्राइकोडर्मा से कर सकें।
1: बिल्कुल भैया, ट्राइकोडर्मा से करें, और ट्राइकोडर्मा से आप बीज उपचार भी कर सकते हैं। तो साथियों आप ट्राइकोडर्मा को प्रयोग जरूर करो, और वैसे भी भैया देखो हम समय समय पर अपने किसान साथियों को बीज शोधन और भूमि शोधन और मिट्टी की जांच बताते रहते हैं, कुछ किसान साथी जाको अपनाए भी रहे हैं और अच्छा लाभ भी ले रहे हैं। तो हम अपने भैया बहन से जय कहना चाहेंगे कि जो हमारे किसान साथी हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं वे खुद भी इन विधियों के लिए ना भाई, और अपने जो रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, पड़ोसी हैं, गांव वाले हैं, उन्हें भी प्रेरित करें।
0: हाँ भैया, और जब सब काम समय से अच्छी तरीके से करेंगे तो निश्चित ही अपनी जो धान की फसल है वहाँ से अच्छी पैदावार लेंगे।
1: बिल्कुल भैया, और भैया देखो धान की फसल के अलावा जो गर्मी को मौसम चल रहा हो ऐसे में सब्जी वाली फसलें भी हमारे खेतन में खड़ी हैं, गन्ना की भी फसल खड़ी है, और भी कई तरीके की फसलें हैं। तो सब्जी वाली फसलन में कीट और रोग जाहिर सी बात है कोई फसल लगते ही, तो
0: तो भैया क्यों ना आप जो बात कह रहे हो जाई संबंध में अपने किसान साथियों के लिए एक भेंटवार्ता सुनवा दीजिए।
1: बिल्कुल भैया, नेकी और पूछूछ।
0: भैया विषय है सब्जियों में कीट व रोग प्रबंधन। जाई विषय पर बातचीत के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं आप हैं डॉक्टर दीपक कुमार, आपसे बातचीत कर जानकारी करा रहे हैं हमारे भैया विक्रांत चौधरी। तो आप सुनो और हमारे किसान साथी भी सुने जी बातचीत।
2: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, विभिन्न विषय को लेकर हम आपके बीच में रहते हैं। एक्सपर्ट्स, केवीकेएस से जुड़े, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े, कृषि विश्वविद्यालयों से जुड़े कोशिश करते हैं कि हमारे बीच में आएं और आप तक एक्सपर्ट के रूप में जानकारी साझा करें। इसी क्रम में आज हमारे बीच में हैं डॉक्टर दीपक कुमार, आप जानकारी देंगे सब्जियों में कीट व रोग प्रबंधन के बारे में। किसान भाइयों, हम सभी सब्जियां लगाते हैं अपने घरेलू उपयोग के लिए भी और एक व्यवसाय के रूप में भी। क्या पूरा प्रोसेस है उसके बारे में, इस बीच यदि हमारे फसलों को विशेष रूप से सब्जियों को यदि कीट पकड़ जाए, कोई रोग लग जाए, तो बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना बनी रहती है, कैसे उसका पूरा प्रबंधन हो, कैसे ये कोशिश की जाए कि कीट हमारी सब्जियों तक ना पहुंचे, इसके बारे में जानकारी लेकर हमारे बीच में डॉक्टर दीपक हैं। डॉक्टर दीपक, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन कौन से ऐसे कीट हैं जो सब्जियों में मुख्यतः पाए जाते हैं।
3: सब्जियां चाहे किसान किचन गार्डनिंग में लगा रहे हैं, चाहे खेतों में लगा रहे हैं, या जो कहीं भी ऐसी सब्जियां उगा रहे हैं, तो जो मुख्यतः जो कीट लगते हैं उसके लिए सबसे जरूरी है कि वो कीट ना लगे, क्योंकि प्रकृति में क्या है, प्रकृति में शत्रु कीट है, हानिकारक कीट है, दोनों पाए जाते हैं
2: जी। मित्र कीट भी हैं और शत्रु कीट भी हैं,
3: दोनों कीट पाए जाते हैं, तो वो बैलेंस प्रकृति बना के रखती है। अब अनाधुंध जो हम रासायनिक का प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे क्या है, जो हमारे शत्रु कीट है उनका तो नाश हो रहा है, और जो हमारे मित्र कीट है उनका स्तर जो है कम हो रहा है,
2: कम हो रहा है।
3: उसको बचाने के लिए हमें ये सबसे जरूरी है कि हम जो भी फसल है जिसपे जो कीट आ रही है उनको सबसे पहले हमारी फसल में वो कितना प्रभाव डाल रहे हैं वो जानना जरूरी है
2: जी।
3: एक स्तर होता है आर्थिक क्षति स्तर
2: जी,
3: अगर उस लेवल पर हमारा कीट का प्रभाव हो रहा है तो उससे ऊपर हम जाएंगे तब जाके हम उस रासायनिकों का प्रयोग करना पड़ता है। और उससे पहले सबसे जरूरी है कि हम जो फसलों में प्रबंधन की बात हो रही है
2: जी, जी।
3: प्रबंधन और नियंत्रण दो चीजें हैं। नियंत्रण क्या है, जो भी कीट आया हमने कोई भी रासायनिक स्प्रे किया और उसको हमने कंट्रोल कर लिया
2: जी।
3: मगर प्रबंधन की जब बात आती है तो प्रबंधन में हमें आईपीएम
2: जी
3: एक शब्द आता है, आईपीएम एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन, तो उसके तहत क्या है, हम यांत्रिक क्रियाएं भी करनी पड़ती है, जैविक क्रियाएं भी करनी पड़ती है, और कीट का कंट्रोल हो रहा है तो उसके बाद हमें रासायनिक सहारा लेना पड़ता
2: जी,
3: है
2: जी जी।
3: तो इन सब चीजों का प्रयोग करेंगे तो उनका प्रभाव कीट का कम होगा, और जो हमारी मृदा है या जो हम रासायनिकों का लगातार प्रयोग से, चाहे मानव शरीर है
2: जी,
3: चाहे मानव का स्वास्थ्य है, चाहे मृदा का स्वास्थ्य है, वो धीरे धीरे खराब हो रहा है, तो उसको हम बचा सकते
2: जी। हम देखते हैं कि अगर शुरुआती अवस्था में कीटों की पहचान कर ली जाए तो नुकसान कम होगा और जल्दी से जल्दी पकड़ में आएगा, तो इसके लिए हमारे किसान भाई क्या करें।
3: जो कीटों की पहचान के लिए, निगरानी के लिए लाइट ट्रैप आता है
2: जी,
3: लाइट ट्रैप को किसान चाइनीज बल्ब आते हैं या आपके पास जैसी भी सुविधा है किसान को, या लाइट ट्रैप भी आते हैं
2: जी,
3: बने बनाए ट्रैप आते हैं, आप उसको अपने खेत में दो चार जगह लगा दीजिए
2: जी,
3: का जो कलर है लाइट का उसको येलो रखते हैं
2: जी,
3: पीला रंग रखते हैं, उस पर कीट आकर्षित होता है
2: जी,
3: तो उसमें जो जो कीट आएंगे हमने रात को लगाया, सुबह जाके हम देख लेंगे, उसमें हम नीचे पानी डाल देंगे
2: जी जी जी,
3: या उसमें पानी में अगर कीट को मारना है तो केरोसिन ऑयल या मिट्टी जी, जी, डाल जी, सकते हैं जिससे वो कीट भी मर जाए
2: जी।
3: और उसके लिए जब हम सुबह उसमें देखेंगे कि कौन कौन से कीट आए हैं, अगर हमें जानकारी किसान भाइयों को नहीं है तो कि नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या अन्य किसी संस्था से हम जानकारी करके ही सलाह करके भाई ये हमारे कीट पाया गया, फिर हम उनकी पहचान करके ही हम दवाई का या हम क्या कर सकते हैं उसके लिए भी, अगर हम है कि एक कार्ड का स्टिक आता है
2: जी जी,
3: येलो कार्ड का स्टिक आता
2: जी
3: है
2: जी,
3: पीले रंग का स्टिक आता है, तो उसे भी हम खेत में लगा सकते हैं, उस पर कुछ नहीं है। अगर माननीय कि किसान के पास वो कार्ड भी नहीं है तो आपका पीले रंग का यूरिया का बोरा आता है
2: जी,
3: तो उस बोरे के हम चार टुकड़े कर ले, उस बोरे के टुकड़े को हम खेत में जगह जगह लगा दें, उस पर ग्रीस कर दे, जो पुराना ग्रीस खराब होता
2: है
3: तो उसको लगा देंगे तो क्या होगा, तो जो कीट है
2: जी
3: हमारा कीट अगर उस पर आके चिपक जाता है, यानी चार कीट भी चिपके तो जनरली एक जो कीट है वो एक कीट देता है
2: जी,
3: चार कीट भी जो हमारे हजार अंडे लगभग हमने उसको कंट्रोल कर लिया, अंडे नहीं देंगे तो आपकी सुंडी नहीं बनेगी, सुंडी नहीं बनेगी तो आपका जो खेत में कोई नुकसान नहीं होगा
2: जी।
3: तो लाइट ट्रैप है, फेरोमोन ट्रैप है। फेरोमोन ट्रैप क्या है? फेरोमोन ट्रैप में भी जो नर कीट है, जो नर कीट है उसमें मादा की स्मेल आती है, नर कीट उसमें आकर्षित होता है
2: जी।
3: विभिन्न फसलों में विभिन्न प्रकार के नर पाए जाते हैं, उसमें लियोर लगता है
2: जी।
3: फेरोमोन ट्रैप एक ही रहता है, अलग अलग तरह के लियोर होते हैं, तो हर फसल के लिए अलग होता है। तो उसमें लियोर, उससे भी एक हम निगरानी की भी कर सकते हैं और उससे हम कुछ कीटों को कंट्रोल भी कर सकते हैं
2: जी। जी जी, बहुत से कीटों को तना छेदक कहा जाता है, कुछ माहू हैं, कुछ ऐसे हैं जो फलों पर चिपकते हैं या फलों को खराब करते हैं, तो उनकी पहचान कैसे हो और को क्या सबका प्रबंधन एक जैसा है या सबके लिए अलग अलग प्रकार से ट्रीटमेंट होता है?
3: जैसे फर्स्ट टाइम फसल लग रही है, चाहे आपकी करेला है, तोरी है
2: जी,
3: चाहे भिंडी है, उसमें रस चूसने वाले कीट लगते हैं, और रस चूसने वाले कीट के लिए हम उनको कंट्रोल करने के लिए जो दवाइयां होती है, आपकी इमिडाक्लोपिड आती है, अब उसका 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दे तो वो कंट्रोल हो जाता है
2: जी।
3: मगर उसके लिए भी हम वो प्रक्रिया जो आपके ये रस चूसने वाले कीट है उसके लिए भी हम ये लाइट ट्रैप है, फेरोमोन ट्रैप है, ये कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना, कंट्रोल करने के लिए जो सबसे जरूरी है वो है अगर गर्मी की जुताई है, गहरी जुताई है
2: जी जी जी,
3: गहरी जुताई अगर हम करेंगे, मिट्टी पलट देंगे, तो उसमें जो उसके अंडे हैं या उसके प्यूपा पड़े होते हैं, क्योंकि कीट की चार अवस्थाएं होती हैं, एग है, का लार्वा है, फिर प्यूपा है, फिर अडल्ट है
2: जी।
3: तो ये चार अवस्थाएं हैं, तो उसमें जो उसकी दो अवस्थाएं हो सकती है, अंडा उस खेत में पड़ा हो, उसका प्यूपा खेत में पड़ा हो, तो उससे क्या जो चिड़िया है या धूप के संपर्क में आने से, ज्यादा टेम्परेचर में आने से वो भी समाप्त हो जाती है
2: जी। जी जी, आपने फेरोमोन ट्रैप की बात की, पीले छिपछिपे जो ट्रैप कार्ड है उसकी बात की, तो किसान भाई कई बार विवश रहते हैं कि कहाँ से उनको खरीदा जाए, और हम देखते हैं कि कहीं कहीं राज्य सरकार भी उस पर सब्सिडी भी देती है उनको खरीदने के लिए भी। केवीकेएस के माध्यम से या राज्य सरकार का जो कृषि विभाग है उसके माध्यम से ये ट्रैप वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं?
3: ये ट्रैप है, फेरोमोन ट्रैप है, चाहे आपके लाइट ट्रैप है
2: जी,
3: ये यूनिवर्सिटी है, कृषि विश्वविद्यालय है, तो वहाँ भी ये उपलब्ध होते हैं, वहाँ भी एक बिल्कुल अलग से एक ब्रांच बनी हुई है, वहाँ से आप जाके चाहे आप किसी भी प्रकार का आपका ट्रैप है वो ले सकते हैं। बाकी अब फार्मर उनको इतनी जानकारी है, आपके ऑनलाइन के माध्यम से भी वो खरीद सकते हैं
2: जी।
3: नजदीकी जैसे आपका कोई दुकानें हैं, दुकान वाले भी रखते हैं, क्योंकि ये जो ट्रैप है या आपके फ्रूट फ्लाई है, बहुत सारी चीजें हैं, फल मक्खी आपकी फलों में भी लगती है और आपकी सब्जियों में भी लगती
2: जी,
3: है
2: जी,
3: तो उसके लिए भी फ्रूट फ्लाई ट्रैप आते हैं, तो बने बनाए आते हैं, ज्यादा महंगे भी नहीं आते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें लगाने से ज्यादा रसायनों का प्रयोग नहीं करना पड़ता है
2: जी। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि सब्जियों में खासकर से फफूंद, बैक्टीरिया, वायरस जनित रोग कोई लग जाता है, तो इनका प्रबंधन किस प्रकार से हो?
3: कोई भी है, जैसे बीमारी है, चाहे फफूंदी से बहुत सारी बीमारियां होती है, वायरस से मोजैक वायरस है, और आपका फफूंदी से है, पाउडी मिल्डू है, डाउनी मिल्डू है, ये सारी बीमारियां जो होती है उनको कंट्रोल करने के लिए, जैसे हम बात करेंगे आपकी उकटा है, ये फफूंदी नाशक है
2: जी।
3: इसकी सबसे बड़ी कंट्रोल के लिए जो जितनी भी बेल वाली फसलें होती है, आपकी चाहे तोरी है, लौकी है, आपका खीरा है
2: जी,
3: तो ये सारी चीजें हैं, इनके लिए सबसे उनमें सबसे जो बीमारी पाई जाती है उसमें उकटा लगता है
2: जी,
3: विल्ट लगता है
2: जी।
3: उसको कंट्रोल करने के लिए हम जो ट्राइकोडर्मा है
2: जी,
3: ट्राइकोडर्मा आपका जैविक है, उसका ना जमीन पे प्रभाव पड़ेगा, मनुष्य के स्वास्थ्य पे कोई प्रभाव पड़ेगा
2: जी, जी।
3: तो उसके लिए हम ट्राइकोडर्मा का हम प्रयोग कर सकते हैं, बुआई के समय 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम उसमें गोबर की खाद में मिला के हम 10 से 15 दिन के लिए पहले उसको बढ़िया साल पुरानी वाली गोबर की खाद लेंगे
2: जी,
3: और उसको उसमें मिलाकर छाया में रखेंगे और उसमें नमी बनाए रखेंगे, ताकि जो उसकी फंगस है, फफूंदी है, जो उसके ऊपर ग्रोथ करे, तीन जुताई पे उसमें डाल देंगे। और ये डाल के किसान भाई कई बार ऐसे करते हैं कि इतनी गर्मी होती है, ऐसे डाल दिया, छोड़ दिया, तो उसमें क्या जो फंगस मर जाएगी
2: जी,
3: तो इसलिए उस खेत में भी नमी बनाई रखे।
2: डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जो छोटे किसान है, विशेष रूप से वे सब्जियों को ज्यादा प्रेफर करते हैं उगाना, और यदि वे बहुत अधिक कीटनाशी उपयोग करेंगे तो उनकी लागत भी बढ़ेगी, तो कैसे बीज स्तर पर क्या उपचार हो कि रोग ही कम से कम लगे, या क्या ऐसे उपाय करे जाएं कि कम खर्च में उनको लाभ मिल सके और उनकी सब्जियों को कम से कम नुकसान हो सके?
3: कुछ बीमारियां होती हैं जो बीज जनित होती हैं
2: जी,
3: कुछ मृदा जनित होती है, जो बीमारी आपकी बीज से हमारी हो रही है, बीज से रोग जो होने वाले हैं, तो उससे किसान भाई सबसे जरूरी है उसमें बीज शोधन कर ले
2: जी।
3: अगर बीज शोधन का सबसे आसान तरीका है, आपका ट्राइकोडर्मा आपके पास है, ट्राइको 4 से 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से वो बीज शोधन कर सकते हैं, और अगर ट्राइकोडर्मा भी नहीं है तो आपकी कार्बन डाइजी में आती है, उसको 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज शोधन कर सकते हैं। बीज शोधन के साथ साथ जो हमारी भूमि है, बीज तो हमने शोधन कर लिया मगर कुछ फंगस है जो हमारी मिट्टी में पड़े हैं, मृदा में पड़े हैं, तो उसके लिए भी हम भूमि शोधन करेंगे।
2: अच्छा,
3: तो उसके लिए भी हम ट्राइकोडर्मा खेत में डालेंगे। एक किलो जो ट्राइकोडर्मा है 50-60 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर हम उसमें एक किलो के लिए पर्याप्त रहता है, तो उसको भी हम अगर खेत में डालेंगे तो जो बीमारियां हैं वो हमारी इससे कंट्रोल हो जाएंगे। और ये सबसे जरूरी है कि बहुत कम सस्ते पैसे में
2: जी
3: उनका हम उपचार कर सकते हैं।
2: जी डॉक्टर साहब, हर कोई चाहता है कि वो बिना किसी पेस्टिसाइड के उपयोग के सब्जियों को ले, सब्जियां खाए। वहीं दूसरी ओर किसान ये चाहता है कि उसकी यदि सब्जी मार्केट में जा रही है तो सबसे अच्छी हो। एक जो भ्रम रहता है वो ये रहता है कि चमकदार सब्जी होगी, अच्छी सब्जी होगी तो वो स्वादिष्ट भी होगी, जबकि ऐसा नहीं भी होता है कई बार, क्योंकि हम सभी को जैविक चीज़ों की मांग है, हम उनको उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन जैविक सब्जियां उगाना कठिन है। जैविक किसान यदि आपको कोई मिलते हैं तो आप उनको किस प्रकार की सलाह देते हैं कि बिना कीटनाशी उपयोग किए या बिना ऐसे केमिकल्स का उपयोग किए जो जैविक खेती को प्रभावित करते ही हैं, फिर वो जैविक रहेगी ही नहीं, तो किस प्रकार से आप उनको सलाह देते हैं, क्या कहते हैं?
3: कोई भी अगर किसान भाई जैविक खेती करना चाहता है, बिना रसायनों की भी खेती हो सकती है, उसके लिए सबसे जरूरी है जैसे हम गर्मी की जुताई करें
2: जी,
3: सबसे पहला जरूरी है कि गर्मी की जुताई होगी तो जो भी कीड़े होंगे, फंगस होगी, वो सब उस प्रकाश के संपर्क में आने से वो समाप्त हो जाएंगे। अब उसने फसल लगा ली है, फसल लगाने के बाद उन्हें बीज शोधन भी किया है, फिर भी उसके ऊपर कीट आने ही आने हैं, बीमारी आनी है, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम लाइट ट्रैप है, फेरोमोन ट्रैप है, हम इन सब चीजों का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद भी कीट आते हैं तो हम समय समय पर
2: जी
3: आपका नीम ऑयल आता है, नीम ऑयल 2-3 ml
2: जी
3: प्रति लीटर पानी में डालकर हम स्प्रे कर देंगे तो जो कोई भी चाहे रस चूसने वाला कीट है, कोई सुंडी है, हम उसको कंट्रोल कर लेंगे
2: जी,
3: ये कर सकते हैं। और समय समय पर ये हम 15 दिन के अंतराल पर ये अगर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहेंगे तो ज्यादा कीटों का प्रभाव नहीं होगा
2: जी।
3: जो हमारे मित्र कीट हैं हम उसके लिए भी क्या है, जैसे आपका एफिड है, चैपा है, चैपा के लिए कोक्सिन आता है, फीड करता है, उसको खाता है, कैसो पड़ला है वो भी एफिड को खाता है, तो हम जो हमारे प्रीडेटर हैं, जो परभक्षी कीट हैं, हम उनको भी इस्तेमाल करके
2: जी
3: हम बिना उसके रसायनों की खेती आसानी से कर सकते हैं
2: जी। तो किसान भाइयों, ये थे डॉक्टर दीपक कुमार जो कि KVK ठाकुर द्वारा मुरादाबाद से हमारे बीच में आए थे। किसान भाइयों, आप सभी के लिए सब्जियों से जुड़े जितने भी कीट हैं और उनसे जुड़ा जो रोग प्रबंधन है उसके विषय में विस्तार से हमें जानकारी दी, बताया कि किस प्रकार से आप किन किन उपायों को करने से अपनी फसल में लाभ भी ले सकते हैं और कम से कम कीटनाशी का प्रयोग करते हुए फसल बाजार तक पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर दीपक, आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, आप आकाशवाणी के स्टूडियोज में आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
3: धन्यवाद सर।
1: सब्जियों में कीट व रोग प्रबंधन, साथियों अभी आपने इस विषय पर विस्तार से जानो डॉक्टर दीपक कुमार से और आपसे बातचीत करके विस्तार से जानकारी दिलवा रहे थे हमारे भैया श्री विक्रांत चौधरी जी। तो साथियों हमें उम्मीद है आपने इस बातचीत को ध्यानपूर्वक सुनो हुए और इसे आप अपने सब्जी वाली फसलों में अपनाएंगे और अच्छी और जैविक स्वस्थ सब्जी को खाएंगे और अपने लिए और अपनी जो आगामी पीढ़ी है सबके लिए स्वस्थ रखेंगे भैया।
0: और भैया, हाँ भैया,
1: अब अपने भैया बहन के लिए कुछ मनोरंजन भी कराए दो।
0: हाँ भैया, क्योंकि जो हमारे कार्यक्रम को समय है वो शाम को समय है,
1: बिल्कुल
0: जहाँ समय हमारे सभी किसान साथी खेती बाड़ी को काम करके घर पे बैठे आराम कर रहे होते हैं, ऐसे में भैया गानों बजाने हो जाए तो सोने पे सुहागा वाली,
1: बिल्कुल भैया। और वैसे भैया ना जो समय खेत से उनको होता है और जब खेत से आता है ना तो तिखाल में रखो वो रेडियो बोल रहे है और बालक के किलकारी आ रही हुआ है, बालक हंसका आ जाए तो बात ही निराली ही जाती है। तो देर ना करते हुए सुनते हैं जो लोकगीत है।

0: वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: संदेश से पहले अभी हमारे किसान साथी सुन रहे थे लोकगीत। हम उम्मीद करते हैं कि जब लोकगीत सुन के हमारे किसान साथी इनको मनोरंजन है वो होगा भरपूर और उनकी पूरे दिन की थकान है वो होगी दूर। और भैया अब कार्यक्रम को आगे बढ़ा दो, अपने किसान साथी के लिए सुनवाते हैं क्षेत्र संकलित कार्यक्रम। जहाँ कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे हेमपाल भैया गए है ग्राम रसूला ब्लॉक मिसलपुर जिला पीलीभीत में। वहाँ इन्होंने अनुभवी कृषक श्री राम प्रसाद जी से बातचीत कर इनके साथ अनुभव साझा करें, तो आप सुनो और हमारे किसान साथी भी सुनते हैं इनके ये अनुभव।
4: राम राम भैया।
5: राम राम भैया। राम राम।
4: और सर परिवार में सब लोग बढ़िया हैं?
5: हाँ बढ़िया हैं सब।
4: सबसे पहले तो आप हमारे किसान साथी इनके लिए अपना नाम और पता बता दें।
5: राम प्रसाद।
4: आपने ब्लॉक और जिला कौन सा पड़ता है?
5: ब्लॉक बीसलपुर है, जिला पीलीभीत, ग्राम रसूला।
4: तो आप खेती बाड़ी करते हो?
5: हाँ खेती बाड़ी कर रहे हैं।
4: कहाँ कहाँ के तन में?
5: उसमें गन्ना की तैयारी हो रही है।
4: तैयारी मतलब?
5: गन्ना बुवाई कर गई है, सही खुदाई उदाई पानी उनी लगा रहे हैं, कीटनाशक दवाई लगा रहे हैं, पानी लगा के पानी लगाते हैं, कीटनाशक दवाई प्रयोग करते हैं।
4: अच्छा।
5: और उसके बाद फिर खुदाई उदाई करानी होती है।
4: इस समय गन्ना में कौन कौन सी कीटनाशक लगा रहे हो, स्प्रे कर रहे हो या नीचे डाल रहे हो?
5: नीचे से डाल दिए करके डीएपी लगाते हैं, आप डीएपी लगा देते हैं।
4: फिप्रोनिल। अच्छा फिप्रोनिल। अच्छा तो भाई खाद में लगा डाल रहे हो।
5: हाँ हाँ हाँ।
4: आप पढ़े लिखे हैं भैया?
5: हाँ हाई तो पढ़े हुए, साठ मो पढ़े हुए हैं पुराने जमाना के।
4: अच्छा कितनी उम्र है आपकी?
5: हमारी 59 है।
4: तो इसका मतलब वो लगभग 65-66 साल आपकी उम्र है। तो पहले की खेती में और अब की खेती में कुछ बदलाव नजर आओ आपको?
5: पहले की खेती में बदलाव है, मतलब पहले हमारे समय पे खाद पानी चलते ना ही।
4: अच्छा जी अंग्रेजी दवाई वो ना चलती?
5: बिल्कुल कोई चीज चलते ना ही, खाली कुदरत के सहारे से पैदा कर लेते जो मतलब वो होते हो।
4: पानी ज्यादा ना हो?
5: ना पानी को भी साधन नहीं थी, ना इंजन थी, ना खाद, कोई उर्वरक थे ही नहीं जिससे। अच्छा। पैदा हो सारे जो पैदा हो जाते वो बस भय खाद पकाते।
4: अच्छा तो खेतन में का खाद उद कौन सा डालते फिर जब ना हो तो?
5: देसी खाद डालते।
4: अच्छा पशु सब लोग पालते ही है तब?
5: हाँ पशु सब पालते।
4: अपने यहाँ कौन कौन सी फसलें होती हैं?
5: हमारे यहाँ गन्ना और गेहूँ।
4: अच्छा और फसलें क्यों ना करता आपके यहाँ?
5: और फसल करते हैं कि गैया हमारे यहाँ कम से 500-600 गाय है।
4: अच्छा
5: कोई चीज को मिलने ना देती, रात भर खेत में रखाओ तो क्या करें भाई।
4: अच्छा इस वजह से आप और फसलें ना कर पा रहे हो?
5: और फसलें करिए ना साउथ इंडिया।
4: तो गन्ना की कौन कौन सी वैरायटी आपके यहाँ?
5: गन्ना की वैरायटी जी अर्ली में है।
4: अच्छा तो 0238 तो ना है आपके पास?
5: ना जी ना जी तो सूख गो कोई ना बोरो।
4: अच्छा देखो आपने बताया कि पहले इतने साधन ना है, पानी ना हो, इतनी खाद दवाई ना ही, तो कम पैदावार मिलती हुई
5: फसल का मतलब ऐसी हल्की पैदावार मिलती, खान खून भरे हो जाते जिसके कोई मतलब तरक्की ना थी ना कोई उन्नति कर पाऊ थे।
4: आज जो आधुनिक नई नई मशीन आ गई है, नई नई तरीका वैज्ञानिक तरीके से खेती हो रही है, इससे लाभ बहुत है?
5: हाँ इससे मतलब लाभ है, पैदावार भी बढ़ी जाएगी।
4: लेकिन कुछ बड़े बूढ़े से बात होती है तो भैया कहते हैं कि देखो पैदावार तो बढ़ गई लेकिन जो अंग्रेजी दवा लग रही है जैसे बीमारी ज्यादा बढ़ निकली।
5: हम बीमारी तो पता ना इससे बढ़ती है या कुदरती लगती है भाई, इसको कैसे कह दी जाए।
4: हाँ वो तो है लेकिन कहीं ना कहीं जो अंग्रेजी दवाई को असर तो है। खैर
5: ना खैर असर तो है।
4: हाँ हाँ
5: भाई देखो पहले अन्न जो थो मतलब बगैर खाद पानी थो वो उसमें ताकत ज्यादा ही। अच्छा बीमारी कम ही। अच्छा अब जाए बीमारी ज्यादा है मतलब वो अन्न जरूर पैदा हो ज्यादा है वो
4: बिल्कुल,
5: लेकिन कुछ असर तो जाता है उसको दवाई।
4: अच्छा पहले के लोग की जाँच कराएगा?
5: टी जाँच पहले ढाक कराऊ थी, पहले कोई सुविधा ना आई जाँच कराऊ।
4: पशु पालते हो आप?
5: हाँ हाँ।
4: काका है वह?
5: और भैंस है हमारे पल्ले में।
4: पहलू पालत हो गए यहाँ पर? बाबू पाल
5: तो फिलहाल आप तो गाय नहीं पालते हैं और तो भैंसे रह गई है और कोई चीज ना है।
4: अच्छा पहले ज्यादा पालते?
5: हाँ पहले गायों थी और भैंसे रखा थे जोतन वाले।
4: हाँ एक बात बताओ जैसे आज के हम लोग हैं और पैदावार ज्यादा ही रही है, कमाईयों के साधन ज्यादा है, लेकिन पहले के लोगों के पास कमाई के साधन ना है और फसलों ज्यादा ना होती, नौकरी उकरी ज्यादा ना ही, इसके बावजूद भी पहले के लोगों को सुकून हो, लेकिन आज की युवा पीढ़ी को सुकून ना है, जा से जुए कैसे हम लोग उनको छुटकारा मिल सकते हैं कि हमें सुकून रहे और सही रहे हम लोग।
5: बात यह है पहले आदमी जो कम पैदा होते तो सही आदमी चैनमय हो, बीमारी मारी ज्यादा ना ही। अब जो है मतलब पैदावार ज्यादा हुई लेकिन परेशानी थोड़ी बहुत ज्यादा बढ़ी है, बहु बढ़ने लगी है, दवाई चक्कर में परेशानी बढ़ लगी, तो उस वजह से आदमी परेशान है।
4: अच्छा, कुल मिला के जो कहो आप भाई बात पर आए गए कि जो हम अंग्रेजी दवा जो लगा रहे हैं खेतन में, जहाँ तक कहीं ना कहीं नुकसान ही होगा। अच्छा, हमारी सरकार कह रही है कि और हमारे जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि जो खेतन में हम अंग्रेजी दवाई लगा रहे हैं, यूरिया को प्रयोग अनाज शनाप करना है, जैसे मिट्टी भी खराब हो रही है और हम लोगों को बीमारी ही रही है, तो सरकार ने अब यूरिया पर प्रतिबंध लगा हुआ है। आप एक बुजुर्ग किसान हो तो आपके अनुसार जो सरकार कह रही है कि यूरिया ज्यादा अपने खेतन में मत डालो, तो आपके अनुसार सरकार को जो कहना सही है या गलत है?
5: भाई तो वैसे मतलब सही, लेकिन अब बात जाए कुछ आदमी जब लगा रहे हो अगर कुछ कम मिलेगी तो उसमें शक्ति मतलब फसल बढ़िया ना होगी कोई बात कुछ दिन के लिए।
4: देखो हमारे जो किसान साथी हैं अधिकतर जय बात कर रहे हैं कि सरकार यूरिया बहुत कम दे रही है, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि हमारे सुना है कि हमारे आदत में शामिल ही गई जो बात, जब आप पहले खेती करते तो उस समय यूरिया डालते इतनी?
5: उस समय यूरिया मतलब ही है ना, जब पहले
4: तो आप खेती कैसे करते? देसी खाद से?
5: देसी खाद से मतलब वो होती
4: और ढेंचा वगैरह हरी खाद के लिए बोझे हो गए। तो अब पहले के तरह अगर हम फिर से इन यूरिया को छोड़ के और जो उर्वरक है उनको छोड़ के अगर पहले की तरह हम देसी खादन पर हरी खादन पर आ जाए तो न यूरिया का प्रयोग कम ना हो निकले फसल में?
5: बात ये है कि मतलब अभी तो आदत बनी हुई है यूरिया की है।
4: हाँ,
5: यूरिया की आदत बनी हुई है, वो फसल उससे उठा लेते। अच्छा, घर के अगर चीज ना मिलेगी तो फसल देसी मतलब चलेगी तो मतलब बाजार में थोड़ी चलेगी
4: ना, खैर चलेगी तो अब हम देसी खाद डालो और देसी खाद ना मिल रहा तो हरी खाद को प्रयोग करो और वर्मी कंपोस्ट डालो, जो केंचुआ खाद है बाकी ला डालोगे तो यूरिया वगैरह को प्रयोग ज्यादा ना करने पड़े, है ना? तो हम आपसे एक आशा करेंगे कि आप अपने ज्यादा ना तो आप अपने परिवार से शुरू करोगे कि यूरिया को हम प्रयोग ना करें। देखो हम आप किसी के ना किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं और सरकार की बात को सुन रहे हैं अपने रेडियो के माध्यम से और भी कई तरीका के समाचार पत्रों के माध्यम से या फिर टीवी के माध्यम से, और जो हमारी सरकार कह रही है कि जो खेतन में हम अनाज शनाप उर्वरक उनको प्रयोग कर रहे हैं बाकी प्रयोग ना करें, तो जहाँ मैं हम सब लोग मिलकर साथ देंगे और आप बुजुर्ग लोग अगर हम लोग उनको थोड़ा सो समझाएंगे तो हम उम्मीद है कि हम लोग जो आदत में हमने अपनी शामिल कर ली है उसको भूल जाएंगे। आपने फार्मा रजिस्ट्री करा ली?
5: हाँ।
4: अपने परिवार में सबने करा ली?
5: हाँ, परिवार में फार्मा रजिस्ट्री बनी हुई रहती है।
4: चलो बढ़िया है, हम आपके माध्यम से अपने किसान साथियों से कहना चाहेंगे कि जिन किसान साथियों ने फार्मा रजिस्ट्री ना कराई हो वे जल्द से जल्द फार्मा रजिस्ट्री जरूर कराएं। अंत में हमारे किसान साथियों से क्या कहना चाहेंगे, उनकी फसल भी अच्छी हो और लागत भी कम आवे, जाके हमारे किसान साथी किस तरह से खेती करें?
5: रूपरेखा बदली जाएगी, हरी खाद लगा करके और करके देसी खाद पड़े।
4: बिल्कुल आपने सही बात कही कि अगर हम देसी खाद हरी खाद की तरफ को बढ़ जाएं, जो हमारी आदत में शामिल है अनाज शनाप और उर्वरक को प्रयोग करना उसको थोड़ा सो आदत से भूल जाएं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों की लागत भी कम आवे और पैदावार पर कोई असर ना पड़े। ठीक है, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: भैया बहनों, अभी हमने श्री राम प्रसाद जी से जो बातचीत करी हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और भैया देखो, इस बातचीत के माध्यम से हमने आप तक जानकारी जो देना चाहें कि आप जैविक खेती की तरफ बढ़ें, क्योंकि आज अगर हम ना समझे हम ना चेते तो जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है उसको बहुत ही भयंकर परिणाम देखने को मिला है।
3: हाँ भैया, और खेती बाड़ी की लागत को अगर

0: काम करना है तो हमें जैविक खेती को अपनाना ही पड़ेगा।
1: बिल्कुल भैया,
0: उससे हमें एक तो लागत कम होगी और साथ ही जो अनाज हम खाते हैं वो हमें शुद्ध और स्वादिष्ट मिलेगा।
1: हाँ, और हम सब लोग स्वस्थ रहेंगे।
0: और भैया अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं क्योंकि अब समय हो चला है कृषि संकेत कार्यक्रम का।
1: बिल्कुल भैया,
0: तो कृषि संकेत कार्यक्रम में आज जो हमारी जानकारी का विषय है वो है पशुपालन के साथ साथ कुटीर उद्योग।
1: बिल्कुल भैया, देखो वैसे ये कहता ना कि एक काम से काम ना कर चलते हैं। इसी तरह से पशुपालन और खेतीबाड़ी के साथ साथ अगर हम कोई उससे जुड़ो सहायक धंधो कर लें तो सोने पे सुहागा ही जाए, यानी हमारा मुनाफा दोगुना ही जाए। तो हमें ऐसे काम कुटीर उद्योग करने चाहिए जिससे जो हम खेती में काम कर रहे हैं उसी के जो अवशेष हैं या फिर उससे जो और चीजें हैं उसी से हम कोई ना कोई नई चीज बनाकर उससे पैसा बना सकें। जैसे अगर बात करें पशुपालन की।
0: हाँ भैया, जैसे पशुपालन में हमें पशुओं से दूध मिलता है तो दूध बेचने की बजाय हम सीधे पनीर बनाए, खोया बनाए, घी बनाए, मक्खन बनाए, दही जैसे उत्पाद बनाकर अगर हम अपने स्थानीय बाजारों में आसपास भेजें तो हमें जो है इससे मूल्य भी इसका ज्यादा मिलेगा और मुनाफा भी अच्छा होगा। जैसे भैया गाय भैंस के गोबर से अच्छी गुणवत्ता वाली जैविक खाद भी हम तैयार कर सकते हैं जिसका उपयोग अपनी हम खेती बाड़ी में करके अपनी खेती की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और जैसा कि पीछे हमने बातचीत करी, हमें शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन अन्न प्राप्त होगा जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब ना हो।
1: बिल्कुल, तो साथियों आप पशुपालन करें और उससे दुग्ध उत्पादन से जो है अन्न और उत्पाद बनाकर आप अतिरिक्त आमदनी करें। इसके अलावा गाय के गोबर से जैसे भैया ने बताया कि देसी खाद बनावें, बाकी अलावा आप अनेक तरीका के खिलौना भी आप बनाए जा रहे हैं, दिया बनाए जा रहे हैं, अनेक चीज़ें बनाई जा रही हैं, मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं, तो ऐसे आप काम को आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा किसान साथियों देखो एक मशरूम की खेती, वो भी एक ऐसी खेती है जो हमारे खेत में जैसे पुआल है या फिर भूसा है जो उसी से हम मशरूम की खेती अपने छोटे से कमरा में घर पर ही आसानी से कर सकते हैं।
0: हाँ भैया, इसके बाद अगर हम बात करें शहद उत्पादन की तो ये भी हमारा जो है खेतीबाड़ी से संबंधित उद्योग है। खेतों के बीच मधुमक्खी बॉक्स लगा के हम मधुमक्खियों से जो है शहद पैदा कर सकते हैं, बना सकते हैं। साथ ही इससे फायदा हमारी फसलों को यह है, जो परागण क्रिया होती है ना वो बेहतर होती है जिससे पैदावार बढ़ती है और शहद और मोम की सीधी बिक्री से हमें भैया मुनाफा भी अच्छा मिलता है।
1: बिल्कुल भैया, जाके अलावा अभी जो हमने बातचीत करी गोबर की, तो उससे आप वर्मी कंपोस्ट भी बना सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट बनाकर अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं।
0: हाँ भैया, जैसे केंचुए वाली खाद बना के हम अपनी खेती बाड़ी में तो इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी भैया उनके छोटे छोटे पैकेट बना के हम बाजार में उनकी बिक्री भी कर सकते हैं। और आज के समय में इसकी गुणवत्ता को देखते हुए और इससे जो फसल में पैदावार बढ़ रही है और उर्वरा शक्ति बढ़ रही है, इसकी मांग जो है हमारी बाजार में बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
1: बिल्कुल भैया, और जाके अलावा भैया ना जैसे गेहूं है, धान है, इसके जो डंठल होता है हमने देखिए बाजार में बाकी डलैया होती हैं और जो सूप वगैरह है जो इन्हीं चीजों से तो बनते हैं। और जैसे मूंज है, बागे मूंज के बानू बन जाते हैं, बहुत से हमारे किसान साथी बना रहे हैं घर पर बान, और भी कई तरीके की चीजें उससे बनाई जाती हैं। और बांस है, और बांस की पत्तियां से है, और भी कई तरीके के पत्ता है, उनसे जो चटाई टोकरी और भी कई तरीके के सजावटी सामान बड़े आसानी से बना कर हमारे भैया बहन अतिरिक्त आमदनी कर सकते हैं।
0: हाँ भैया, और हमारी जो ग्रामीण महिलाएं उन्हें घर बैठे इन चीजों से जो है रोजगार मिल जाता है और अच्छी आमदनी प्राप्त होती है और लागत होती है। बिल्कुल शून्य।
1: बिल्कुल भैया, देखो काम भैया चाहे कोई भी हो, अगर हम बात को अच्छी तरीके से ठान लेंगे तो वो काम बड़े आसानी से हो जाए। तो भैया बहनों, हमें उम्मीद है कि आप खेती और पशुपालन के साथ साथ कोई ना कोई कुटीर उद्योग करके अपनी आमदनी को दोगुना करेंगे।
0: तो भैया ये तो बात रही कार्यक्रम कृषि संकेत की, अब क्यों ना अपने कार्यक्रम अपने किसान साथियों को कल के कार्यक्रम के बारे में बता दो जाए कि कल हम अपने किसान साथियों के लिए क्या सुनवाएंगे। किसान साथियों, कल आपको सुनवाई जाएगी एक चर्चा गंगा दशहरा व गन्ने में कीट प्रबंधन के विषय में। साथ ही सुनवाई जाएगी एक भेंट वार्ता, विषय होगा खरीफ में बीज शोधन व भूमि शोधन का महत्व। जय विषय पर बातचीत के माध्यम से जानकारी देंगे आप अनुज बंसल और आपसे बातचीत कर जानकारी कराएंगे हमारे भैया प्रवीण। साथ ही लोकगीत कार्यक्रम से मनोरंजन लोगी सुनवा के मनोरंजन करवाया वो, और कृषि संकेत कार्यक्रम में पशुओं में टीकाकरण संबंधी जानकारी दिलवाई जाएगी।
1: और क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक 11 मां बहड़ी में जो पड़ता है, बरेली में जो पड़ता है, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको पहुंचाई जाएगी। अब वो भैया अपने साथियों के लिए कल के मौसम की जानकारी दे दें।
0: हाँ,
1: तो साथियों कल 41 डिग्री सेंटीग्रेड उच्चतम तापमान और 26 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है, और भैया इसमें बादल उदल होने की कोई संभावना ना है, इसलिए गर्मी बहुत पड़ी, आप सही तरीके से ढक धोप कर आए। और 37 से 53% तक वायुमंडली नमी रहने का अनुमान है, और हवा 9 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह सकता है।
0: और भैया अब समय कितनी इजाजत ना दे रहा है, तो अगले कार्यक्रम तक अपने भैया अखिलेश
1: और हेमपाल भैया को देवोन्मति
0: राम, राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7 बजे हैं। अब सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आस पास।

रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में इस सप्ताह क्या हुआ खास, आप तक वो जानकारी पहुंचाने का हमारा प्रयास, साप्ताहिक कार्यक्रम आसपास। आसपास के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। आसपास के आज के इस अंक में शामिल है, इमामबाड़ा किला रामपुर में नवे इमाम हजरत तकी अलैहिस्सलाम का निकला शबीह ताबूत। इससे पहले लखनऊ से आए मौलाना अंबर आब्दी ने मजलिस को किया खिताब। जिलाधिकारी रामपुर अजय कुमार द्विवेदी राहे रजा स्थित अपने आवास से कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय पहुंचे पैदल, लोगों से तेल बचाने का किया आह्वान। 18 मई को नजर आया जिलहिज का चांद, 28 मई को मनाई जाएगी ईद उल अजहा, काजी शहर सैयद खुशनूर मियां ने दी मुबारकबाद। रामपुर बस स्टैंड पर 21 मई को स्काउट गाइड ने लगाया जल शिविर। शिविर का जिलाधिकारी रामपुर अजय कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने लोगों को पानी पिलाकर किया शुभारंभ। इस संबंध में सचिव ओम प्रकाश सैनी ने दी जानकारी। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को कर रहा पार, गर्मी की शिद्दत से लोग परेशान, पर्यावरणविद डॉक्टर बेबी तबस्सुम ने बताई जंगलों के कटान को गर्मी की वजह। नवी इमाम हजरत तकी अलैहिस्सलाम की शहादत पर इमामबाड़ा किला रामपुर में मजलिस हुई। मजलिस में मिर्जा तकी बेग ने ये सोजो सलाम पढ़ा।

लखनऊ से आए मौलाना अंबर आब्दी ने मजलिस को खिताब करते हुए कहा।

0: जिलाधिकारी रामपुर अजय कुमार द्विवेदी तेल बचाने के लिए राहे रजा स्थित अपने आवास से कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय पैदल पहुंचे। जिलाधिकारी ने तेल बचाने की अपील करते हुए कहा,
1: जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा जो देशवासी है ईंधन की बचत करें, उसी के क्रम में मैं और मेरे सभी अधिकारियों को मैंने निर्देशित किया है कि यथासंभव ईंधन की बचत करें। मैं आपके माध्यम से जनपद वासियों से भी अपील करूंगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, ई रिक्शा का यूज़ करें, छोटी मोटी दूरी पर अगर जाना है तो साइकिल का भी बाइसिकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग ईंधन को बचाएं, क्योंकि बड़ी मात्रा में जो ईंधन है वो इम्पोर्ट किया जाता है, आयातित किया जाता है, जिस पर बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है, तो उसको बचाने के लिए आवश्यक है कि हम कम से कम जो है ईंधन का इस्तेमाल करें। और इसमें एक पंथ दो काज हैं, एक तरफ जहां हम ईंधन की बचत करते हैं, जो इम्पोर्ट है उसको कम करते हैं, उसके साथ ही ईंधन अगर कम चलेगा तो पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित रहेगा।
2: डीजल और पेट्रोल को लेकर के जिले में क्या स्थिति है?
1: देखिए, स्थिति सामान्य है, लेकिन जैसा कि आप सभी विदित हैं कि जो खाड़ी देशों में जिस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, उसके मद्देनजर यह आवश्यक है कि हम अभी से अपनी तैयारी रखें और सचेत रहना जरूरी है, और उसके लिए आवश्यक है कि हम ईंधन की खपत को कम करें।
2: वाहन वालों से क्या अपील करेंगे?
1: मैं यही आपके माध्यम से जनपद वासियों से ये अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, और जैसा कि कार पूलिंग जो शब्द है, मैं कहूंगा कि कार पूलिंग करें। अगर लोगों को जाना है तो एक ही वाहन से कई लोग एक साथ जा सकते हैं और आ सकते हैं। कुल मिला के हमारा उद्देश्य है कि कम से कम ईंधन की खपत।
0: 18 मई को जिलहिज का चांद नजर आया। जिला काजी सैयद खुशनूर मियां ने 28 मई को ईद उल अजहा का ऐलान करते हुए कहा,
3: मैं सैयद अहमद अली उर्फ खुशनूर मियां खतीब जामे मस्जिद व काजी जिला रामपुर, आप लोगों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करता हूँ।

0: जानवर की करें, ममनुआ जानवरों की न करें।
1: 21 मई को रामपुर बस स्टैंड पर जिला अधिकारी रामपुर अजय कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक सुमेंद्र मीणा ने स्काउट गाइड द्वारा लगाए गए जल शिविर का लोगों को पानी पिलाकर शुभारंभ किया। इस बाबत स्काउट गाइड सचिव ओम प्रकाश सैनी ने हमें बताया।
2: निःशुल्क शीतल जल सेवा शिविर का आयोजन दिनांक 21 मई 2026 से 30 मई 2026 तक रोडवेज परिसर रामपुर में किया जा रहा है। शिविर के प्रथम दिन जिलाधिकारी श्री अजय कुमार द्विवेदी एवं पुलिस अधीक्षक श्री सुमेंद्र मैडम द्वारा यात्रियों को जल पिलाकर इसका शुभारंभ किया गया।
1: तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है, इतनी गर्मी का क्या कारण है? इस संबंध में पर्यावरणविद डॉक्टर बेबी तबस्सुम ने हमें बताया।
3: कुछ साल पहले तक मई और जून की गर्मी का एक अलग अनुभव होता था, लेकिन आज हम महसूस कर रहे हैं कि गर्मी की तीव्रता लगातार बढ़ती जा रही है। कई जगह तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लोग घरों से निकलने में डरते हैं, बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग अधिक प्रभावित हो रहे हैं और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक तथा डिहाइड्रेशन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी शदीद गर्मी हो क्यों रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक प्राकृतिक परत होती है जिसे हम वातावरण कहते हैं। यह वातावरण सूर्य की गर्मी को संतुलित रखता है, लेकिन इंसानों की गतिविधियों ने इस संतुलन को बिगाड़ दिया है। उद्योगों, कारखानों, वाहनों और जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, पेट्रोल और डीजल के अत्यधिक उपयोग से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें निरंतर बढ़ रही हैं। इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है। ये गैसें सूर्य की गर्मी को पृथ्वी के आसपास रोक लेती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। श्रोताओं, दूसरा बड़ा कारण है पेड़ों की कटाई। पेड़ केवल छाया ही नहीं देते, बल्कि वे हमारे पर्यावरण के संतुलन के रक्षक भी होते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन बढ़ती आबादी, शहरीकरण और निर्माण कार्यों के कारण बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। जब पेड़ कम होंगे तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड हटाने वाले प्राकृतिक साधन भी कम हो जाएंगे। तीसरा प्रमुख कारण है बढ़ता शहरीकरण। आज शहरों में हर जगह कंक्रीट की इमारतें, सड़कें और बड़े बड़े निर्माण दिखाई देते हैं। ये कंक्रीट और डामर दिन भर सूर्य की गर्मी को अपने अंदर जमा करते हैं और रात में धीरे धीरे छोड़ते हैं। इस कारण शहरों का तापमान आसपास के क्षेत्रों से अधिक हो जाता है। इसे अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव कहा जाता है। इसके अलावा जंगलों में आग लगना, प्रदूषण बढ़ना, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन और ऊर्जा की अनावश्यक खपत भी गर्मी बढ़ाने के महत्वपूर्ण कारणों में से हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इसका असर क्या पड़ रहा है? इस बढ़ती गर्मी के कारण मौसम का प्राकृतिक चक्र प्रभावित हो रहा है। कहीं अत्यधिक बारिश हो रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और कई जीव जंतु अपने प्राकृतिक आवास खो रहे हैं। मानव स्वास्थ्य पर भी इसका गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। हीट स्ट्रोक, थकान, डिहाइड्रेशन, त्वचा संबंधी समस्याएं और सांस की बीमारियां निरंतर बढ़ रही हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। श्रोताओं, अक्सर लोग सोचते हैं कि ये केवल सरकारों और वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसका समाधान हमारे छोटे छोटे प्रयासों से भी शुरू किया जा सकता है। सबसे पहला कदम है अधिक से अधिक पेड़ लगाना। यदि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने का संकल्प ले तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। दूसरा कदम है ऊर्जा की बचत। अनावश्यक बिजली के उपकरण बंद रखें, LED बल्बों का उपयोग करें और बिजली की बर्बादी रोकें। जितनी कम ऊर्जा व्यर्थ होगी उतना ही कम प्रदूषण होगा। तीसरा कदम है सार्वजनिक परिवहन का उपयोग। जहां संभव हो बस, मेट्रो या कार पूलिंग का उपयोग करें। छोटी दूरी के लिए पैदल चलें या साइकिल का उपयोग करें। चौथा कदम है प्लास्टिक और प्रदूषण को कम करना। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, इसका उपयोग कम से कम करें। और पांचवा महत्वपूर्ण कदम है जागरूकता फैलाना। अपने बच्चों, परिवार और समाज को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में बताना।

0: चाहिए।
1: आसपास के आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखें। हमारा पता है आसपास कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर पिन 244901। इसी के साथ संपन्न होता है क्षेत्रीय गतिविधियों की रिकॉर्डिंग पर हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आसपास।
2: वाचन एवं संकलन सुहेल जैदी का और प्रस्तुति राजीव सक्सेना की थी।

अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम आसपास, आकाशवाणी का ईरानपुर केंद्र है। अब सुनिए कुछ महत्वपूर्ण संदेश।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी देर में यानी 7:31 पर हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत के अंतर्गत गजलें। आज के कलाकार होंगे अनूप जलोटा। आज रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत गाता चल। 9:30 का समय रहेगा आकाशवाणी रामपुर द पॉडकास्ट शो। इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे भेंट वार्ता, जिसमें जानकारी का विषय होगा उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका और आयाम। इस भेंट वार्ता में डॉक्टर विनोद कुमार जैन से बातचीत करेंगे विक्रांत चौधरी। कार्यक्रम सुनना ना भूलिएगा आज रात्रि 9:30 पर। आज रात्रि 10 बजे आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। इसी के साथ हमारी कल सवेरे आप सुन सकेंगे 6:05 पर भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना चिंतन। इस कार्यक्रम का समय रहेगा कल सवेरे 6:30 पर। 6:35 पर सुनना भूलिएगा कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश। इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा बच्चों की नेत्र सुरक्षा। जानकारी आप तक पहुंचाएंगे डॉक्टर गिरिजेश केन। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ई रामपुर केंद्र है। आपसे थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आया। बिल भरने के पहले तो आ

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश, कहा बिजली उत्पादन इकाइयों को पूरी दक्षता से किया जाए संचालित। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा, मार्को रूबियो कल आगरा में ताजमहल का करेंगे दीदार। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न, प्रदेश के 9 परीक्षा केंद्रों पर नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए किए गए विशेष इंतजाम। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक तापमान में वृद्धि और लू चलने की जताई संभावना। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के बीच प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों सहित प्रदेश के प्रत्येक उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत की उपस्थिति में ऊर्जा विभाग, पावर कारपोरेशन एवं डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए उत्पादन इकाइयों की अधिकतम क्षमता का उपयोग किया जाए और सभी संयंत्रों में तकनीकी दक्षता तथा रखरखाव व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने ट्रांसमिशन नेटवर्क को और अधिक मजबूत, आधुनिक एवं भरोसेमंद बनाने पर जोर देने के साथ ही फीडर वाइज मॉनिटरिंग करके जवाबदेही तय करने और शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने आंधी तूफान के बावजूद विद्युत व्यवस्था बहाल रखने के लिए त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम सक्रिय रखने को भी कहा। दीपाली सिंह, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। अमेरिकी विदेश मंत्री कल आगरा में ताजमहल का दीदार करेंगे। वो विशेष वायुयान से आगरा पहुंचेंगे। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिकी विदेश मंत्री का काफिला खेरिया एयरपोर्ट से शिल्पग्राम पहुंचेगा। शिल्पग्राम से बैटरी चलित गोल्फ कार्ट में बैठकर वह ताजमहल के पूर्वी गेट पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री के आगरा भ्रमण के मद्देनजर केंद्रीय एवं प्रांतीय खुफिया एजेंसी सतर्क हैं। ताजमहल के आसपास के होटलों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। रूबियो भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है। अमेरिकी विदेश मंत्री के ताजमहल भ्रमण के दौरान आम पर्यटकों के लिए ताजमहल खुला रहेगा। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
0: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, कोऑर्डिनेटर और जिलाध्यक्षों के साथ 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस दौरान बसपा प्रमुख मायावती ने उन्हें जीत का मंत्र देते हुए कहा कि प्रदेश में बसपा की एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ता अभी से जुट जाएं। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव जिस प्रकार की नई नई चुनौतियों के बीच हो रहे हैं, उसको देखते हुए पार्टी की तैयारियों को हर स्तर पर और भी चुस्त दुरुस्त बनाने की जरूरत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत आज से 3 दिवसीय प्रवास पर लखनऊ में हैं। सर संघचालक सरस्वती कुंज निराला नगर में चल रहे पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम में प्रशिक्षण लेने आए शिक्षणार्थियों के मध्य बौद्धिक और संवाद के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम में नेपाल सहित अवध, कानपुर, गोरक्ष और काशी प्रांत के 289 कार्यकर्ता प्रशिक्षण ले रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के 9 जिलों प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बरेली में परीक्षा

0: केंद्र बनाए गए थे। एक रिपोर्ट।
1: लखनऊ में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक चली, वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक हुई। इस बार परीक्षा से पहले चेहरा पहचान प्रणाली लागू की गई। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले इस सिस्टम से होकर गुजरना पड़ा। इस परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश से 37,000 से अधिक परीक्षार्थी पंजीकृत थे। परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान कटा है, जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में कोडीन सिरप की अवैध तस्करी मामले की जांच कर रही स्पेशल टास्क फोर्स STF ने कल अदालत में 40,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। जांच में 900 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। इससे पहले भी STF ने अदालत में एक चार्जशीट दाखिल की थी। STF के अधिकारियों ने बताया कि NDPS एक्ट समेत अन्य धाराओं में अदालत में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और अमित टाटा के खिलाफ चार्जशीट कल दाखिल की गई। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी और आसपास के कुछ स्थानों पर कल दिन में तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर रात्रि के तापमान में वृद्धि का भी अनुमान जताया गया है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लू के ऑरेंज अलर्ट के साथ ही विभाग ने कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज हवा चलने का पूर्वानुमान जताया है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आने वाले 3 दिनों में प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ने की संभावना है।

0: क्रम में जारी रहेगा।
1: हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में कल होने वाले गंगा दशहरा पर्व को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस प्रशासन ने आज डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से मेला क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं अमरोहा में भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज से रूट डायवर्जन लागू किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर गंगा स्नान के लिए आज से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट पहुंच रहे हैं। उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए घाटों पर पीएससी फ्लड पीएससी फायर टेंडर्स के साथ एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। इसके साथ ही यातायात को सुचारू रखने के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। नदी में बैरिकेडिंग कराने के साथ गोताखोर और नाविक भी तैनात रहेंगे। मेला क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। 3 दिनों तक चलने वाले गंगा दशहरा मेले में श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह ठंडे पानी की आपूर्ति के लिए वाटर कैंपर और वाटर टैंकर की व्यवस्था की गई है। रविंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
1: सशस्त्र सीमा बल द्वारा आज लखनऊ में संडे ऑन साइकिल के 75वें संस्करण के अंतर्गत फिट इंडिया साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सीमांत मुख्यालय लखनऊ एवं चतुर्थवाहिनी के अधिकारियों और बल कार्मिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ईंधन की बचत, पर्यावरण संरक्षण और लोगों को फिट एवं स्वस्थ रहने के प्रति जागरूक करना था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश, कहा बिजली उत्पादन इकाइयों को पूरी दक्षता से किया जाए संचालित। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा, मार्को रूबियो कलाग्रा में ताजमहल का करेंगे दीदार। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न, प्रदेश के 9 परीक्षा केंद्रों पर नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए किए गए विशेष इंतजाम। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक तापमान में वृद्धि और लू चलने की जताई संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
4: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 7:31 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में सुनिएगा गजलें। कलाकार हैं अनु जलोटा और अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन।

अभी आप सुन रहे थे अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन और अनूप जलोटा के स्वर में कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत गजलें। ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। अब आपको सुनवाते हैं फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत गाता चल।

गीत गाता चल कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को दीपिका का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत सुनने के लिए हम तक मैसेज आया है ग्राम बाघा मुंडा कुमा खान छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद और प्रकाश का। इन्हीं के साथ हैं गायत्री यशवर्धन और यशस्वी देवांगन। कार्यक्रम के पहले गीत को हम आपको सुनवा रहे हैं इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हमको मैसेज आया है अभिजीत गवाणकर सरिता गवाणकर प्रिंस एकांश गवाणकर का। बदलापुर मुंबई से सुनने वाले हैं प्रणिता सिद्धांत और इनके साथी। आकार हाइट्स बहादुर नागपुरा से हैं। वैशाली सुमित और ध्वनि गवाणकर ये सभी हमारे श्रोता साथी हैं आकार हाइट्स नागपुर के। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से इस गीत के लिए खत भेजा है राजेश कुमार वर्मा प्रीति वर्मा कार्तिक आर्यन ने। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हैं मुन्ना भाई पिंकी आर्यन कृष्णा और पीहू सुनकार। डोगरगांव छत्तीसगढ़ से इस गीत को सुनने के लिए हम तक खत भेजा है राष्ट्रपाल गजभिये राधिका बीबी अनिष्का और तन्मय ने। भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से सुनने वाले हैं रोशन कौशल्या हेमलता और डिंपल देवांगन। रायगढ़ बिहार से इस गीत को सुना चाहा है उमा राज पवन संजय दीपक और कमल ने। खंडवा से हैं राधिका अनिता सपना और राकेश। झील रोड रायगढ़ से इस गीत को पसंद किया है निशा उमा जानवी और चंद्रनगर सहारनपुर से इस गीत को सुना चाहा है देवशंकर प्रभा रानी यादव सुरेश यादव और नरेंद्र यादव ने। राजकोट से इस गीत को सुनना चाहा है हेमा सुधा और संध्या ने। सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से हैं दीपक विजय और अनुश्री ढींगरा।

कबीर रेडियो लिसनर्स क्लब लोनी से इस गीत को पसंद किया है प्रकाश वीर राजपूत ने।

मंडी शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। राजा बाजार चौक भी है आरा से हैं पूनम, संगीता, बीना और प्रतिज्ञा। गोला बाजार बक्सर से हैं बीना, सविता, पूनम, पूजा, रोशनी, अमृता, सुरभि और खुशबू। लीजिए सुनिएगा इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये गीत। सोनू निगम, अलका याग्निक और उदित नारायण के स्वर में। फिल्म है मेरे यार की शादी।

सोनू निगम, अलका याग्निक और उदित नारायण के स्वर में अभी आपने सुना कार्यक्रम का ये गीत। आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर महाराष्ट्र से इस गीत को सुना चाहा है विजय, रतनमाला, आरती और ओम कुमार ने। पुराना तालाब डुमराव से सुनने वाले हैं बलीउल्ला अंसारी, असमानाज अंसारी और शबनम बानो। जेल रोड बक्सर से इस गीत को सुनने के लिए खत भेजा है राज एसटी अंसारी ने और इन्हीं के साथ हैं फातमा नाज। चमन पार्क दिल्ली से खत आया है डॉक्टर सोनम और अदीबा का। दादरी गेट भिवानी से हमें खत भेजा है कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और इनके साथियों ने। कार्यक्रम के इसी गीत को हम आपको सुनवा रहे हैं इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। रहमत नगर छप्पड़ वाली मस्जिद मुरादाबाद से सुनने वाले हैं बाबू अंसारी, शहनाज अंसारी, आफरीन अंसारी, सुमैया महरीन और डॉक्टर अख्तर हुसैन। रामपुर लिसनर्स क्लब नालापार बाग छोटे साहिब रामपुर से सुनने वाले हैं नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद, जमालुद्दीन, सादिया, अक्सा और हमाद। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल। करियाना बरेली से इस गीत को सुनने के लिए खत भेजा है बेनी सिंह सागर, पनीलाल सागर, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, ओमवती भारती, शगुन सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह ने। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से हैं गंगाधर, प्रमोद यमेकर और प्रदीप। छत्रपति संभाजी नगर से सुनने वाले हैं राजेश साबले, राजदीप राजेश, राशि और शीतल राजेश। जसपुर उत्तराखंड से इस गीत को सुनना चाहा है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, रानी, तबस्सुम, रुखसार और मोहम्मद आशिफ ने। जतुका किशनपुर से इस गीत को सुनना चाहा है आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, फिरोज और चांदनी नाज ने। कोकिलवारा और आई जिला मुजफ्फरपुर से हैं मोहम्मद फैसल शेख, नुसरत जहां, शेख टोली समस्तीपुर से हमें खत भेजा है मोहम्मद शाहनवाज परवेज और मुसरत जहां ने। बेड़ी से हमें खत आया है राजेश, सोनी, कंचन, गायत्री, चंचल, अर्जुन और धीरज का। वंदनगर एयरपोर्ट रोड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से इस गीत को सुनना चाहा है पूजा, बबिता, शोभा, रेखा रघुवंशी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, परी, ललित, गणेश और कार्तिक ने। लीजिए सुनिएगा इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर फिल्म आशिकी से कुमार सानू के सुर में ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। गांव नथाना पंजाब से इस गीत को सुना चाहा है हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी और इनके साथियों ने। बठिंडा पंजाब से सुनने वाले हैं पमीर सिंह, मनजीत कौर, करणवीर, तपिंदर, कुलदीप, सिमू, दमन और इनके बहुत सारे साथी। कार्यक्रम के इसी गीत को हम आपको सुनवा रहे हैं इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से हमें खत भेजा है जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने। जामा मस्जिद रोड से इस गीत को सुनना चाहा है हाजी इस्तेहाक मोहम्मद उमर और हाजी अयूब शेरी ने। कार्यक्रम के इसी गीत को हम आपको सुनवा रहे हैं बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से इस गीत को सुनना चाहा है नैना, कपिल, शोभा और फुंदीबाई ने। ग्राम घाटमपुर जिला रामपुर से हमें मैसेज भेजा है रामभजन सैनी, हरप्यारी सैनी, राजीव, संजय, मुकेश, आशा, अंशिका, पूजा और रामप्रकाश सैनी। गांधी समाधि रोड रामपुर से इस गीत को सुनने वाले हैं हाजी गफार का, राजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, शिनाज बाबू अंसारी, हबीब अहमद इदरिसी और इरफान खान। जलालाबाद से इस गीत को सुनना चाहा है सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और नमिता आहूजा ने। झील रोड रायगढ़ से सुनने वाले हैं नरेंद्र, महेंद्र और जानवी। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से इस गीत को पसंद किया है लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, निशा परवीन और इनके साथियों ने। तख्तपुर छत्तीसगढ़ से इस गीत को सुनने के लिए मैसेज आया है रमेश कुमार, मीरा देवी, गंगा देवी और मिश्री देवी का। इसी गीत को पसंद किया है जावेद अख्तर राही, शमशुल कमर राही, बेगम रुखसार, शमीम अख्तर राही, रकीबा शाहीन, तूबा और शमीम का। ये सभी हमारे श्रोता साथी हैं रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से। लेवा खेल मोहल्ला चांद्र बिस्वा से इस गीत को पसंद किया है नारायण भाऊ, ललिता, परी खड़से, स्वाति चौधरी और प्रयाग चौधरी ने। कलेर बिहार से इस गीत को सुना चाहा है बेगम इशरत अकरम, वसीम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता रानी शर्मा और पूनम ने। करूला मुरादाबाद से सुनने वाले हैं मिराज भाई अंसारी और मोहम्मद फरीद। बिहार डुमराव से हैं वलीउल्लाह अंसारी और छत्तीसगढ़ से हैं प्रभा। अनारकली बाजार जगराव से हैं कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा और विनोद। लीजिए सुनिएगा इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर एसपी बाला सुब्रमण्यम के सुर में ये गीत। फिल्म है मैंने प्यार किया।

मैं हूं ना इस फिल्म में अभी आपने सुना सोनू निगम और श्रेया घोषाल को, और अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत अलका याग्निक और उदित नारायण के सुर में। इस गीत के लिए फरमाइश आई है जमनी मोहल्ला इस्लाम नगर से मुजफ्फर अली खान, मतीन खान, अल्फिया खान और ईशा खान की। पंजाब से सुनने वाले हैं मिंटू, पिंकी और आरती अरोड़ा। जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से हमें मैसेज भेजा है बाहरुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, बिटिया अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, यासीन अंसारी और सुदेश चौहान ने। कार्यक्रम के इसी गीत को सुनवा रहे हैं इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से सुनने वाले हैं योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत नायक और सुरेश चौरसिया। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से इस गीत को सुनने के लिए हम तक मैसेज भेजा है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी ने। इन्हीं के साथ हैं लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी।

रेलवे रोड गंजुनवारा से हैं मोहम्मद कलीम शमसी, भुवन प्रकाश गौतम और फारूक शेख। मुताला महाराष्ट्र से सुनने वाले हैं विजय, रतनमाला और कुमकुम। अनारकली बाजार जागरण से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक और इनके बहुत सारे साथी। फिरोजपुर पंजाब से इस गीत को सुनना चाहा है स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और शुभदीप ने। तेलंगाना जिला भोंगीर से हमें मैसेज भेजा है मोहम्मद बुरहानुद्दीन, यूसुफुद्दीन और फजान ने। करूला मुरादाबाद से हम तक इस गीत के लिए फरमाइश आई है अयूब खान, इरमगुड़िया और शुएब खान की। तुषार, कुरुणे, प्रसिक, एकता, मेघना, उत्कर्षा, अरुण, ये सभी हमारे श्रोता साथी हैं जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र के। गांव चौहलदा बागपत से इस गीत को पसंद किया है संजय ढीगिया, नमन ढीगिया और अपार ढीगिया ने। बेड़ी से हैं राजेश, सोनी, कंचन, गायत्री, वैष्णवी, चंचल, धीरज, अर्जुन और इनके साथी। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से इस गीत को पसंद किया है ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय और इन्हीं के साथ हैं। दुबिया नेवादा गाजीपुर से श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय और प्रतीक राय। शहबाज कला कस्बा पागबड़ा से इस गीत को सुनना चाहा है मजाहिर हुसैन अंसारी, बेगम रईस अनाज और मुजक्किर बाबू ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से सुनने वाले हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। जतुका किशनपुर से हैं आलम दिलकश, रिजवान राही, आलम शेख और चांदनी नाज। कार्यक्रम के इस अंतिम गीत को आपको सुनवा रही हैं इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर स्टेशन रोड जमशेदपुर से हमें मैसेज भेजा है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू और इनके मम्मी पापा ने। बेड़ी मध्य प्रदेश से इस गीत को सुनना चाहा है हुकुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु ने। जिला हिंगोली महाराष्ट्र से हम तक खत आया है शाहजी बोटके, नंदा बोटके, सारिका, सोनम वासुरेखा का। ईदगाह गेट मुरादाबाद से इस गीत को पसंद किया है शफी अहमद अंसारी और रईस दूल्हा अंसारी ने। मलोट पंजाब से सुनने वाले हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, सायना शर्मा और निवान शर्मा। संगमित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पुफाली जिला से इस गीत को पसंद किया है जयराम, दिशांत कुमार और अर्पिता जी ने। जलालाबाद से हैं सुरेश, पूनम, विशाल और दिशानी।

कार्यक्रम के इसी गीत को हम आपको सुनवा रहे हैं। इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर खुर्जा उत्तर प्रदेश से हैं तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। मोहल्ला बारादरी महमूद खरामपुर से इस गीत को सुनना चाहा है रवत भाई साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, फिरोजा मुस्कान और अफसर अली ने। सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से इस गीत को सुनना चाहा है रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी ने। लीजिए सुनिएगा इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत अलका याग्निक और उदित नारायण के स्वर में। फिल्म है दिल है तुम्हारा।

आप सुन रहे थे गीत गाता चल, आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टी हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंदर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

अच्छा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: अगले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या fcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जाँच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया।

सौंपा गया। 35 वर्षीय ट्रिशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टी हक्काली नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के एफएम गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजुदबेक खालिमबेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। भारत और अमरीका ने नई दिल्ली में आला सतह की बातचीत में तजारती माहदे, तवानाई की यकीनी फराहमी और एक दूसरे के यहाँ आमद और रफ्त को ताबुन के अहम शोबों के तौर पर गर्दाना है। बीजेपी उम्मीदवार दिग्वांशु पांडा ने मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके के लिए दोबारा कराई गई पोलिंग में 1 लाख से ज्यादा वोटों से जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। टीएमसी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। मगरबी बंगाल सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वह मुश्तबा गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए हिरासती मराकज कायम करें।

0: और उनकी आखिरी रस्म भोपाल में भदभदा क्रिमेशन में अदा की जाएंगी। 33 साल ट्विशा की मौत भोपाल में उनके मायके में हो गई थी और उनके कुनबे ने उनके ससुराल वालों पर जहेज के लिए हरासा करने ने उन्हें खुदकुशी पर उकसाने के इल्जाम आयद किए हैं। पुलिस ने ट्विशा के शौहर समर्थ सिंह के खिलाफ एक FIR दर्ज कर ली है, जो खुद वकील हैं। उनकी सास गिरिबाला सिंह साबिक जिला जज हैं, उन पर भी जहेज के लिए हरासा किए जाने के इल्जाम हैं। बहरीन की एक अदालत ने 9 लोगों को उम्र कैद और दीगर 2 अफराद को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। इन अफराद पर ईरान के सिपाही पासदारा ने इनकलाब इस्लामी से मुआवनत करने का इल्जाम था, जिसे हुक्काम ने मुल्क के खिलाफ साजिश और एक दहशतगर्दाना अमल करार दिया था। बहरीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक ये अफराद हसास मकामात के बारे में मालूमात जमा करने और उससे मुतालिक पैसों के लेन देन में मदद करने में शामिल थे। बहरीन की वजारत दाखिला ने इस माह की 9 तारीख को बताया था कि उसने ऐसे 41 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनके मुबैना तौर पर ईरान के सिपाही पासदारा ने इनकलाब इस्लामी से रवाबित थे। 23 साल तक की उम्र वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की पहलवानों ने अपनी उम्दा कारकर्दगी जारी रखते हुए आज वियतनाम के शहर डानांग में सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे जीते। खवातीन के फ्री स्टाइल मुकाबलों में मानसी लथेरा और काजल ढूजक ने सोने के तमगे, स्वीटी और नेहा सागवान ने चांदी के तमगे, जबकि अहिल्या शिंदे ने कांसे का तमगा जीता। मर्दों के ग्रेग रोमन जुमरे में सुमित दलाल ने सोने का तमगा जीता, जबकि नीरज पटेल और रोहित बोरा ने कांसे का तमगा अपने नाम किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में आज एक रेल लाइन पर ताकतवर धमाका होने से कम 24 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हुए। यह धमाका राजधानी क्वेटा में चमन फाटक रेलवे स्टेशन के नजदीक हुआ। इस धमाके में एक रेलगाड़ी को जुजवी नुकसान पहुंचा, जबकि इलाके में खड़ी हुई 10 मोटर गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। इस वाकये के बाद पूरे क्वेटा शहर के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है और सूरत हाल से निपटने के लिए डॉक्टरों और तिब्बी अमले को तलब किया गया है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक इस धमाके के बाद एहतियाती इकदाम के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के नजदीक गोलियां चलने के वाकये के बाद तेजी के साथ कार्रवाई करने पर कानून नाफिज करने वाले हुक्काम और खुफिया सर्विस के अहलकारों का शुक्रिया अदा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि मुश्तबा शख्स की पुरतशद्दुद तारीख रही है और ये वाकया वाशिंगटन में सिक्योरिटी से वाबस्ता गोलीबारी के एक और हालिया वाकये के चंद रोज बाद पेश आया है। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में आला सतह की बातचीत में तजारती मुआहदे, तवानाई की यकीनी फराहमी और एक दूसरे के यहाँ आमदोरफ्त को तआवुन के अहम शोबों के तौर पर गर्दाना है। बीजेपी उम्मीदवार दिग्बांशु पांडा ने मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके के लिए दोबारा कराई गई पोलिंग में 1,00,000 से ज्यादा वोटों से जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। TMC उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। मगरबी बंगाल सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट को हिदायत की है कि वो मुश्तबा गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए हिरासती मराकज कायम करें। हुकूमत ने CBSE के पर्चे दोबारा जांचने से मुतल्लिक पोर्टल की खामियां दूर करने के लिए IIT मद्रास और IIT कानपुर के माहिरीन की खिदमात हासिल की हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में शदीद गर्मी के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। अगले 7 दिन तक यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है और वियतनाम में 23 साल तक की उम्र वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे हासिल किए। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी रामपुर द पॉडकास्ट शो। आज इस कार्यक्रम में सुनिए भेंट वार्ता, जिसका विषय है उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका और आयाम। इस विषय पर डॉक्टर विनोद कुमार जैन से बात की है विक्रांत चौधरी ने। लीजिए सुनिएगा कार्यक्रम द पॉडकास्ट शो।
2: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी रामपुर पॉडकास्ट शो

0: के एक नए अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विक्रांत। श्रोताओं, आज बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि 2020 से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए लगातार केंद्र सरकार प्रयासरत है। चाहे शासकीय स्कूल हों, कॉलेज हों, गैर सरकारी कॉलेज हों, स्कूल हों, विश्वविद्यालय हों, हर स्तर पर इसको लागू करने के लिए, छात्र हित में, देश हित में लागू करने के लिए काम किया जा रहा है। इसी संबंध में आज हमारे बीच में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या कुछ आयाम हैं, उच्च शिक्षा के लिए यानी कि हायर एजुकेशन में क्या कुछ बदलाव हैं, उन पर बात करने के लिए विशेष रूप से एक एक्सपर्ट के रूप में हमारे बीच स्टूडियो में पधारे हैं डॉक्टर विनोद कुमार जैन जी। डॉक्टर साहब, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप प्रिंसिपल हैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में, और लगातार आप कार्य कर रहे हैं एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के संबंध में, जो विभिन्न मॉड्यूल हैं उनको लागू करने के लिए। और आपसे विस्तार में जानेंगे क्या कुछ नई चीजें इस एजुकेशन पॉलिसी में हैं, खासकर ऐसी आयाम, ऐसी चीजें जो आगे भविष्य में चलकर नए शिक्षकों को भी सीखनी चाहिए, यानी कि वर्तमान में जो लोग एजुकेशन के फील्ड में पढ़ रहे हैं और भविष्य के भावी शिक्षक हैं, उनके लिए क्या कुछ बदलाव है, क्या कुछ वो सीख रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा विस्तार से हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या कुछ मुख्य मुख्य बदलाव हैं।
1: राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 2020 लागू की गई गवर्नमेंट ने, तो आप देखें इससे पहले जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई वो 1968 में थी। 1968 के बाद, उसके बाद हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1986 में,
0: जी।
1: और 1986 से अगर 2020 का गैप देखें तो लगभग हमारे 34 साल का गैप है। 34 साल के बाद हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो रिवाइज हुई थी।
0: जी।
1: 34 ईयर के बीच में अगर देखें तो बहुत सारे चेंजेस हमारे देश में आए,
0: देश में आए, दुनिया में बहुत,
1: दुनिया में बहुत सारे चेंजेस आए। उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी एक पॉलिसी तैयार की जिसको हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अभी तक जो शिक्षा दी जाती थी अगर आप देखें तो 10+2+3 के फॉर्म में दी जाती
0: जी।
1: थी, और वर्तमान में जो शिक्षा दी जाती है वो 5+3+3+4 के मॉड्यूल में
0: जी
1: दी
0: जी
1: जाती है।
0: हमारे श्रोताओं को, खासकर जो शिक्षा से सीधे संबंध नहीं रखते, वो शायद ना जान पाए कि 10+2+3 क्या है। 10+2+3 ये है कि 10वीं तक सभी लोगों को सेम कोर्सेज पढ़ने हैं, उसके बाद हमें मौका मिलता है अपनी स्ट्रीम को चयनित करने का। आर्ट्स वाले लोग आर्ट्स में जाते हैं, कॉमर्स वाले कॉमर्स में, और साइंस वाले साइंस में, और उसके बाद ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वो प्रोसेस हुआ करता था। वर्तमान में क्या बदलाव है, डॉक्टर साहब उसको विस्तार से बता रहे हैं। जी
1: 5+3+3+4 को हमने 4 स्टेजेस में बांटा है, 4 स्टेजेस में बांटा है, जिसको हमने कहा है फर्स्ट जो स्टेज है 5 ईयर्स की उसको फंडामेंटल स्टेज कहा है
0: जी,
1: सेकंड जो स्टेज है उसको प्रिपरेटरी स्टेज कहा है, थर्ड जो स्टेज है उसको मिडिल स्टेज कहा है, और फोर्थ जो स्टेज है उसको सेकेंडरी स्टेज कहा है
0: जी।
1: और ये चारों स्टेज मिलके बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट के बारे में बात करती हैं कि किस तरीके से हम बच्चे को जो जन्म के बाद 3 ईयर्स में जब एडमिशन लेता है स्कूल में, तो किस तरीके से हम उसे 12th तक तैयार करें, किस तरीके से वो अपने गांव को, अपने शहर को, अपने राष्ट्र को अपना योगदान दे सके शिक्षा के क्षेत्र में, आगे बढ़ा सके। तो ये चेंजेस एक गवर्नमेंट ने एक पहल की, और पहल के माध्यम से देखा गया कि हम प्राइमरी एजुकेशन को कैसे बेटर कर सकते हैं, मिडिल एजुकेशन को किस तरीके से और बेहतर बना सकते हैं, और हायर एजुकेशन में जो एडमिशंस ले तो ताकि उनका जो योगदान है वो राष्ट्र निर्माण में सर्वोपरि रहे, उसको कैसे बेटर कर सके। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई उसमें ये चेंजेस किए गए कि हम बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास की बात करें कि उसका संपूर्ण विकास किस तरीके से हम स्कूल के माध्यम से, कॉलेजेस के माध्यम से कर सकें। और अभी जो वर्तमान में जो चेंजेस हैं वो चेंजेस को देखा गया कि सब एजुकेशन पॉलिसी जो लाई गई उसमें हम देखते हैं कि भारत से कितने स्टूडेंट जो अदर कंट्रीज में स्टडीज के लिए जाते हैं,
0: ये उच्च शिक्षा के लिए,
1: उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं, और अगर उसी रेशो को हम देखें तो कितने स्टूडेंट अदर कंट्रीज से हमारी कंट्रीज में, हमारे देश में आते हैं, तो हम देखते हैं कि अमूमन जो संख्या है 12 लाख से ज्यादा स्टूडेंट जो हैं वो हमारी कंट्री से अदर कंट्रीज जाते हैं और वहां पे स्टडी लेते हैं, लेकिन अदर कंट्रीज का जो रेशो है वो हम देखें तो 2 या 2.5 लाख के समथिंग है,
0: मतलब 2 से 2.5 लाख बच्चे हमारे देश में पढ़ने आते हैं। वहीं आपका कहना है कि आंकड़ों के अनुसार लगभग 12 लाख
1: स्टूडेंट हमारी कंट्री से बाहर जाते हैं
0: प्रति वर्ष का आंकड़ा है।
1: तो गवर्नमेंट ने ये देखा कि जो हमारा रेवेन्यू है सबसे ज्यादा, जो एजुकेशन एक मेन पिलर है देश का, तो वो देखें कि वो सबसे ज्यादा बाहर अदर कंट्रीज में जा रहा है, अदर देशों में जा रहा है, बाहर के देशों में जा रहा है। तो उस रेवेन्यू को किस तरीके से हम, जिसे विश्व गुरु की परंपरा है, तो उसे किस तरीके से बेटर कर सकते
0: जी, जी, जी।
1: तो उसी परिपेक्ष में कहा गया था कि हमें चेंजेस हमारी एजुकेशन पॉलिसी में करने लगे कि हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी को कैसे और बेहतर बना सके। तो उसमें हमने मल्टीडिसिप्लिनरी बहुउद्देश्य आयाम की बात की गई है, हमने समावेशी शिक्षा की बात की गई है, हमने इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात की गई है। तो इन सारे एजुकेशन के माध्यम से हम किस तरीके से अपनी जो शिक्षा है उसको बेहतर कर सके और आगे बढ़ाने के प्रयास कर सके। उन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार ने काम किया है तो उसे बेटर परफॉर्मेंस की तरफ गई है।
0: जी जी जी। डॉक्टर विनोद, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि बात हुई है हमेशा ही कि जो हमारी मातृभाषा है उसमें पढ़ाई हो और फॉरेन लैंग्वेज भी हम कहीं ना कहीं सीखें या राष्ट्रीय स्तर की ऐसी भाषा भी हम सीखें जो ज्यादातर क्षेत्रों में बोली जाती हो, समझी जाती हो, उसको लेकर भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ध्यान रखा गया है और कोशिश की गई है कि कहीं कोई मनमुटाव, कहीं कोई ऐसी स्थिति हमारे देशवासियों के बीच में ना हो कि वो भाषा के आधार पर अपने आप को ऐसा समझें कि अगर वो इस भाषा को नहीं पढ़ रहे हैं तो उनका मानसिक विकास नहीं होगा या उनकी वृद्धि नहीं होगी, उन्नति नहीं होगी। इस बारे में थोड़ा बताइए।
1: बिल्कुल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो भाषा को बहुत अच्छी तरीके से देखा गया है और उसमें स्थानीय भाषाओं को जोड़ दिया गया
0: जी।
1: राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अगर आप देखेंगे तो उसमें सर्वप्रथम मातृभाषा को ही प्राथमिकता दी गई है कि जो शिक्षा दी जाए बच्चों को वो प्राथमिक लेवल पे दी जाए, प्राथमिक स्तर पे दी जाए, ताकि उस शिक्षा के माध्यम से जो बच्चे की लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में अगर शिक्षा होगी तो बच्चे में प्रोग्रेस जो है वो बहुत अधिक मात्रा में
0: सीखेगा भी जल्दी।
1: तो उसको प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी मिडिल एजुकेशन के लिए जो मातृभाषा है स्थानीय स्तर पर उसी को प्रमोट किया गया है। सेकेंडरी लेवल पे वो अपनी भाषाओं का चुनाव कर सकता है, उसे जिस भाषा में भी बात करनी है उसको ले सकता है। और अगर आप देखें शिक्षा नीति में तो आर्टिकल 8 जो अनुसूची 8 है उसमें भी भाषाओं को विभिन्न भाषाओं में रखा गया है, विभिन्न भाषाओं में शिक्षा का प्रावधान रखा गया है कि आप उन सभी भाषाओं में से अपनी भाषा को सेलेक्ट करें और अपनी भाषा के अनुसार आप अपनी शिक्षा को और भी बेहतर बनाएं। अगर आप अपनी भाषा में शिक्षा का चुनाव करेंगे तो आपके अंदर जो चेंजेस देखे गए वो बहुत अधिक मात्रा में देखे गए हैं और इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने समावेशी स्तर पर भी लेके आए हैं कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन जो दे रहे हैं वो अनुसूची में जो भाषाएं हैं उनको भी आधार बनाया है
0: जी जी जी,
1: ताकि हम प्रत्येक स्तर पे बच्चों को बहुत बेहतर काम कर सकें। क्योंकि अगर विकलांग बच्चे हैं या ऐसे बच्चे हैं जिनको सीखने में ऐसा है महसूस कर रहे हैं
0: जी,
1: तो उनको मातृभाषा जो है माँ के रूप से या पिता के रूप से एक बेटर अपॉर्चुनिटी दिलाती है, एक अच्छे आयाम दिलाती है और उसको पढ़ाई के लिए हम आगे बढ़ा सकते हैं। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है भाषा के साथ साथ उनका मानसिक डेवलपमेंट पर भी बात करती है
0: जी जी जी,
1: है ना। मानसिक डेवलपमेंट किस तरीके से बेटर हो सके, उनका संतुलित व्यवहार भी कैसे हो सके,
0: ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल पर्सनैलिटी
1: जी
0: जी, बच्चों की बढ़े बने और एक समग्र विकास उनका हो, इसके लिए लगातार न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काम किए गए हैं और उनको लागू करने का प्रयास लगातार जारी है। हम ये देखते हैं कि शिक्षकों का जो रोल है किसी भी छात्र के विकास में, उसके पूरे लाइफ बिल्डिंग में, पूरे जीवन का जो भी उसकी संरचना होगी वो शिक्षकों के हाथ में है
1: जी।
0: और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग है वो भी उस स्तर की हो कि वो आगे चलकर उन बच्चों को उस तरह से पढ़ा सकें, सिखा सकें। आप चूंकि फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से है, लगातार आप इन चीजों के बीच में रहते होंगे, तो क्या कुछ करिकुलम जो हमारे भावी शिक्षक हैं जो आपके यहाँ पढ़ रहे हैं जो या कहीं भी जो अलग अलग कोर्सेज में आपके यहाँ हैं, उनको क्या सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है?
1: देखिए, टीचर एजुकेशन जो है एक पिलर है एजुकेशन का, और वो हमारा राष्ट्र का भी पिलर है जो

0: हम देश को प्रगति की ओर लेके जाते हैं, और वहां से हम ऐसे अध्यापक तैयार करते हैं जिनके हाथ में हमारा देश का भविष्य होता है।
1: बिल्कुल
0: और उस भविष्य को तैयार करने के लिए आपको सर्वप्रथम आपके टीचर्स को बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा, अच्छी तरीके से बेटर करना पड़ेगा। तो उसके लिए टीचर एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेस वर्तमान में आए हैं। अगर आप देखें तो प्राइमरी एजुकेशन में DLED और BLED प्रारंभ किया गया है, और सेकेंडरी एजुकेशन में BA BEd इंटीग्रेटेड प्रोग्राम और BSc BEd इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चालू किए गए, और BEd को इसमें प्राथमिकता दी गई है कि हायर एजुकेशन में आप BEd कैसे ले सकते हैं। साथ ही साथ MEd को भी इसमें बढ़ाया गया है।
1: जी।
0: अभी वर्तमान में अगर आप देखें तो BA BEd और BSc BEd इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उसको कन्वर्ट किया है ITAP में।
1: अच्छा,
0: और ITAP में वो कन्वर्ट किया है।
1: ये ITAP क्या है, हमारे श्रोताओं को जरा विस्तार से आप बताएं।
0: बिल्कुल जी, ITAP में अगर आप देखें तो ये NCT के द्वारा जो बैचलर ऑफ एजुकेशन एंड बैचलर ऑफ साइंस की जो डिग्री थी, जो स्नातक शिक्षा में और स्नातक ग्रेजुएशन जो ली जाती थी बायोलॉजी या मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री में ली जाती थी, तो ये 4 साल का प्रोग्राम है जिसमें BEd के साथ उसका BSc या BA या BCom कंप्लीट होता था, ग्रेजुएशन कंप्लीट होती थी। तो 4 साल के मतलब जो BSc करते था स्टूडेंट वो 3 इयर्स में करते थे, लेकिन वहां पे उसे 2 ईयर का BEd भी करना होता था, तो टोटल 5 इयर्स लगते थे। लेकिन NCT ने चेंजेस किया NEP के अकॉर्डिंग कि 4 ईयर में हम
1: जी 4 साल में वो ग्रेजुएशन भी
0: कंप्लीट कर लेगा
1: और प्रोफेशनल जो
0: BEd भी कंप्लीट कर लेगा। दोनों प्रोग्राम 4 साल में कंप्लीट कर लेगा। और अभी तक ये चीजें चल रही थी, लेकिन NEP में ITAP को लेके आए, ITAP ने रिवाइज किया BSc BEd और BA BEd को
1: जी,
0: और उसकी जगह उन्होंने कहा कि साहब अभी तक जो ग्रेजुएशन होती थी वो तीनों सब्जेक्ट में ली जाती थी। अगर सपोज दैट साइंस का स्टूडेंट है तो वो जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री पढ़ता था, अगर मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो मैथमेटिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ता
1: जी,
0: था
1: जी, जी, जी।
0: लेकिन अभी जो ITAP में चेंजेस किया गया था कि हम ऑनर्स देंगे उसे, अभी क्या है एजुकेशन के साथ वो ऑनर्स की डिग्री लेगा, चाहे ऑनर्स विद फिजिक्स हो, ऑनर्स विद मैथमेटिक्स हो या ऑनर्स विद बायोलॉजिकल साइंस हो।
1: जी जी,
0: तो ये चेंजेस किए गए कि स्टूडेंट जो ले रहा है, क्योंकि जिस तरीके से IITs या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें ऑनर्स की डिग्री दी जाती थी, तो उसी तरीके से महाविद्यालय जो एजुकेशन के महाविद्यालय मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन लागू किए गए हैं, जहां पे ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी चल रहे हैं
1: जी,
0: प्लस BEd का प्रोग्राम भी चल रहा है, तो उनको मल्टीडिसिप्लिनरी की तरह मोड़ा गया है कि सब एजुकेशन वाले कॉलेज एजुकेशन की शिक्षा दे और साथ में जो ग्रेजुएशन के कॉलेज है वो ग्रेजुएशन की शिक्षा
1: जी,
0: दे
1: जी, जी।
0: तो इसमें बच्चे जो है वो 4 साल में अपनी BEd को भी कंप्लीट करता है, अपनी ग्रेजुएशन को भी कंप्लीट करता है। और NEP में एक और प्रावधान किया गया है कि अगर 4 साल के बीच में आपके कोई भी दिक्कत होती है, जिस तरीके से आप बात करें, तो वो वहां पे ब्रेक ले सकता है या अपनी डिग्री ले सकता है। अगर 1 ईयर की कंप्लीट करता है तो उसे सर्टिफिकेट का दिया जाएगा
1: जी,
0: 2 ईयर वो अगर कंप्लीट करता है तो उसे हम डिप्लोमा दे देंगे
1: जी,
0: और 3 ईयर अगर वो कंप्लीट करता है तो हम उसे ग्रेजुएशन की डिग्री दे देंगे, और 4 ईयर अगर कंप्लीट करता है तो ग्रेजुएशन विद द रिसर्च की उसको डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। और साथ ही साथ इसमें ABC सिस्टम, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम को भी लागू किया गया है, जिसमें कि बच्चा जो क्रेडिट जितने वो हासिल करता है, क्योंकि अगर आप देखें जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा के लिए 20 क्रेडिट्स की आवश्यकता है, सर्टिफिकेट के लिए 40 क्रेडिट्स की आवश्यकता है, स्नातक के लिए उसे 80 क्रेडिट्स की आवश्यकता है, और ग्रेजुएशन विद द रिसर्च के लिए 120 क्रेडिट्स की आवश्यकता है। तो वो क्रेडिट का भी अपने अकाउंट में ले लेगा, एक बैंक सिस्टम की तरह ही क्रेडिट सिस्टम को लागू किया गया है
1: जी,
0: और उसके खाते में वो क्रेडिट्स आ जाते हैं। अगर वो उसने 1 सेमेस्टर कंप्लीट करा है तो 20 क्रेडिट स्टूडेंट के खाते में चले जाएंगे, अगर उसने 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है तो 40 क्रेडिट्स उसके खाते में चले जाएंगे, और वो क्रेडिट उसके खाते में एक तरीके से बैंक की तरह काम करेंगे और उस क्रेडिट्स को वो फ्यूचर में यूज कर सकता है।
1: जी जी जी,
0: तो ये चेंजेस जो है NEP के थ्रू आए हैं, क्योंकि अभी तक हमारा जो सिस्टम चलता था वो मार्किंग सिस्टम था, लेकिन वर्तमान में जो सिस्टम चला है हमारा वो क्रेडिट बेस्ड
1: जी, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम ग्लोबल पहले से ही प्रचलित था और भारत में भी अब इसकी शुरुआत हुई है, कई यूनिवर्सिटीज में इनको पहले से भी लागू किया जाता था। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आपने बात की कि किस प्रकार से इंटीग्रेटेड टीचर्स जो है वो प्रोग्राम है, मुझे ये बताइए कि हम अक्सर देखते हैं कि कोई साइंस का विद्यार्थी यदि उसकी रुचि इकोनॉमिक्स पढ़ने में है या अन्य विषय में है, तो उसको कोई ऐसा

0: मौका नहीं मिलता था, उसको अपनी ही डिग्री करनी पड़ती थी, लेकिन इस नए करिकुलम के चलते अब वो साथ में इस तरह की चीजें भी पढ़ सकता है। यदि वो कोर्स के बीच में किसी कारणवश जारी नहीं रखना चाहता, कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो क्या वो ड्रॉप कर सकता है और उसकी डिग्री जारी रहेगी?
1: बिल्कुल जारी रहेगी। देखिए, अगर आपने कहा कि कोई अगर साइंस का विद्यार्थी और अगर इकोनॉमिक्स में अपनी रुचि रखता है, तो निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसे ये अवसर प्रदान करती है कि वह इकोनॉमिक्स में भी अपनी डिग्री हासिल कर सकता है। इसके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन अप्रोच को लगाया गया है, और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ये कहती है कि स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट में उसकी रुचि है, जिस कोर्स में उसकी रुचि है, वो उस कोर्स में जाए। तो इसीलिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ये कहती है कि अगर स्टूडेंट का बायोलॉजी का स्टूडेंट है, अगर उसका इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में है, तो निश्चित रूप से वो इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले सकता है, बशर्ते कि वो उसकी अहंकारिता योग्यता को पूर्ण करता हूं
0: जी,
1: तो तभी वो उसमें एडमिशन ले सकता है और आगे बढ़ सकता है।
0: डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपने बात की किस प्रकार से एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को अगर कोई पढ़ने का इच्छुक है तो उसमें भी डिग्री जारी कर सकता है। मुझे ये भी बताइए कि बात होती है कि ओवरऑल डेवलपमेंट में हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि भारत में यदि कोई व्यक्ति पढ़ाई की तरफ बहुत अधिक अग्रसर रहता है, इंटरेस्टेड रहता है, तो वो खेलों में पीछे रह जाता है या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पीछे रह जाता है, और दुनिया जहां की जो हॉबीज है वो उनको कंटिन्यू नहीं कर पाता, या अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को कहीं ना कहीं वो मार देता है इस चक्कर में कि उसको आगे अपना करियर बनाना है। तो इन सब चीजों को लिए भी विशेष रूप से एनईपी में प्रावधान है, वो क्या है और कैसे उनको स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जा रहा है?
1: अभी तक जो शिक्षा के प्रावधान थे, तो अगर देखें तो हम स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड ही देखते थे और रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पे ही उसको प्रोग्रेस दी जाती थी
0: जी।
1: लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमने रिपोर्ट कार्ड को तो रखा ही है, साथ ही साथ हमने ऐसे बहुत सारे आयामों का पर भी जोर दिया है जिनको हम बेटर कर सकें। इसमें कोई स्टूडेंट अगर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करता है तो हमने उसको भी वहां पे अंक दिए हैं, ताकि ऐसा ना हो कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट खेलने में है और हम उसे पढ़ाई में पीछे रह जाएं। तो पढ़ाई में पीछे रहने के लिए, उसे एक लेवल पे लाने के लिए स्पोर्ट्स का वेटेज किया गया है। अगर कोई ललित कला में बहुत अच्छा है, गायन में बहुत अच्छा है, या वो किसी और फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है और उसमें वो टैलेंट है, तो उस टैलेंट को निखारने की कोशिश की गई और उस टैलेंट को जानने की कोशिश की गई है, और उस टैलेंट का वेटेज वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रखा गया है। तो ऐसे प्रावधान हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिए गए हैं, ताकि विद्यार्थी का जो ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात की गई है उसको पूर्ण कर सके, क्योंकि वर्तमान जो भविष्य है हमारे आने वाली पीढ़ी के हाथ में है और उस पीढ़ी को हमें आगे लेके जाना है, तो उस पीढ़ी को बेहतर बनाने के लिए प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत रखा गया है
0: जी। जी जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो छात्र आगे बढ़कर पीजी कोर्सेज में या आगे रिसर्च तक जाना चाहते हैं, तो जिस तरह से इंटीग्रेटेड कोर्सेज अब चल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति साइंस कोर्स के साथ इकोनॉमिक्स ले रहा है या हिस्ट्री ले रहा है, या इससे उलट आर्ट्स का छात्र कोई अगर फिजिक्स पढ़ना चाह रहा है, तो उस तरह से आज संभव है, क्योंकि पीजी कोर्सेज में और रिसर्च में सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीजें हो जाती हैं, तो वहां किस प्रकार का प्रबंध किया गया है? क्या उनको जो भी उनका फील्ड है उसी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, या एडिशनल कोर्स जो वो कर रहे हैं वो भी साथ में उसमें भी वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं?
1: बिल्कुल, एडिशनल कोर्स में भी वो कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं एजुकेशन में था और एजुकेशन में मेरे पास एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि साहब मेरा एजुकेशन की तरफ इंटरेस्ट है, लेकिन मैं पेरेंट्स के दबाव के कारण मैं साइंस ले लिया और साइंस में मैंने अपना फील्ड चुन लिया
0: जी,
1: लेकिन मेरा इंटरेस्ट अभी भी टीचर बनने में है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने उनसे कहा था कि आप क्या करना चाहते हैं, आप अपनी बताइए। उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि सब मैं एजुकेशन से अपनी डॉक्टरेट करना चाहता हूँ, पीएचडी रिसर्च को कम्प्लीट करना चाहता हूँ, ताकि मैं एजुकेशन के बारे में जो जानता हूँ, जो समझता हूँ, उसको मैं देश तक पहुंचा सकूँ और आगे बढ़ा सकूँ। तो उन्होंने जब एडमिशन की बात की और एडमिशन के लिए लेने की बात की, तो कहा था कि मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत उन्होंने अपना एडमिशन एजुकेशन में लिया, और एजुकेशन में लेने के बाद उन्होंने अपना रिसर्च वर्क पूरा किया, और रिसर्च वर्क पूरा करने के बाद जब डिग्री अवार्ड की गई उन्हें, तो उन्हें एजुकेशन से पीएचडी डिग्री अवार्ड की गई। तो उनका जो एक संभावनाएं थी, जो उनके अंदर जो छुपी हुई थी, उनको निखारने का एक बहुत अच्छा

0: अवसर मिला
1: जी,
0: और उसका फायदा हमारे एजुकेशन सेक्टर को भी हुआ कि जो उनकी चीजें हैं वो निकल के आई और उससे हम अपना एक बेहतर भविष्य देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप कह रहे थे कि बच्चे की रुचि को दबाया जाता है या उसकी क्षमताओं को नहीं उठने दिया जाता या वो जो सोचता है उसके पास पेरेंट्स का दबाव आ जाता है या समाज का दबाव हो जाता है, तो उस दबाव को रिलैक्स करने का काम किया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कि किस तरीके से हम उस दबाव को हटा सकते अपने पेरेंट्स के दबाव को हटा सकते हैं और एक अपने विचार रखने की सहमति उस स्टूडेंट में मिली और उसने अपने विचार रिसर्च के थ्रू या अपने एजुकेशन के थ्रू वो हमारे राष्ट्र के सामने रखे और हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसी संभावनाओं से विद्यार्थी का जो है वो संपूर्ण विकास की तरफ अग्रसर होता है।
1: जी, जी।
0: और ऐसे ऐसे आपको स्कूल्स में उदाहरण मिलेंगे कि मैं अभी एक स्कूल में गया था दिल्ली के स्कूल में और वहां पे एक इनोवेशन का कोर्स चलता है और इनोवेशन के कोर्स में कहा गया था कि आप किस तरीके से आप इनोवेट करेंगे।
1: जी।
0: तो विद्यार्थी ने मुझे बताया कि सर ये मानिएगा कि मैंने अपनी वीडियोस बनाना स्टार्ट की, मेरा इंटरेस्ट था वीडियो बनाना और मैं उन वीडियोस को यूट्यूब पर डालता गया और YouTube पर मेरे फॉलोवर्स बढ़ते गए।
1: जी।
0: हालांकि वो एजुकेशन ले रहा था अपनी और एजुकेशन के साथ साथ इन दैट एडिशनल ही काम करता था और एक टाइम उसके जो फॉलोवर्स थे वो 10 मिलियन से ऊपर चले गए। तो उनके पास जो उसका इनकम का सोर्स एक ओपन हो गया था और उनके पास YouTube के थ्रू जो पेमेंट किया जाता था वो पेमेंट आने लगा। तो स्टूडेंट का कहना था कि साहब मैं अपनी एजुकेशन जो है मैं अपने पैसों से खुद कर देता हूं, तो मैं अपनी जो सोच है उसको ब्रॉड कर लिया है।
1: जी जी।
0: तो पेरेंट्स के ऊपर जो दबाव होता है फीस का, जो उस पे दबाव होता है उसकी एजुकेशन का, घर चलाने का, तो वो दबाव कहीं ना कहीं कम हुआ है इस मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच से।
1: जी जी जी।
0: और एक बच्चे का जो इंटरेस्ट है, ये मैं आपको बात कर रहा हूँ 6th, 7th, 8th स्टूडेंट की, जिसके पास उसके ऊपर जो प्रेशर था कि वो अपने विचार नहीं रख सकता, तो वो अपने विचारों को भी YouTube के माध्यम से,
1: सोशल मीडिया के माध्यम से,
0: सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक में पहुंचाने का काम करता है और अपनी चीजों को बेटर करता है, एक बेटर एजुकेशन के लिए अप्रोच करता है।
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: इन सारी चीजों से हम मानते हैं कि उसका मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच बहुत अच्छी तरीके से कारगर सिद्ध हुआ है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में।
1: जी जी जी। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हेल्थ एजुकेशन को, फाइनेंस नॉलेज को, AI को, क्योंकि AI के बारे में लगातार बात हो रही है और आने वाली भावी पीढ़ी को भी अब AI से पारंगत होना पड़ेगा, इन चीजों को सीखना पड़ेगा, ऐसे बहुत से आयाम हैं जो आम शिक्षा में छूट जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं हमारे पर्यावरणीय शिक्षा की, किस प्रकार से हम जागरूक रह सकते हैं अपने पर्यावरण के प्रति, तो इन चीजों को कैसे जोड़ा गया है, कैसे इम्बाइब किया गया है और कैसे छात्रों तक ये चीजें पहुंचाने का प्रयास है।
0: देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो पढ़ाई के साथ साथ
1: जी
0: हमारे एनवायरमेंट को लेके भी काफी चिंतित रहती है, ताकि हम एनवायरमेंट को किस तरीके से बेटर कर सकते हैं। और वर्तमान में स्टूडेंट इतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है कि वो AI का बहुत अच्छे से यूज करता है
1: जी।
0: और AI वर्तमान में उसे जो सोच उसके माइंड में चल रही है उसके एक सॉल्यूशन प्रदान करता है
1: जी।
0: सॉल्यूशन प्रदान करने के साथ साथ उस सोच को वो आगे बढ़ाने का काम करता है। अभी मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था और उस स्टूडेंट कह रहा था कि साहब मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने AI से कहा मुझे रात को नींद नहीं आ रही है, तो AI ने उसको जवाब दिया उसका कि आपके मन में क्या चीजें चल रही हैं, कृपया मुझे बताएं
1: जी।
0: तो AI को उसने जब अपनी चीजें लिखी तो AI ने उसे सॉल्यूशन दिया और सॉल्यूशन पढ़ने के बाद उसे लगा कि क्या AI मुझसे बात कर सकता है, मैं AI के थ्रू अपनी चीजों को शेयर करके मैं उसका सॉल्यूशन ले सकता हूँ। तो AI में कहीं ना कहीं विद्यार्थियों में अपनी जगह इसीलिए बनाई है कि क्योंकि वहां पे विद्यार्थियों एक परफेक्ट सॉल्यूशन मिलता है, एक सॉल्यूशन मिलता है और वो एक पेरेंट की तरह भी ट्रीट करता है, मतलब दोनों कैपेसिटीज उसमें हैं और उससे AI का प्रचलन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा है। और उसी के साथ क्या हम एनवायरमेंट से जुड़े हुए चीजों को देखें या हमारे जो आसपास का वातावरण है उसको देखें, तो उसको भी एजुकेशन में रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि पर्यावरण हमारा जितना शुद्ध होगा, जितना हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं, उतना हम बेहतर काम कर सकते हैं, उतनी बेहतर हमारी सोच क्रिएट कर सकते हैं
1: जी।
0: तो अगर हम एनवायरमेंट को लेके देखें तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारी चीजों

0: को जो पेपर बेसिस थी ऑनलाइन फॉर्म पे लेके आए
1: जी जी जी,
0: और ऑनलाइन फॉर्म पे लाने के बाद उन चीजों में हमने अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने का काम किया है। हमने सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद किया है, हमने ऐसी बोटल्स जिनको रीयूज किया जा सके ऐसी बोटल्स को यूज करने का प्रावधान रखा गया है। तो इन सारी चीजों से जब हम करते हैं तो हम एक पर्यावरण के प्रति अपनी चेतना भी लागू करते हैं और हम एक विद्यार्थियों को पर्यावरण और समाज के प्रति अवेयर जागरूक करते हैं
1: जी।
0: साथ ही साथ हम देखें तो विद्यार्थियों के लिए ऐसे कोर्सेज भी उसमें जोड़े गए हैं जिनके माध्यम से वो पर्यावरण की नॉलेज वहां से गेन करें, पर्यावरण की एक समझ अपने आप में विकसित करें और उस तरीके से हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सके और आगे बढ़ा सकें। तो ये चीजें हम देखें तो हमें एक टीचर के माध्यम से तो मिलती मिलती हैं, और वर्तमान में सोशल मीडिया पे जो बच्चा यूज करता है तो वहां पे भी बहुत अधिक मात्रा में इनका प्रयोग करता है, और वो जब इन चीजों को अपने विद्यालय में सीखता है अपने घर में करता है तो निश्चित रूप से वो अपनी अगली पीढ़ी को भी ट्रांसफर करने का कार्य करता है, जिससे हम अपने देश को भी पर्यावरण के लिए जागरूक बना सकें और अपने गांव को और अपने शहर को बेहतर कर सकें।
1: जी जी जी। तो श्रोताओं, हमारे बीच में थे डॉक्टर विनोद कुमार जैन जी, जो कि फैकल्टी ऑफ एजुकेशन तीर्थांकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद से संबंधित हैं। आपने बहुत विस्तार से अपने अनुभवों को भी और अपने प्रयासों को भी साझा किया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आह्वान को लेकर, उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, और आपने बहुत से ऐसे उदाहरण भी पेश किए जो सीधे सीधे छात्रों से जुड़े थे, उनके जीवन से जुड़े थे, और किस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति उच्च शिक्षा में उसकी क्या भूमिका है, क्या आयाम है, और क्या कुछ उसको लेकर भविष्य में हमारी परिकल्पनाएं किस प्रकार से हमारे देश को विकसित करने की ओर अग्रसर करेगी, विस्तार से आपने बात की। डॉक्टर साहब, आप समय निकालकर आकाशवाणी के स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका और आयाम, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर विनोद कुमार जैन को, आपसे बात की थी विक्रांत चौधरी ने। ये कार्यक्रम था आकाशवाणी रामपुर द पॉडकास्ट शो। ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ।
3: बंदूक से निकली गोली का कोई नाम, कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता। जब ये गोली लगती है किसी इंसान को तो घायल होती है मानवता, छूट जाता है एक बचपन, वीरान हो जाता है किसी का जीवन, टूट जाती है किसी के बुढ़ापे की लाठी, बुझता है एक दीपक उम्मीद का। अपने इस देश में बारूद का ढेर नहीं, फूलों का चमन महकाएं, जीवन के हर रंग से इंद्रधनुष बनाएं।

0: फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाए, हुब्बे वतन के पौधे इसमें नए लगाएं।
1: मिल मिल के हम तराने हुब्बे वतन के गाएं, बुलबुल है जिस चमन के गीत उस चमन के गाएं।
0: हम सब भी मिलकर

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी है। रवि वासरी अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है सितार वादन। कलाकार हैं पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य। जाने माने संगीतज्ञों वाली विशिष्ट परिवार में जन्मे पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य के दादा श्री लाल मोहन भट्टाचार्य जाने माने सितार वादक थे, जिन्होंने इस सांगीतिक विरासत की नींव रखी। अपने पिता श्री गंगाशंकर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य ने शुरुआती तालीम हासिल की। आगे चलकर आपको विष्णुपुर घराना के श्री मुरलीधर ठाकुर से सीखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। 1968 में पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य उस समय के बंबई

0: रवाना हुए। आपने वहाँ भीमकार शैली के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने के प्रवाद प्रतिम सितार वादक पद्मभूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान से सितार वादन सीखना आरंभ किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है। आपने देश और विदेश के तमाम संगीत समारोहों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के सूचीबद्ध कलाकार हैं। साथ ही आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित अपना उत्सव समारोह में आपने संगीत निर्देशक की भूमिका भी निभाई है। आज रात पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य के साथ तबली पर संगत करेंगे प्रशांत दे रॉय।
1: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा टुनाइट वी प्रेजेंट सितार रिसाइटल बाय पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य। Born in a distinguished musical family of accomplished musicians, where his grandfather, the renowned sitarya, Sri Lal Mohan Bhattacharya, is said to have laid the foundation of this rich legacy, and Pandit Hrishankar Bhattacharya, stepping into this world of music with initial training under the able guidance of his father, Sri Ganga Shankar Bhattacharya. Further, he also received training from Sri Murali Das Thakur of the Bishnupur Gharana. Later, in 1968, Pandit Hrishankar Bhattacharya moved to Bombay, present-day Mumbai, to undergo intensive talim under the legendary sitar maestro Padma Bhushan Ustad Abdul Halim Zafar Khan of the Indore Gharana, famous for his Binkar style. A top grade sitar artist of Akashvani and Doordarshan, Pandit Hrishankar Bhattacharya, with his unique artistic identity as a Jafar Khani Baj, has performed extensively at major classical music concerts and festivals across India and abroad. An impaneled artist of the Indian Council for Cultural Relations, Pandit Hrishankar Bhattacharya has received several awards and accolades and has also contributed as a music director for Apna Utsav, a festival organized by the government of West Bengal. In tonight's presentation, Pandit Hrishankar Bhattacharya is accompanied on the tabla by Prashanto De Roy.
0: पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य सितार वादन की इस प्रस्तुति का आरंभ राग दरबारी के साथ करेंगे। यह बंदिश आलाप और जोड़ के साथ शुरू होगी, जो गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात मध्य लय तीन ताल में आबद्ध है।
1: पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य स्टार्ट्स हिज सितार रिसाइटल विद राग दरबारी। बिगिनिंग विद आलाप एंड जोड़, द कंपोजिशन ऑफ द राग is set to gat in vilambit tintal, followed by madhyalaya tintal.

0: सितार वादन के अंतर्गत आप पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य से राग दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग छायानट, जो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: You are listening to Rag Darbari on the sitar by Pandit Harishankar Bhattacharya. He continues with his presentation in Rag Chayanat, which begins in Alap with a composition set to Gat.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप राग छायानित सुन रहे थे। पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य आज की इस प्रस्तुति का समापन राग जिला काफी के साथ करेंगे। शुरुआत आलाप से होगी और यह बंदिश गत में दीप चंडी, तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आवद्ध है।
1: You are listening to Raag Chhayanat in the sitar recital. Pandit Harishankar Bhattacharya concludes his presentation with Raag Zila Kafi. Beginning with Alap, the composition of the Raag is set to Gat in

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य से राग जिला काफी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांत दे रॉय।
1: You are listening to Rag Zila Kafi in the sitar recital by Pandit Harishankar Bhattacharya. He was accompanied on the tabla by Prashanto De Roy.
0: इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: And with this, we end tonight's रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण

0: और भागीदार बताया।
1: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका की विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 109,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 800,000 से अधिक आवेदकों में से लगभग 549,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालु नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
3: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
2: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce was also reiterated. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation or repatriation in line with Ministry of Home Affairs, that is MHA, guidelines. According to an official communication issued by the Home and Health Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences and are awaiting deportation. Union Home Minister Amit Shah today said, government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code, that is UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janjati Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said, the UCC will not infringe upon any tribal rights. The National Testing Agency, that is NTA, today postponed the Common University Entrance Test undergraduate, that is CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. NTA said that this decision was taken in view of the change in the date of the Eid al-Zuha, that is Bakrid holiday, as per the government notification. The agency informed that revised exam dates for affected candidates will be announced soon. NTA also advised candidates to regularly visit its official website for the latest updates. The Central Board of Secondary Education, that is CBSE, today extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for Class 12th board examinations by one more day until tomorrow. CBSE said that the decision was taken to provide adequate time to students for submitting requests. The board advised candidates to avail of this extended timeline and submit their applications accordingly. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has given directions to depute a team of professors and technical experts from Indian Institute of Technology, that is IIT Madras and IIT Kanpur, to assist the Central Board of Secondary Education, CBSE, in ensuring a glitch-free re-evaluation process. The decision has been taken in view of the developments and concerns raised by students and parents regarding the CBSE post-result services portal. In Karnataka, 8 members of a family, including 7 women, drowned in the Thatte Hakalu River in Uttara Kannada district today. The mishap occurred when they were collecting freshwater mussels and were swept away by strong currents. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the incident. Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. Chief Minister Siddaramaiah also announced an ex gratia of 5 lakh rupees for the next of kin of each deceased. The India Meteorological Department, that is IMD, has forecast that severe heat wave conditions are likely to persist over central and northwest India for the next 7 days. The weather agency also issued a red alert for severe heat wave conditions over East Uttar Pradesh, East Madhya Pradesh and Vidarbha for tomorrow. At the Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers continued their impressive run, securing 3 gold, 2 silver and 3 bronze medals in Vietnam's Da Nang today. And that is the end of this news bulletin.
4: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी तक आप सुन रहे थे हमारी द्वितीय सभा के प्रसारण। रात्रि के 11:10 हुए हैं। कल प्रातः 5

आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर अभी तक आप सुन रहे थे हमारी द्वितीय सभा के प्रसारण। रात्रि के 11:10 हुए हैं। कल प्रातः 5